नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मुकेश कुमार। अठारवां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन कल से नई दिल्ली के भारत मंडपम में शुरू होगा। 2 दिन के इस सम्मेलन के लिए तैयारियों को अंतिम रूप दिया जा रहा है। ब्रिक्स में 11 प्रमुख विकासशील देश शामिल हैं। इनमें ब्राजील, रूस, भारत, चीन, दक्षिण अफ्रीका, मिस्र, इथोपिया, इंडोनेशिया, ईरान, सऊदी अरब और संयुक्त अरब अमीरात शामिल हैं। इस वर्ष ब्रिक्स सम्मेलन का विषय लचीलापन, नवाचार, सहयोग और स्थिरता के लिए निर्माण है। शिखर सम्मेलन में चीन के राष्ट्रपति शी चिनफिंग, दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति सिरिल रामाफोसा, मिस्र के राष्ट्रपति अब्दुल फतह असीसी, इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्रबोबो सुबियांतो और ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेशकियान हिस्सा लेंगे। संयुक्त राष्ट्र महासचिव अंतोनियो गुतरश, विश्व स्वास्थ्य संगठन के महानिदेशक टेड्रोस अधनोम घेब्रेसस और न्यू डेवलपमेंट बैंक के अध्यक्ष डिल्मा रुसेफ समेत कई अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के प्रमुख भी सम्मेलन में शामिल होंगे। इस बीच रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और ब्राजील के विदेश मंत्री माउरो वेइरा कल रात नई दिल्ली पहुंचे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की आज रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के साथ द्विपक्षीय वार्ता होने की संभावना है। श्री मोदी शिखर सम्मेलन से अलग कई अन्य देशों के नेताओं के साथ भी द्विपक्षीय बैठकें कर सकते हैं। इस सम्मेलन के मद्देनजर दिल्ली में आज दोपहर 2 बजे से रात 8:30 बजे तक कई प्रमुख सड़कों पर यातायात में बदलाव और आवाजाही नियंत्रित रहेगी। दिल्ली ट्रैफिक पुलिस के अनुसार सरदार पटेल मार्ग, 3 मूर्ति मार्ग, 30 जनवरी मार्ग, राजेश पायलट मार्ग, मथुरा रोड, जनपथ, अशोका रोड, 12 खंबा रोड, नीति मार्ग, पंचशील मार्ग और प्रेस एनक्लेव रोड समेत कई प्रमुख मार्ग प्रभावित रहेंगे। पुलिस ने यात्रियों से अपील की है कि वे अनावश्यक यात्रा से बचें। इस बीच दिल्ली मेट्रो ने स्पष्ट किया है कि अगले आदेश तक सभी मेट्रो स्टेशन खुले रहेंगे और सामान्य रूप से चलेंगी। ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के दौरान रविवार तक राष्ट्रपति भवन संग्रहालय और अमृत उद्यान बंद रहेंगे। राष्ट्रपति सचिवालय ने बताया कि शनिवार को होने वाला चेंज ऑफ गार्ड समारोह भी आयोजित नहीं होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत अंतरिक्ष अन्वेषण से जुड़े अभियानों को सुरक्षित, शांतिपूर्ण और टिकाऊ बनाए रखने के पक्ष में है। श्री मोदी ने कहा कि अंतरिक्ष संबंधी गतिविधियां अंतर्राष्ट्रीय कानून, संवाद और बहुपक्षीय सहयोग पर आधारित होनी चाहिए। प्रधानमंत्री ने फ्रांस के पेरिस में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष शिखर सम्मेलन को वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से संबोधित करते हुए ये बात कही। गृह मंत्री अमित शाह ने नई दिल्ली में समाज सेवी प्रिंस रहीम आगा खान पंचम से मुलाकात की। दोनों के बीच सामाजिक विकास, सिंचाई, सहकारिता, प्राकृतिक खेती, मोटे अनाज और सौर ऊर्जा के क्षेत्र में सहयोग पर चर्चा हुई। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने क्षेत्रीय स्वास्थ्य साझेदारी को मजबूत करने और बेहतर स्वास्थ्य व्यवस्था बनाने के लिए भारत की प्रतिबद्धता व्यक्त की है। श्री नड्डा ने

0: तिमोर लेस्ते में विश्व स्वास्थ्य संगठन के दक्षिण पूर्व एशिया क्षेत्रीय समिति के 79वें सत्र को वर्चुअल माध्यम से संबोधित किया। उन्होंने कहा कि भारत प्राथमिक स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूत बनाने और लोगों तक गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सुविधाएं पहुंचाने पर लगातार काम कर रहा है। सत्र में भारत को संगठन के दक्षिण पूर्व एशिया क्षेत्र पुरस्कार से सम्मानित किया गया। ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने नई दिल्ली में डिजिटल इंडिया भूमि रिकॉर्ड आधुनिकीकरण कार्यक्रम के तीसरे चरण के संचालन दिशा निर्देश जारी किए हैं। श्री चौहान ने कहा कि इस कार्यक्रम से ग्रामीण नागरिकों, किसानों और संपत्ति मालिकों के लिए जीवन आसान होगा। उन्होंने कहा कि भूमि से जुड़े दस्तावेज सही और आसानी से उपलब्ध होना आवश्यक है। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी ने यूजीसी नेट जून 2026 की अंग्रेजी, कॉमर्स और समाजशास्त्र की दोबारा हुई परीक्षाओं की प्रारंभिक उत्तर कुंजी जारी कर दी है। परीक्षार्थी 13 सितंबर तक यूजीसी नेट की आधिकारिक वेबसाइट पर उत्तर कुंजी पर आपत्ति दर्ज करा सकते हैं। दिल्ली नगर निगम ने अनधिकृत निर्माण के मामले में लापरवाही बरतने पर भवन विभाग के 3 अधिकारियों को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है। निलंबित अधिकारियों में 1 सहायक अभियंता और 2 कनिष्ठ अभियंता शामिल हैं। भारत एशिया कप महिला क्रिकेट के फाइनल में पहुंच गया है। सेमीफाइनल में कल भारत ने बांग्लादेश को 40 रन से हराया। शेफाली वर्मा को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। दूसरे सेमीफाइनल में आज पाकिस्तान का सामना श्रीलंका से होगा। इसके साथ ही समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज रेड बाय सरबजीत कौर। The 18th BRICS summit will get underway at Bharat Mandapam in New Delhi tomorrow, with the national capital putting its finishing touches in place for the grand event. The two-day summit will bring together 11 major emerging and developing economies, including Brazil, China, Egypt, Ethiopia, Indonesia, India, Iran, Russia, Saudi Arabia, South Africa, and the UAE. The theme of India's Chairship 2026 is Building for Resilience, Innovation, Cooperation and Sustainability. World leaders including Russian President Vladimir Putin, Chinese President Xi Jinping, President of South Africa Cyril Ramaphosa, Egyptian President Abdel Fattah al-Sisi, Indonesian President Prabowo Subianto, Iran President Masoud Pezeshkian, Crown Prince of Abu Dhabi Sheikh Khalid bin Mohammed bin Zayed Al Nahyan, and Prime Minister of Ethiopia Abiy Ahmed Ali will participate in the summit. Brazil will be represented by Foreign Affairs Minister Mauro Vieira. Saudi Arabia's Minister of Foreign Affairs Prince Faisal bin Farhan Al Saud will also participate in the summit. Malaysian Prime Minister Anwar Ibrahim and Vietnamese Prime Minister Le Minh Hung are the other heads of state who will attend the summit. United Nations Secretary General Antonio Guterres, Director General of WHO Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus, and President of New Development Bank Dilma Rousseff are among the heads of international organizations who will participate in the event. Prime Minister Narendra Modi is likely to hold bilateral talks with Russian President Vladimir Putin today. The President of Russia and Foreign Minister of Brazil arrived in the national capital last night to participate in the summit. The President of South Africa is set to arrive this morning. Presidents of Iran, Indonesia, Egypt, Philippines and Burundi, Crown Prince of Abu Dhabi and Prime Ministers of Malaysia and Ethiopia are scheduled to arrive later today. Prime Minister Narendra Modi will have a series of bilateral meetings on the sidelines of the summit. In view of the upcoming BRICS summit, Delhi Traffic Police has informed that traffic diversions and regulated movement will be in place across key routes in Delhi today from 2 p.m. to 8:30 p.m. During this period, Sardar Patel Marg, Teen Murti Marg, 30 January Marg, Rajesh Pilot Marg, Subramaniam Bharti Marg, Mathura Road, Motilal Nehru Marg, Dr. Zakir Hussain Marg, Africa Avenue Road, Shantipath, Janpath, Ashoka Road, Barakamba Road, Niti Marg, Panchil Marg, Kamal Aturtak Marg, Press Enclave Road and Lala Lajpat Rai Marg, along with connecting roads, will be affected. Meanwhile, Delhi Metro has informed that all metro stations will remain open until further notice with regard to multiple queries.

सवाल ओही जो लोकां दे दिलां विच ने, जवाब ओही जो सच नू सामने लियाउन। खबरां दे पिछे दी खबर, शख्सियत दे पिछे दी कहानी अते समाज नाल जुड़े अहम मुद्दयां ते बेबाक गलबात।

0: यात्रीगण कृपया ध्यान दियो, यात्रा दौरान जे टीसी टिकट मंगे तो वखा दियो, पर कोई भी ओटीपी पिन जा पासवर्ड मंगे तो ओनू तुरंत पजा दियो।
1: आरबीआई कहंदा है ओटीपी जा पिन दे लई कॉल जा मैसेज आवे ता थोड़ा ध्यान नाल।
2: महंगाई महंगाई, इस महंगाई में सुकून से कौन सो पाएगा?
3: वही जो स्लीप वेल स्टोर से मैट्रेसेस खरीद कर लाएगा, क्योंकि स्लीप वेल में चल रहा है ग्रेट स्लीप वेल फेस्टिवल, जहां आपको मिलेगा फ्लैट 21% से 100% तक का डिस्काउंट। विजिट द नियरेस्ट स्लीप वेल स्टोर टुडे।
4: जी श्रोते, प्रोग्राम चल रहा सज्जरी सवेर स्टूडियो की घड़ी से समा हो चुका 7:08 और 11 सैकेंड का। आओ हुण गल कर लैने अज के दिन के इतिहास बारे। अज है जी 9/11 यादगारी दिवस। 9/11 का इतिहास एक अजिहा काला दिन है जिसने पूरी दुनिया नूं झंझोड़ के रख दिता सी। अज का दिन सिर्फ शोक मनाउण दा दिन नहीं, सगों उन्हां बहादुर पुलिस कर्मचारियों, फायर फाइटरां ते बचाव दलां नूं कुरबानी नूं याद करन दा भी दिन है, जिन्हां ने दूजिआं दी जान बचाउंदे होए अपने प्राण जिहड़े आ उह निछावर कर दित्ते सी। ते जेकर गल करिए अज के दिन की, तो अज है जी राष्ट्रीय जंगलात शहीदी दिवस, जो कि उन्होंने लोगों को श्रद्धांजलि देने लिए मनाया जाता है जिन्होंने पूरे भारत में जंगलों ते जंगली जीवों की रक्षा लिए अपनी जाना वार दित्तियां। वातावरण ते जंगलात मंत्रालय वालों घोषणा किए जाने बाद यह दिन 2013 अधिकारित तौर पर होंद विच आया सी। ते अज ही मना रहे हैं जी असी वर्ल्ड फर्स्ट एड डे। कहिंदे ने कि सियाणप नाल बचाई जा सकदी है कि

0: मैं ता टीका ला लिया, हुण तू भी ला ले।
1: नहीं यार, मैं नहीं लाउणा।
0: ए ता फिर यार मार वाली गल होगी।
1: नशा करन लई मजबूर करन वाले दोस्त दोस्त नहीं दुश्मन हुंदे आ। नाले ए तेरी सुइयां सांझी करन नाल तेनू HIV दा भी खतरा हो सकदा है।
2: अज ही सरकार दी युद्ध नशा विरुद्ध मुहिम दा हिस्सा बनो ते दोस्तां दा भी नशा छुड़वाओ। बाकी जेकर HIV होण दा शक है ता सरकारी हॉस्पिटल विच HIV दा टेस्ट मुफ्त करवाओ। वधेरे जानकारी लई डायल करो टोल फ्री हेल्पलाइन नंबर 1097। पंजाब स्टेट एड्स कंट्रोल सोसाइटी वल्लों जन हित विच जारी।
3: महंगाई महंगाई, इस महंगाई में सुकून से कौन सो पाएगा?
4: वही जो स्लीप वेल स्टोर से मैट्रेसेस खरीद कर लाएगा, क्योंकि स्लीप वेल में चल रहा है ग्रेट स्लीप वेल फेस्टिवल, जहां आपको मिलेगा फ्लैट 21% से 100% तक का डिस्काउंट। विजिट द नियरेस्ट स्लीप वेल स्टोर टुडे।
3: महंगाई महंगाई, इस महंगाई में सुकून से कौन सो पाएगा?
4: वही जो स्लीप वेल स्टोर से मैट्रेसेस खरीद कर लाएगा, क्योंकि स्लीप वेल में चल रहा है ग्रेट स्लीप वेल फेस्टिवल, जहां आपको मिलेगा फ्लैट 21% से 100% तक का डिस्काउंट। विजिट द नियरेस्ट स्लीप वेल स्टोर टुडे।
0: मैं ता टीका ला लिया, हुण तू भी ला ले।
1: नहीं यार, मैं नहीं लाउणा।
0: ए ता फिर यार मार वाली गल होगी।
1: नशा करन लई मजबूर करन वाले दोस्त दोस्त नहीं दुश्मन हुंदे आ। नाले ए तेरी सुइयां सांझी करन नाल तेनू HIV दा भी खतरा हो सकदा है।
2: अज ही सरकार दी युद्ध नशा विरुद्ध मुहिम दा हिस्सा बनो ते दोस्तां दा भी नशा छुड़वाओ। बाकी जेकर HIV होण दा शक है ता सरकारी हॉस्पिटल विच HIV दा टेस्ट मुफ्त करवाओ। वधेरे जानकारी लई डायल करो टोल फ्री हेल्पलाइन नंबर 1097। पंजाब स्टेट एड्स कंट्रोल सोसाइटी वल्लों जन हित विच जारी।

प्रोग्राम फिल्मी अफसाने और तराने सुनन वाले तमाम श्रोतियों नूं सीमा महरा वल्लों प्यार भरी नमस्कार। ते असी उम्मीद करदे हां कि तुसी तंदुरुस्त होवोंगे ते आकाशवाणी FM बठिंडा दे प्रोग्रामां दा आनंद माण रहे होवोंगे। सो जी, इस प्रोग्राम दे विच असी गल करदे हां अजिही शख्सियत दी जिसने फिल्मी जगत दे विच नामना खट्टी हुंदी है। सो जी, अज असी इस खास प्रोग्राम दे विच गल करन जा रहे हां भारतीय संगीत जगत दी एक अजिही आवाज बारे जिस नूं सुनदिआं ही दिल विच जोश पैदा हो जांदा है। इक ऐसी आवाज जिस विच पंजाब दी मिट्टी दी महक है, इक ऐसी आवाज जिस विच सूफी रंग है, एक अजिही आवाज जिस विच दर्द भी है, प्यार भी है ते जित दा जज्बा भी। जी हां श्रोतियो, अज साडी गल बात दा केंद्र ने प्रसिद्ध गायक सुखविंदर सिंह।

0: जी श्रोतियों, प्रोग्राम चल रहा है सजरी सवेर ਤੇ। प्रोग्राम सजरी सवेर ਦੇ तहत हुणे ਤੁਸੀਂ सुन रहे ਸੀ सिलसिला फिल्मी अफसाने और तराने, जो कि आधारित ਸੀ सुखविंदर सिंह ਤੇ। वाचक सन सीमा मेहरा।
1: महंगाई महंगाई, इस महंगाई में सुकून से कौन सो पाएगा?
2: वही जो स्लीप वेल स्टोर से मैट्रेसेस खरीद कर लाएगा, क्योंकि स्लीप वेल में चल रहा है ग्रेट स्लीप वेल फेस्टिवल, जहां आपको मिलेगा फ्लैट 21% से 100% तक का डिस्काउंट। विजिट द नियरेस्ट स्लीप वेल स्टोर टुडे।
3: मैं ता टीका ला लिया, हुण तू भी ला ले।
4: नहीं यार, मैं नहीं लाउणा।
3: ए तां फिर यार मार वाली गल होगी।
4: नशा करन लई मजबूर करन वाले दोस्त दोस्त नहीं दुश्मन हुंदे आ। नाले ए तेरी सुइयां सांझी करन नाल तेनू HIV दा वी खतरा हो सकदा है।
5: अज ही सरकार दी युद्ध नशा विरुद्ध मुहिम दा हिस्सा बनो ते दोस्तां दा वी नशा छुड़वाओ। बाकी जेकर HIV होण दा शक है ते सरकारी हॉस्पिटल विच HIV दा टेस्ट मुफ्त करवाओ। वधेरे जानकारी लई डायल करो टोल फ्री हेल्पलाइन नंबर 1097। पंजाब स्टेट एड्स कंट्रोल सोसाइटी वल्लों जन हित विच जारी।
6: QR कोड नू स्कैन करो, 5000 दा कैशबैक पाओ। वाह, फायदा ही फायदा।
7: फसिया। UPI पिन दाखिल करो सिर्फ पैसे भेजन लई।
8: RBI कहंदा है
9: जानकार बनो सुचेत रहो।
1: महंगाई महंगाई, इस महंगाई में सुकून से कौन सो पाएगा?
2: वही जो स्लीप वेल स्टोर से मैट्रेसेस खरीद कर लाएगा, क्योंकि स्लीप वेल में चल रहा है ग्रेट स्लीप वेल फेस्टिवल, जहां आपको मिलेगा फ्लैट 21% से 100% तक का डिस्काउंट। विजिट द नियरेस्ट स्लीप वेल स्टोर टुडे।
3: मैं ता टीका ला लिया, हुण तू भी ला ले।
4: नहीं यार, मैं नहीं लाउणा।
3: ए ता फिर

0: यार मार वाली गल होगी।
1: नशा करन ले मजबूर करन वाले दोस्त दोस्त नहीं दुश्मन हुंदे आ। नाले ए तेरी सुइयां सांझी करन नाल तेनू HIV दा भी खतरा हो सकदा है।
2: अज ही सरकार दी युद्ध नशा विरुद्ध मुहिम दा हिस्सा बनो ते दोस्तां दा भी नशा छुड़वाओ। बाकी जेकर HIV होण दा शक है ते सरकारी हॉस्पिटल विच HIV दा टेस्ट मुफ्त करवाओ। वधेरे जानकारी लई डायल करो टोल फ्री हेल्पलाइन नंबर 1097। पंजाब स्टेट एड्स कंट्रोल सोसाइटी वल्लों जन हित विच जारी।
3: महंगाई महंगाई, इस महंगाई में सुकून से कौन सो पाएगा?
4: वही जो स्लीप वेल स्टोर से मैट्रेसेस खरीद कर लाएगा, क्योंकि स्लीप वेल में चल रहा है ग्रेट स्लीप वेल फेस्टिवल, जहां आपको मिलेगा फ्लैट 21% से 100% तक का डिस्काउंट। विजिट द नियरेस्ट स्लीप वेल स्टोर टुडे।
0: मैं ता टीका ला लिया, हुण तू भी ला ले।
1: नहीं यार, मैं नहीं लाउणा।
0: ए तां फिर यार मार वाली गल होगी।
1: नशा करन ले मजबूर करन वाले दोस्त दोस्त नहीं दुश्मन हुंदे आ। नाले ए तेरी सुइयां सांझी करन नाल तेनू HIV दा भी खतरा हो सकदा है।
2: अज ही सरकार दी युद्ध नशा विरुद्ध मुहिम दा हिस्सा बनो ते दोस्तां दा भी नशा छुड़वाओ। बाकी जेकर HIV होण दा शक है ते सरकारी हॉस्पिटल विच HIV दा टेस्ट मुफ्त करवाओ। वधेरे जानकारी लई डायल करो टोल फ्री हेल्पलाइन नंबर 1097। पंजाब स्टेट एड्स कंट्रोल सोसाइटी वल्लों जन हित विच जारी।
3: महंगाई महंगाई, इस महंगाई में सुकून से कौन सो पाएगा?
4: वही जो स्लीप वेल स्टोर से मैट्रेसेस खरीद कर लाएगा, क्योंकि स्लीप वेल में चल रहा है ग्रेट स्लीप वेल फेस्टिवल, जहां आपको मिलेगा फ्लैट 21% से 100% तक का डिस्काउंट। विजिट द नियरेस्ट स्लीप वेल स्टोर टुडे।
5: जी श्रोतियो, प्रोग्राम चल रहा है सचरी सवेर। स्टूडियो की घड़ी ते समा हो चुका है 7:51 अते 39 सेकेंट दा। ते हुण वेला हो चुका है जी अखबारी सुर्खियां दा। ते अखबारी सुर्खियां लैके हाजिर हो चुकी हां मैं तुहाडे नाल सुखदीप। शुरुआत करांगे स्थानक पन्ने दीआं सुर्खियां तों। नशा खात्मे लई एकजुट होके हंबला मारना पवेगा, यह कहना जी खुडियां दा। खबर लगी है पंजाबी ट्रिब्यून दे सफा नंबर 6 ते। बठिंडा तो खबर है पंजाब नू नशा मुक्त बनाउण लई चलाई जा रही युद्ध नशा विरुद्ध मुहिम तहत खेतीबाड़ी ते किसान भलाई मंत्री गुरमीत सिंह खुडियां ने DC दफ्तर विच जिला पद्धरी समीक्षा मीटिंग की अगवाई की। मीटिंग विच पुलिस ते सिविल प्रशासन तो इलावा जिले के 6 विधानसभा हल्कियां ते दे नशा मुक्ति मोर्चे दे अहुदेदारां ने शमूलियत कीती। श्री खुडिया ने दस्या कि बठिंडा जिले विच हुण तक 3248 केस दर्ज करके 4593 मुलजमां नूं गिरफ्तार कीता गया है। विलेज डिफेंस कमेटियां अते सेफ पंजाब हेल्पलाइन राही मिलदियां सूचनावां दे आधार ते भी कारवाई कीती जा रही। उन्हां कहा कि रंगला पंजाब अते नशा मुक्त पंजाब दा सुफना लोकां दी सांझी शमूलियत तों बिना साकार नहीं हो सकता। अगली खबर लगी है जी मानसा तो। खबर पंजाबी ट्रिब्यून दे सफा नंबर 2 ते लगी है। बणावाला तापघर दे 2 यूनिट अचानक बंद, बिजली उत्पादन 1300 मेगावाट तक डिग्गिया। मानसा तो खबर है पंजाब विच उदों बिजली संकट दा खदशा बन गया जदों मानसा नेड़े पिंड बणावाला विच उत्तरी भारत दे सब तों वड्डे तापघर तलवंडी साबू पावर लिमिटेड दे 3 यूनिटां विचों 2 यूनिट अचानक बंद हो गए। तापघर का यूनिट नंबर 3 हुण 597 मैगावाट बिजली की पैदावार जिहड़ी आ उह कर रहा है, जदों की तापघर की कुल समर्था 1980 मैगावाट दसी जा रही है। पंजाब विच सब तों वध बिजली उत्पादन इसे तापघर तों हो रहा सी। बणावाला तापघर के प्रबंधकां ने कहा कि एक यूनिट सवेरे देख रेख लई बंद कर दिता गया सी, जदों की दूजा अचानक किसी तकनीकी नुक्स कारण बंद हो गया। हालांकि माहिरां ने काम शुरू कर दिता है ते कोई वड्डा नुक्स ना होण कारण अद्धी रात तक दोवें यूनिट ठीक होके बिजली उत्पादन शुरू कर देणगे। उन्हां कहा कि तापघर कोले की कोई तोट नहीं है। इस दौरान एक अधिकारी ने कहा कि पंजाब विच इस वेले 16,270 मैगावाट बिजली की कुल लोड़ है, जदों की पंजाब के सारे तापघरां का उत्पादन लगभग 4,550 मैगावाट दस्या जा रहा है। अगली खबर भी मानसा तो लगी है। शॉर्टपुट विच अमरजीत कौर अव्वल। मानसा तो खबर है खेडां वतन पंजाब दियां तहत बुढ़लाडा ब्लाक विच 21 ਤੋਂ 70 ਸਾਲ ਉਮਰ ਵਰਗ ਮਹਿਲਾ ਦੇ ਖੇਡ ਮੁਕਾਬਲੇ ਕਰਵਾਏ ਗਏ। ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਖੇਡ ਅਫਸਰ ਪਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 100 ਮੀਟਰ ਦੌੜ 21 ਤੋਂ 30 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ

रंजीत कौर ने पहला, नील कमल कौर ने दूजा स्थान हासिल किया। 41 तो 50 साल तक छिंदरपाल कौर अव्वल रहे। 100 मीटर अंडर 60 विच परमजीत कौर पहले स्थान ते रहे ते 60 तो 70 साल ग्रुप विच अमरजीत कौर ने पहला स्थान प्राप्त किया।

0: नमस्कार, समाचार प्रभात के साथ मैं फरहत नाज। और अब मुख्य समाचार। 18वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन कल नई दिल्ली के भारत मंडपम में शुरू होगा। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन सम्मेलन में भाग लेने के लिए नई दिल्ली पहुंचे। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने भारत को वैश्विक आर्थिक विकास का प्रमुख इंजन बताया। चालू वित्त वर्ष की पहली तिमाही में देश की अर्थव्यवस्था में 7.8% की वृद्धि। अमरीकी ट्रंप प्रशासन ने नौकरी जाने के बाद H-1B कर्मचारियों के लिए 60 दिन की छूट अवधि को समाप्त करने का प्रस्ताव रखा। राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी ने UGC नेट जून 2026 के अंग्रेजी, वाणिज्य और समाजशास्त्र विषयों की दोबारा हुई परीक्षा की प्रारंभिक उत्तर कुंजी जारी की। और भारत एशिया कप महिला क्रिकेट के फाइनल में पहुंचा। सेमीफाइनल में कल भारत ने बांग्लादेश को 40 रन से हराया। अब समाचार विस्तार से। 18वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन कल से नई दिल्ली के भारत मंडपम में शुरू होगा। दो दिवसीय इस सम्मेलन के लिए तैयारियों को अंतिम रूप दिया जा रहा है। ब्रिक्स में 11 प्रमुख विकासशील देश ब्राजील, रूस, भारत, चीन, दक्षिण अफ्रीका, मिस्र, इथियोपिया, इंडोनेशिया, ईरान, सऊदी अरब और संयुक्त अरब अमीरात शामिल हैं। इस वर्ष ब्रिक्स सम्मेलन का विषय है लचीलापन, नवाचार, सहयोग और स्थिरता के लिए निर्माण। शिखर सम्मेलन में चीन के राष्ट्रपति शी चिनफिंग, दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति सिरिल रामाफोसा, मिस्र के राष्ट्रपति अब्दुल फतह अस्सीसी, इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्रबोवो सुबियांतो और ईरान के राष्ट्रपति मसूद फिजिस्कियन हिस्सा लेंगे। अबुधाबी के युवराज शेख खालिद बिन मोहम्मद बिन जायद अल नहयान और इथियोपिया के प्रधानमंत्री आबी अहमद अली और सऊदी अरब के विदेश मंत्री प्रिंस फैसल बिन फरहान अल सऊद सम्मेलन में शामिल होंगे। संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंतोनियो गुतरश, विश्व स्वास्थ्य संगठन के महानिदेशक डॉ टेड्रोस अधानोम घेब्रियसिस और न्यू डेवलपमेंट बैंक के अध्यक्ष डिल्मा रूसेफ समेत कई अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के प्रमुख भी सम्मेलन में हिस्सा लेंगे। इस बीच रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन नई दिल्ली पहुंच गए हैं। विदेश राज्य मंत्री कीर्ति वर्धन सिंह ने हवाई अड्डे पहुंचने पर उनका स्वागत किया। विदेश मंत्रालय ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि भारत और रूस के बीच लंबे समय से विशेष रणनीतिक साझेदारी पर आधारित मजबूत और बहुआयामी संबंध है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की आज रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के साथ द्विपक्षीय वार्ता होने की भी संभावना है। श्री मोदी शिखर सम्मेलन से अलग कई देशों के नेताओं के साथ द्विपक्षीय बैठकें भी करेंगे। और ब्यौरा हमारी संवाददाता से।
1: ब्रिक्स समूह का गठन सितंबर 2006 में न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र महासभा के दौरान हुई ब्रिक विदेश मंत्रियों की बैठक के अवसर पर हुआ था। पहला ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 16 जून 2009 को रूस के येकातेरिनबर्ग में आयोजित किया गया। वहीं सितंबर 2010 में न्यूयॉर्क में आयोजित ब्रिक विदेश मंत्रियों की बैठक के बाद दक्षिण अफ्रीका के शामिल होने के साथ ब्रिक का विस्तार हुआ और इसे ब्रिक्स के नाम से जाना जाने लगा। दक्षिण अफ्रीका ने अप्रैल 2011 में चीन के सान्या में आयोजित तीसरे ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में पहली बार भाग लिया। जनवरी 2024 में मिस्र, इथियोपिया, ईरान, सऊदी अरब और संयुक्त अरब अमीरात के पूर्ण सदस्य बनने के साथ ब्रिक्स का और विस्तार हुआ। भारत ने इस वर्ष 1 जनवरी को ब्रिक्स की अध्यक्षता संभाली। यह चौथी बार है जब भारत ब्रिक्स की अध्यक्षता कर रहा है। इससे पहले भारत ने 2012, 2016 और 2021 में ब्रिक्स की अध्यक्षता की थी। सुपर्णा सेकिया के साथ सौम्या शरण, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: ब्रिक्स व्यापार मंच 2026 आज नई दिल्ली के भारत मंडपम में आयोजित किया जाएगा। एक दिन चलने वाले इस कार्यक्रम में ब्रिक्स देशों के 1000 से अधिक कारोबारी, व्यापार मंत्री, वित्तीय क्षेत्र के नेता, वैश्विक निवेशक और उद्योग जगत के विशेषज्ञ हिस्सा लेंगे। इसका आयोजन ब्रिक्स व्यापार परिषद द्वारा फिक्की, CII और एसोचैम के सहयोग से किया जा रहा है। ये सम्मेलन 18वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन से पहले आयोजित होने वाला प्रमुख कारोबारी कार्यक्रम है। इस सम्मेलन के मद्देनजर दिल्ली में आज दोपहर 2 बजे से रात 8:30 बजे तक कई प्रमुख सड़कों पर यातायात में बदलाव और आवाजाही नियंत्रित रहेगी। दिल्ली ट्रैफिक पुलिस के अनुसार सरदार पटेल मार्ग, 3 मूर्ति मार्ग, 30 जनवरी मार्ग, राजेश पायलट मार्ग, मथुरा रोड, जनपथ अशोका रोड, बाराखंबा रोड, नीति मार्ग, पंचशील मार्ग और प्रेस इन्क्लेव रोड समेत कई प्रमुख मार्ग प्रभावित रहेंगे। इस बीच दिल्ली मेट्रो ने

0: स्पष्ट किया है कि अगले आदेश तक सभी मेट्रो स्टेशन खुले रहेंगे और सेवाएं सामान्य रूप से चलती रहेंगी। ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के दौरान रविवार तक राष्ट्रपति भवन संग्रहालय और अमृत उद्यान लोगों के लिए बंद रहेंगे। राष्ट्रपति सचिवालय ने बताया है कि शनिवार को राष्ट्रपति भवन के फोरकोर्ट में होने वाला चेंज ऑफ गार्ड समारोह भी आयोजित नहीं किया जाएगा। उपराष्ट्रपति सीपी राधा कृष्णन आज से दादरा और नागर हवेली तथा दमन और दीव के 2 दिन के दौरे पर रहेंगे। उपराष्ट्रपति सिलवासा में डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम राजकीय महाविद्यालय में सार्वजनिक समारोह में भाग लेंगे। वे सिलवासा में स्वामी विवेकानंद विद्या मंदिर और नमो आयुर्विज्ञान शिक्षा और अनुसंधान संस्थान सहित प्रमुख संस्थानों का भी दौरा करेंगे। उपराष्ट्रपति दमन में नमो अस्पताल भी जाएंगे। ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने नई दिल्ली में डिजिटल इंडिया भूमि रिकॉर्ड आधुनिकीकरण कार्यक्रम के तीसरे चरण के संचालन दिशा निर्देश जारी किए। श्री चौहान ने कहा कि इस कार्यक्रम से ग्रामीण नागरिकों, किसानों और संपत्ति मालिकों के लिए जीवन आसान होगा। उन्होंने कहा कि भूमि से जुड़े दस्तावेज सही और आसानी से उपलब्ध होना बेहद जरूरी है।
1: अब सभी भूमि के रिकॉर्ड डिजिटाइज किए जा रहे हैं और अब ऑनलाइन और पारदर्शी प्रक्रिया से कोई भी उनको आसानी से प्राप्त कर सकता है। रजिस्ट्रार जो ऑफिस थे उनको भी पासपोर्ट सेवा केंद्र की तर्ज पर सेवा केंद्र के रूप में विकसित किया जा रहा है, जहां नागरिकों को बैठने का स्थान होगा, लाइन नहीं लगानी पड़ेगी, आसानी से पारदर्शी प्रक्रिया के द्वारा वो कहीं से भी अपने रिकॉर्ड्स को प्राप्त कर सकेंगे।
0: कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने सूखा प्रभावित इलाकों में खेती को बढ़ावा देने के लिए विज्ञान, बेहतर नीतियों और बाजार सहयोग के साथ मिलकर काम करने की जरूरत पर बल दिया है। नई दिल्ली में ड्राईलैंड कांग्रेस 2026 के उद्घाटन सत्र को संबोधित करते हुए श्री चौहान ने कहा कि उचित वैज्ञानिक उपायों, नीतियों और बाजार सहयोग से सूखे क्षेत्रों को भारत के लिए ताकत का स्रोत बनाया जा सकता है। उन्होंने कहा कि कृषि व्यवस्था में बदलाव का मुख्य उद्देश्य केवल उत्पादन बढ़ाना नहीं बल्कि किसानों की आजीविका और समृद्धि में सुधार होना चाहिए।
1: हमें यह तय करना होगा कि 2047 तक ड्राई लैंड में पानी की उत्पादकता कितनी बढ़ानी है, मिट्टी का स्वास्थ्य कितना सुधारना है, दलहन और तिलहन का उत्पादन कैसे बढ़े, आयात निर्भरता भी घटाना है, किसान की आय बढ़ाना है और जलवायु सहनशीलता को भी बढ़ाने की आवश्यकता है।
0: ग्लोबल फिनटेक फेस्ट 2026 का 7वां संस्करण आज मुंबई में संपन्न हो रहा है और ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
2: 4 दिवसीय ग्लोबल फिनटेक फेस्ट में नीति निर्माताओं, नियामकों, केंद्रीय बैंकों, वित्तीय संस्थानों, फिनटेक और प्रौद्योगिकी कंपनियों, निवेशकों, शिक्षाविदों और अन्य वैश्विक हितधारकों ने भाग लिया। सम्मेलन में फिनटेक के भविष्य पर व्यापक चर्चा हो रही है। केंद्रीय मंत्री निर्मला सीतारमन और केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी आज ग्लोबल फिनटेक फेस्ट को संबोधित करेंगे। कल केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया, आरबीआई गवर्नर संजय मल्होत्रा, सेबी के अध्यक्ष तुहिनकांत पांडे, यूआईडीएआई के पूर्व अध्यक्ष नंदन निलेकणी और एसबीआई के अध्यक्ष सीएस ने एजेंटिक एआई, टोकनाइजेशन और क्वांटम टेक्नोलॉजी पर आयोजित सत्रों को संबोधित किया था। प्रार्थना, आकाशवाणी समाचार, मुंबई।
0: ये समाचार हमारी न्यूज ऑन एआईआर ऐप और हमारी वेबसाइट www.newsoneair.gov.in पर भी उपलब्ध हैं।
3: सबके लिए सामाजिक सुरक्षा, अटल पेंशन योजना, मोदी जी का संकल्प।
4: योजना उन नौजवानों के लिए है ताकि आप जब 60 साल के होंगे आपको कभी किसी के सहारे की जरूरत न पड़े, आप अपना बुढ़ापा भी गौरव के साथ बिता सको।
3: अब तक इस योजना से 9 करोड़ 50 लाख से अधिक लाभार्थी जुड़ चुके हैं। अगर आप भी 18 से 40 साल की उम्र के हैं तो मासिक अटल पेंशन सहित योजना के 3 गारंटीड फायदों की जानकारी के लिए अपनी बैंक शाखा से संपर्क करें।
5: Every great journey begins with people coming together to listen, to learn, to imagine what's possible. This is the BRICS 2026, a moment where leaders, innovators, businesses and communities from the BRICS nations come together to strengthen partnerships. India welcomes the BRICS countries as the grouping marks the 20 years of its establishment in 2026. BRICS Summit 2026 is being hosted in Bharat Mandapam, New Delhi from 12th to 13th September 2026. Under India's chairship theme, Building for Resilience, Innovation, Cooperation and Sustainability, with a people-centric approach and the spirit of humanity first. Because when we work together, possibilities become progress.
0: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने भारत को दुनिया की आर्थिक वृद्धि का एक प्रमुख आधार बताया है। ये बयान चालू वित्त वर्ष की पहली तिमाही में भारत की अर्थव्यवस्था की 7.8% की वृद्धि

0: के बाद आया है। मुद्रा कोष के संचार विभाग के निदेशक जूली कोजेक ने कहा है कि भारत की अर्थव्यवस्था ने उम्मीद से बेहतर प्रदर्शन किया है। इसकी मुख्य वजह सेवाओं और निर्यात में हुई बढ़ोतरी है। ट्रंप प्रशासन ने H-1B कर्मचारियों और कई अन्य रोजगार आधारित वीजा धारकों को नौकरी जाने के बाद भी अमेरिका में 60 दिन रहने की छूट अवधि को समाप्त करने का प्रस्ताव रखा है। गृह सुरक्षा विभाग का ये प्रस्ताव आज फेडरल रजिस्टर में प्रकाशित होगा। एक रिपोर्ट।
1: इस बदलाव के बाद नौकरी जाने पर नई नौकरी तलाशने या वीजा की दूसरी व्यवस्था करने के लिए मिलने वाला समय काफी कम हो सकता है। ये प्रस्ताव E1, E2, E3, H1B, H1B1, L1, O1 और TN जैसी वीजा श्रेणियों और उनके आश्रितों पर लागू होगा। अगर ये प्रस्ताव अंतिम रूप लेता है तो लोगों की नौकरी या वीजा से जुड़ी पात्र गतिविधि समाप्त होने के बाद उन्हें तुरंत अमेरिका छोड़ना होगा या उन्हें वहां रहने के लिए कोई दूसरी कानूनी अनुमति लेनी होगी। विभाग के अनुसार प्रस्ताव का उद्देश्य पहले की व्यवस्था को बहाल करना है। इसके तहत प्रायोजक नियोक्ता की नौकरी खत्म होते ही कर्मचारी को अमेरिका छोड़ना होता था। समाचार कक्ष से वीरेंद्र कौशिक।
0: राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी ने UGC नेट जून 2026 की अंग्रेजी, वाणिज्य और समाजशास्त्र की दोबारा हुई परीक्षाओं की प्रारंभिक उत्तर कुंजी जारी कर दी है। परीक्षार्थी 13 सितंबर तक UGC नेट की आधिकारिक वेबसाइट पर उत्तर कुंजी पर आपत्ति दर्ज करा सकते हैं। अंग्रेजी और वाणिज्य की परीक्षा 9 सितंबर को जबकि समाजशास्त्र की परीक्षा कल आयोजित की गई थी। भारत एशिया कप महिला क्रिकेट के फाइनल में पहुंच गया है। सेमीफाइनल में कल भारत ने बांग्लादेश को 40 रन से हराया। भारत के 150 रन के लक्ष्य के जवाब में बांग्लादेश 109 रन ही बना सकी। शेफाली वर्मा को 64 रन की पारी के लिए प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। दूसरे सेमीफाइनल में आज पाकिस्तान का सामना श्रीलंका से होगा। केरलम के कई हिस्सों में आज बारिश की संभावना है। मौसम विभाग ने पथनमथिट्टा, कोट्टयम, एर्नाकुलम और इडुक्की जिलों में येलो अलर्ट जारी किया है। पथनमथिट्टा, एर्नाकुलम, इडुक्की और पलक्कड़ जिलों में कल भी येलो अलर्ट जारी रहेगा। इस बीच कल रात 11 बजे से केरलम तट पर ऊंची लहरों के कारण तटीय कटाव की आशंका को लेकर चेतावनी जारी की गई है। मौसम विभाग ने आज छत्तीसगढ़, तटीय आंध्र प्रदेश और उड़ीसा में तेज वर्षा का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, झारखंड, केरलम, माहे, मध्य प्रदेश, तेलंगाना, उत्तराखंड, विदर्भ, पश्चिम बंगाल और सिक्किम में भी दिन के दौरान भारी वर्षा होने की संभावना है। मौसम विभाग ने कल तक उड़ीसा, तमिलनाडु, पुदुचेरी और कराईकल में बिजली गिरने, तेज हवाएं चलने, बिजली कड़कने और तूफान का अनुमान व्यक्त किया है। दिल्ली सरकार ने मुख्यमंत्री खेल प्रोत्साहन योजना के अंतर्गत जमीनी स्तर पर प्रशिक्षण सहायता शुरू करने को मंजूरी दी है। इसके तहत दिल्ली सरकार के खेल केंद्रों और स्टेडियम में नियमित प्रशिक्षण लेने वाले पात्र खिलाड़ियों को हर महीने 2000 रुपए की आर्थिक सहायता दी जाएगी। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।
2: आपको हर खबर से रखे अपडेट एक्सपर एट AIR न्यूज हिंदी और पब्लिक पर एट AIR न्यूज अलर्ट्स को फॉलो करें।
0: और आवाज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं मुकेश कुमार।
3: धन्यवाद फरहत। ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेने के लिए विदेशी मेहमानों का राजधानी दिल्ली में आगमन और रोशनी से जगमगाता भारत मंडपम आज सभी समाचार पत्रों में है। हिंदुस्तान लिखता है ब्रिक्स के लिए आज से दिल्ली किले में तब्दील, पुतिन मोदी की मुलाकात आज। राजस्थान पत्रिका ने प्रधानमंत्री मोदी का चित्र साझा करते हुए लिखा है बढ़ता दायरा, बदलता विश्व, अक्षर से महाशक्ति बनने का सफर, ग्लोबल पावर का नया ध्रुव ब्रिक्स। अंतरिक्ष शिखर सम्मेलन में प्रधानमंत्री मोदी ने कहा भारत सुरक्षित और सतत अंतरिक्ष क्षेत्र का समर्थन करता है। जनसत्ता की खबर है, लोकसत्य लिखता है प्रधानमंत्री मोदी का अंतरिक्ष में सहयोग को प्राथमिकता देने का आह्वान। अगस्त में बाजार 2% गिरा, फिर भी रिकॉर्ड 32,000 करोड़ SIP। दैनिक भास्कर ने यह खबर आंकड़ों सहित प्रकाशित की है। शहरों से ज्यादा गांवों में बिक रहे दोपहिया, 55% पहुंची हिस्सेदारी। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और राजस्थान में छोटी बाइक पहली पसंद, वहीं महाराष्ट्र और बिहार में बड़े इंजन पर जोर, दैनिक भास्कर के बिजनेस पन्ने की खबर है। दैनिक जागरण ने श्रीनगर में अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में कश्मीरी कलाकारों द्वारा प्रस्तुतियां देने का समाचार सचित्र प्रकाशित किया है। पत्र लिखता है जन्नते कश्मीर में 4 दिन तक चला बॉलीवुड के दिग्गजों का मेला, बॉलीवुड का वादा, कश्मीर को फिर बनाएंगे फिल्मों की जन्नत।
0: और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। 18वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन कल नई दिल्ली के भारत मंडपम में शुरू होगा। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन सम्मेलन में भाग लेने के लिए नई दिल्ली पहुंचे।

जूली कोजैक ने किया है कि भारतीय आर्थिकता ने उम्मीद नालों बेहतर कारगुजारी दिखाई है, मुख्य तौर पर सेवा में आते बरामदा विच वाधे कारण। उन्होंने आगे किया कि वाधा उस समय होया जदों वधदियां ऊर्जा कीमतों ने आर्थिकता नु प्रभावित किया है। उन्होंने यह भी दसिया कि भारत के नवे GDP अंकड़िया विच सनती उत्पादन अते उत्पादक कीमतों बारे नवा डेटा भी शामिल है, जिस नाल भारत के GDP अंकड़िया विच होर सुधार होगा। अंतरराष्ट्रीय माली फंड ने भी कहा है कि वह भारत की आर्थिकता से वधदियां तेल कीमतों के प्रभाव की निगरानी कर रहा है। ਇਹ ਖਬਰਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਕਾਸ਼ਵਾਣੀ ਤੋਂ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹੋ, ਸਾਡਾ ਐਕਸ ਹੈਂਡਲ ਹੈ @AIRRN ਜਲੰਧਰ। ਉਪ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ CP ਰਾਧਾ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨਨ ਅੱਜ ਤੋਂ ਦਾਦਰਾ ਤੇ ਨਗਰ ਹਵੇਲੀ ਅਤੇ ਦਮਨ ਤੇ ਦਿਊ ਤੇ 2 ਦਿਨਾਂ ਦੌਰੇ ਤੇ ਹੋਣਗੇ। ਉਪ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਸਿਲਵਾਸਾ ਤੇ ਡਾਕਟਰ AAPJ

0: नाथ नगर हवेली ते दमन ते दीव ते दो दिना दौरे ते होण के उपराष्ट्रपति सिलवासा ते डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम सरकारी कॉलेज विखे एक जनतक समागम विच शामिल होण के ओ सिलवासा ते प्रमुख संस्थाना दा भी दौरा करण के जिन्हां विच स्वामी विवेकानंद विद्या मंदिर अते नमो इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल एजुकेशन एंड रिसर्च शामिल ने। उपराष्ट्रपति दमन दे नमो अस्पताल दा भी दौरा करण के। श्री राधा कृष्णन दमन नाइट मार्केट राम सेतु सी फ्रंट अते नमोपद सी फ्रंट समेत वक-वक सैर सपाटा स्थाना दा भी दौरा करेंगे। खेतीबाड़ी अते किसान भलाई मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि तजवीजशुदा नवा बीज कानून किसानों के अधिकारों की पूरी तरह रक्षा करेगा। नवी दिल्ली विच किसान संगठनों नाल एक मीटिंग विच उन्होंने कहा कि किसान पहला वांग अपने रवायती अपने बीजा की वरतों साझा करेंगे ते वेच सकेंगे। इना बीजा की रजिस्ट्रेशन की लोड़ नहीं होगी। श्री चौहान ने कहा कि मौजूदा बीज कानून 1966 विच बनाया गया सी ते हुण नकली अते घटिया बीजा वर्गिया नवीं चुनौतियां दा हल करन लई बदला जरूरी ने। तजवीजशुदा कानून तहत हर राज विच एक बीज सुरक्षा फंड कायम किया जाएगा। बीज खराब होण जां फसलों के नुकसान की स्थिति विच किसानां नूं 15 दिनां दे अंदर मुआवजा दिता जाएगा। श्री चौहान ने नवी दिल्ली विच डिजिटल इंडिया जमीन रिकॉर्ड आधुनिकीकरण प्रोग्राम दे तीजे पड़ा लई संचालन दिशा निर्देश भी जारी किए। श्री चौहान ने कहा कि प्रोग्राम देहाती नागरिकां किसानां अते जायदादां दे मालकां लई जीवन नूं आसान बना देगा। उन्हां जोर दे के कहा कि सही अते आसानी नाल पहुंच योग जमीन नाल संबंधित दस्तावेज जरूरी ने। उन्हां दस्सिया कि नवा पड़ा ना सिर्फ जमीनी रिकॉर्डां नूं डिजिटाइज करेगा सगो वक-वक सरकारी विभागां विच पूरे सिस्टम नूं एकीकृत भी करेगा। एक किसानां नूं संस्थागत कर्जे प्राप्त करन विच सहूलत देगा ते सरकारी दफ्तरां विच वार-वार जाण दी जरूरत नूं खत्म करेगा।
1: अब सभी भूमि के रिकॉर्ड डिजिटाइज किए जा रहे हैं और अब ऑनलाइन और पारदर्शी प्रक्रिया से कोई भी उनको आसानी से प्राप्त कर सकता है। रजिस्ट्रार जो ऑफिस थे उनको भी पासपोर्ट सेवा केंद्र की तर्ज पर सेवा केंद्र के रूप में विकसित किया जा रहा है, जहां नागरिकों को बैठने का स्थान होगा, लाइन नहीं लगानी पड़ेगी। आसानी से पारदर्शी प्रक्रिया के द्वारा वो कहीं से भी अपने रिकॉर्ड्स को प्राप्त कर सकेंगे।
0: ट्रंप प्रशासन ने H-1B मुलाजमां ते कई होर रोजगार आधारित वीजा धारकां लई नौकरी गुआउण तों बाद अमरीका विच रहण लई 60 दिनां दे ग्रेस पीरियड नूं खत्म करन दी तजवीज़ दित्ती ए। इह बदला नौकरी गुआउण तों बाद नवीं नौकरी लब्भण जां होर वीजा प्रबंध करन लई उपलब्ध समें नूं काफी घटा सकदा है। गृह सुरक्षा विभाग दी तजवीज़ फैडरल रजिस्टर विच प्रकाशित होण वाली ए। इह तजवीज़ E-1, E-2, E-3, H-1B, H-1B1, L-1, O-1 अते TN वीजा श्रेणियां अते उन्हां दे आश्रितां ते लागू होएगा। जेकर अंतिम रूप दिता जांदा है तां जिन्हां दी रोजगार जां वीजा अधीन योग गतिविधि खत्म हो जांदी है उन्हां नूं तुरंत अमरीका छड्डणा होएगा जदों तक उन्हां कोल उत्थे रहण लई होर कानूनी इजाजत ना होवे। विभाग मुताबिक तजवीज़ दा उद्देश पिछली प्रणाली नूं बहाल करना, जिस तहत मुलाजमां नूं स्पॉन्सर करन वाले मालक नाल नौकरी खत्म होण ते अमरीका छड्डण दी लोड़ सी। विभाग ने भी कहा कि म्याद लोड़ अनुसार कटाई जां खत्म कीती जा सकदी है। भारत औरतों के क्रिकेट च दुबई विखे एशिया कप के फाइनल विच पहुंच गया है। कल भारत ने सैमीफाइनल विच बांग्लादेश नूं 40 दौड़ा नाल हराया। 150 दौड़ा के टीचे का पिछा करदिया बांग्लादेश 20 ओवरां विच 7 विकटां ते सिर्फ 109 दौड़ा ही बढ़ा सकिया। अज दूजे सैमीफाइनल विच पाकिस्तान का सामना श्रीलंका नाल होएगा। मैच भारतीय समय अनुसार रात 8 बजे शुरू होएगा। फाइनल एतवार नूं दुबई विच खेडिया जाएगा। आखिर च खास खबरां। 18वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन कल नवी दिल्ली दे भारत मंडपम विखे शुरू होएगा। रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन सम्मेलन विच शामिल होने लई नवी दिल्ली पहुंचे। अंतरराष्ट्रीय माली फंड ने भारत नूं विश्व आर्थिक विकास दा मुख चालक दस्या। खेतीबाड़ी ते किसान भलाई मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि तजवीजशुदा नवा बीज कानून किसानां दे अधिकारां दी पूरी रक्षा करेगा। कि अमरीकी ट्रंप प्रशासन ने नौकरी गुआउण तों बाद मुलाजमां लई 60 दिनां दे ग्रेस पीरियड नूं खत्म करन दी तजवीज़ रखी ए। इस दे नाल ही साडा ये बुलेटिन खत्म हुंदा है। साडा अगला प्रादेशिक बुलेटिन दोपहर बाद 1:10 ते होएगा। नमस्कार।
2: ਹੁਣੇ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣ ਰਹੇ ਸੀ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ ਖਬਰਾਂ ਆਕਾਸ਼ਵਾਣੀ ਜਲੰਧਰ ਤੋਂ। ਆਕਾਸ਼ਵਾਣੀ FM ਬਠਿੰਡਾ FM 101.1 MHz ਦੇ ਸਟੂਡੀਓ ਦੀ ਘੜੀ ਤੇ ਸਮਾਂ ਹੋ ਰਿਹਾ 8:40 ਅਤੇ 20 ਸਕਿੰਟ ਦਾ। ਹੁਣ ਵੇਲਾ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ

है पंजाब दी दा। जी श्रोतियो, प्रोग्राम महक पंजाब दी लैके हाजिर हाँ। मैं आप सब दे रेडियो दोस्त सुखदीप, मेरे वालों सारे ही श्रोतियों प्यार भरी नमस्कार। अज के प्रोग्राम के तहत सुनावांगे तुहानू कवालियां, ते आओ फिर प्रोग्राम का आगाज़ करदे हां लता मंगेशकर, शमशाद बेगम अते साथियां दियां आवाज़ां दे विच गाई इस कवाली दे नाल।

विविध भारती से आप सुन रहे हैं कार्यक्रम चित्रलोक और आइए अब आपको सुनवाते हैं अरिजीत सिंह का गाया ये गीत फिल्म मिकी वायरस से, गीत और संगीत हनीफ शेख का।

लुटेरा फिल्म का गीत आपको सुनवा रहे हैं मोहन खन्ना और अमिताभ भट्टाचार्य की आवाजों में। लिखा है इसे अमिताभ भट्टाचार्य ने, अमित त्रिवेदी का संगीत।

0: का सफर शुरू हुआ था बतौर वायलिन वादक। इसके बाद वो बने म्यूजिक अरेंजर और फिर म्यूजिक डायरेक्टर। पहले उत्तम जगदीश और उसके बाद संगीतकार उत्तम सिंह। एक उत्तम जीवन
1: मैं निकला ओ गटले
0: जो संगीत की साधना में बीता। एक विराट जीवन की कहानी।
2: दिल तो पागल है, दिल दीवाना है।
3: जब इसका म्यूजिक रिलीज हो रहा था तो रिदम हाउस में लाइन लगी हुई थी।
0: उजाले उनकी यादों के एक सर्वोत्तम श्रृंखला उत्तम सिंह के साथ।
4: चिट्ठी ना कोई संदेश।
0: 20 सितंबर से हर रविवार शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
5: चित्रलोक कार्यक्रम आप सुन रहे हैं विविध भारती से। आज महान स्वतंत्रता सेनानी, समाज सुधारक, विचारक और भूदान आंदोलन के प्रणेता आचार्य विनोबा भावे की जयंती है। 11 सितंबर 1895 को महाराष्ट्र के गागोड़े गांव में जन्मे विनोबा भावे महात्मा गांधी के विचारों से बेहद प्रभावित थे। उन्होंने अपना जीवन सत्य, अहिंसा, सर्वोदय और समाज के सेवा के लिए समर्पित कर दिया। भूदान आंदोलन के माध्यम से उन्होंने भूमिहीन लोगों के लिए भूमि उपलब्ध कराने का अनूठा प्रयास किया। सादगी, त्याग और मानव कल्याण पर आधारित उनके विचार आज भी समाज को नई दिशा और प्रेरणा देते हैं।

टेबल नंबर 21 इस फिल्म का गीत आपने सुना गजेंद्र वर्मा की आवाज में। असीम अहमद अब्बासी ने इसे लिखा था, गजेंद्र वर्मा का संगीत। और अब चित्रलोक कार्यक्रम में वक्त है एक छोटे से अंतराल का।

क्षेत्रलोक कार्यक्रम आप सुन रहे हैं विविध भारती से। आइए अब आपको सुनवाते हैं नौटंकी साला। इस फिल्म का गीत आयुष्मान खुराना और नीति मोहन की आवाजों में, रोचक कोहली, गुरप्रीत सैनी और आयुष्मान खुराना ने इसे लिखा है। संगीत है रोचक कोहली और आयुष्मान खुराना का।

0: वो लिखती हैं रिश्तों की अनकही कहानियाँ।
1: एमए कर रही थी तभी साहित्य एकेडमी युवा का पुरस्कार भी मुझे मिला, राजस्थान साहित्य एकेडमी युवा का।
0: क्या बात है।
1: तो मुझे लगा कि साहित्य की दुनिया ही मेरी असल दुनिया है।
0: वो लिखती हैं जीवन के विविध रंगों से बुने उपन्यास। वो लिखती हैं सफर की स्मृतियों से सजे यात्रा संस्मरण। वो लिखती हैं मन की गहराइयों को छूती कविताएं।
1: इंट्यूशन जिन्हें कहें, ऐसे ऐसे ख्याल आए तो कई बार मुझे लगा कि कहीं ना कहीं जाने अनजाने मल्लिका मेरे साथ थी और मुझसे लिखवा रही थी।
0: बिल्कुल। वो हैं मशहूर साहित्यकार मनीषा कुलश्रेष्ठ। सुनिए आज के मेहमान 16 सितंबर शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
2: काय पोचे इस फिल्म का गीत सुनिए अमित त्रिवेदी की आवाज में। स्वानंद किरकिरे ने इसे लिखा है, अमित त्रिवेदी का संगीत।

शीतलोक कार्यक्रम के अंत में आपको सुनवाते हैं ये जवानी है दीवानी। इस फिल्म का गीत तुझी रहना रेखा भारद्वाज की आवाजों में, अमिताभ भट्टाचार्य ने इसके बोल लिखे हैं, प्रीतम का संगीत।

ये जवानी है दीवानी इस फिल्म का गीत अभी आपने सुना। इस गीत के साथ ही चित्रलोक कार्यक्रम संपन्न करने की दीजिए नेहा अगरकर देसाई को आज्ञा। नमस्कार। I want full newspaper coverage. I want magazine stories. I want books. I want films. I want TV. I want radio. I want us on the air 24 hours a day. This is our moment.

0: विविध भारती के पास है बेमिसाल हस्तियों का अनमोल खजाना।
1: कहानी के किसी सीन के रिहर्सल चल रही थी, मैं भी टाइम पास करने के इरादे से खड़ा हो गया।
0: जाने माने चरित्र अभिनेता जीवन, कैसे हुई थी अभिनय यात्रा की शुरुआत?
1: डायरेक्टर ने आओ देखना ना ताओ मुझसे मुखातिब होकर बोले, अजी आप भी कुछ बोल दीजिए बरखुरदार। तो बस सिर्फ दिल बहलाने गरज से मैं शुरू हो ही गया। बहुत कुछ कर लिया आराम मखमल के गदेलों में, सुलाऊंगा तुम्हें या पत्थरों में और ढेलों में, सरे दरबार खिदमत में हर एक बांधे कमर होगा, किसी के हाथ में पल्लम कोई करता चमर होगा। वाह वाह वाह वाह वाह वाह की आवाजें बुलंद हो गई। डायरेक्टर साहब ने मुझे गले से लगा लिया, कहने लगे बरखुरदार अरे तुम तो बॉर्न आर्टिस्ट हो, फिल्म में एक्टिंग करो मैं तुम्हारी लाइफ बना दूंगा, फोटोग्राफी को मारो गोली।
0: ऐसी अनमोल यादें आपको मिलेंगी सिर्फ विविध भारती पर। विविध भारती आपका जीवन साथी।

जज्बाते उनकी जो दिल की उड़ान को आंखों में भरकर जीते हैं, जिन्हें प्यार है अपनी कला से, और जो फिल्मों में अदाकारी नहीं करते बल्कि उन्हें जीते हैं।

आयुष्मान खुराना को राष्ट्रीय पुरस्कार तो अभी मिला है, लेकिन यहाँ तक पहुँचने के लिए उन्हें जो यात्रा तय करनी पड़ी उसकी बात करना बहुत जरूरी है। चंडीगढ़ में 14 सितंबर 1984 के दिन सुरीली किलकारी गूंजी निशांत खुराना की, और बाद में माता पिता ने उन्हें नया नाम दिया आयुष्मान।

छोटी उम्र से ही आयुष्मान ने अपना हुनर दिखाना शुरू कर दिया था। उन्हें गाना बहुत पसंद था। अपनी गिटार के साथ वो कहीं खो जाया करते और सुनने वाले उनके कायल हो जाते। वो अपने गाने भी खुद ही लिखा करते। ऐसे में कई बार आसपास के लोगों को लगता कि आयुष्मान गायक या गीतकार ही बनेंगे, लेकिन कॉलेज पहुंचते ही उन्हें एक नई राह दिखी। वो जुड़ गए थिएटर से।

उन्होंने कई नाटकों में मुख्य भूमिका निभाई है। धर्मवीर भारती के प्रसिद्ध नाटक अंधायुग के मंचन में उन्होंने अभिमन्यु का किरदार निभाया था। 5 साल थिएटर को देने वाले आयुष्मान, चंडीगढ़ के मशहूर थिएटर ग्रुप आगाज और मंचन तंत्र की नींव रखने वालों में से एक माने जाते हैं, लेकिन थिएटर उनकी मंजिल नहीं थी, ये तो बस एक रास्ता था।

17 साल की उम्र में उन्होंने एक पॉप रियलिटी शो में हिस्सा लिया। इसके बाद उन्होंने काफी काम किया, जैसे वो एक चर्चित एफएम में आरजे का काम करने लगे। उनका शो मान ना मान मैं तेरा आयुष्मान काफी पसंद किया जाता। देखते ही देखते वो एक बहुचर्चित टीवी रियलिटी शो में आ गए और उन्होंने उस शो को जीत भी लिया। इसी चैनल में उन्हें काम मिल गया वीडियो जॉकी का। आयुष्मान आवाज की दुनिया से निकलकर सबके सामने आ चुके थे और उन्हें लोग काफी पसंद करते थे।

एक पहचान तो मिल गई थी और साथ ही मिल गया था कई टीवी शोज को होस्ट करने का काम भी। लेकिन एक सपना था जो अब भी अधूरा था। इस सपने की कहानी बड़ी दिलचस्प है। एक रोज यूं ही रोड से जाते हुए आयुष्मान ने देखा किनारे बड़ी सी होर्डिंग में उनके फेवरेट स्टार शाहरुख खान की आने वाली फिल्म ओम शांति ओम का पोस्टर लगा है। यूं ही उनके मन में ख्याल आया कि एक रोज मेरी फिल्म की होर्डिंग भी यही लगेगी। ये खुली आंखों का सपना था और ये सपना सच हुआ जब 2012 में उन्होंने बड़े पर्दे पर कदम रखा। उनकी पहली फिल्म थी विकी डोनर।

ये गीत फिल्म के लिए सिलेक्ट होते ही पहले ही मीटिंग में आयुष्मान ने विकी डोनर फिल्म से पहली बार प्रोड्यूसर बने जॉन अब्राहम को गाकर सुनाया और जॉन ने इस गाने को फिल्म में आयुष्मान की आवाज में ही रखने का फैसला किया। इस फिल्म और गीत दोनों के लिए ही आयुष्मान को बहुचर्चित फिल्म पुरस्कार मिला। विकी डोनर लीक से हटकर फिल्म थी जिसमें एक सामाजिक मुद्दे को सरल तरीके से लोगों के सामने रखने की कोशिश की गई थी। इसी तरह चुप्पी रखे जाने वाले एक और विषय पर आयुष्मान ने बेहतरीन किरदार निभाया। ये फिल्म थी शुभ मंगल सावधान।

आयुष्मान की फिल्मों की संख्या दहाई में है, लेकिन उनके किरदार शतक जमाते हैं। ऐसे चुन चुन के किरदार उन्होंने लिए हैं कि अलग ही रंग नजर आता है, उनका थिएटर का अनुभव नजर आता है एक थिएटर कलाकार की भूमिका में। ये फिल्म थी नौटंकी साला।

अपनी किताब को किसी और के नाम से छपवाने वाले और उस किताब के लेखक से प्यार करती बिट्टी को ये बात बताने को बेताब चिराग दुबे के किरदार में जान भर देते हैं आयुष्मान फिल्म बरेली की बर्फी में।

के सबसे ज्यादा लोगों के दिलों को जीता उनके किरदार प्रेम प्रकाश तिवारी ने, जो अरेंज मैरिज से पत्नी बनी संध्या को स्वीकारने में बहुत देर लगाते हैं। ये कहानी तो मानो हर आम इंसान को छू गई। आयुष्मान का ये किरदार जिस फिल्म में नजर आया वो फिल्म थी दम लगा के हईशा।

0: था ये सुलझे।
1: आयुष्मान खुराना की बात हो तो उनके बिल्कुल अलग किरदारों की बात न की जाए, ऐसा हो ही नहीं सकता। अपनी तीसरी ही फिल्म में उन्होंने किरदार निभाया शिवकर बापूजी तलपड़े का, जो भारत के एक ऐसे वैज्ञानिक थे जिनके बारे में कहा जाता है कि उन्होंने भारत का पहला विमान बनाया था, लेकिन वो गुमनाम ही रहे। इस किरदार को निभाने के लिए आयुष्मान ने अपना वजन गिराया और मराठी भी सीखी। ये फिल्म थी हवाई ज्यादा।

हिंदी दिवस के दिन जन्मे आयुष्मान को हिंदी से बड़ा लगाव है और उसका कारण है उनकी माँ जो हिंदी में एमए है। बचपन से ही आयुष्मान को भाषा से लगाव रहा। वो न सिर्फ अच्छा साहित्य पढ़ा करते बल्कि वो बहुत ही छोटी उम्र से ही लेखन की ओर भी मुड़ गए थे। यही नहीं, उनका एक ब्लॉग भी है जिसे वो हिंदी में लिखते हैं और आज भी जब भी उन्हें समय मिलता है कोई ना कोई कविता शेर वगैरह उसमें जोड़ते रहते हैं। भाषा से लगाव का आलम तो ये है कि आर्टिकल 15 के शूट के दौरान जब वो कुछ समय के लिए लखनऊ में थे तो उन्होंने उर्दू सीखना शुरू कर दिया था। दरअसल उन्हें लगता है कि इससे उनके लेखन में उन्हें काफी मदद मिल सकती है। जहां बात हो रही है आयुष्मान के शौक की, तो यहां कुछ बातें बताने से हम खुद को रोक ही नहीं पा रहे। जैसा कि आपको पता ही है कि आयुष्मान को गाने का शौक है, लेकिन कई बार उन्होंने गाने के जरिए अपनी छुट्टियों का खर्च भी निकाला है। अपने एक इंटरव्यू में उन्होंने बताया था कि कॉलेज के दिनों में वो दिल्ली से मुंबई के लिए चलने वाली पश्चिम एक्सप्रेस में अपने दोस्तों के साथ चढ़ जाया करते और हर कोच में जाकर गाने गाकर परफॉर्म करते। खुश होकर यात्री उन्हें पैसे दे देते और इतने पैसे इकट्ठा हो जाते कि वो सभी दोस्त मिलकर गोवा की ट्रिप के खर्चे निकाल लेते।

गाने, थिएटर जैसी चीजों में आयुष्मान का मन लगता था, वहीं वो पढ़ाई में भी काफी अच्छे थे। आयुष्मान ने इंग्लिश लिटरेचर में बैचलर डिग्री और मास कम्युनिकेशन में मास्टर डिग्री हासिल की हुई है। पढ़ाई के कारण ही तो उन्हें अपनी पत्नी ताहिरा मिली। जी हाँ, ताहिरा आयुष्मान के बचपन के साथी रही हैं। दोनों फिजिक्स के ट्यूशन में साथ पढ़ा करते थे। यहाँ दोस्ती हुई, फिर प्यार और शादी। ताहिरा आयुष्मान के करियर के उतार चढ़ाव में उनकी साथी रही और हमेशा उन्हें आगे बढ़ने को प्रोत्साहित

आयुष्मान की फिल्म आर्टिकल 15 उनकी एक बहुचर्चित फिल्म रही। इस फिल्म में उन्होंने एक पुलिस अधिकारी की भूमिका निभाई और इस किरदार के लिए उन्हें काफी सराहना मिली। ये फिल्म सामाजिक मुद्दों से सरोकार रखती है। इस किरदार के जरिए उन्हें गंभीर भूमिका निभाने में माहिर मान लिया गया है। यूं तो हर भूमिका में आयुष्मान ऐसे ढल जाते हैं कि लोग उन्हें देखते ही रह जाते हैं, लेकिन 2018 में आई एक ऐसी फिल्म जिसने लोगों के मन को जीत लिया। आयुष्मान ने इस फिल्म के लिए पियानो बजाना सीखा और ब्लाइंड पियानिस्ट से मुलाकातें भी की। उनकी इस तैयारी ने उनके किरदार में जान फूंक दी। उन्होंने इस फिल्म के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार अपने नाम कर लिया। जी हाँ, बात हो रही है फिल्म अंधाधुन की।

आयुष्मान इसी तरह अलग अलग किरदारों में ढलकर सभी के दिलों में अपनी जगह बनाते रहें, इस कामना के साथ विविध भारती परिवार की ओर से हम उनके उज्जवल भविष्य की शुभकामनाएं देते हैं।

0: आज के फनकार। ये कार्यक्रम आज केंद्रित था युवा अभिनेता आयुष्मान खुराना पर। शोध, आलेख और स्वर नेहा शर्मा का, संपादन आकांक्षा सिंह का और विविध भारती की ओर से कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता मनीषा जैन।
1: आज के फनकार।

0: इंस्टाग्राम पर आप सेलिब्रिटीज को फॉलो करते हैं?
1: हाँ जी।
0: अपने दोस्तों और रिश्तेदारों को फॉलो करते हैं?
2: हाँ जी हाँ।
0: पर क्या आपने विविध भारती को फॉलो किया?
2: नहीं नहीं अभी नहीं।
0: विविध भारती भी तो आपके परिवार का हिस्सा है। इंस्टाग्राम पर लिखिए विविध भारती राष्ट्रीय सेवा,
1: कुछ लिखा,
0: और फॉलो कीजिए विविध भारती के ऑफिशियल पेज को।
3: हुने तुसी सुन रहे सी विविध भारती मुंबई दे प्रसारण। आकाशवाणी एफएम बठिंडा एफएम बैंड 101.1 मेगाहर्ट्ज़ से स्टूडियो दी घड़ी ते समा हो रहा 10:14 सेकंड दा ते हुण वेला ए प्रोग्राम गीत पिटारा दा।

जी श्रोतियों, प्रोग्राम गीत पिटारा लेके हाजिर हो चुकी हाँ मैं सब दी रेडियो दोस्त सुखदीप। मेरे वालों सारे ही श्रोतियों नु प्यार भरी नमस्कार। अज के प्रोग्राम

प्रोग्राम गीत पिटारा दे तहत हुणे तुसीं सुन रहे सी धार्मिक गीत मोहिनी नरूला अते जसपिंदर नरूला दीआं आवाज़ां दे विच। गीत रचना सी गुरबख्श सिंह दर्पण दी ते संगीत दित्ता सी KS नरूला ने। ते आओ हुण सुनदे हां प्रोग्राम दे विच अगला धार्मिक गीत जिस नूं आवाज़ दित्ती है जसविंदर यमला ने। गीत रचना लाल चंद यमला जट दी।

0: 10 साल का कोलैबोरेशन सिंजेंटा का लॉयल्टी प्रोग्राम लेके आया है जोड़ी तमाका जोड़ी पक्की इनाम तगड़ा 1 करोड़ रुपए तो ज्यादा दे इनाम 2 थार 6 बाइक 12 स्कूटी 1000 प्लस विनर्स 2 लीटर एमस्टार टॉप प्लस 1 किलो चेस यानी 1 लकी ड्रॉ कूपन 25 सितंबर नू लकी ड्रॉ होगा आज ही खरीदो TNC अप्लाई
1: जिस पावन स्वरूप विच गुरु साहिबान जी दी बाणी दा प्रकाश है जिस विच मनुखता लई सच सेवा सिमरन अते बराबरी दा संदेश है तन तन श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी दे पहले प्रकाश पर्व दे पावन मौके ते मिति 12 सितंबर दिन शनिवार दोपहर 12:10 ते तुसी सर्वन करोगे आकाशवाणी बठिंडा दी विशेष पेशकश
2: सर्व उच्च अति पवित्र ग्रंथ ज्ञान दी ज्योत श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी।

प्रोग्राम दे वाचक ते निर्माता निर्देशक बलजीत शर्मा, संपादन ममता अरोड़ा। ता फिर सर्वन करना ना भूलना। मिति 12 सितंबर, दिन शनिवार, दोपहर 12:10 ते आकाशवाणी बठिंडा दी विशेष पेशकश।

0: दा संकल्प करिए।
1: महंगाई महंगाई, इस महंगाई में सुकून से कौन सो पाएगा?
2: वही जो स्लीप वेल स्टोर से मैट्रेसेस खरीद कर लाएगा, क्योंकि स्लीप वेल में चल रहा है ग्रेट स्लीप वेल फेस्टिवल, जहां आपको मिलेगा फ्लैट 21% से 100% तक का डिस्काउंट। विजिट द नियरेस्ट स्लीप वेल स्टोर टुडे।

जी श्रोतियों, प्रोग्राम चल रहा है गीत पिटारा ते हुणे तुसी आनंद माण रहे सी कुलदीप माणक दी आवाज़ दे विच। इस गीत दा गीत रचना सी हरदीप दिलगीर दी ते संगीत दिता सी वेद सेठी ने। ते आओ हुण सुणदे हां प्रोग्राम गीत पिटारा दे तहत अगला गीत सुरिंदर छिंदा दी आवाज़ दे विच। हरदेव दिलगीर दे लिखे इस गीत नूं संगीतबद्ध कीता है चरणजीत आहूजा ने।

जी श्रोतियो, प्रोग्राम चल रहा है गीत पिटारा ते तुसी आनंद माण रहे हो सदाबहार पंजाबी गीतां दा मेरे नाल, यानी कि अपनी रेडियो तो सुखदीप दे नाल। ते हुण शामिल करांगे प्रोग्राम दे विच अगला गीत, पर उस तो पहला तुहाडे नाल सांझी कर दिए एक जरूरी सूचना। प्रोग्राम पैगाम दी रिकॉर्डिंग संबंधी ये सूचना है जी, मिति 13 सितंबर सवेरे सजरी सवेर दे तहत चलन वाले प्रोग्राम दी रिकॉर्डिंग अज शाम 4 बजे की जाएगी। सो जेकर तुसी भी चाहते हो कि इस प्रोग्राम विच तुहाडे पैगाम शामिल होण, तां तुसी सानू अपने पैगाम जिहड़े आ उह 77173 73146 नंबर दे उपर अज शाम 4 बजे तो पहला पहला भेज सकते हो। अपने पैगाम शामिल करवाने लई नंबर एक बार फिर तो नोट कर लवो 77173 73146। जी श्रोतियो, प्रोग्राम चल रहा है गीत पिटारा, स्टूडियो की घड़ी ते समा 10:23 ते 52 सेकंड का, ते मैं सुखदीप कौर बनी हुई हाँ तुहाडे नाल प्रोग्राम दे तहत, ते सुनवा रही हाँ तुहानू सदाबहार पंजाबी गीत। ते आओ हुण सुनदे हां प्रोग्राम दे विच अगला गीत जगमोहन कौर की आवाज़ विच।

0: महंगाई महंगाई, इस महंगाई में सुकून से कौन सो पाएगा?
1: वही जो स्लीप वेल स्टोर से मैट्रेसेस खरीद कर लाएगा, क्योंकि स्लीप वेल में चल रहा है ग्रेट स्लीप वेल फेस्टिवल, जहां आपको मिलेगा फ्लैट 21% से 100% तक का डिस्काउंट। विजिट द नियरेस्ट स्लीप वेल स्टोर टुडे।
2: 10 साल का कोलैबोरेशन सिंजेंटा का लॉयल्टी प्रोग्राम लेके आया है जोड़ी तमका, जोड़ी पक्की इनाम तगड़ा, 1 करोड़ रुपए तो ज्यादा दे इनाम, 2 थार, 6 बाइक, 12 स्कूटी, 1000 प्लस विनर्स, 2 लीटर एमस्टार टॉप प्लस 1 किलो चेस, यानी 1 लकी ड्रॉ कूपन। 25 सितंबर नु लकी ड्रॉ होगा, आज ही खरीदो। TNC अप्लाई।

प्रोग्राम दी वाचक मैं यानी गुरदीप गिल, निर्माता निर्देशक श्री बलजीत शर्मा। सुनना ना भूलना 12 सितंबर दिन शनिवार शाम 5:30 बजे प्रोग्राम हर अकाल उस्त।

0: महंगाई महंगाई, इस महंगाई में सुकून से कौन सो पाएगा?
1: वही जो स्लीप वेल स्टोर से मैट्रेसेस खरीद कर लाएगा, क्योंकि स्लीप वेल में चल रहा है ग्रेट स्लीप वेल फेस्टिवल, जहां आपको मिलेगा फ्लैट 21%

ਮਗਰੋਂ ਵੇਖੀ ਮੁੜ ਕੇ ਛੁਹਾਰਾ ਪੈਂਦਾ।

0: 10 साल का कोलैबोरेशन सिंजेंटा का लॉयल्टी प्रोग्राम लेके आया है जोड़ी धमाका जोड़ी पक्की इनाम तगड़ा 1 करोड़ रुपए तो ज्यादा दे इनाम 2 थार 6 बाइक 12 स्कूटी 1000 प्लस विनर्स 2 लीटर एमस्टार टॉप प्लस 1 किलो चेस यानी 1 लकी ड्रॉ कूपन 25 सितंबर नु लकी ड्रॉ होवेगा आज ही खरीदो TNC अप्लाई
1: सवाल ओही जो लोकां दे दिला विच ने जवाब ओही जो सच नू सामने लियाउन खबरां दे पिछे दी खबर शख्सियत दे पिछे दी कहानी अते समाज नाल जुड़े अहम मुद्दे ते बेबाक गलबात

0: जी श्रोतियो,
1: आकाशवाणी बठिंडा दा मकबूल प्रोग्राम मुश्किल दसो हल दसांगे अते इस वार साडे स्टूडियो विच मौजूद होंगे श्री बखतौर ढिल्लों प्रेसिडेंट बठिंडा प्रेस क्लब अते श्री परविंदर जीत सिंह सीनियर जर्नलिस्ट मेंबर बठिंडा प्रेस क्लब अते इन्हां नाल गलबात करनगे दलबीर सिंह ममता अरोड़ा अते प्रोग्राम दे निर्माता निर्देशक बलजीत शर्मा जी जिथे पत्रकारी नाल जुड़े तजर्बे समाजिक मुद्दे अते लोकां नाल संबंधित अहम मसलियां ते होवेगी खुली अते सार्थक गलबात श्रोतो तुसी भी इस प्रोग्राम दे विच शिरकत कर सकते हो 0164-2240-331 डायल करके या फिर स्टूडियो दे व्हाट्सएप नंबर राही जेड़ा है 77173-73146।

0: महंगाई महंगाई, इस महंगाई में सुकून से कौन सो पाएगा?
1: वही जो स्लीप वेल स्टोर से मैट्रेसेस खरीद कर लाएगा, क्योंकि स्लीप वेल में चल रहा है ग्रेट स्लीप वेल फेस्टिवल, जहां आपको मिलेगा फ्लैट 21% से 100% तक का डिस्काउंट। विजिट द नियरेस्ट स्लीप वेल स्टोर टुडे।

जी श्रोतियों, प्रोग्राम चल रहा है गीत पिटारा। स्टूडियो की घड़ी से समा 10:46:56 का, मैं सुखदीप कौर बनी हुई हाँ थोड़े नाल प्रोग्राम गीत पिटारा के तहत। तो आनंद माण रहे हो सदाबहार पंजाबी गीतों का। तो हमने तुम आनंद माणिया नरेंद्र बीबा की आवाज़ के इस गीत का। गीत रचना से दीपक जतोई की, संगीत दिता से KS नरूला ने। तो आओ हूँ सुनते हैं मुहम्मद सदीक रणजीत कौर दिया आवाज़ों के प्रोग्राम का अगला गीत।

0: महंगाई महंगाई, इस महंगाई में सुकून से कौन सो पाएगा?
1: वही जो स्लीप वेल स्टोर से मैट्रेसेस खरीद कर लाएगा, क्योंकि स्लीप वेल में चल रहा है ग्रेट स्लीप वेल फेस्टिवल, जहां आपको मिलेगा फ्लैट 21% से 100% तक का डिस्काउंट। विजिट द नियरेस्ट स्लीप वेल स्टोर टुडे।
2: दोस्तों 11 सितंबर 2026 दिन शुक्रवार समा शाम 5 बजे गुरदीप गिल ते बलजीत शर्मा जी प्रोग्राम पिंडां आले ते शहरां आले दे अंतर्गत आप जी दी खिदमत दे विच लैके हाजिर हो रहे ने प्रोग्राम पिंडां आले ते शहरां आले विशा चित्त दा भरोसा भाग दूजा।

प्रसारण समा दोबारा नोट कर लो दोस्तो, शाम 5 बजे, मिति 11 सितंबर 2026, प्रोग्राम रहेगा साडा पिंडां आले ते शहरां आले।

0: महंगाई महंगाई, इस महंगाई में सुकून से कौन सो पाएगा?
1: वही जो स्लीप वेल स्टोर से मैट्रेसेस खरीद कर लाएगा, क्योंकि स्लीप वेल में चल रहा है ग्रेट स्लीप वेल फेस्टिवल, जहां आपको मिलेगा फ्लैट 21% से 100% तक का डिस्काउंट। विजिट द नियरेस्ट स्लीप वेल स्टोर टुडे।
2: जी श्रोतियों, प्रोग्राम चल रहा है गीत पिटारा, तो तुसीं आनंद माण रहे हो सदाबहार पंजाबी गीतां दा। ते अगला गीत सुनने तो पहला तुहानू एक जरूरी सूचना दे दिंदे आ। यह सूचना प्रोग्राम पैगाम दी रिकॉर्डिंग संबंधी है। मिति 13 सितंबर सवेरे सजरी सवेर के तहत चलन वाले प्रोग्राम की रिकॉर्डिंग अज शाम 4 बजे की जाएगी। सो जेकर तुसी भी चाहते हो कि इस प्रोग्राम विच तुहाडे पैगाम शामिल होन, तां तुसी सानू अपने पैगाम 77173 73 146 दे उपर भेज सकते हो अज शाम 4 बजे तो पहला। ते अपने पैगाम शामिल करवाने लई नंबर एक बार फिर तो नोट कर लो 77173 73 146। जी श्रोते, प्रोग्राम गीत पिटारा दे तहत आओ हुण सुनदे आं प्रोग्राम दा आखरी गीत। बलकार सिद्धू दी आवाज दे विच गीत रचना नीले खान दी, ते संगीत दित्ता तेजवंत किट्टू ने।

जी, इस गीते नाल ही प्रोग्राम गीत पिटारा दा वेला इत्थे ही संपूर्ण हुंदा है। मैनू सुखदीप नू प्रोग्राम समाप्त करन दी दिओ इजाजत, धन्नवाद। आकाशवाणी एफ एम बठिंडा एफ एम एन 101.1 मेगाहर्ट्ज़ से स्टूडियो की घड़ी ते समा हो रहा है 10:59 अते 8 सेकेंट का। ठीक 11 बजे रिले करांगे हिंदी विच खबरां दा बुलेटिन आकाशवाणी दिल्ली तो, 11:05 तो लैके 12 बजे तक रिले करांगे आकाशवाणी रेनबो दिल्ली दे प्रसारण।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं कनकलता। ब्रिक्स व्यापार मंच की बैठक नई दिल्ली के भारत मंडपम में जारी है। विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर ने उद्घाटन सत्र को संबोधित करते हुए कहा कि भारत की अध्यक्षता में ब्रिक्स संगठन के उद्देश्य की प्राप्ति की दिशा में आगे बढ़ने के प्रयास लगातार जारी हैं।
1: This year is a milestone.
2: ब्रिक्स के लिए ये वर्ष एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है, क्योंकि हम संस्थागत ब्रिक्स सहयोग के 20 वर्ष पूरे होने का उत्सव मना रहे हैं। इस अवधि में ब्रिक्स ने अपनी सदस्यता, उद्देश्य और सहयोग ढांचे में काफी प्रगति की है। भारत की अध्यक्षता में इस विकास को आगे बढ़ाने का प्रयास जारी है।
0: एक दिवसीय कार्यक्रम में ब्रिक्स देशों के 1000 से अधिक कारोबारी, व्यापार मंत्री, वित्तीय क्षेत्र के प्रतिनिधिकर्ता, वैश्विक निवेशक और उद्योग जगत के विशेषज्ञ शामिल हैं। इसका आयोजन ब्रिक्स व्यापार परिषद द्वारा फिक्की, सीआईआई और एसोचैम के सहयोग से हो रहा है। 18वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन कल से नई दिल्ली के भारत मंडपम में शुरू होगा। 2 दिवसीय इस सम्मेलन के लिए तैयारियों को अंतिम रूप दिया जा रहा है। ब्रिक्स में 11 प्रमुख विकासशील

0: देश ब्राजील, रूस, भारत, चीन, दक्षिण अफ्रीका, मिस्र, इथोपिया, इंडोनेशिया, ईरान, सऊदी अरब और संयुक्त अरब अमीरात शामिल हैं। इस वर्ष ब्रिक्स सम्मेलन का विषय है लचीलापन, नवाचार, सहयोग और स्थिरता के लिए निर्माण। एक रिपोर्ट।
1: पहला ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 16 जून 2009 को रूस के येकातरिनबर्ग में आयोजित किया गया। वहीं सितंबर 2010 में न्यूयॉर्क में आयोजित ब्रिक विदेश मंत्रियों की बैठक के बाद दक्षिण अफ्रीका के शामिल होने के साथ ब्रिक का विस्तार हुआ और इसे ब्रिक्स के नाम से जाना जाने लगा। दक्षिण अफ्रीका ने अप्रैल 2011 में चीन के सान्या में आयोजित तीसरे ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में पहली बार भाग लिया। जनवरी 2024 में मिस्र, इथियोपिया, ईरान, सऊदी अरब और संयुक्त अरब अमीरात के पूर्ण सदस्य बनने के साथ ब्रिक्स का और विस्तार हुआ। सुपर्णा सेकिया के साथ सौम्या शरण, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज दोपहर नई दिल्ली में रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। दोनों नेताओं के बीच आपसी हित के मुद्दों पर चर्चा होने की संभावना है। बैठक के दौरान यूक्रेन रूस संघर्ष, पश्चिम एशिया संकट, व्यापारिक संबंध और ऊर्जा सहयोग जैसे मुद्दों पर चर्चा हो सकती है। राष्ट्रपति पुतिन ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में शामिल होने के लिए आज सुबह भारत पहुंचे। प्रधानमंत्री मोदी आज शाम ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियन के साथ भी बातचीत करेंगे। ईरान के राष्ट्रपति आज दोपहर नई दिल्ली पहुंचेंगे। पश्चिम एशिया में मौजूदा हालात को देखते हुए ये बैठक बेहद महत्वपूर्ण है। दोनों नेताओं के बीच क्षेत्रीय विकास के महत्वपूर्ण मुद्दों पर भी वार्ता होने की संभावना है। प्रधानमंत्री मोदी संयुक्त राष्ट्र के महासचिव अंतोनियो गुतरश से भी मुलाकात करेंगे। ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में शामिल होने के लिए दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति सिरिल रामाफोसा और युगांडा के उपराष्ट्रपति यावेरी मुसेवेनी नई दिल्ली पहुंच गए हैं। केंद्रीय मंत्री जयंत सिंह ने हवाई अड्डे पर उनका स्वागत किया। नाइजीरिया के विदेश मंत्री बियांका ओडोमेगवो ओजुकवो और उरुग्वे के विदेश मंत्री मारियो लुबिटकिन भी शिखर सम्मेलन में शामिल होने के लिए नई दिल्ली पहुंच गए हैं। इस सम्मेलन के मद्देनजर दिल्ली में आज दोपहर 2 बजे से रात 8:30 बजे तक कई प्रमुख सड़कों पर यातायात में बदलाव और नियंत्रित आवाजाही रहेगी। इस बीच दिल्ली मेट्रो ने स्पष्ट किया है कि अगले आदेश तक सभी मेट्रो स्टेशन खुले रहेंगे और सेवाएं सामान्य रूप से चलती रहेंगी। विद्युत तथा आवास और शहरी कार्य मंत्री मनोहर लाल 14 से 16 सितंबर तक अमेरिका के ह्यूस्टन में होने वाली G20 ऊर्जा मंत्रियों की बैठक में भाग लेंगे। अमेरिका की G20 अध्यक्षता में आयोजित इस बैठक में G20 देशों के ऊर्जा मंत्री और वरिष्ठ प्रतिनिधि वैश्विक ऊर्जा सुरक्षा, किफायती ऊर्जा, अवसंरचना के लिए विकास और मजबूत ऊर्जा आपूर्ति श्रृंखला से जुड़े महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा करेंगे। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने भारत को दुनिया की आर्थिक वृद्धि के लिए महत्वपूर्ण बताया है। ये बयान चालू वित्त वर्ष की पहली तिमाही में भारत की अर्थव्यवस्था की 7.8% की वृद्धि के बाद आया है। पश्चिम एशिया में बढ़ते तनाव के बीच ब्रेंट क्रूड की कीमत आज 4 महीने के उच्चतम स्तर $108.77 प्रति बैरल पर पहुंच गई। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

दोस्तों, बीते दिनों अक्षय कुमार ने अपना 59th बर्थडे मनाया और इस दौरान उन्हें जमकर बधाइयां मिली। खास तौर पे उनके खास फ्रेंड रोहित शेट्टी ने उन्हें बधाई ही नहीं दी बल्कि साथ साथ एक ऐलान भी कर दिया। इस वक्त गोलमाल 5 में अक्षय कुमार काम कर रहे रोहित शेट्टी के साथ, और खास बात यह है कि अजय देवगन वाली फिल्म यानि कि गोलमाल फ्रेंचाइजी जो अजय देवगन के नाम है, इसमें अक्षय कुमार की एज ए विलन एंट्री हो गई है। लेकिन अब ऐलान ये किया है रोहित ने की एक फिल्म अक्षय के साथ और जी हाँ, साथ में एक और फिल्म बहुत जल्द। इसका मतलब सीधे सीधे रोहित ने बता दिया है कि अपनी नेक्स्ट फिल्म में भी अक्षय कुमार उनके साथ होने वाले हैं। हालांकि इससे ज्यादा उन्होंने कोई और जानकारी शेयर नहीं की, लेकिन लोगों को इंतजार रहेगा गोलमाल 5 में अक्षय कुमार की इस नेगेटिव रोल वाली एंट्री का भी, और साथ साथ रोहित शेट्टी और अक्षय कुमार की नेक्स्ट फिल्म का भी। तो भाई हमें भी इंतजार रहेगा, लेकिन फिलहाल हम आपको सुना रहे हैं उस फिल्म का गाना जिससे रोहित ने एक बार फिर से धमाका मचा दिया था फिल्म इंडस्ट्री में। सिंघम लेकर आए थे, लेकिन सिंघम के बाद रणवीर सिंह वाली इस फिल्म में उन्होंने जबरदस्त काम कराया रणवीर सिंह से, और एक बहुत ही ट्रेंडिंग सा गाना हमें दिया जो आज भी उतना ही ट्रेंडिंग है।

है। तुषार कपूर की आवाज में।

0: Every great journey begins with people coming together to listen, to learn, to imagine what's possible. This is the BRICS 2026, a moment where leaders, innovators, businesses, and communities from the BRICS nations come together to strengthen partnerships. India welcomes the BRICS countries as the grouping marks the 20 years of its establishment in 2026. BRICS Summit 2026 is being hosted in Bharat Mandapam, New Delhi from 12th to 13th September 2026 under India's chairship theme, Building for Resilience, Innovation, Cooperation and Sustainability, with a people-centric approach and the spirit of humanity first. Because when we work together, possibilities become progress.
1: आज पे लेट हो गए?
2: अरे यार वो रवि मिल गया था, फिर बाहर ही बैठ गए थे।
1: क्यों बैठे थे बाहर?
2: क्यों ना बैठूं? बस इसीलिए क्योंकि उसे एड्स है। एड्स गले मिलने, साथ बैठने से और एक साथ खाना खाने से नहीं फैलता।
1: मुझे पता है HIV एड्स असुरक्षित संबंध, संक्रमित सुई या संक्रमित महिला से उसके बच्चे को होता है, इसीलिए तो कह रही हूं। बाहर क्यों बैठे थे? रवि भैया को घर ही ले आते।
2: एड्स से पीड़ित व्यक्ति को दूर नहीं, हमारे साथ की जरूरत है। इसलिए ध्यान रखें और याद रखें कि एड्स छूने से, बात करने से, एक साथ खाना खाने से बिल्कुल नहीं फैलता। एड्स से जुड़ी अधिक जानकारी के लिए 1097 पर कॉल करें। हरियाणा स्टेट एड्स कंट्रोल सोसाइटी द्वारा जनहित में जारी।

हाजिर है हुस्न इश्क की महफिल में आज फिर हाजिर है।

0: Every great journey begins with people coming together to listen, to learn, to imagine what's possible. This is the BRICS 2026, a moment where leaders, innovators, businesses, and communities from the BRICS nations come together to strengthen partnerships. India welcomes the BRICS countries as the grouping marks the 20 years of its establishment in 2026. BRICS Summit 2026 is being hosted in Bharat Mandapam, New Delhi, from 12th to 13th September 2026 under India's chairship theme, Building for Resilience, Innovation, Cooperation and Sustainability, with a people-centric approach and the spirit of humanity first. Because when we work together, possibilities become progress.
1: कोयल सी तेरी बोली तेरी तेरी छी नजर में है जादू।
2: अरे बेसुरे गाने क्यों सुना रही हो मुझे?
1: अरे तुम्हारे फेवरेट गाने तुम्हें सुना रही हूँ, जिसे गा गा कर तुमने मेरा दिल जीता था।
2: अरे ऐसी बात है तो फिर अपनी रिक्वेस्ट आकाशवाणी रेनबो पर भेज दो। अब रेडियो पर अपनी चॉइस के गाने सुनने की बात ही कुछ और है।
3: अब SMS कीजिए और सुनिए मेरा वाला सॉन्ग, गुरुवार से रविवार दोपहर 1 बजे से 2 बजे तक सिर्फ आकाशवाणी रेनबो पर।
4: जी हाँ बिल्कुल, और आज है शुक्रवार, यानी कि आज भी 1:20 से होता है मेरा वाला सॉन्ग। तो आप भी तैयार रहिएगा अपनी रिक्वेस्ट सुनने के लिए, लेकिन वो तभी हो पाएगा संभव जब आप हमें करेंगे SMS, है ना। तो प्रोग्राम के दौरान आप हमें SMS कीजिएगा और हम, यानी कि मैं आपकी दोस्त रॉकिंग रश्मि, आपको सुनवाऊंगी आपके पसंद के गीत। फिलहाल एक खबर आपके लिए ये है कि दृश्यम 3 का जो ट्रेलर है ना, वो रिलीज हो गया है और

फिल्म को फैंस की ओर से काफी अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है। हालांकि ऐसा भी लग रहा है कुछ लोगों को कि वही वही स्टोरी को बारी बारी रिपीट किया जा रहा है ना, और उसी का इस्तेमाल किया जा रहा है। लेकिन ये भी सच है कि अब तक के इसके दोनों पार्ट जो थे वो सक्सेसफुल रहे हैं, और उम्मीद ये की जा रही है कि जो तीसरा आने वाला है यानी कि दृश्यम 3, जो नेक्स्ट मंथ सिनेमाघरों में नजर आएगी, वो फिल्म का ट्रेलर देखने के बाद भी इसकी सक्सेसफुल या सक्सेस रेट की उम्मीद यही की जा रही है कि काफी अच्छी रहेगी। कहा यह जा रहा है कि इस फिल्म के साथ ही, इस फिल्म की जब प्रमोशन के दौरान तब्बू, जो ऑलरेडी पहले कहा जाता था दृश्यम 2 के टाइम पर भी उतनी ज्यादा श्योर नहीं थी कि फिल्म का क्या रहेगा, लेकिन इस बार दृश्यम 3 की प्रमोशन के दौरान उन्होंने कुछ ऐसा कह दिया कि दृश्यम 4 का हिंट भी ऑडियंस को लगभग हो ही गया है। देखिए ना, दृश्यम 3 अभी आई नहीं है, लेकिन दृश्यम 4 की अटकलें अभी से लगनी शुरू हो गई हैं, क्योंकि उसके पीछे एक नहीं बल्कि केवल तब्बू ही नहीं, अजय देवगन का बयान भी है। भाई उनका कहना ये है कि दृश्यम 3 द कॉन्क्लूजन, जो ये नाम है, इस नाम की, इस टैग लाइन के साथ इस फिल्म का एंड हो जाए ऐसा जरूरी नहीं है। क्योंकि तब्बू का कहना ये है भाई, जब तक प्रोड्यूसर समय लिखकर नहीं दे देंगे ना कि ये इसका एंड है, तब तक हम तो नहीं मानने वाले। और साथ साथ अजय देवगन का ये कहना है कि भाई आगे है, कुछ भी हो सकता है, क्या कहें इस बारे में। तो कुछ ऐसे ही बयान के साथ हम कह सकते हैं कि हाँ, हो सकता है कि दृश्यम 3 की कहानी का कुछ एंड इस तरह का ना हो जैसा कि उसमें दिखाया जा रहा है, ट्रेलर्स में दिखाया जा रहा है, ये कहना है अजय देवगन का। तो मे भी कि दृश्यम 4 भी हमें देखने को मिले। फिलहाल हमें देखने को मिल रहा है एक प्यारा सा गाना, वो सुनते हैं इसी फिल्म का, जिसको फर्स्ट फिल्म आई थी ये, और उस फिल्म का गाना सुनते हैं, एंजॉय करते हैं और वापस आते हैं आपके पास ओनली ऑन स्टेशन ऑफ द नेशन FM रेनबो पर।

जी हाँ, ये गीत था 2015 में आई दृश्यम का, जो ओरिजिनली मलयाली फिल्म का रिमेक है हिंदी का। और अब इसका दृश्यम 2 आ चुका है, दृश्यम 3 का ट्रेलर रिलीज हो गया है जैसा कि मैंने आपको बताया। लेकिन इस फिल्म की, इस गाने को सुनवाने के लिए एक खास बात ये भी थी कि आज इस फिल्म की जो लीड एक्ट्रेस थी श्रिया सरन, उनका बर्थडे है। जी हाँ बिल्कुल, हम आज बॉलीवुड टेल्स में इनका मनाएंगे बर्थडे। और आपको श्रिया सरन के बारे में बताऊं कि ये तमिल तेलुगु दोनों ही जो फिल्म्स हैं उनकी एक अच्छी एक्ट्रेस रही हैं, और साथ साथ इन्होंने हिंदी फिल्मों में भी काम किया है। और आपको पता है कि ये एक्चुअल में चाहती थी एक डांसर बनना, लेकिन एक्ट्रेस बन गई और डेब्यू किया इन्होंने तेलुगु फिल्म इश्ताम से। और देखिए ना, अब हमें दृश्यम में भी नजर आई और उसके बाद भी बहुत सारी फिल्मों में नजर आई, जैसे कि दृश्यम 3 अब आने वाली है, शिवाजी द बॉस में थी, आवारापन 2007 में जो आई थी उसमें भी ये थी, और उसके अलावा भी बहुत सारी फिल्मों में आप इन्हें देखते हैं। और अब इनकी दृश्यम 3 जब आएगी तो उसमें भी ये नजर आएंगी। तो हमारी ओर से श्रिया सरन को बहुत बहुत बहुत सारा बर्थडे। और इनके अलावा एक और एक्ट्रेस हैं, उनका भी आज बर्थडे है, वो कौन है वो भी हम आपको बताएंगे। लेकिन उससे पहले ये ट्रैक आपके लिए।

0: Every great journey begins with people coming together to listen, to learn, to imagine what's possible. This is the BRICS 2026, a moment where leaders, innovators, businesses, and communities from the BRICS nations come together to strengthen partnerships. India welcomes the BRICS countries as the grouping marks the 20 years of its establishment in 2026. BRICS Summit 2026 is being hosted in Bharat Mandapam, New Delhi from 12th to 13th September 2026 under India's chairship theme, Building for Resilience, Innovation, Cooperation and Sustainability, with a people-centric approach and the spirit of humanity first. Because when we work together, possibilities become progress.
1: राहुल अगले हफ्ते टूर्नामेंट है, तुम्हें मेरठ से नया बैट भी लाना है, कैसे करोगे?
2: अरे सर फिक्र मत कीजिए, मैं मेरठ से बेस्ट बैट लेकर दोपहर की प्रैक्टिस ज्वाइन भी कर लूंगा।
1: इम्पॉसिबल
2: सर, अब अपने पास नमो भारत की रफ्तार और आरामदायक सफर है। मेरठ अब दूर कहाँ, एक घंटे से कम लगता है, हर 10 मिनट में ट्रेन मिलती है।
3: देश की प्रथम रीजनल रेल नमो भारत दिल्ली के सरायकाले खां से शुरू होकर गाजियाबाद, मोदी नगर और मेरठ में बेगम पुल होते हुए मोदीपुरम तक जाती है।
4: बॉलीवुड रील्स में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत, आपके साथ हूं मैं आपकी अपनी रॉकिंग रश्मि। दोस्तों अब समय आ गया है कि हम आपको ये बताएं, आपसे ये पूछें कि क्या है हमारा आज का बॉलीवुड सवाल और उसका सवाल का सही जवाब आप हमें बताएं। तो चलिए जल्दी जल्दी से नोट कर लीजिए, अपने फोन्स ले आइए अपने पास में और उसका जो व्हाट्सएप नंबर है ना वो डाल दीजिए हमारा, यानी कि 9868107070 9868107070। और आज का सवाल बहुत ही आसान है। मैंने प्रोग्राम के स्टार्टिंग में बात की थी गोलमाल फ्रेंचाइजी की, है ना, गोलमाल 5 आने वाली है, तो आपको ये बताना है गोलमाल फ्रेंचाइजी के डायरेक्टर कौन है। फ्रेंचाइजी मीन्स जितनी भी अभी तक आई हैं गोलमाल, उस गोलमाल के डायरेक्टर कौन है, जल्दी से लिखकर भेज दीजिए उसे हमारे पास 9868107070 पर, अपने नाम अपने शहर के नाम सही जवाब जल्दी से जल्दी हमारे पास।

0: वेल दोस्तों, एक और एक्ट्रेस है जिनका बर्थडे आज हम सेलिब्रेट कर रहे हैं. वो है 2002 में मेरे यार की शादी है फिल्म से डेब्यू करने वाली ट्यूलिप जोशी का. हालांकि आजकल वो बहुत ज्यादा फिल्मों में नजर नहीं आती, उसके बावजूद जब वो फिल्मों में आई थी ना तो लोगों को काफी पसंद आई थी और काफी अच्छी फिल्में भी इन्होंने हमें दी. और यदि हम इनकी बात करें तो ये एक मॉडल भी रही हैं और साथ में इन्होंने एज ए एक्टिंग मतलब हिंदी के अलावा इन्होंने पंजाबी, मलयालम, तेलुगु और कन्नड़ फिल्मों में भी काम किया है. धोखा, दिल मांगे मोर, मातृभूमि और मेरे यार की शादी है, इसके अलावा सुपरस्टार और हॉस्टल जैसी फिल्मों में भी ये नजर आई. और आज इनका बर्थडे है तो हमारी ओर से श्रिया सरन के साथ साथ इन्हें भी बर्थडे की बहुत सारी मुबारकबाद. और साथ साथ अब आपको याद दिलाना चाहती हूँ कि आज जो मैंने आपसे सवाल पूछा है ना, बहुत ही आसान है. गोलमाल फ्रेंचाइजी के डायरेक्टर कौन है, आपको हमें उनका नाम लिखकर भेजना है अपने नाम अपने शहर के नाम के साथ. ओनली ऑन स्टेशन ऑफ द नेशन एफएम रेनबो 102.6 के व्हाट्सएप नंबर 9868107070 पर.
1: Every great journey begins with people coming together to listen, to learn, to imagine what's possible. This is the BRICS 2026, a moment where leaders, innovators, businesses and communities from the BRICS nations come together to strengthen partnerships. India welcomes the BRICS countries as the grouping marks the 20 years of its establishment in 2026. BRICS Summit 2026 is being hosted in Bharat Mandapam, New Delhi from 12th to 13th September 2026 under India's chairship theme, Building for Resilience, Innovation, Cooperation and Sustainability with a people-centric approach and the spirit of humanity first. Because when we work together, possibilities become progress.
0: बॉलीवुड ट्रेल्स में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत. और अब एक ऐसी खबर है आपके लिए जो वाकई आप मानेंगे कि मतलब कुछ एक अनोखा ही होने वाला है. अब आप कहेंगे मैं किसकी बात कर रही हूँ. मैं बात कर रही हूँ उस एक्ट्रेस की जिसने 2005 में बॉलीवुड में डेब्यू किया एक ऐसी फिल्म से जो ज्यादा नहीं चल पाई, यहाँ तक कि लोगों को उसका नाम भी नहीं याद है. चांसा रोशन चेहरा. वाकई फिल्म उतनी मतलब नहीं किसी को भी याद होगी, लेकिन उसके बावजूद जो वाकई में उसमें चांसा रोशन चेहरा था ना, वो इस वक्त काफी नामी चेहरा बन गया है. और अब उनकी नेक्स्ट फिल्म एक आने वाली है. फिल्म का नाम है द विवान फोर्स ऑफ द फॉरेस्ट और इसमें इनके साथ में है सिद्धार्थ मल्होत्रा. मैं बात कर रही हूँ तमन्ना भाटिया की. जी हाँ बिल्कुल, तमन्ना भाटिया ने 2005 में डेब्यू किया था लेकिन आज इंडस्ट्री में एक जाना पहचाना नाम है. और अब उनकी इस फिल्म का, जिसके ऑलरेडी काफी सारे गाने रिलीज हो चुके हैं, लेकिन अब

वो गाना रिलीज हुआ है जिसका इंतजार लोगों को काफी समय से था। जी हाँ, छठी मैया। तमन्ना भाटिया और सिद्धार्थ मल्होत्रा की लोक कथा और फैंटेसी पर आधारित इस फिल्म में छठ पूजा को ना काफी ज्यादा प्रेफरेंस दी गई है, और इस भक्ति गीत को अपनी आवाज दी है विशाल मिश्रा ने। और साथ साथ तमन्ना भाटिया छठ पूजा से जुड़े रीति रिवाज और परंपराएं निभाती नजर आ रही हैं। एक खूबसूरत छवि के साथ, हाथों में लाल चूड़ियां, लाल साड़ी और मांग में सिंदूर पहनकर तमन्ना सब औरतों के साथ घाट पर पहुंचती हैं। और पूरी जो वो पूरी थीम है ना, पूरा जो छठ पूजा जिस तरह से की जाती है वो इसमें दर्शाया गया है, और लोगों को काफी ये पसंद आ रहा है सोशल मीडिया के थ्रू। तो तमन्ना भाटिया एक नए रंग में, एक नए रूप में हमें इस फिल्म में नजर आने वाली है। लेकिन फिलहाल मुझे नजर आ रहा है एक और ट्रैक जो बहुत ही खूबसूरत है, और मुझे याद आ रहे हैं इसमें ट्यूलिप जोशी के साथ में कौन आ रहे हैं, मुझे शाहिद कपूर, यंग से जो नए नए इस फिल्म से आए थे बॉलीवुड में।

0: great journey begins with people coming together to listen, to learn, to imagine what's possible. This is the BRICS 2026, a moment where leaders, innovators, businesses, and communities from the BRICS nations come together to strengthen partnerships. India welcomes the BRICS countries as the grouping marks the 20 years of its establishment in 2026. BRICS Summit 2026 is being hosted in Bharat Mandapam, New Delhi from 12th to 13th September 2026 under India's chairship theme, Building for Resilience, Innovation, Cooperation and Sustainability, with a people-centric approach and the spirit of humanity first. Because when we work together, possibilities become progress.
1: दिल के तराने गाने नए पुराने नॉन स्टॉप फिल्म म्यूजिक रोजाना सुबह 9 से 10 बजे तक रेनबो 102.6 पर
2: दोस्तों बहुत सारे ऐसे एक्टर्स और एक्ट्रेसेस हैं जो अभी भी हमारे जो वेटरन एक्टर एक्ट्रेसेस हैं उनको बहुत अप्रिशिएट करते हैं और ऐसे ही कुछ हैं पृथ्वीराज सुकुमारन और करीना कपूर अपनी नेक्स्ट फिल्म जो 18 सितंबर को रिलीज होने वाली है दायरा के प्रमोशन के दौरान उनसे जब बातचीत की गई तो उन्होंने कहा कि यदि खासतौर पर पृथ्वीराज सुकुमारन ने कहा कि यदि अमिताभ बच्चन और रेखा का उदाहरण उन्होंने दिया कि यदि उन दोनों को संजय लीला बंसाली डायरेक्ट करें और ये दोनों किसी एक फिल्म में नजर आए ना तो वो उसका फर्स्ट डे फर्स्ट शो देखना चाहते हैं। अब आप कहेंगे ऐसा क्यों उन्होंने कहा? भाई उन्होंने इसलिए कहा कि दर्शक ना अच्छे से उन्हें पसंद करते हैं और वो भी जब छोटे रहे होंगे तो इन दोनों की फिल्में देखा करते थे और उन्हें काफी अप्रिशिएट करते थे, तो इसी वजह से उन्हें लगता है कि यदि किसी मजबूत कहानी के साथ संजय लीला भंसाली, अमिताभ और रेखा को एक साथ पर्दे पर लेकर आए तो पृथ्वीराज सुकुमारन उनका फर्स्ट डे फर्स्ट शो देखना पसंद करेंगे। और मुझे लगता है कि वो पृथ्वीराज ही क्यों, बहुत सारे हमारे फैंस होंगे ऐसे और जो इस वक्त हमें सुन भी रहे होंगे वो भी डेफिनेटली उनका फर्स्ट डे फर्स्ट शो देखना चाहेंगे। और साथ साथ बहुत सी ऐसी फिल्में भी हैं जिनका फर्स्ट डे फर्स्ट शो देखने का ना अभी भी लोगों को बहुत मतलब एक इंटरेस्ट रहता है उनमें, एक जागरूक रहती है, एंथुसियाज्म रहता है कि हाँ भाई हमें तो इसका फर्स्ट डे फर्स्ट शो देखना है। क्या आप हैं ऐसे? यदि हैं तो आप हमें लिख सकते हैं और नहीं भी हैं तो भी आप हमें लिख सकते हैं। खासतौर पे आज के सवाल का जवाब, आज बहुत ही छोटा सा सवाल मैंने पूछा था, गोलमाल फ्रेंचाइजी का के डायरेक्टर कौन है, आपको ये बताना है अपने नाम अपने शहर के नाम के साथ। बहुत सारे मैसेजेस आए हैं बिल्कुल हमारे पास सर, लेकिन उनमें सबसे पहले और सबसे सही जवाब लेकर कौन बना है बॉलीवुड सरताज, मैं चेक करती हूँ और तब तक आपको सुनाती हूँ एक और प्यारा सा ट्रैक।

0: जी हाँ, दूल्हे को जाने दीजिए, दुल्हन को लाने दीजिए। फिलहाल हम अपने उस सेक्शन पर आते हैं जिसमें हम बात करते हैं हमारे आज के बॉलीवुड सरताज से। हेलो
1: हेलो
0: जी, कौन बोल रहे हैं आप? अपना नाम बताइए।
1: मैम, मैं रोहित श्रीवास्तव बोल रहा हूँ दिल्ली से।
0: क्या बात है, रोहित श्रीवास्तव बोल रहे हैं दिल्ली से। और आप यकीन मानेंगे रोहित, आपने सबसे पहले बिल्कुल सही जवाब दिया था और इसीलिए आप हमारे बने हैं आज के बॉलीवुड सरताज। तो जल्दी से आंसर बता दीजिए, गोलमाल फ्रेंचाइजी के जो डायरेक्टर हैं वो कौन है?
1: मैम उनका नाम है रोहित शेट्टी।
0: क्या बात है, आपने तो बिल्कुल सही बताया है। रोहित स्क्वायर हो गए हैं यहाँ पर, चूंकि रोहित श्रीवास्तव है और साथ में है रोहित शेट्टी, राइट?
1: हाँ जी मैम,
0: बहुत बहुत मुबारक आपको रोहित, आज तो आपके नाम ने आपको जिता दिया है। हाँ
1: हाँ जी मैम, हाँ जी
0: तो
1: बिल्कुल
0: अच्छा, कैसा लग रहा है बॉलीवुड सरताज बनके?
1: मैम, बढ़िया लग रहा है।
0: बढ़िया लग रहा है। पहले बने हैं कभी?
1: हाँ जी मैम, 6 महीने हो गए कम से कम।
0: 6 महीने हो गए, और 6 महीने से आप लगातार हर बार मैसेजेस करते हैं और देखिए आज फिर से चांस लग गया।
1: हाँ जी बिल्कुल मैम,
0: सच
1: मेहनत
0: आप
1: करने वाले करते रहो, कभी तो नंबर आएगा।
0: बिल्कुल, मेहनत करने वालों की हार नहीं होती, राइट जी? बहुत अच्छा लगा रोहित, आप यूं ही हमारे साथ जुड़े रहिए, एफएम रेनबो सुनते रहिए और ऐसे ही मैसेजेस करते रहिए।
1: थैंक यू मैडम।
0: थैंक यू सो मच। ये तो थे हमारे रोहित श्रीवास्तव दिल्ली से, इनका बिल्कुल सही जवाब आया था। इसके अलावा बहुत सारे लोग हैं जिनके मैसेजेस आए हैं। रोहित शेट्टी सही नाम बताया है, तरुण कोहली ने सूरज कुंड रोड मेरठ से, मेरठ से ही सलीम मलिक का मैसेज है, मेरठ से कान्हा है। इसके अलावा मोहम्मद राशिद ने लिखा है जगतपुरी से, अभिषेक चंडीगढ़ से, नितिका पारेकर ने पुणे से मैसेज किया है, बिल्कुल सही जवाब इन्होंने भी लिखकर भेजा है। इसके अलावा है माफ कीजिए, सुखलाल बाला वेस्ट बंगाल, वेस्ट बंगाल से। इसके अलावा ईशा ने धर्मशाला से लिखा है, बहुत अच्छा प्रोग्राम लग रहा है। हरिनगर नई दिल्ली से लिखा है पूजा और कोमल ने, और बिल्कुल पूजा हमने आपका नाम ऐड किया है, कोमल आपका भी साथ में है। ये कौन है, शंकर ने लिखा है गोवा पंजिम से, उमेश कुमार ने ख्याला से। इसके अलावा एक मैसेज और आया है, और ये अब दोबारा से भी कुछ लिखने वाले हैं, इनका नाम है पंकज अमरावती से, बिल्कुल सही जवाब इन्होंने लिखकर भेजा है, नवी मुंबई से लिखने वाले हैं सलीन। इसके अलावा विष्णु गार्डन से लिखा है किसने, इनका नाम कहाँ है, बब्बू और सोनिया साहनी ने। इसके अलावा धर्म भाटिया जी ने लिखा है कहाँ से, रोहतक से, बिल्कुल इनका सही जवाब है, कीर्ति नगर से है मोहम्मद इम्तियाज, जोहार कैंप फैज शिव विहार दिल्ली से है, गोलमाल फ्रेंचाइजी का सही नाम लिखकर भेजा है इन्होंने, अपना नाम लेकिन नहीं लिखा है। और रोहित शेट्टी बताया है सही नाम, मीरा सिंह ने सिलचर आसाम से। और इसके अलावा भी दोस्तों बहुत सारे मैसेजेस हैं, मोहम्मद फुरकान है मेरठ से, हरियाणा पंचकुला से आदित्य चुटानी, और बहुत सारे नाम हैं, कैसे पढ़े, रिशु कटारिया और बाकियों ने अपने नाम ना, सुदर्शन मुखी, अनिता मुखी हैं साथ में है, माल्यान सरदा मेरठ से, अनिल जैन। तो आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया, लेकिन मैं उम्मीद करती हूँ कि अगले प्रोग्राम यानी कि मेरा वाला सॉन्ग में भी आप मेरे साथ यूं ही जुड़े रहेंगे और अपने चॉइस के गीत मुझे लिखकर भेजेंगे ताकि उन्हें मैं बजाऊं और आपका आज का दिन बनाऊं।

नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं कनकलता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज दोपहर नई दिल्ली में रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। दोनों नेताओं के बीच आपसी हित के मुद्दों पर चर्चा होने की संभावना है। बैठक के दौरान यूक्रेन रूस संघर्ष, पश्चिम एशिया संकट, व्यापारिक संबंध और ऊर्जा सहयोग जैसे मुद्दों पर चर्चा हो सकती है। राष्ट्रपति पुतिन ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में शामिल होने के लिए आज सुबह भारत पहुंचे। प्रधानमंत्री मोदी आज शाम ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजिशकियन के साथ भी बातचीत करेंगे। ईरान के राष्ट्रपति आज दोपहर नई दिल्ली पहुंचेंगे। पश्चिम एशिया में मौजूदा हालात को देखते हुए ये बैठक बेहद महत्वपूर्ण है। दोनों नेताओं के बीच क्षेत्रीय विकास के महत्वपूर्ण मुद्दों पर भी वार्ता होने की संभावना है। प्रधानमंत्री मोदी संयुक्त राष्ट्र के महासचिव अंतोनियो गुतरश से भी मुलाकात करेंगे। दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति सिरिल रामाफोसा और युगांडा के उपराष्ट्रपति जेसिका अलुपो कल से शुरू हो रहे 18वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में शामिल होने के लिए नई दिल्ली पहुंच गए हैं। केंद्रीय मंत्री जयंत सिंह ने हवाई अड्डे पर दोनों नेताओं का स्वागत किया। विदेश मंत्रालय ने बताया है कि भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच रणनीतिक साझेदारी पर आधारित मैत्रीपूर्ण और ऐतिहासिक संबंध हैं। भारत युगांडा संबंधों पर मंत्रालय ने कहा कि दोनों देशों के बीच साझा इतिहास पर आधारित मैत्रीपूर्ण संबंध हैं और द्विपक्षीय तथा बहुपक्षीय क्षेत्रों में साझेदारी लगातार मजबूत हो रही है। इस बीच नाइजीरिया के विदेश मंत्री बियांका ओडोमेगवु ओजुफू और

0: उरुग्वे के विदेश मंत्री मारियो लुबेत्किन भी शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेने के लिए नई दिल्ली पहुंच गए हैं। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने ब्रिक्स देशों से अपील की है कि वे अपनी आर्थिक शक्ति को अपने लोगों के लिए रोजगार, धन और समृद्धि में बदलने के लिए मिलकर काम करें। उन्होंने कहा कि ब्रिक्स देश दुनिया की लगभग आधी आबादी और वैश्विक जीडीपी के करीब 40% हिस्से का प्रतिनिधित्व करते हैं। नई दिल्ली में ब्रिक्स व्यापार मंच 2026 के उद्घाटन सत्र को संबोधित करते हुए श्री गोयल ने ये बात कही। विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर ने कहा कि ब्रिक्स ने अपनी सदस्यता, उद्देश्य और सहयोग की व्यवस्था के मामले में पिछले कुछ वर्षों में काफी विकास किया है।
1: ब्रिक्स के लिए ये वर्ष एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है, क्योंकि हम संस्थागत ब्रिक्स सहयोग के 20 वर्ष पूरे होने का उत्सव मना रहे हैं। इस अवधि में ब्रिक्स ने अपनी सदस्यता, उद्देश्य और सहयोग ढांचे में काफी प्रगति की है। भारत की अध्यक्षता में इस विकास को आगे बढ़ाने का प्रयास जारी है।
0: सम्मेलन के मद्देनजर दिल्ली में आज दोपहर 2 बजे से रात 8:30 बजे तक कई प्रमुख सड़कों पर यातायात में बदलाव और नियंत्रित आवाजाही रहेगी। इस बीच दिल्ली मेट्रो ने स्पष्ट किया है कि अगले आदेश तक सभी मेट्रो स्टेशन खुले रहेंगे और सेवाएं सामान्य रूप से चलती रहेंगी। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने महाराष्ट्र के नांदेड़ में आज हुए सड़क हादसे में लोगों की मौत पर शोक व्यक्त किया है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री राधाकृष्णन ने दुख की इस घड़ी में पीड़ित परिवारों के प्रति संवेदना व्यक्त की और घायलों के जल्द ठीक होने की कामना की। प्रधानमंत्री ने हादसे में जान गंवाने वाले प्रत्येक व्यक्ति के परिजनों को 2-2 लाख रुपए की अनुग्रह राशि देने की घोषणा की है और घायलों को 50-50 हजार रुपए की सहायता दी जाएगी। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने भारत को दुनिया की आर्थिक वृद्धि के लिए महत्वपूर्ण बताया है। ये बयान चालू वित्त वर्ष की पहली तिमाही में भारत की अर्थव्यवस्था की 7.8% की वृद्धि के बाद आया है। पश्चिम एशिया में बढ़ते तनाव के बीच ब्रेंट क्रूड की कीमत आज 4 महीने के उच्चतम स्तर 108.77 डॉलर प्रति बैरल पर पहुंच गई। घरेलू शेयर बाजार के प्रमुख सूचकांक में आज दोपहर के कारोबार में गिरावट दर्ज की गई। ताजा समाचार मिलने तक सेंसेक्स 332 अंक गिरकर 74,571 जबकि निफ्टी 126 अंक गिरकर 23,352 पर रहा। एशिया कप महिला क्रिकेट के दूसरे सेमीफाइनल में आज पाकिस्तान का सामना श्रीलंका से होगा। कल भारत ने बांग्लादेश को हराकर फाइनल में प्रवेश किया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज रेड बाय वल्सा विलियम्स। Prime Minister Narendra Modi has said leaders from around the world are gathering in New Delhi for the 18th BRICS summit beginning tomorrow. In a social media post today, Mr. Modi expressed confidence that the conference will witness positive and meaningful discussions on various issues with the welfare of the world as the guiding objective. The two-day summit, which will be held at Bharat Mandapam, will bring together 11 major emerging and developing economies. World leaders, including Russian President Vladimir Putin, Chinese President Xi Jinping, President of South Africa Cyril Ramaphosa, Iran President Masoud Pezeshkian, and Crown Prince of Abu Dhabi Sheikh Khalid bin Mohammed bin Zayed Al Nahyan, among others, will participate in the summit. Ahead of the BRICS summit, Prime Minister Narendra Modi will hold bilateral talks with Russian President Vladimir Putin in New Delhi this afternoon. The two leaders are expected to discuss a range of issues of mutual interest, the Russia-Ukraine conflict, the situation in West Asia, trade relations and energy cooperation are expected to come up for discussion between the two leaders. President Vladimir Putin arrived in the national capital in the early hours today to attend the BRICS summit. Prime Minister Modi will hold talks with Iranian President Masoud Pezeshkian this evening. The meeting assumes significance in view of the prevailing situation in West Asia. The Prime Minister is also scheduled to meet United Nations Secretary General Antonio Guterres during his engagements in the national capital. External Affairs Minister Dr. S.

0: ਜੀ ਉਹੀ ਮੈਨੂੰ ਘਰੇ ਛੱਡ ਕੇ ਲੈ ਜਾਂਦਾ ਜੀ, ਮੈਂ ਕੋਈ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਵੀ ਜਾਣ ਦੇ ਮੰਜੇ ਤੋਂ ਪਾਸੇ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਜੀ, ਮੇਰਾ ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਕਰੋ ਜੀ। ਹਾਂ ਜੀ
1: ਚਲੋ, ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਸਮੱਸਿਆ ਜਿਹੜਾ ਫਿੰਗਰ ਪ੍ਰਿੰਟ ਵਾਲਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਬੰਦੇ ਦੀ ਉਮਰ ਵੱਧ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਮਰ ਵਧਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਆ ਪ੍ਰਿੰਟ ਹੈ ਇਹ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੇ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਇਹਦੇ ਤੇ। ਜਿਹੜੇ ਓਲਡ ਏਜ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗੇ, ਜਿਹੜੇ ਓਲਡ ਏਜ ਹੈ ਬਜ਼ੁਰਗ ਬੰਦੇ 105 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਕਿੱਥੋਂ ਪਾਲਾਂਗੇ ਅਸੀਂ
2: ਫਿੰਗਰ ਪ੍ਰਿੰਟ? ਡਿਸੇਬਲ ਬੰਦਾ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਪੋਸੀਬਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਸੁਵਿਧਾ ਸੈਂਟਰ ਜਾ ਕੇ ਉਹ ਆਪਣਾ ਫਿੰਗਰ ਪ੍ਰਿੰਟ ਦੇਵੇ।
1: ਬਿਲਕੁਲ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਡਿਟੈਕਟ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ,
2: ਡਿਟੈਕਟ
1: ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਜਦੋਂ ਡਿਟੈਕਟ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਏਜ ਲਿਮਿਟ ਰੱਖ ਦੇਣ
2: ਜੀ,
1: ਕਿ ਜਿਹਦੇ ਫਿੰਗਰ ਪ੍ਰਿੰਟ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ 50 ਸਾਲ ਤੋਂ 55 ਸਾਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਉਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਪਿੰਡ ਦੇ ਕਿਸੇ ਪੰਚ ਸਰਪੰਚ ਦੀ ਸ਼ਨਾਖਤ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹ ਬੰਦੇ ਦਾ ਕੰਟੀਨਿਊ ਰੱਖਣ, ਉਹਦਾ ਰਾਸ਼ਨ ਕੱਢਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ। ਬੰਦਾ ਭੁੱਖ, ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਕਮਾਈ ਕਰਦਾ, ਜੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਮਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ ਬੈਠਾ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਥੋੜਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਹ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰ ਲਾਂਗੇ ਵੀ ਬੰਦਾ ਭੁੱਖ ਨਾਲ ਮਰ ਜੇ
2: ਜੀ?
1: ਇਹ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਇਹਦੇ ਤੇ। ਇਹ ਇਕੱਲੀ ਤੁਹਾਡੀ ਗਹਿਰੀ ਬੁੱਟਰ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਓਵਰਆਲ ਥਰੂ ਆਊਟ ਕੰਟਰੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ,
2: ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ,
1: ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਨਹੀਂ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ,
2: ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ,
1: ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ, ਇਧਰ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ।
2: ਠੀਕ ਹੈ ਵੀਰ ਜੀ, ਆਪਾਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਜੀ, ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ, ਧੰਨਵਾਦ
3: ਜੀ ਸਰ। ਸਵਾਲਾਂ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖਾਂਗੇ, ਪਰ ਇੱਕ ਕੁਝ ਸੰਦੇਸ਼ ਸੁਣ ਲਓ ਜੀ,
2: ਬ੍ਰੇਕ ਲਾ ਲਓ ਜੀ।
4: महंगाई महंगाई, इस महंगाई में सुकून से कौन सो पाएगा?
5: वही जो स्लीपवेल स्टोर से मैट्रेसेस खरीद कर लाएगा, क्योंकि स्लीपवेल में चल रहा है ग्रेट स्लीपवेल फेस्टिवल, जहां आपको मिलेगा फ्लैट 21% से 100% तक का डिस्काउंट। विजिट द नियरेस्ट स्लीपवेल स्टोर टुडे।
4: महंगाई महंगाई, इस महंगाई में सुकून से कौन सो पाएगा?
5: वही जो स्लीप वेल स्टोर से मैट्रेसेस खरीद कर लाएगा, क्योंकि स्लीप वेल में चल रहा है ग्रेट स्लीप वेल फेस्टिवल, जहां आपको मिलेगा फ्लैट 21% से 100% तक का डिस्काउंट। विजिट द नियरेस्ट स्लीप वेल स्टोर टुडे।
6: 10 साल का कोलैबोरेशन सिंजेंटा का लॉयल्टी प्रोग्राम लेके आया है। जोड़ी तमाका, जोड़ी पक्की, इनाम तगड़ा, 1 करोड़ रुपए तो ज्यादा दे इनाम, 2 थार, 6 बाइक, 12 स्कूटी, 1,000+ विनर्स, 2 लीटर एमस्टार टॉप प्लस 1 किलो चेस, यानी 1 लकी ड्रॉ कूपन। 25 सितंबर नू लकी ड्रॉ होगा, आज ही खरीदो। TNC अप्लाई।
4: महंगाई महंगाई, इस महंगाई में सुकून से कौन सो पाएगा?
5: वही जो स्लीप वेल स्टोर से मैट्रेसेस खरीद कर लाएगा, क्योंकि स्लीप वेल में चल रहा है ग्रेट स्लीप वेल फेस्टिवल, जहां आपको मिलेगा फ्लैट 21% से 100% तक का डिस्काउंट। विजिट द नियरेस्ट स्लीप वेल स्टोर टुडे।
4: महंगाई महंगाई, इस महंगाई में सुकून से कौन सो पाएगा?
5: वही जो स्लीप वेल स्टोर से मैट्रेसेस खरीद कर लाएगा, क्योंकि स्लीप वेल में चल रहा है ग्रेट स्लीप वेल फेस्टिवल, जहां आपको मिलेगा फ्लैट 21% से 100% तक का डिस्काउंट। विजिट द नियरेस्ट स्लीप वेल स्टोर टुडे।
7: छाती अते सादियां तकलीफां तो परेशान हो, बड़ियाल हस्पताल बठिंडा लेके आया है छाती दे रोगां दा सफल इलाज। मिलो डॉक्टर आंचल जैन, MBBS, MD, पल्मोनरी मेडिसिन, एक्स एम्स दिल्ली सीनियर रजिस्ट्रार नू। दमा, COPD, खंग, सा चढ़ना अते एलर्जी दा सही अते आधुनिक इलाज। बड़ियाल हस्पताल, नेड़े DAV कॉलेज, BB वाला रोड, बठिंडा। कॉन्टैक्ट 7527011711। बड़ियाल हस्पताल, तुहाडी सेहत दा सच्चा साथी।
4: महंगाई महंगाई, इस महंगाई में सुकून से कौन सो पाएगा?
5: वही जो स्लीप वेल स्टोर से मैट्रेसेस खरीद कर लाएगा, क्योंकि स्लीप वेल में चल रहा है ग्रेट स्लीप वेल फेस्टिवल, जहां आपको मिलेगा फ्लैट 21% से 100% तक का डिस्काउंट। विजिट द नियरेस्ट स्लीप वेल स्टोर टुडे।
4: महंगाई महंगाई, इस महंगाई में सुकून से कौन सो पाएगा?
5: वही जो स्लीप वेल स्टोर से मैट्रेसेस खरीद कर लाएगा, क्योंकि स्लीप वेल में चल रहा है ग्रेट स्लीप वेल फेस्टिवल, जहां आपको मिलेगा फ्लैट 21% से 100% तक का डिस्काउंट। विजिट द नियरेस्ट स्लीप वेल स्टोर टुडे।
6: 10 साल का कोलैबोरेशन सिंजेंटा का लॉयल्टी प्रोग्राम लेके आया है। जोड़ी तमाका, जोड़ी पक्की, इनाम तगड़ा, 1 करोड़ रुपए तो ज्यादा दे इनाम, 2 थार, 6 बाइक, 12 स्कूटी, 1,000+ विनर्स, 2 लीटर एमस्टार टॉप प्लस 1 किलो चेस, यानी 1 लकी ड्रॉ कूपन। 25 सितंबर नू लकी ड्रॉ होगा, आज ही खरीदो। TNC अप्लाई।
4: महंगाई महंगाई, इस महंगाई में सुकून से कौन सो पाएगा?
5: वही जो स्लीप वेल स्टोर से मैट्रेसेस खरीद कर लाएगा, क्योंकि स्लीप वेल में चल रहा है ग्रेट स्लीप वेल फेस्टिवल,

01164431 नंबर डायल करके स्रोते प्रोग्राम च शिरकत कर सकते ने ते सुन सकते ने अपने पसंदीदा हिंदी फिल्मी गीत। करते हैं प्रोग्राम की शुरुआत इस खूबसूरत जे गीत दे नाल।

0: महंगाई महंगाई, इस महंगाई में सुकून से कौन सो पाएगा?
1: वही जो स्लीप वेल स्टोर से मैट्रेसेस खरीद कर लाएगा, क्योंकि स्लीप वेल में चल रहा है ग्रेट स्लीप वेल फेस्टिवल, जहां आपको मिलेगा फ्लैट 21% से 100% तक का डिस्काउंट। विजिट द नियरेस्ट स्लीप वेल स्टोर टुडे।

0: महंगाई महंगाई, इस महंगाई में सुकून से कौन सो पाएगा?
1: वही जो स्लीप वेल स्टोर से मैट्रेसेस खरीद कर लाएगा, क्योंकि स्लीप वेल में चल रहा है ग्रेट स्लीप वेल फेस्टिवल, जहां आपको मिलेगा फ्लैट 21% से 100% तक का डिस्काउंट। विजिट द नियरेस्ट स्लीप वेल स्टोर टुडे।
0: महंगाई महंगाई, इस महंगाई में सुकून से कौन सो पाएगा?
1: वही जो स्लीप वेल स्टोर से मैट्रेसेस खरीद कर लाएगा, क्योंकि स्लीप वेल में चल रहा है ग्रेट स्लीप वेल फेस्टिवल, जहां आपको मिलेगा फ्लैट 21% से 100% तक का डिस्काउंट। विजिट द नियरेस्ट स्लीप वेल स्टोर टुडे।
2: दोस्तों, कदे कदे एक नाम इंसान दी पूरी जिंदगी दी कहानी लिख दिंदा है। अजिही एक कहानी तुसी सुनोगे प्रोग्राम हड बीतियां जग बीतियां तहत राजियां की।

0: मिति 11 सितंबर दिन शुक्रवार समा दोपहर 12:30 बजे प्रोग्राम दे वाचक आकांक्षा अरोड़ा निर्माता निर्देशक श्री बलजीत शर्मा
1: महंगाई महंगाई इस महंगाई में सुकून से कौन सो पाएगा
2: वही जो स्लीप वेल स्टोर से मैट्रेसेस खरीद कर लाएगा क्योंकि स्लीप वेल में चल रहा है ग्रेट स्लीप वेल फेस्टिवल जहां आपको मिलेगा फ्लैट 21% से 100% तक का डिस्काउंट विजिट द नियरेस्ट स्लीप वेल स्टोर टुडे
1: महंगाई महंगाई इस महंगाई में सुकून से कौन सो पाएगा
2: वही जो स्लीप वेल स्टोर से मैट्रेसेस खरीद कर लाएगा क्योंकि स्लीप वेल में चल रहा है ग्रेट स्लीप वेल फेस्टिवल जहां आपको मिलेगा फ्लैट 21% से 100% तक का डिस्काउंट विजिट द नियरेस्ट स्लीप वेल स्टोर टुडे
3: प्रोग्राम पैगाम दी रिकॉर्डिंग संबंधी सूचना मिति 13 सितंबर सवेरे सजरी सवेर दे तहत चलन वाले प्रोग्राम दी रिकॉर्डिंग आज शाम 4 बजे की जाएगी सो जेकर तुसी भी चाहते हो कि इस प्रोग्राम दे विच तुहाड़े पैगाम शामिल होण तां तुसी सानू अपने पैगाम 77173 73146 नंबर दे उपर अज शाम 4 बजे तो पहला भेज सकते हो अपने पैगाम शामिल करवाउण दे लई नंबर एक बार फिर नोट कर लो 77173 73146 0-164-242-3031 नंबर डायल हो चुके हैं जी
4: हेलो
5: हेलो मैडम
4: सत श्रीकाल जी स्वागत है की नाम ते कित्थों गल कर रहे हो
5: मैं मेजर सिंह बोल रहा हूं पिंड बलाड सिंह तो
4: जी गीत केड़ा सुनोगे
5: गीत मैडम वेता के मर्जी है
4: जी शुक्रिया जी कॉल करने दे लिए
5: धन्यवाद
4: जी

इस गीत दे नाल ही मैनू अमरजीत मान नू प्रोग्राम टैलीफोन मिलाओ जी खत्म करने दिओ आग्या नमस्कार। इस प्रोग्राम च सानू तकनीकी साथ समूह टैक्नीकल स्टाफ वालों मिलिया। प्रोग्राम दे निर्माता श्री बलजीत शर्मा। आकाशवाणी FM बठिंडा FM बैंड 101.1 मेगाहर्ट्ज़ स्टूडियो की घड़ी के समय 1:59 ते 23 सैकेंड। 2 बजे तुसी सुनोगे अंग्रेजी विच खबरां दा बुलेटिन ते 2:15 ते हिंदी विच खबरां दा बुलेटिन आकाशवाणी दिल्ली तों। खबरां दे लई कुछ पल करो इंतजार।

0: The Punpun River at Shripalpur in Patna is receding by around 2 centimeters every hour, bringing relief to people in low-lying areas. Nidhishree for Akashvani News, Patna.
1: In sports, in the Junior Asia Cup hockey, the Indian men's team will take on Malaysia in the semi-final at Mochi in China this afternoon. The match will begin at 2:15 p.m. Indian Standard Time. In US Open tennis, defending champion Aryna Sabalenka and second seed Elena Rybakina have set up women's singles title clash. Second seed Elena Rybakina defeated fourth seeded Coco Gauff in the second semifinal in New York. And now before we end the bulletin, the headlines once again. Prime Minister Narendra Modi expresses hope for positive discussions with aspiration for global welfare as world leaders gather in New Delhi for BRICS summit commencing tomorrow. Prime Minister Modi to hold bilateral talks with Russian President Vladimir Putin and Iranian President Masoud Pezeshkian today. BRICS Business Forum begins in national capital. External Affairs Minister Dr. S. Jaishankar calls for greater resilience, sustainability and cooperation amid rising global uncertainty as BRICS marks 20 years. India reiterates unwavering resolve to combat terrorism on 25th anniversary of horrific 9/11 attacks in the US. In men's junior Asia Cup hockey, India to take on Malaysia in semi-final at Mochi in China this afternoon. With that, we end the midday news.
2: नमस्कार आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं कनकलता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उम्मीद जताई कि ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में वैश्विक कल्याण की आकांक्षाओं को ध्यान में रखते हुए सकारात्मक चर्चाएं होंगी। विश्व के नेता कल से शुरू होने वाले सम्मेलन में भाग लेने के लिए नई दिल्ली पहुंच रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी आज रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियान के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। ब्रिक्स व्यापार मंच की बैठक नई दिल्ली में शुरू। विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर ने बढ़ती वैश्विक अनिश्चितताओं के बीच अधिक लचीलेपन, स्थिरता और सहयोग का आह्वान किया। अमेरिका में 11 सितंबर के आतंकी हमले की 25वीं बरसी पर भारत ने आतंकवाद से लड़ने के अपने अटूट संकल्प को दोहराया। चीन में जूनियर एशिया कप हॉकी के सेमीफाइनल में आज भारत का मुकाबला मलेशिया से होगा और अमेरिकी ओपन टेनिस महिला सिंगल्स के खिताबी मुकाबले में आर्यना सबालिंका का मुकाबला एलेना रायबकीना से होगा। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि विश्व के नेता कल से शुरू होने वाले 18वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के लिए नई दिल्ली में एकत्र हो रहे हैं। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने विश्वास व्यक्त किया कि सम्मेलन में विभिन्न मुद्दों पर सकारात्मक और सार्थक चर्चा होगी और इसका मार्गदर्शक उद्देश्य विश्व कल्याण होगा। एक रिपोर्ट।
3: भारत मंडपम में आयोजित होने वाले 2 दिवसीय शिखर सम्मेलन में ब्राजील, चीन, मिस्र, इथियोपिया, इंडोनेशिया, भारत, ईरान, रूस, सऊदी अरब, दक्षिण अफ्रीका और संयुक्त अरब अमीरात सहित 11 प्रमुख उभरती और विकासशील अर्थव्यवस्थाएं एक साथ आएंगी। इस वर्ष ब्रिक्स शिखर सम्मेलन का विषय है लचीलापन, नवाचार, सहयोग और स्थिरता के लिए निर्माण। शिखर सम्मेलन में रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन, चीन के राष्ट्रपति शी चिनफिंग, दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति सिरिल रामाफोसा, मिस्र के राष्ट्रपति अब्दुल फत्ताह असीसी, इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्राबोवो सुबियांतो, ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियान और अबुधाबी के युवराज शेख खालिद बिन मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान सहित विश्व के कई बड़े नेता भाग लेंगे। इथियोपिया के प्रधानमंत्री आबी अहमद अली भी इसमें शामिल होंगे। ब्राजील का प्रतिनिधित्व विदेश मंत्री माउरो वीएइरा करेंगे। सऊदी अरब के विदेश मंत्री युवराज फैसल बिन फरहान अल सऊद भी शिखर सम्मेलन में शामिल होंगे। ब्रिक्स सदस्य देशों के नेता भारत मंडपम में भारत इनोवेट्स प्रदर्शनी भी देखेंगे। सुपर्णा की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं मुकेश कुमार बल।
2: प्रधानमंत्री मोदी आज दोपहर नई दिल्ली में रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। दोनों नेताओं के बीच आपसी हित के मुद्दों पर चर्चा होने की संभावना है। एक रिपोर्ट।
4: बैठक के दौरान यूक्रेन रूस संघर्ष, पश्चिम एशिया संकट, व्यापारिक संबंध और ऊर्जा सहयोग जैसे मुद्दों पर चर्चा हो सकती है। राष्ट्रपति पुतिन ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में शामिल होने के लिए आज सुबह भारत पहुंचे। प्रधानमंत्री मोदी आज शाम ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियान से भी बातचीत करेंगे। पश्चिम एशिया में मौजूदा हालात को देखते हुए ये बैठक बेहद महत्वपूर्ण है। प्रधानमंत्री मोदी संयुक्त राष्ट्र के महासचिव अंतोनियो गुतरश से भी मुलाकात करेंगे।

0: ये अंकित की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से शक्ति सिंह।
1: दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति सिरिल रामाफोसा और युगांडा की उपराष्ट्रपति जेसिका अलुपो भी सम्मेलन में शामिल होने के लिए नई दिल्ली पहुंच गए हैं। केंद्रीय मंत्री जयंत सिंह ने हवाई अड्डे पर दोनों नेताओं का स्वागत किया।
2: विदेश मंत्रालय ने बताया है कि भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच रणनीतिक साझेदारी पर आधारित मैत्रीपूर्ण और ऐतिहासिक संबंध हैं। भारत युगांडा संबंधों पर मंत्रालय ने कहा कि दोनों देशों के बीच साझा इतिहास पर आधारित मैत्रीपूर्ण संबंध हैं और द्विपक्षीय तथा बहुपक्षीय क्षेत्रों में साझेदारी लगातार मजबूत हो रही है। इस बीच नाइजीरिया की विदेश मंत्री बियांका ओडुमेगवु ओजुकवु और उरुग्वे के विदेश मंत्री मारियो लुबिटकिन भी शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेने के लिए नई दिल्ली पहुंच गए हैं। सुपर्णा की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से जागृति शर्मा।
1: वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने आज नई दिल्ली में ब्रिक्स शिखर सम्मेलन से पहले रूस के उप प्रधानमंत्री डेनिस मांतुरोव से मुलाकात की। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री सीतारामन ने कहा कि दोनों नेताओं ने आपसी हित के मुद्दों और व्यापार तथा निवेश संबंधों को मजबूत करने पर चर्चा की। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने आज नई दिल्ली में ब्रिक्स शिखर सम्मेलन से पहले ब्राजील के विदेश मंत्री माउरो वेइरा से का स्वागत किया। सोशल मीडिया पोस्ट में डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि दोनों नेताओं ने द्विपक्षीय संबंधों पर चर्चा की। इस दौरान व्यापार और निवेश, रक्षा, ऊर्जा, कृषि और अंतरिक्ष क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने के तरीकों पर विचार विमर्श हुआ। डॉक्टर जयशंकर ने उरुग्वे के विदेश मंत्री मारियो लुबिटकिन से भी मुलाकात की। डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि दोनों नेताओं के बीच व्यापार, संपर्क और संस्कृति सहित द्विपक्षीय संबंधों को आगे बढ़ाने पर सार्थक बातचीत हुई। ये समाचार हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप और हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in पर भी उपलब्ध हैं।
3: चलते फिरते खबरों से जुड़े रहिए। expert@airnewshindi को फॉलो करें और PB शब्द पर आकाशवाणी समाचार सुने।
1: दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने कहा है कि आज हर देश की आर्थिक रणनीति में आत्मनिर्भरता और संकट से उबरने की क्षमता महत्वपूर्ण हो गई है। साथ ही मजबूत सहयोग और साझेदारी के जरिए सतत विकास को बढ़ावा देना भी जरूरी है। नई दिल्ली में आज ब्रिक्स व्यापार मंच को संबोधित करते हुए डॉक्टर जयशंकर ने ये बात कही।
4: For BRICS particularly, higher economic activity.
5: विशेष रूप से ब्रिक्स के लिए उच्च आर्थिक गतिविधि और अधिक आर्थिक सुरक्षा का अर्थ है अधिक आत्मनिर्भरता। इसका उद्देश्य व्यवधानों को झेलने की हमारी क्षमता को मजबूत करना है, साथ ही आपस में जुड़े रहना और प्रतिस्पर्धी बने रहना भी है। इसके लिए वास्तविक बाजार प्रथाओं, विश्वसनीय लॉजिस्टिक्स, पूर्वानुमानित व्यावसायिक माहौल, विविध व्यावसायिक संबंधों तथा पारदर्शी व्यापार और निवेश की आवश्यकता
4: and transparent trade and investment.
1: डॉक्टर एस जयशंकर ने कहा कि इस वर्ष भारत की अध्यक्षता में ब्रिक्स के विषय वस्तु लचीलापन, नवाचार, सहयोग और स्थिरता के लिए निर्माण इस विकास को आगे बढ़ाने का प्रयास है। उन्होंने कहा कि वर्ष ब्रिक्स के लिए एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है क्योंकि समूह संस्थागत सहयोग के 20 वर्ष पूरे कर रहा है।
4: This year is a milestone.
5: ब्रिक्स के लिए ये वर्ष एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है क्योंकि हम संस्थागत ब्रिक्स सहयोग के 20 वर्ष पूरे होने का उत्सव मना रहे हैं। इस अवधि में ब्रिक्स ने अपनी सदस्यता, उद्देश्य और सहयोग ढांचे में काफी प्रगति की है। भारत की अध्यक्षता में इस विकास को आगे बढ़ाने का प्रयास जारी है।
4: Has sought to carry this evolution forward through the theme.
1: मंच के उद्घाटन सत्र में वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने ब्रिक्स देशों से अपनी आर्थिक शक्ति को लोगों के लिए रोजगार, संपदा और समृद्धि में बदलने के लिए मिलकर काम करने की अपील की।
6: ब्रिक्स संगठन आज वैश्विक व्यापार के लगभग एक चौथाई हिस्से का प्रतिनिधित्व करता है और भारत इसका एक महत्वपूर्ण स्तंभ है। भारत में निर्मित अभियांत्रिकी में प्रयोग होने वाले साजो सामान और इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों में भारत का निर्यात सर्वाधिक है। भारत को दुनिया की फार्मेसी के रूप में भी जाना जाता है। हम ब्रिक्स को इन और अन्य उत्पादों के लिए एक महत्वपूर्ण बाजार के रूप में देखते हैं जिन्हें भारत एक विश्वसनीय साझेदार के रूप में दुनिया तक ले जाना चाहता है।
4: Take to the world as a trusted partner.
1: वाणिज्य और उद्योग राज्य मंत्री जितेन प्रसाद ने कहा कि मंच की सफलता का आकलन अर्थव्यवस्थाओं के आकार से नहीं बल्कि ठोस परिणामों से होना चाहिए।

0: ब्रिक्स संगठन वैश्विक अर्थव्यवस्था में एक बड़ी शक्ति के रूप में लगातार उभर रहा है। हमारे संवाददाता की ये रिपोर्ट।
1: ब्रिक्स समूह में शामिल देश दुनिया की 49% से अधिक आबादी, वैश्विक सकल घरेलू उत्पाद के करीब 40% और लगभग 26% वैश्विक व्यापार का प्रतिनिधित्व करते हैं। ब्रिक्स देश एक दूसरे को लगभग 1,10,000 करोड़ डॉलर का सामान निर्यात करते हैं। भारत का ब्रिक्स देशों के साथ कुल वस्तु व्यापार 2020-21 में 203.1 अरब डॉलर से बढ़कर 2025-26 में 417.5 अरब डॉलर हो गया है। अनुपम के साथ अक्षित कुमार वैद्यान, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: ब्रिक्स देशों के वित्त मंत्रियों और केंद्रीय बैंक के गवर्नरों ने शुल्क और गैर शुल्क बाधाओं सहित एकतरफा व्यापार और वित्तीय उपाय लागू किए जाने पर गंभीर चिंता जताई है। उन्होंने कहा कि इससे व्यापार प्रभावित होता है और ये विश्व व्यापार संगठन के नियमों के अनुरूप नहीं है। भारत की ब्रिक्स अध्यक्षता में मुंबई में कल ब्रिक्स वित्त मंत्रियों और केंद्रीय बैंक गवर्नरों की अंतिम बैठक के बाद जारी संयुक्त वक्तव्य में ये बात कही गई। ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के मद्देनजर दिल्ली में आज दोपहर 2 बजे से रात 8:30 बजे तक कई प्रमुख सड़कों पर यातायात में बदलाव और नियंत्रित आवाजाही रहेगी। इस बीच दिल्ली मेट्रो ने स्पष्ट किया है कि अगले आदेश तक सभी मेट्रो स्टेशन खुले रहेंगे और सेवाएं सामान्य रूप से चलती रहेंगी। दिल्ली मेट्रो ने आज बताया है कि ब्रिक्स सम्मेलन के कारण रविवार को सभी लाइनों पर मेट्रो सेवाएं सुबह 6 बजे शुरू हो जाएंगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि आतंकवाद का खतरा लगातार बदल रहा है, लेकिन भारत का संकल्प इसके सभी रूपों के खिलाफ अडिग है। अमेरिका में 11 सितंबर के आतंकवादी हमले की 25वीं बरसी पर सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि आतंकवाद ने दुनिया भर में अनगिनत लोगों की जान ली है। उन्होंने कहा कि सीमापार आतंकवाद से प्रभावित भारत दशकों से इसके खिलाफ लड़ाई में आगे रहा है। प्रधानमंत्री ने हमलों के पीड़ितों को श्रद्धांजलि दी और उनके परिवारों के प्रति एकजुटता व्यक्त की। उन्होंने कहा कि भारत आतंकवाद के खिलाफ सभी प्रयासों में साथ खड़ा है। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने आज मुंबई में फास्टैग पोर्टेबिलिटी के लिए वन टैग सुविधा का शुभारंभ किया। इसके अंतर्गत वाहन मालिक अपने मौजूदा फास्टैग को राजमार्ग यात्रा ऐप द्वारा नए बैंक खाते से जोड़ सकते हैं। इस अवसर पर श्री गडकरी ने कहा कि सरकार का लक्ष्य चालू वित्त वर्ष के अंत तक टोल प्लाजा पर प्रतीक्षा समय को 10 सेकंड से कम करना है। प्रवर्तन निदेशालय धोखाधड़ी या अनियमित ऋण के कथित मामलों की जांच के सिलसिले में कोलकाता, चेन्नई, बंगलुरु और हैदराबाद में तलाश अभियान चला रहा है। निदेशालय ओडिशा के एआरएसएस ग्रुप के आयोजक, निदेशक, परिवार के सदस्यों और उनसे जुड़ी कंपनियों से संबंधित स्थानों पर कार्रवाई कर रहा है। बिहार में बाढ़ की स्थिति गंभीर बनी हुई है। राज्य आपदा प्रबंधन विभाग के अनुसार राज्य के 14 जिलों में 44 लाख से अधिक लोग प्रभावित हैं। हमारे संवाददाता ने बताया है कि प्रभावित क्षेत्र में राहत कार्य लगातार जारी है।
2: बाढ़ प्रभावित इलाकों में 1,046 सामुदायिक रसोई केंद्र चलाए जा रहे हैं। 1,942 नावों का परिचालन किया जा रहा है। वहीं 812 चिकित्सा शिविर लगाए गए हैं। जल संसाधन विभाग के अनुसार पिछले 24 घंटों में प्रमुख नदियों के जलस्तर में कमी आई है। हालांकि अब भी 8 नदियां खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। गंगा का जलस्तर पटना, मुंगेर, भागलपुर और कहलगांव में, जबकि कोसी का जलस्तर खगड़िया के बलतारा और कुर्सेला में खतरे के निशान से ऊपर है। पटना के पालपुर में पुनपुन नदी का जलस्तर हर घंटे करीब 2 सेंटीमीटर घट रहा है। आकाशवाणी समाचार के लिए पटना से निधिश्री।
0: मौसम विभाग ने छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश के तटीय भाग और ओडिशा में आज मूसलाधार बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। विभाग ने अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, झारखंड, केरला, माहे, मध्य प्रदेश, तेलंगाना, उत्तराखंड, विदर्भ, पश्चिम बंगाल, सिक्किम और गुजरात में भी अगले 2 दिन तक तेज बारिश की संभावना व्यक्त की है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।
3: आपको हर खबर से रखें अपडेट, expert@AIRNews हिंदी और पब्लिक पर @AIRNews अलर्ट्स को फॉलो करें।
0: ये आकाशवाणी है। अमरीकी ओपन टेनिस में दूसरे महिला सिंगल्स के दूसरे सेमीफाइनल में एलेना रायबकीना ने कोको गॉफ को हराकर फाइनल में जगह बना ली है। अब खिताबी मुकाबले में कजाकिस्तान की रायबकीना का मुकाबला मौजूदा चैंपियन और आरेना सबालेंका से होगा। इससे पहले बेलारूस की आरेना सबालेंका ने पहले सेमीफाइनल में अमरीका की जेसिका पेगुला को हराकर फाइनल में प्रवेश किया।

0: जूनियर एशिया कप हॉकी के सेमीफाइनल में आज भारतीय पुरुष टीम और मलेशिया का मैच जारी है। दूसरे सेमीफाइनल में दक्षिण कोरिया का सामना पाकिस्तान से होगा। पश्चिम एशिया में बढ़ते तनाव के बीच ब्रेंट क्रूड की कीमत आज 4 महीने के उच्चतम स्तर 108.77 डॉलर प्रति बैरल पर पहुंच गई। घरेलू शेयर बाजार के प्रमुख सूचकांक में आज दोपहर के कारोबार में गिरावट दर्ज की गई। ताजा समाचार मिलने तक सेंसेक्स 363 अंक गिरकर 74,540 जबकि निफ्टी 163 अंक गिरकर 23,315 पर था। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उम्मीद जताई कि ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में वैश्विक कल्याण की आकांक्षाओं को ध्यान में रखते हुए सकारात्मक चर्चाएं होंगी। विश्व के नेता कल से शुरू होने वाले सम्मेलन में भाग लेने के लिए नई दिल्ली पहुंच रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी आज रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजिशकियन के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। ब्रिक्स व्यापार मंच की बैठक नई दिल्ली में शुरू। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने बढ़ती वैश्विक अनिश्चितता के बीच अधिक लचीलेपन, स्थिरता और सहयोग का आह्वान किया। अमेरिका में 11 सितंबर के आतंकी हमले की 25वीं बरसी पर भारत ने आतंकवाद से लड़ने के अपने अटूट संकल्प को दोहराया। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: हुणे तुसीं सुन रहे सी हिंदी विच खबरां दा बुलेटिन आकाशवाणी दिल्ली तों। ਤੁਸੀਂ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹੋ ਆਕਾਸ਼ਵਾਣੀ ਐਫ ਐਮ ਬਠਿੰਡਾ ਦੇ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਸਟੂਡੀਓ ਦੀ ਘੜੀ ਤੇ ਸਮਾਂ 2:24 ਤੇ ਹੁਣ ਪੇਸ਼ ਹੈ ਐਨ ਸੀ ਈ ਆਰ ਟੀ ਵੱਲੋਂ ਸਪੋਂਸਰਡ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਉਮੰਗ। ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣੋਗੇ ਭਾਗ 1370।

0: हो जाए सब दंग।
1: CIET प्रस्तुत करता है
2: उमंग उमंग उमंग उमंग।
3: आप सभी श्रोताओं का एक बार फिर से स्वागत है आज के उमंग कार्यक्रम में। विमलेश का नमस्कार। नागर कोहरा जिला राजनांदगांव छत्तीसगढ़ से बबलू साहू, जामुन देवी साहू, बेबी आराध्या साहू जी ने सुविचार भेजा है। वो लिखते हैं, दांत चाहे कितनी भी बार जीभ को काटें, फिर भी वे दोनों साथ रहते हैं और साथ काम करते हैं। यही क्षमाशीलता और भाईचारे की भावना है। धन्यवाद आप सबको इस सुंदर विचार के लिए। और अब सुनते हैं संदेश भेजने वाले श्रोताओं के नाम। बिलाईगढ़ छत्तीसगढ़ से रोशनलाल देवांगन, कौशल्या देवांगन, हेमलता देवांगन और डिम्पल देवांगन। ग्राम जसवाड़ी जिला खंडवा मध्य प्रदेश से दुर्गेश नागनपुरे, राधेश्याम नागनपुरे, वंदना, भावना, बिंदु, गोलू, कुसुमबाई और सूरज ढाक से। अयोध्या धाम उत्तर प्रदेश से राजा बाबू शर्मा, राम बाबू शर्मा, राजबाबू शर्मा, सचिन शर्मा, शैलेन्द्र शर्मा, सौरभ शर्मा, सोनल शर्मा, साक्षी शर्मा, सिमरन शर्मा और सोनाली शर्मा। पुराना तालाब डुमराव से वलीउल्ला अंसारी और पोटियाकला दुर्ग से संजय कुमार साहू जी। सभी श्रोताओं को आभार खूबसूरत संदेश भेजने के लिए। श्रोताओं, प्रेरक प्रसंगों के सप्ताह के अंतिम दिन हम लेकर आ रहे हैं एक और अद्भुत प्रेरक प्रसंग। आज हम जानेंगे एक ऐसे महान विद्वान और शिक्षाविद के बारे में जिसने गरीबी को अपनी कमजोरी नहीं बनने दिया। इस महान समाज सुधारक और विद्वान को इतिहास ईश्वर चंद्र विद्यासागर के नाम से बड़े सम्मान के साथ याद करता है। पहले जानते हैं कैसा था उनका बचपन। जरा सोचिए श्रोताओं, एक बालक पढ़ना चाहता है लेकिन परिवार की आर्थिक स्थिति बड़ी दयनीय है। उसके घर में न पर्याप्त रोशनी है, न पढ़ने की सुविधाएं हैं और न ही कोई आरामदायक वातावरण। तो फिर प्रश्न ये उठता है कि वो पढ़ते कैसे थे। कहा जाता है कि वो कई बार सड़क पर लगे गैस के लैंप की रोशनी में बैठकर पढ़ाई करते थे, जो आज हम सोच भी नहीं सकते कि कोई विद्यार्थी सड़क की रोशनी में बैठकर घंटों पढ़ाई कर लेगा। श्रोताओं, उस युवक के मन में एक सपना था, ज्ञान प्राप्त करना। उनके पिता ठाकुरदास बंदोपाध्याय बहुत कम आय पर काम करते थे। परिवार के पास बहुत अधिक साधन नहीं थे। ईश्वर चंद्र को बचपन से ही समझ में आ गया था कि यदि उन्हें आगे बढ़ना है तो अपनी परिस्थितियों से शिकायत नहीं बल्कि संघर्ष करना होगा। उनके सामने दो रास्ते थे, या तो परिस्थितियों को दोष दें या मेहनत करें। उन्होंने दूसरा रास्ता चुना।

0: पढ़ते रहे, संस्कृत का अध्ययन करते रहे, लगातार मेहनत की। उनकी प्रतिभा इतनी असाधारण थी कि आगे चलकर उन्हें विद्यासागर की उपाधि मिली, अर्थात विद्या का सागर। ये जानना रोचक होगा कि उनका मूल नाम ईश्वर चंद्र बंदोपाध्याय था, लेकिन बाद में सम्मान के साथ उन्हें विद्यासागर कहा जाने लगा। एक सड़क के लैंप के नीचे पढ़ने वाला बालक विद्यासागर बन गया। और सबसे अधिक प्रेरित करने वाली बात, उन्होंने अपनी शिक्षा को केवल अपने लिए इस्तेमाल नहीं किया, लेकिन अपने ज्ञान का इस्तेमाल उन्होंने समाज सुधार और महिलाओं की शिक्षा को प्रोत्साहित करने के लिए किया। आइए श्रोताओं, जरा विचार करें, इस कहानी की सबसे बड़ी सीख क्या हो सकती है? मेरी नज़र में तीन महत्वपूर्ण बातें हैं। पहली बात, सुविधाओं की कमी को बहाना मत बनाइए। दूसरी, लगातार मेहनत कीजिए। और तीसरी, सफल होने के बाद दूसरों को आगे बढ़ाने में मदद कीजिए। देखिए, आज हमारे पास मोबाइल है, इंटरनेट है, ऑनलाइन पुस्तकालय हैं, यूट्यूब पर हजारों शैक्षिक वीडियो हैं और पढ़ने के लिए अनेक साधन हैं। मैं तो कहूंगी कि आज हमारे पास जितनी सुविधाएं हैं उतनी पहले शायद कभी नहीं थी। फिर भी हम कहते हैं मेरे पास समय नहीं है, मेरे पास सुविधा नहीं है, मेरे पास वातावरण नहीं है, इत्यादि इत्यादि। ईश्वर चंद्र विद्यासागर का व्यक्तित्व तो हमें प्रेरणा देता है कि कभी कभी साधन कम हो सकते हैं, लेकिन संकल्प बड़ा हो सकता है। तो श्रोताओ, हमारा आज का प्रेरक प्रसंग यहीं पर समाप्त होता है। अब आज का प्रश्न आज की ही जानकारी से। प्रश्न है, ईश्वर चंद्र विद्यासागर जी के पिता का नाम क्या था? प्रश्न एक बार फिर से सुन लीजिए, ईश्वर चंद्र विद्यासागर जी के पिता का नाम क्या था? आप 8800440559 पर अपने उत्तर हमें भेज सकते हैं। हमारी ईमेल का पता है audio@cit.nic.in। और हाँ, ताज़ा जानकारी के लिए आप इंस्टा, फेसबुक, लिंक्डइन और एक्स पर भी आप CIT NCERT को लगातार फॉलो कीजिए। NCERT की पाठ्य पुस्तकों को डाउनलोड करने के लिए किसी भी सर्च इंजन में जाकर टाइप कीजिए NCERT Books PDF। और NCERT की पाठ्य पुस्तकों को ध्वनि रूप में सुनने या हमारे शैक्षिक कार्यक्रमों को सुनने के लिए आप NCERT ऑफिशियल यूट्यूब को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। और अब सुनते हैं आज के शैक्षिक कार्यक्रम। हमारा पहला कार्यक्रम है शो ऑफ क्लाउड्स। कक्षा 2 की अंग्रेजी की पाठ्य पुस्तक की एक कविता पर आधारित इस कार्यक्रम में एक बच्ची के बारे में बताया गया है कि जब वो आकाश में बादलों को देखती है तो उनमें उसे सुंदर सुंदर छवियां नजर आती हैं। कार्यक्रम प्रोत्साहित करता है कि बच्चे कल्पनाशील बने।
1: हेलो चिल्ड्रन, हाउ आर यू?
2: I am good, sir.
1: Fine, good. Okay, so tell me, what do you like most?
2: I like playing, sir.
3: I like painting, sir.
1: Very good. Anyone else?
4: Sir, I like singing.
5: I like playing with my pets.
1: Oh, that's great. Now tell me, do you like looking at the beautiful flowers in the garden?
6: Yes, sir.
7: We like.
1: Lovely butterflies?
6: Yes, sir.
1: And lovely, colorful, chirping birds.
6: Yes, sir. We like it.
1: That's very nice, children.
3: Sir, I go to the park with my parents on holidays.
1: Okay. It's always wonderful to see the beautiful nature, isn't it?
6: Yes, sir.
1: The rivers, the mountains, and the green trees.
6: Yes, sir.
1: Okay. So let me tell you the story of a sweet child like you.
6: Like us?
1: Would you like to listen?
6: Yes, sir.
3: We love to listen the story.
1: To know what the child did, you have to listen to a beautiful poem. After listening to the poem, you will know what the child did. Okay?
6: Okay, sir.
1: Very good. Now I am going to read this poem. You have to repeat after me, okay?
6: Okay, sir.
8: We love to recite it.
1: As I lie on my back. Looking up at the sky. I see a big white bear. Looking down at me. As I lie on my back. Looking up at the sky. I see a ship sailing. On a white sea.

0: टकरा जाऊंगी। एक छोटा सा बल भी तो है, पर अगर ना चले तो सब कुछ अंधेरा हो जाता है।
1: वाहन चलाते समय टेल लाइट और ब्रेक लाइट का ठीक से काम करना जरूरी है, ताकि पीछे आने वालों को समय पर संकेत मिल सके।
2: आइए अब सुनते हैं कार्यक्रम होमी व्यारावाला। इस कार्यक्रम में भारत की पहली महिला फोटो पत्रकार होमी व्यारावाला के जीवन और एक सफल महिला पत्रकार के रूप में उनकी भूमिका और योगदान के बारे में बताया गया है।

0: अरे आज तो यहाँ बहुत भीड़ जमा है। अरे दलाई लामा है सच में।
1: वाह भाई वाह, मैं तो इसे अहोभागी कहूँगा कि आज हम हिज होलीनेस दलाई लामा की साक्षात दर्शन करेंगे।
2: सही कहा भाई, मेरी भी बड़ी इच्छा थी उन्हें देखने की।
1: हाँ। अरे देखो देखो उनका कारवां बिल्कुल निकट आ पहुंचा।
2: ओफो, इस तरफ तो मीडिया वालों की बड़ी भीड़ है।
1: अरे कोई बात नहीं, आओ ना कोशिश करते हैं। अरे ये मैं क्या देख रहा हूँ, पत्रकारों की भीड़ में साड़ी पहने हुए एक लड़की, अब कहीं मेरी आंखें धोखा तो नहीं खा रही हैं?
2: हाँ भाई, मैं भी ऐसे ही देख रहा हूँ भाई, ये तो बड़ी अजीब बात है।
1: हाँ,
2: और देखो देखो उसने कैमरा भी टांग रखा है।
1: अरे हाँ,
2: किसी औरत का भीड़ भाड़ में यहाँ वहाँ घूमना,
1: अरे कोई अच्छी बात थोड़ी होती है। अरे भाई, औरत तो घर की शोभा होती है, शोभा। पता नहीं कैसा समय आ गया है।
2: मालूम नहीं,
1: ये दिन भी देखना था। चलो चलते। अरे चलो चलते, नजदीक आ गए।
2: आगे आगे
1: आ जाओ, आ जाओ, चलो।
3: साथियों, ये समय था 1959 का, जब दलाई लामा पहली बार भारत की यात्रा पर सिक्किम आए थे। उनके अभिनंदन में भारी भीड़ जमा थी।
4: उसी भीड़ में शामिल थी एक लड़की जो हाथ में एक भारी कैमरा लिए दलाई लामा की फोटो खींच रही थी। कैमरे का वजन लगभग 9 किलो था, जिसके बाहरी हिस्से में लकड़ी का कवर था। इतना ही नहीं, उस लड़की ने अपने कंधे पर एक कैमरे का फ्लैश भी टांग रखा था। ये लड़की कोई और नहीं, होमी व्यारावाला थी, जिसे दिल्ली से विशेष रूप से इस मौके की फोटो खींचने के लिए बुलाया गया था।
3: 21वीं सदी में शायद महिलाओं को कैमरे के साथ देखना बेहद आम बात लगे, लेकिन आज से 70-80 साल पहले ये एक बहुत बड़ी बात थी। इसी बात को लेकर उन्होंने एक साक्षात्कार में कहा था,
5: 10 दिनों लोग बहुत रूढ़िवादी हुआ करते थे। वो नहीं चाहते थे कि महिलाएं इधर उधर घूमें। जब उन्होंने मुझे साड़ी में कैमरे के साथ घूमते हुए देखा तो उन्हें बहुत ही अटपटा सा लगा, और उन्हें शुरू शुरू में तो ऐसा भी लगा कि मैं कैमरा लेकर सिर्फ उन्हें बेवकूफ बना रही हूं।
4: होमी व्यारावाला का जन्म गुजरात के नवसारी में एक पारसी परिवार में दिसंबर 1913 को हुआ था। उनका परिवार गुजरात में सूरत के निकट व्यारा में रहा करता था, संभवतः इसलिए उन्हें व्यारावाला के नाम से जाना गया।
3: उनके पिता पारसी उर्दू थिएटर के मशहूर अभिनेता थे, इसलिए घर पर माहौल भी थोड़ा खुलेपन का था। परिवार स्वतंत्र विचारों वाला था। रंगमंच पर कार्य करने के कारण ये व्यारावाला परिवार की पहुंच से बहुत दूर नहीं था।
6: आज कितना मुबारक दिन है, हम सब की दिली ख्वाहिश पूरी होने
4: जा रही। समय बदला और उनका परिवार गुजरात से बंबई यानी मुंबई आ गया। उनकी स्कूली शिक्षा बंबई में हुई। पढ़ाई में वो बहुत अच्छी थी, लेकिन शौकिया फोटोग्राफी भी करती थी।
3: लेकिन फोटोग्राफर बनना उनका लक्ष्य नहीं था, वो डॉक्टर बनना चाहती थी। एक रात की बात है,
7: होमी, ओ होमी।
8: जी माँ, आती हूँ।
7: अरे बेटा, अभी तक तुम सोई नहीं,
8: क्या बात है माँ?

0: अरे कोई बात नहीं बेटी, रात का 1 बज रहा है। मैंने तुम्हारे कमरे में बत्ती जलती हुई देखी तो सोचा थोड़ा सा समय तुम्हारे साथ बिता लूं।
1: जी माँ, बिल्कुल।
0: अच्छा बेटी, इन दिनों देख रही हो कि तुम काफी खोई खोई और चिंतित रहने लगी हो। सब ठीक तो है ना बेटा?
1: हाँ माँ, सब बिल्कुल ठीक है। स्कूल की पढ़ाई अब पूरी हो गई है ना, आगे भी तो सोचना है कि मुझे भविष्य में क्या करना है। बस यही विचार मन में बार बार आता है।
0: अच्छा, तो ये बात है। भला तुम्हें अपने भविष्य के बारे में सोचने की जरूरत क्या है? अब तो तुम शादी के लायक हो गई हो। बहुत जल्दी कोई अच्छा सा लड़का देखकर तुम्हारे हाथ पीले कर देंगे हम। और तुम्हारी चिंता तो वो करेगा। हाँ,
1: अरे नहीं माँ, अभी नहीं करनी है मुझे शादी। और भला मेरे भविष्य की चिंता कोई और क्यों करेगा?
0: अरे
1: मैं खुद क्यों नहीं कर सकती? और माँ, मैं तो डॉक्टर बनूंगी।
0: क्या कहा? डॉक्टर? तो डॉक्टर बनेगी?
1: माँ सुनो तो एक बार मेरी बात।
0: मैंने सब सुन लिया होमी, और मुझे कुछ नहीं सुनना। बात समझ में आई तुम्हें?
1: माँ एक बार बात तो पूरी सुन लो।
0: कुछ नहीं होमी, बस करो।
1: माँ सुनो तो। अरे
2: तो सुना आपने, होमी ने बहुत बाद में दिए गए एक इंटरव्यू में इस घटना का वर्णन करते हुए कहा था,
3: मुझे जरा सा भी अंदाजा नहीं था कि मैं फोटोग्राफर बनूंगी। मैं डॉक्टर बनना चाहती थी, लेकिन मेरे जीवन में केवल एक यही समय था जब मेरी माँ ने मुझे कुछ करने से मना किया। उन्होंने देर रात की शिफ्ट में डॉक्टरों को देखा था और वो नहीं चाहती थी कि मैं इस तरह के पेशे में रहूं। उन्होंने ये नहीं सोचा था कि प्रेस फोटोग्राफी इससे भी बदतर होगी।
4: घर से अनुमति न मिलने के बाद उनके पास और कोई चारा नहीं था। उन्होंने डॉक्टर बनने का अपना इरादा बदल दिया। लेकिन एक बात थी जिस पर वो दृढ़ निश्चय के साथ अडिग रही,
2: और वो बात थी एक नारी होकर अपनी जगह खुद बनाने की, अपना भविष्य स्वयं गढ़ने की और अपनी उड़ान का आसमान स्वयं तैयार करने की। उन्होंने फैसला किया कि वो फोटोग्राफी को अपना पेशा बनाएंगी। प्रशिक्षण लेने के लिए उन्होंने जेजे स्कूल ऑफ आर्ट्स में दाखिला लिया।
4: कला की पृष्ठभूमि और कैमरे के थोड़े बहुत ज्ञान के कारण जल्दी ही वो एक कुशल फोटोग्राफर बन गई। अब उन्हें साइकिल पर बैठकर पीठ पर कैमरा लादे बंबई की सड़कों पर देखा जा सकता था। इस दौरान उन्होंने बंबई के मेहनतकश मजदूरों, निर्धन वर्ग के बच्चों और स्त्रियों के बहुत सारे चित्र खींचे। इन चित्रों को काफी प्रशंसा भी मिली।
2: एक दिन की बात है, कक्षा समाप्त हुई थी और छात्र घर जाने की तैयारी में थे। होमी भी कक्षा से निकलकर संस्थान के मुख्य गेट की ओर जा रही थी।
1: सर, मैं अंदर आ सकती हूँ?
5: अरे होमी, आओ आओ आओ, अंदर आओ अंदर आओ, बैठो, यहाँ बैठो।
1: जी जी सर, धन्यवाद।
5: होमी, जरा इसे देखो।
1: जी।
5: ये आज का समाचार पत्र है। जरा यहां देखो, इस पृष्ठ पर जरा पहचानो तो, किसकी फोटो है ये?
1: सर, ये तो मेरी खींची हुई फोटो है।
5: बिल्कुल। हाँ उमी, इसे राज्य भर से आई 100 से भी अधिक तस्वीरों की प्रतियोगिता में पहला स्थान मिला है। लोगों ने इसकी बड़ी प्रशंसा की है। देखो देखो यहाँ क्या लिखा है।
1: जी।
5: देखो पढ़ो। होमी व्यारावाला की इस फोटो ने मेहनतकश मजदूरों की दुर्दशा को बड़ी बारीकी से उकेरा है, और ये लिखा है, ये फोटो हमारे समाज के लिए एक आईना है। बधाई हो होमी, हमें तुम पर फख्र है।
1: धन्यवाद सर।
2: फिर भला क्या था, पूरे राज्य में होमी की ख्याति बढ़ गई। कॉलेज में होमी को छात्र एक प्रेरणा के रूप में देखने लगे। अब उन्हें कई समाचार पत्रों से काम भी मिलने लगा था। कॉलेज में ही उनकी भेंट हुई सहपाठी मानेकशा जमशेद जी से, जो एक बेहद होनहार छायाकार थे और स्वतंत्र छायाकार के रूप में भी बॉम्बे के कई

0: समाचार पत्रों के लिए काम करते थे।
1: मानेकशॉ स्वयं उन दिनों टाइम्स ऑफ इंडिया में फोटो जर्नलिस्ट के रूप में काम करते थे। मानेकशॉ ने उन्हें बहुत प्रोत्साहित किया। 8 महाविद्यालय से पढ़ाई पूरी करने के बाद 1938 में होमी व्यारावाला ने फोटोग्राफी की दुनिया में एक पेशावर की तरह प्रवेश किया। बतौर फोटो जर्नलिस्ट होमी की पहली तस्वीर द बॉम्बे क्रॉनिकल में प्रकाशित हुई। इस दौरान उन्हें एक तस्वीर के लिए 1 रुपया बतौर पारिश्रमिक मिलता था।
0: 1942 में ब्रिटिश सूचना सेवा के लिए फोटोग्राफर के रूप में काम करने के लिए व्यारावाला युगल को दिल्ली आने का निमंत्रण मिला। दिल्ली आते ही होमी के काम को राष्ट्रीय स्तर पर पहचान मिलनी शुरू हो गई।
1: होमी व्यारावाला एक समर्पित और प्रतिभाशाली फोटो पत्रकार थी, जिन्हें अक्सर अपने कैमरे को अपनी पीठ पर बांधे हुए राजधानी दिल्ली में साइकिल चलाते हुए देखा जाता था। दिन की रोशनी के दौरान वो लो एंगल शॉट तथा छवियों के विस्तार के लिए बैक लाइट का उपयोग करती थी, जिससे विषय वस्तु की गहराई और ऊंचाई को दर्शाया जा सके। इन दिनों की कंप्यूटर जनित डिजिटल फोटोग्राफी के हमारे जमाने में ये बातें भले ही बेहद साधारण लगें, लेकिन उन दिनों इन बातों का विशेष महत्व था। उन्हीं के शब्दों में,
2: जब मैं कैमरा टांगकर साइकिल पर निकलती थी तो मुझे देखने के लिए विशेषकर महिलाओं और बच्चियों की भीड़ जमा हो जाया करती थी। उनकी आंखों में एक चमक होती थी, मानो वो मुझ में अपना भविष्य देखने की कोशिश कर रही हों।
0: कोई भी घटना हो, वो मौके पर सबसे पहले पहुंचने वाले पत्रकारों में से एक थी। अब समय आ गया था छायांकन पत्रकारिता के क्षेत्र में एक महिला के रूप में इतिहास रचने का।
1: वो समय था जब भारत में स्वतंत्रता आंदोलन अपने चरम पर था। स्वतंत्रता सेनानियों की गिरफ्तारियां हो रही थी। महात्मा गांधी के नेतृत्व में भारत छोड़ो आंदोलन की लहर देश के गांव-गांव तक फैल गई थी। बड़े बड़े जुलूसों में, धरना प्रदर्शनों में, हिंसक आंदोलनों में एक महिला का बतौर फोटो पत्रकार उपस्थित रहना और घटनाओं की तस्वीर खींचना कोई आसान बात नहीं थी।
2: जब भी मैं किसी मौके पर कैमरे के साथ पहुंचती थी, मुझे प्रोत्साहन अक्सर नहीं मिलता था। पुरुष प्रधान पत्रकारिता के क्षेत्र में एक महिला के लिए अपनी जगह बनाना बहुत कठिन था। कई बार मेरा मजाक उड़ाया जाता था, लेकिन बात तब बन जाती थी जब मैं अपना परिचय देती थी। लोग मेरे काम के कारण नाम से परिचित थे, नाम बताने पर मुझे सम्मान भी मिलता था।
0: ऐसे समय में होमी व्यारावाला का एक फोटोग्राफर बनना एक बहुत ही बड़ी बात थी। होमी व्यारावाला ने अगस्त 1947 को लाल किले पर पहली बार पहराए गए झंडे, भारत से लॉर्ड माउंटबेटन के डिपार्चर, महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू तथा लाल बहादुर शास्त्री की अंतिम यात्रा की भी तस्वीरें अपने कैमरे में कैद की। इन तस्वीरों की पूरे विश्व में प्रशंसा हुई और इन्हें बेहद महत्वपूर्ण ऐतिहासिक धरोहरों के रूप में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता मिली। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के चरम उत्कर्ष के दिनों उनके द्वारा खींची गई अधिकांश तस्वीरों को दुर्लभतम कृतियों की श्रेणी में रखा गया है। ऐसा लगता है मानो उनके कैमरे ने इतिहास को सजीव कर दिया है।
1: होमी ने बतौर फोटो जर्नलिस्ट अपने करियर की शुरुआत 1930 में की थी। वो 1970 तक इस क्षेत्र में सक्रिय रहीं। 40 वर्षों के इस सफर के दौरान उन्होंने देश विदेश में खूब नाम कमाया। 1970 में अपने पति की मृत्यु के बाद होमी व्यारावाला ने अपने पेशे से संन्यास ले लिया। होमी की विशिष्ट उपलब्धियों को देखते हुए भारत सरकार द्वारा 2011 में उन्हें भारत की पहली महिला छाया पत्रकार के रूप में भारत के दूसरे सबसे बड़े नागरिक सम्मान पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था।

0: सन 2012 में 99 वर्ष की आयु में इनका निधन हो गया।
1: गूगल ने उनकी विरासत का सम्मान करते हुए उनके जन्म के 104 साल पूरे होने पर अपने डूडल के साथ उन्हें सम्मानित किया। गूगल ने भारत की पहली महिला फोटो पत्रकार होमी व्यारावाला को श्रद्धांजलि देते हुए उन्हें लेंस के साथ पहली भारतीय महिला यानी फर्स्ट इंडियन लेडी विद द लेंस के रूप में सम्मान दिया।
0: स्त्री अस्मिता के विमर्श पर किसी ज्योतिर्मय प्रेरणा स्तंभ के रूप में अडिग खड़ी भारत की इस पहली महिला फोटो पत्रकार होमी व्यारावाला को हमारा शत शत नमन।
2: और अब इसी के साथ हमारा आज का उमंग कार्यक्रम यहीं पर समाप्त होता है। अब आपके मित्र विमलेश को उमंग कार्यक्रम की तकनीकी टीम के साथ अगले सप्ताह तक के लिए आज्ञा दीजिए। नमस्कार।
3: उमंग, उमंग, उमंग, उमंग।
4: हुण तुसी सुन रहे सी NCERT वालों स्पॉन्सर्ड प्रोग्राम उमंग भाग 1370। तुसी सुन रहे हो आकाशवाणी FM बठिंडा दे प्रसारण। स्टूडियो दी घड़ी दी समा 3:22 ते आउं सुनदे हां विविध भारती मुंबई दे प्रसारण जो कि 5 बजे तक जारी रहणगे।

0: आप सुन रहे हैं विविध भारती।
1: सखियों के दिल की जुबान। हेलो सहेली।

0: नमस्कार दोस्तों, जीवन में खुश रहना, प्रसन्न रहना, सेहत का ध्यान रखना कितना आवश्यक हो चला है। ये सब हम अच्छे से जानते हैं, समझते हैं, फिर भी घर के व्यस्त कामकाज में स्वयं का ध्यान रखना कहीं पीछे छूट जाता है एक महिला के लिए। लेकिन ये भी याद रहे कि हम सहेलियां ही तो परिवार की धुरी है ना? खुद के लिए थोड़ा सा टाइम निकालिए, समय निकालिए, थोड़ा वर्जिश कीजिए और हाँ, मंगलवार के दिन हेलो सहेली कार्यक्रम की रिकॉर्डिंग के लिए फोन कॉल्स कीजिए। तो बस अपनी सखियों से बात करने के लिए विविध भारती के स्टूडियो में मौजूद हूँ मैं, आपकी दोस्त सहेली दीपा माहेश्वरी। आज आपकी इस सखी से होंगी बातें। देखिए ना, फोन की घंटी भी बज उठी है। चलिए उठाते हैं आज का पहला कॉल। हेलो सहेली।
1: हेलो सहेली।
0: नमस्कार, बताइए किससे बात हो रही है हमारी?
1: मेरा नाम है आरती।
0: कहाँ से बात कर रही हैं आरती जी?
1: मैं हैदराबाद किशनबाग गुड़ा से बात कर रही हूँ।
0: हैदराबाद से? अरे वाह, क्या
1: हाँ।
0: बात है। बताइए कैसी हैं आप और क्या चल रहा है इन दिनों?
1: कुछ नहीं, सावन का महीना, वही पूजा व्रत वही चल रहे हैं।
0: हाँ हाँ
1: और मुझे वेद भारती मतलब बहुत बचपन से मेरे नाना जी सुना करते थे पहले, उसके बाद फिर मेरे पापा मम्मी सब सुनते हैं, और मेरे बहने मेरे मम्मी पापा सब सुनते हैं, समझे, मेरे घर पे।
0: अच्छा,
1: हमारे नाना जी को अलग अलग रेडियो लाने के शौक थे, मेरे मम्मी बताती है अलग अलग रेडियो से वो लाते रहते थे हमेशा।
0: बिल्कुल, आपसे बात करके बहुत मजा आ रहा है। अब ये बताइए कौन से फिल्म का गीत सुनना चाहती हैं आप?
1: जय संतोषी माँ है फिल्म का नाम है, और करती हूँ तुम्हारा व्रत में गाने
0: जी
1: का बोल है।
0: जी बहुत सुंदर।
1: आपने मेरा कॉल लिया, बहुत बहुत शुक्रिया।

0: बहुत अच्छा लगा मुझे बात करके वेद भारती से। ये
1: आरती जी,
0: तो मेरा
1: आपने
0: सौभाग्य है
1: जी
0: मुझे मिला जो आपका इसमें बात करने का।
1: आरती जी आपने समय निकाल करके कॉल किया, उसके लिए हम बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। और चलिए, खुश हम भी बहुत हैं, और इसी बात पर सुनते हैं आपकी पसंद का ये गीत।

0: हेलो सहेली।
1: हेलो सहेली दीदी, नमस्कार।
0: नमस्ते। बताइए कौन सी सहेली आज हमसे बात कर रही है?
1: पुष्पा देवी झांसी से बोल रहे हैं।
0: झांसी से। अरे वाह पुष्पा जी,
1: हाँ,
0: बताइए कैसी हैं आप
1: बढ़िया है दीदी। दो
0: जी? और क्या चल रहा है इन दिनों, और परिवार में कौन कौन है?
1: लड़के हैं, लड़की हैं, सास ससुर हैं, पति देव हैं।
0: अरे वाह, आप क्या करती हैं? भरा पूरा परिवार है ना?
1: हाँ, भरा पूरा परिवार है। हम फल की दुकान चलाते हैं दीदी। मैं
0: आपकी ये फल की दुकान है, तो अलग अलग किस्से कहानियां भी तो मरीज के जो परिवारजन होते होंगे वहां पे खड़े होके बातें करते होंगे।
1: हर कोई सुनाता है, जब आते हैं हमारे फल की दुकान पे लेने के लिए तो सब कोई कोई अच्छी सुनाता है, कोई अपनी अपनी दुखी ज्यादा रहती है यहाँ पर, दुख मतलब
0: जी
1: दुख
0: जी जी
1: ज्यादा वितरण करते हैं।
0: तो फिर आप क्या उन्हें कुछ प्रेरणा के

0: दो शब्द कहती हैं कि सब ठीक हो जाएगा, इस तरह का कुछ कहती हैं आप?
1: हाँ, भगवान जी कहते हैं कि दुआ करेंगे सब ठीक हो जाएगा,
0: बिल्कुल
1: आप
0: बिल्कुल
1: टेंशन नहीं लो। मतलब
0: जी, बताइए आज आप कौन सा गीत सुनना चाहती हैं?
1: हम सुनना चाहते हैं तो मेरी रूह से चैन दे, प्यार दे, जिंदगी बन गए हो जवानों।
0: तो चलिए सुनते हैं आपकी पसंद का फिल्म कसूर का ये गीत।

0: हेलो सहेली
1: हेलो सहेली
0: जी, नमस्ते। किससे बात हो रही है हमारी?
1: जी, मैं ज्योति प्रजापति बोल रही हूँ इंदौर से। जी
0: जी ज्योति जी, इंदौर से। बताइए कैसी हैं आप?
1: मैं ठीक हूँ।
0: जी, और बताइए क्या चल रहा है इन दिनों? अभी तो त्योहारों के बिल्कुल मौसम जैसा आ गया है ना?
1: जी बच्चे हैं छोटे, एक
0: हाँ।
1: 6 साल का है, 3 का है।
0: तो मतलब दिन भर व्यस्तता तो आपकी रहती ही होगी, है ना?
1: जी
0: हाँ, क्योंकि छोटे बच्चों को उनका ध्यान
1: स्कूल
0: रखना।
1: जाते हैं।
0: जी बिल्कुल, स्कूल
1: जी
0: जा रहे हैं तो उनका टिफिन बनाना है, फिर घर वापस आ रहे
1: जी
0: हैं तो तब भी बच्चों को कुछ ना कुछ नाश्ता, कुछ अलग अलग तरह की चीजें चाहिए होती हैं, है ना?
1: जी
0: जी,
1: हाँ,
0: तो बच्चे ट्यूशन जाते हैं या घर पर ही पढ़ते हैं बाद में, स्कूल से आने के बाद?
1: ट्यूशन जाता है एक बड़ा, एक नहीं जाता छोटा।
0: जी, तो यानी कि आपको तो समय ही नहीं मिलता होगा अपने लिए।
1: हाँ बहुत कम मिलता है।
0: ऐसे में फिर रेडियो किस तरह सुन पाती हैं आप?
1: जी सुन लेते हैं थोड़ा बहुत, ये सुनते हैं हमारे हस्बैंड।
0: जी, तो पति देव सुनते हैं और आप भी साथ में सुनती है ना?
1: जी,
0: जी, तो ज्योति जी, आपसे बात करके बहुत अच्छा लग रहा है। बताइए आज आप कौन सा गीत सुनना चाहती हैं?
1: फिल्म का नाम है ममता, गीत से बोले रहे ना रहे हम।
0: तो चलिए सुनते हैं आप ही की पसंद का ये गीत।

0: अंतराल के बाद देखते हैं किस सखी का लगा है कॉल। हेलो सहेली
1: हेलो सहेली,
0: जी, बताइए किससे बात हो रही है।
1: वैष्णवी मुड़ी,
0: वैष्णवी मुड़े, कहाँ से बात कर रही हैं आप?
1: नांदेड़ से। नांदेड़
0: जी वैष्णवी, बताइए नांदेड़ से कैसी हैं आप और कैसा है नांदेड़?
1: तो अच्छा है, मेरा छोटा बच्चा और
0: हाँ,
1: मम्मी जी
0: अच्छा, परिवार है, मतलब भरा
1: है,
0: पूरा परिवार है।
1: जेठानी है, हाँ परिवार है।
0: और आप क्या करती हैं, बताइए आप?
1: मैं घर पर रहती हूँ, छोटा बेबी है, 5 महीने का।
0: अच्छा, ओ, ये तो बहुत ही छोटा बच्चा है, अभी तो आपको हर वक्त उसका ध्यान रखना पड़ता होगा।
1: हाँ,
0: तो बताइए आज आप कौन सा गीत सुनना चाहती हैं?
1: एबीसीडी मतलब गन गन गणपति वाला गाना।
0: एबीसीडी फिल्म का, चलिए सुनते हैं आपकी पसंद का ये गीत।

0: हेलो सहेली
1: हेलो सहेली
0: जी, बताइए किससे बात हो रही है।
1: मैं अनु पांडे बात कर रही हूँ, उत्तर प्रदेश गोंडा से।
0: उत्तर प्रदेश गोंडा से क्या बात है?
1: आज मैम मेरी पहली बार कॉल लगी है ना, मैं बहुत खुश हूँ, बहुत ज्यादा खुश हूँ।
0: एक बात बताएं अनु जी, आपकी आवाज से ही समझ में आ रहा है कि आप बहुत ज्यादा खुश हैं, और हम भी बेहद खुश हैं कि आपने कॉल लगाने की कोशिश की। क्या करती हैं आप, बताइए।
1: मैं जॉब करती हूँ और तैयारी करती हूँ रेडियो के साथ मैच की।
0: जॉब कर रही हैं और तैयारी किस चीज की?
1: जिस जॉब पे हूँ ना उसी, और अच्छे पोस्ट पे जाने के लिए।
0: अच्छा, तो प्रमोशन आपको मिल जाए इसके लिए आप कोशिश कर रही हैं और उसी की तैयारी कर रही हैं। जी, तो उसके लिए पढ़ाई करनी होती होगी, कैसे क्या करना होता होगा?
1: मैम उसके लिए मतलब हाँ पढ़ाई करनी पड़ती है तो वो कर लेते हैं हम।
0: तो आप देखिए जॉब भी कर रही हैं और पढ़ना भी है क्योंकि प्रमोशन चाहिए, तो कैसे समय निकालती हैं फिर पढ़ाई के लिए?
1: मैं तो पढ़ाई के लिए भी समय निकाल लेती हूँ और साथ साथ रेडियो भी सुनती रहती हूँ और दिवस भारती मैं हमेशा सुनती रहती हूँ। यहाँ के कार्यक्रम मुझको बहुत अच्छे लगते हो, आज के फनकार हो गए या पिटारा हो गया, हेलो सहेली हो गया, बहुत सारे कार्यक्रम है जो मुझको बहुत अच्छे लगते हैं।
0: अरे वाह, यानी कि आप तो एक दिन मतलब कि दिन का जो हम 12 घंटा इस्तेमाल करते हैं ना काम काज करने के लिए, उसमें तो आप कई सारे काम कर लेती हैं। जॉब भी कर रही हैं, पढ़ाई भी कर रहे हैं और रेडियो भी सुन रही हैं, क्या बात है। तो हम आपको आपके प्रमोशन के लिए बहुत सारी शुभकामनाएं और बधाई अभी से देते हैं अनु पांडे जी।
1: फूलों की ताजगी, चांदनी की चमक, विविध भारती रेडियो तो है खुशियों का कमल,
0: क्या बात है।
1: और मैम हमको गाना सुनना है, फिल्म का नाम है तेरे नाम और गाने के बोल है तुमसे मिलना बातें करना। आज ना हमको आपसे बातें करके बहुत अच्छा लग रहा है।
0: हमें भी आपसे बात करके बहुत ज्यादा आनंद आया अनु पांडे जी। चलिए सुनते हैं आपकी पसंद का ये गीत।

0: हेलो सहेली।
1: नमस्ते मैम।
0: नमस्ते जी, किससे बात हो रही है?
1: निशा कुछवा बोल रही हूँ मैम, नीचागढ़ जिला अशोकनगर से।
0: अच्छा, बताइए निशा जी, कैसी हैं आप?
1: ठीक है, आप कैसी हो दीदी?
0: बिल्कुल अच्छे हैं। बताइए, आज कौन सा गीत सुनना चाहती हैं आप?
1: दीदी ध्यानदार पिक्चर का सुनवा दीजिए, आएगा मजा बरसात का।
0: तो चलिए सुनते हैं आपकी पसंद का ये गीत।

0: अंतराल के बाद हम फिर आ गए हैं, लेते हैं ये कॉल। हेलो सहेली।
1: हेलो सहेली
0: जी, किससे बात हो रही है हमारी, क्या नाम है आपका?
1: हमारा नाम है आरती डांगी है, मध्य प्रदेश जिला सागर ग्राम जमीन खामरिया से बोल रहे हैं।
0: खामरिया से बोल रही हैं आप, बताइए जिंदगी में सब कुछ कैसा चल रहा है और कैसा चल रहा है आपका शहर?
1: जिंदगी में कभी भी सब कुछ अच्छा है, शहर भी अच्छा है, लेकिन दुख सुख तो आते जाते रहते हैं। अभी हमारी माँ का डेथ हुआ है दीदी, इसलिए अधिक दुखी है।
0: जी, हम समझ सकते हैं आरती जी की माँ का ना होना, यानी ये खालीपन किसी भी चीज, कोई धन कोई पद किसी से भी पूरा नहीं किया जा सकता, है ना?
1: जी दीदी, मेरा मायका है छिंदवाड़ा जिला का और सागर का ससुराल है यहाँ का, मतलब
0: जी।
1: 250-300 किलोमीटर की दूरी है।
0: अच्छा, 300 किलोमीटर की दूरी है ससुराल और मायके के बीच में।
1: जी दीदी, हम बिल्कुल महाराष्ट्र के किनारे पे रहते हैं एकदम।
0: अच्छा, आप परिवार में कौन कौन है?
1: सास है, ससुर है, देवर है, देवरानी है और मेरी दो बेटा है, पति देव, हम सब लोग बहुत पूरे परिवार से हैं।
0: आज बताइए कौन सा गीत सुनना चाहती हैं?
1: आज हम गीत सुनेंगे दीदी, राजा और रंग फिल्म का, वो तो कितनी अच्छी है माँ के लिए।
0: जी, तो आपकी माँ को समर्पित ये गीत प्रस्तुत है।

0: हेलो सहेली
1: हेलो सहेली, कृष्णा
0: जी, आज किसका कॉल लगा है? अपना नाम बताइए।
1: लोवंशी, जिला खंडवा से लगा मेरा फोन।
0: क्या बात है, आप क्या करते हैं?
1: खेती करती हूँ दीदी मैं।
0: अरे वाह, खेती का काम करती हैं। तो
1: जी जी
0: इस वक्त क्या आप खेत पर ही हैं?
1: दीदी, खेत में नहीं, घर पे हूँ और मक्का लगाई है दीदी मैंने।
0: मक्का लगाई है, तो कब तक इसकी कटाई हो जाएगी फिर?
1: ये अभी दीपावली तक होगी दीदी।
0: अच्छा, दीपावली तक।
1: मेरे दो लड़के हैं,
0: हाँ,
1: एक खेती करता है और एक लड़का बड़ा वाला मेडिकल पे है।
0: तो आप भी जाती हैं खेती करने?
1: हाँ जाती हूँ दीदी, मेरी बहू भी है,
0: हाँ, तो वो भी
1: वो
0: जाती
1: भी,
0: हैं।
1: हाँ दोनों जाते हैं।
0: अरे वाह जी, ये तो बहुत मेहनत का काम है खेती करना। कृष्णा जी, हमारे देश का तो आधार है किसान और खेत। तो बताइए, आज आप कौन सा गीत सुनना चाहते हैं? हमें आपसे बात करके बेहद प्रसन्नता हो रही है।
1: गदर फिल्म का है दीदी, ऊर्जा काले कावा।
0: चलिए सुनते हैं आपकी पसंद का फिल्म गदर का ये गीत।

0: हेलो सहेली।
1: हेलो सहेली, नमस्ते।
0: नमस्ते जी, अपना नाम बताइए सहेली।
1: मैम, मैं अनीता वर्मा बोल रही हूँ, द्वारका, दिल्ली से। हाँ
0: दिल्ली से अनीता वर्मा जी, बताइए कैसी हैं आप?
1: जी, मैं ठीक हूँ, आप कैसे हैं मैम?
0: बिल्कुल अच्छे हैं, यहाँ पर भी सब ठीक है। और अपने बारे में बताइए अनीता जी।
1: हाँ मैम, मैं हाउस वाइफ हूँ और पहले सहेली में फोन करती रहती हूँ 2-3 महीने के बाद कि कभी का नंबर लगता रहे।
0: जी, ये बहुत अच्छी बात है कि आपने 2 महीने का पूरा जो हम अनुरोध करते हैं, आपने वो समय का पूरा शांति से इंतजार किया और 2 महीने के बाद कॉल कर रही हैं।
1: हेलो सहेली, ये भारती के सारे ही प्रोग्राम क्या क्या बताऊं मैं, सभी बहुत पसंद है मुझे, इन्हीं के साथ मेरा काम होता रहता है।
0: जी बिल्कुल, तो सबसे पहले आपको धन्यवाद कि आप विविध भारती के सारे कार्यक्रमों को पसंद करती हैं। रेडियो तो सुनती ही हैं और सारा दिन आप संगीतमय, आपका दिन ये निकलता है। इसके अलावा और आप क्या करते हैं?
1: मैम घूमने का भी शौक है, 2-4 महीने बाद चक्कर लग ही जाता है, घूमने की बहुत शौकीन हूँ, शॉपिंग करना बहुत अच्छा लगता है, सूट साड़ी ये ज्यादा मुझे पसंद आते हैं, अपने इंडियन जो
0: जी, और
1: हमारे ये कपड़े
0: जी
1: हैं।
0: जी जी और दिल्ली तो प्रसिद्ध भी है ना शॉपिंग के लिए। शॉपिंग के लिए बिल्कुल यहाँ पर तरह तरह की चीजें, हर प्रकार की चीजें मिल जाती हैं और आप उसका शौक भी रखती हैं। और देखिए, एक महिला को ये सारी चीजों का शौक होना भी चाहिए, आपको क्या लगता है?
1: हाँ जरूर होना चाहिए, क्योंकि अगर महिला ही नहीं शौकीन होगी तो और कौन होगा,
0: जी
1: किसी का तो
0: हाँ
1: जचते हैं और कोई तो पहन नहीं सकता ये
0: बिल्कुल
1: सारी चीजें।
0: जी,
1: जी
0: इतनी सारी चीजें होती हैं हम महिलाओं के लिए पहनने के लिए। और जब शौक मन में रहता है ना, प्रसन्नचित रहता है, तो हम घर भी बहुत अच्छे से रखते हैं, खुद को भी खूब अच्छे से सुंदर बनाते हैं। और एक प्रसन्न वातावरण जो घर का रहता है, वो हमेशा सकारात्मक सोच के तरफ आगे बढ़ता है। आपसे बात करके बहुत अच्छा लग रहा है अनीता जी। आज बताइए आप कौन सा गीत सुनना चाहती हैं?
1: मुझे सुनना है पर्दे के पीछे, ये फिल्म का नाम है, गाना बहुत ही अच्छा है, तेरे बिन जिया ना लगे, आ जा रे
0: बिल्कुल, चलिए तो शायद वो आ ही जाएंगे जिसके बिना आपका जिया नहीं लग रहा है। तो चलिए सुनते हैं आपकी पसंद का ये गीत।

0: हेलो सहेली
1: हेलो सहेली।
0: जी, फोन के उस तरफ। ये कौन सी सहेली है, क्या नाम है आपका, अपने बारे में बताइए।
1: मेरा नाम है शांति वारी। मैं उदयपुर वारियों की घाटी से बोल रही हूँ।
0: क्या बात है, बहुत बहुत स्वागत आपका शांति जी।
1: धन्यवाद।
0: जी अपने बारे में बताइए।
1: मैं हाउस वाइफ हूँ।
0: जी तो घर के काम काज में दिन भर सारा समय निकल जाता होगा, है ना।
1: हाँ, निकल जाता है ना दिन भर। ज्वाइंट फैमिली है, तीन फैमिली एक साथ रहती है, रसोई एक ही है।
0: ये तो आज के जमाने में उदाहरण है आपका परिवार की, तीन परिवार एक साथ रहता है और आपने कहा रसोई भी एक ही।

0: है
1: जी
0: जी, बहुत ही सुंदर बात है। तो जब इतना बड़ा परिवार है शांति जी, ऐसे में कहीं ऐसा तो नहीं होता कि स्वास्थ्य के प्रति ध्यान रखना या कसरत करना या वर्जिश करना कहीं छूट जाता होगा?
1: नहीं, मतलब हमारा परिवार बहुत अच्छा परिवार है। तीनों भाई एक साथ रहते हैं, काम भी एक ही है, खाना भी मिलजुल के बांट लेते हैं। सुबह बड़े वाले बीच वाले 11 बजे बीच वाले बनाते हैं, सुबह 5 बजे का बड़े वाले बनाते हैं, शाम को मैं बनाती हूँ।
0: अच्छा, तो मिल बांट के आपने इस तरह से काम का बंटवारा कर लिया है। और अपने बारे में बताइए, और कैसे क्या सब चलता है दिन भर घर पर? परिवार इतना बड़ा है तो बच्चे भी सब होंगे,
1: है ना, बच्चे भी मेरे 2 बच्चे, बड़े वाले के 2 बच्चे।
0: तो ये तो ऐसा खिलखिलाता सा परिवार है ना
1: हाँ,
0: जी।
1: और साथ में ननद भी रहती है, 27 साल हो गए ननद के साथ रहते रहते। हाँ
0: अच्छा, आपकी एक ननंद भी साथ में रहती हैं।
1: फिल्म
0: शांति जी बताइए, आज आप कौन सा गीत सुनना चाहती हैं?
1: है करण अर्जुन, ये बंधन तो प्यार का बंधन है, ये गाना।
0: बिल्कुल, बहुत सुंदर गीत है और आपका परिवार तो इस गीत पर पूरे तरह से उतर रहा है। एक बहुत ही सुंदर उदाहरण, चलिए सुनते हैं आपकी पसंद का ये गीत।

0: आज कॉल करने वाली सभी सखियों को धन्यवाद, और वे सखियां जिन्हें अभी और इंतजार करना है हेलो सहेली से जुड़ने के लिए, वे निराश ना हो, अगली बार जरूर कोशिश कीजिएगा, क्या पता पहला कॉल आप ही का लग जाए। और जिन सखियों से आज हमने बात की है उनसे ये अनुरोध है कि आप अगले 2 महीने तक कॉल न करें ताकि अन्य सखियों को भी मौका मिल सके। तो सखियों, आपसे अब मुलाकात होगी हेलो सहेली के अगले अंक में। सुनने वाले सभी को बता दें कि हेलो सहेली की रिकॉर्डिंग होती है हर मंगलवार के दिन सुबह 11 बजे से। हमारे टेलीफोन नंबर है 400-24662, 400-24662। एक और नंबर है 2867-0288, 28670288। मुंबई का एसटीडी कोड है 022, अंग्रेजी में 022। आज के हेलो सहेली कार्यक्रम के रिकॉर्डिंग इंजीनियर हैं समृद्धि नायक, संपादन में सहयोग मिला नम्रता टिकोड़े का। विविध भारती की ओर से हेलो सहेली कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता अनुश्री पाठक। और आज के हेलो सहेली कार्यक्रम को यहीं समाप्त करते हैं। दीजिए अपनी सहेली दीपा माहेश्वरी को इजाजत। नमस्कार
1: सखियों के दिल की सुबह, हेलो सहेली।

0: भारतीय सिनेमा को संवेदना और यथार्थ की नई पहचान देने वाले महान फिल्मकार बिमल रॉय। उनकी यादें, उनके व्यक्तित्व के कुछ अनसुने पहलू, उनकी बेटी रिंकी भट्टाचार्य के साथ।
1: पिताजी का जो जो फिल्में बनी है सभी लिटरेचर बेस्ड है, सबका कहानी लिटरेचर, बेस्ट बंगाली लिटरेचर से उन्होंने लिया है। जैसे सुजाता, वो एक लिटरेरी स्टोरी थी, बंदिनी वो भी एक असली स्टोरी थी जेल की कहानी से।
0: सुनिए ये खास बातचीत 13 सितंबर शाम 4 बजे उजाले उनकी यादों के कार्यक्रम में, सिर्फ विविध भारती पर।

0: आप सुन रहे हैं विविध भारती।
1: गीतों भरी कहानी में आज सुनिए अरुण शेखर की लिखी कहानी उन्हीं के स्वर में। आवाज ही पहचान है।

आज जब दूसरी पाली में माया क्लिनिक के लिए निकली तो उसका मूड कुछ ऑफ था, कारण कि आज फिर उसके ब्याह को लेकर घर में बकझक हो गई थी। ऐसा नहीं कि डॉक्टर माया दुनियावी बंधन में बंधना नहीं चाहती थी, और ऐसा भी नहीं कि उसकी जिंदगी में कोई प्रवेश कर गया था। वो भी आज की नई सोच के मुताबिक पहले सेटल हो जाना चाहती थी। आज शायद ही कोई लड़की चाहती है कि वो अपने खर्चों के लिए अपने पति पर निर्भर रहे, उसे अपनी हर जरूरत के लिए पति का मुंह देखना पड़े। इसी सोच में वो भी थी, नए क्लिनिक की शुरुआत की थी, वह भी चल नहीं रेंग रहा था। कोई भी बिजनेस सेट होने में थोड़ा समय तो लगता ही है। माया इसीलिए अभी विवाह जैसे बंधन में बंधने के लिए मन नहीं बना पाई थी, पर हर बार मां को मना करना उसके लिए भारी होता जाता था, क्योंकि हर मां इस बात के लिए चिंतित रहती है कि उसके रहते उसके बच्चों का विवाह हो जाए। यदि लड़की है तो और चिंता रहती है, माया क्या करे क्या न करे, उसे समझ में नहीं आ रहा था। इसी उधेड़बुन में वो क्लिनिक पहुंच गई। वहां पहुंचकर हमेशा की तरह रेडियो ऑन किया। कुछ पेशेंट बाहर इंतजार कर रहे थे, उनका उसे ध्यान ही न रहा, क्योंकि उस समय उसके पसंदीदा आरजे का प्रोग्राम चल रहा था। चिट्ठी आई है, मुझ तक अपनी खबर न भेजो, ये बात मुझे मंजूर नहीं, दिल के तुम्हारे बात न पूछूं, ऐसा भी मगरूर नहीं, दिल की तुम्हारे बात न पूछूं, ऐसा भी मगरूर नहीं, थोड़ी गर्मी थोड़ी सर्दी चलती रहती है रिश्तों में, अब जिद छोड़ो मुंह ना मोड़ो, खत लिख छोड़ो, ऐसी क्या रुसवाई है, चिट्ठी आई है।

डॉक्टर माया की असिस्टेंट ने उसे आवाज दी तो उसकी तंद्रा टूटी। उसे याद आया कि वो क्लिनिक में है, वरना वो गाने के साथ किसी और ही दुनिया में विचरण कर रही थी। उसके चेहरे पर उदासी की जगह एक मीठी मुस्कान खिल गई। वो बोली, हाँ भेज दो। पेशेंट को कोई गंभीर बीमारी नहीं थी, वरना इतनी देर प्रतीक्षा करना मुश्किल हो जाता। खैर, माया ने उसकी नाड़ी देखी, पूछा, क्या प्रॉब्लम है? पेशेंट ने कहा, सिर में दर्द रहता है, नींद नहीं आती। माया ने मन ही मन कहा, नींद तो उसे भी नहीं आती, पर वो किससे कहे। जिस दिन आरजे समीर का प्रोग्राम सुनती है, वही ख्वाबों ख्यालों में रहता है। उसकी आवाज, उसका अंदाज, उसके गानों की पसंद, सब कुछ कमाल है। समझ में नहीं आता कि उसके लिए दीवानगी सुकून है या दर्द। पेशेंट से बोली, आप नींद ठीक से लिया करें, नींद न लेने से एसिडिटी रहती है और इसी कारण सिर में दर्द रहता है, और कोई खास बात नहीं है। लेकिन लंबे समय तक अगर एसिडिटी रही तो दूसरी बीमारियां हो सकती हैं। खाने में छाछ यानी कि मट्ठा का अधिक इस्तेमाल करें, सलाद में ककड़ी जरूर खाएं, रात में देर तक बिल्कुल मत जागिए, समझ रहे हैं आप, और आप ठीक हो जाएंगी, चिंता की कोई बात नहीं है। पेशेंट ने जी और धन्यवाद के साथ विदा ली। माया ने रेडियो की आवाज फिर तेज कर दी। FM के दीवानों, मैं आपका दीवाना समीर आपकी नजर करता हूं ये गीत।

ऐसे गाने सुनकर हमेशा उसे लगता कि वो गाने उसी के लिए बजाए जा रहे हैं। ऐसे ही बहुत से चित्र होते हैं जिनको देखने से लगता है कि वो आपको ही निहार रहे हैं। उसी प्रकार माया को भी लगता कि समीर भी कहीं ना कहीं उससे प्रेम करता है, क्योंकि वो उसके हर प्रोग्राम को सुनती और खत लिखती, खत में बहुत कुछ जाहिर करती। वो पत्र केवल गीतों व कार्यक्रमों तक सीमित नहीं रहते, वो उसमें अपने दिल की दास्तान भी बयान करती। वो जैसा सोचती कहीं न कहीं वही भावनाएं उसे गानों के द्वारा सुनाई पड़ती। वो जो सोचती सच्ची तो है। इस प्रकार धीरे धीरे माया को समीर की आवाज का एडिक्शन हो चला था, यानी कि नशा हो चला था। समीर हमेशा तो रेडियो पर रहता नहीं था, उसने इसके लिए तरकीब निकाली। वो उसके कार्यक्रमों को रिकॉर्ड करके रख लेती और उसे बार बार सुनती, लेकिन संडे के कार्यक्रम को वो बिल्कुल मिस नहीं करती। उसमें श्रोताओं के पत्र पढ़े जाते, जिसमें श्रोता अक्सर उसकी आवाज की तारीफ करते, कुछ गानों का जिक्र होता। यह सुनकर माया को भी अच्छा लगता।

डॉक्टर माया को जलन तब और होती जब वो किसी और महिला का पत्र हंस हंस कर पढ़ता और उसकी लिखावट की तारीफ करता, उसको शुक्रिया कहता, कहता कि आपको कार्यक्रम अच्छे लगते हैं, मतलब आप अच्छे हैं, अच्छी चीजें देखने वाले की नजर अच्छी होती है, उसके पत्र भी पढ़े जाते। परंतु कई बार ऐसा भी हुआ कि डॉक्टर माया ने अपने खत के इंतजार में पूरा कार्यक्रम सुना परंतु उसका पत्र नहीं पढ़ा गया। समीर के मुंह से अपना नाम सुनने की प्रतीक्षा में उसने न जाने कितने लोगों की तारीफों के दर्द को झेला। मन तो किया कि रेडियो को उठाकर पटक दे, परंतु वो ऐसा नहीं कर सकी। उसे रियलाइज हुआ कि वो डॉक्टर है, वो कोई छोटी बच्ची नहीं है। कई बार हमारी बनाई हुई सीमाएं ही हमें बोझ लगने लगती हैं, पर वही हमें बचाती भी हैं। इस बीच कार्यक्रम समाप्त होने का वक्त आ गया। समीर ने शेर पढ़ा, एफएम के दीवानों में आपका दीवाना समीर। चलते चलते कुछ शेर आपकी नजर करता हूं। कुछ हकीकत तो बहुत कुछ सिर्फ छल है जिंदगी, कुछ हकीकत तो बहुत कुछ सिर्फ छल है जिंदगी, कुछ अमृत है और कुछ मधुमय गरल है जिंदगी। नींव सपनों पर पड़ी और रेत की दीवार है, नींव सपनों पर पड़ी और रेत की दीवार है, और फिर ये जुल्म ताशों का महल है जिंदगी। और एक गाने के साथ आपको छोड़ जाता हूं, तो खुश रहिए और अपने दिल का ख्याल रखिए। इस शेर ने माया को खुद में झांकने को विवश किया।

0: कभी तो हंसाए।
1: इन्हीं सवालों को खोजती खोजती माया घर पहुंच गई। कोई हल नहीं था। कई बार सवाल का हल खोजते खोजते हम और उलझ जाते हैं। ऐसे में हमें सोचने की प्रक्रिया को रोक देना चाहिए, यानी थोड़ा रिलैक्स करना चाहिए। माया खाना खाकर सीधे बिस्तर पर आई। हमेशा वो खाने के बाद थोड़ा वॉक करती थी, परंतु आज मन अनमना था तो सीधे सोने के कमरे में आ गई। किसी से ज्यादा बात नहीं की, वो अपने में ही खोई रही। वो क्यों खोई है, वो क्या खोज रही है, इसका कोई तर्क संगत जवाब उसके पास भी नहीं था। माँ ने बेटी को उदास देखकर पूछा, क्या हुआ, इतना खोई खोई सी क्यों है? तूने आज ठीक से खाना भी नहीं खाया, तबीयत तो ठीक है ना? माँ सब कुछ समझती है, उसे झूठ नहीं बोल सकते, लेकिन वो तुमसे सुनना चाहती है। माँ जानना चाहती है कि उसकी बेटी की जिंदगी में कौन है, पर माँ को वो क्या बताए कि उसने ख्वाबों की नींव पर प्रेम का महल बनाया है, उसी में रह रही है। वो जिससे प्रेम कर बैठी है, वो उसे जानती तक नहीं, उससे कभी मिली नहीं। उसकी आवाज की दीवानी है, उसके अंदाज की दीवानी है, उसी के साथ जीवन के सपने बुन लिए हैं, उसी के साथ शामें गुजारती है।

0: जाए।
1: आज जब वो क्लिनिक के लिए निकली तो रास्ते में बहुत ट्रैफिक था। हालांकि उसके घर से क्लिनिक बहुत दूर नहीं था, यही कोई 1.5-2 किलोमीटर की दूरी रही होगी, परंतु आज उस रास्ते से कोई रैली निकल रही थी, इसलिए इतना ट्रैफिक था। उसे बहुत झुंझलाहट हुई, अपनी स्कूटी इधर उधर जैसे तैसे काट कर क्लिनिक पहुंची। स्कूटी साइड स्टैंड पर लगाई, सीट खोलकर हेलमेट रखा, तभी आसमान में पक्षियों की मंडली गीत गाते हुए उधर से गुजर गई। उसे बड़ा भला लगा, वो एक पल को ठहर गई। उसकी नजर डाल पर बैठे हुए नीलकंठ के जोड़े पर पड़ी। इन छोटे छोटे दृश्यों से वो लसित हो उठी। उस उल्लास को उस आवाज ने कई गुना बढ़ा दिया। डॉक्टर माया लिखती हैं कि आपके कार्यक्रम के इंतजार में हमारा हर पल गुजरता है, आपकी आवाज कानों में गूंजती रहती है और कुछ सुनाई नहीं देता। अरे डॉक्टर माया जी, ऐसा मत कीजिए, आपके ऊपर लोगों के स्वास्थ्य की जिम्मेदारी है। अगर आप इस प्रकार बेखबर हो जाएंगी तो कैसे चलेगा? वैसे इंतजार तो मुझे भी रहता है आपके मीठे मीठे खातों का, यही तो मेरी लाइफ है। आपके शब्दों में जो प्रेम है वो अद्भुत है। मैं अंदाजा लगा सकता हूं कि आपकी

मुस्कुराहट भी बहुत खूबसूरत होगी। कितने खुश नसीब हैं वो लोग जो आपको मुस्कुराते हुए देखते होंगे। और हाँ, मुझे तो लगता है कि आपके मरीज तो ठीक होना ही नहीं चाहते होंगे। और मेरी आवाज तो इसलिए आपको अच्छी लगती है क्योंकि आप दिल से सुनती हैं, लोग सुनते होंगे कानों से। अभी और खत, और भी बातें।

माया को यकीन हो चला था कि उसकी बात उस तक पहुंच गई। आज जोर से चिल्लाना चाहती थी, समीर आई लव यू। ये तब की बात है जब सोशल मीडिया जैसी चीज नहीं हुआ करती थी, मोबाइल भी इतना कॉमन नहीं हुआ था। माया से अब नहीं रहा जा रहा था कि कैसे भी करके वो समीर से मिलना चाहती थी। टेलीफोन डायरेक्ट

से उस रेडियो स्टेशन का नंबर निकाला। उसमें उसे 3 नंबर मिले। पहला ट्राई किया, आवाज आई, यह नंबर अस्तित्व में नहीं है। दूसरा ट्राई किया, इस रूट की सभी लाइनें व्यस्त हैं। ये संदेश किसी महिला की आवाज में था। एक बारगी माया को लगा कि जोर से गाली दे, पर वो बोली, चुप कर, समीर को बुला। पर वो रिकॉर्डेड आवाज थी, इसलिए कोई प्रतिक्रिया नहीं आई। बड़ी कोशिशों के बाद तीसरा नंबर लग गया। उसका धैर्य काम आया। किसी ने फोन उठाया और बोला, कौन? माया, डॉक्टर माया, क्या समीर जी से बात हो सकती है? रूखी आवाज में उत्तर मिला, आप उनसे बात नहीं कर सकती। क्यों? क्यों? माया ने थोड़ा आश्चर्य से पूछा, क्योंकि वो नहीं है। नहीं है मतलब? अभी कुछ देर पहले तो थे। हाँ थे, पर अब नहीं है, वो चले गए, उनका शो खत्म हो गया। अब कब आएंगे? ये हम आपको नहीं बता सकते। क्यों? ऐसा रूल है, आपका मैसेज दे देंगे। अच्छा ठीक है। माया उदास हो गई, कुछ समझ में नहीं आ रहा था क्या करे।

माया का क्लिनिक कुछ खास नहीं चल रहा था, वो उस तरफ ध्यान भी नहीं दे पा रही थी। अधिकतर समय सपने बुनने में निकल जाता। उसकी शादी, बच्चे, न जाने क्या क्या सोच लिया करती थी। जब भी वो किचन में खाना बना रही होती, उसे लगता अभी अचानक समीर आएगा और पीछे से उसे अपनी बाहों में भर लेगा। वो चौंक उठेगी, फिर खुद को ही समझाती, ये क्या पागलपन है, वो यहां कैसे आ सकता है, मुझसे तो वो कभी मिला भी नहीं, मेरे घर का पता भी उसे पता नहीं है। फिर उस

यहां कैसे आ सकता है? मुझसे तो वो कभी मिला भी नहीं, मेरे घर का पता भी उसे पता नहीं है। फिर वो सोचने लगती कि ठीक है, वो मुझसे नहीं मिला, मैं उससे नहीं मिली, पर मेरे खत तो उसे मिले ही हैं। उसकी आवाज में मैंने उसको महसूस किया है।

ये बात माया अच्छी तरह जानती थी कि वह अपने साथ छल कर रही है। जिन ख्यालों के सहारे वो जिंदगी जीने के सपने देख रही है वो संभव नहीं है। भोजन की खुशबू से पेट नहीं भर सकता, बल्कि वो भूख को और बढ़ा देती है। मोहब्बत के एहसासों से जिंदगी नहीं चलती, हकीकत की जमीन पर उतरना ही पड़ेगा। डॉक्टर माया ने सोच लिया अपने ख्वाबों को अमली जामा पहनाना ही है, कुछ भी हो जाए। वो समीर से बात करके रहेगी। एक बार फिर उसने ऑफिस में कॉल किया, फिर से वही आवाज, इस रूट की सभी लाइनें व्यस्त हैं, कृपया थोड़ी देर बाद प्रयास करें। माया का धैर्य जवाब दे रहा था।

0: आज जब माया क्लिनिक जाने को तैयार हो रही थी तो माँ ने कहा, बेटा जल्दी घर आ जाना, कुछ लोग आने वाले हैं। पहले तो माया को लगा कि कह दे आप भी ना किस किस को बुला लेती हैं, मेरे पास टाइम नहीं है, मैं नहीं आ पाऊंगी, आप मिल लेना। परंतु माया ने ऐसा कुछ नहीं कहा, ठहर कर माँ को बड़े इत्मीनान से देखा, मुस्कुराई और कहा, ठीक है मैं आ जाऊंगी, कुछ लाना है तो बता देना। माँ ने कहा, अरे तू आ जाना, बाकी सब मैं देख लूंगी।
1: तब

अभी आप सुन रहे थे अरुण शेखर की लिखी कहानी आवाज ही पहचान है, उन्हीं के स्वर में। संपादन और प्रस्तुति रमेश गोखले की।

0: संकट दी घड़ी विच जयकारे थकने नहीं चाहिदे, नगारे वजदे रहने चाहिदे ने,
1: ते जित दा भरोसा बनिया रहना चाहिदा है।
0: गुरदीप घड़ी वाले वेखिए तां गुरदीप जी इशारा कर रही है कि समा आपां नू इजाजत नहीं दे रहा, क्यों ना आपां अपने रब वर्गे, अपने सिरां दे ताज, अपने दिलां दी धड़कन, अपने रूह दे नेड़े वसदे, अपनी आवाज अपने रब वर्गे स्रोतियां तों इह प्रोग्राम संपूर्ण करन दी लईए। आग्या फिर मिलन दी आस नाल रब राखा, आमीन। वाचक संपादन ते निर्माता।

0: amgalna chugalda. Program galna chugal haftawari silsila Srota Manch. और श्रोता मंच लेके हाजिर हाँ जी, मैं तुहाड़ी अपनी दोस्त ते होस्ट विजय लक्ष्मी। प्यार भरी सत श्री अकाल, नमस्कार, आदाब ते गुड इवनिंग दे नाल। श्रोता मंच है ते असी अपने श्रोतियां नूं भी सद्दा देना है, क्योंकि ये मंच ही साडे श्रोतियां दा है, क्योंकि साडे श्रोते इस मंच ते आके शिकवे, शिकायतां, गिले, अपनी पसंद ते अपनियां फरमाइशां तो सानूं जाणू करवाउंदे ने, ते फिर असी भी उहनां दीआं फरमाइशां नूं पूरा करन दी पूरी कोशिश करदे आं, ते उहनां दीआं शिकायतां नूं दूर करन दी भी कोशिश करदे आं। और प्रोग्राम श्रोता मंच दे विच अज मेरे नाल प्रचौरा जी जुड़ चुके ने, श्रोतियां दीआं शिकवे, शिकायतें, गिलां नूं दूर करन दे लई। रजौरा जी, प्यार भरी सत श्री अकाल
1: जी। सत श्री अकाल, नमस्कार तुहानू भी विजय जी, ते साडे श्रोतियां नूं भी प्यार भरी नमस्कार। साडे श्रोते जिहड़े ने उह इस प्रोग्राम दे विच शिरकत करदे ने, साडे नाल जुड़दे ने, साडे वट्सएप नंबर नूं डायल करदे है, लैंडलाइन नंबर नूं डायल करदे है, ते वट्सएप नंबर दे उत्ते सुनेहा भेजदे ने विजय जी।
0: बिल्कुल जी, और स्टूडियो दा नंबर दस देने आ, 01-64-22-40-331 ए है नंबर साडा टेलीफोन लाइन दा, ते वट्सएप नंबर है जी 77-173-73-146, जिहड़े कि साडे श्रोते इस नंबर ते अपने वट्सएप सुनेहे भेज सकदे ने
1: जी। बिल्कुल जी
0: जी, तो फिर असी शिकायतां दी शुरुआत भी करदे आं, ते पर दो लाइनां जी मैं कुछ
1: जी, बिल्कुल तुसी कुछ कहना चाह रहे हो?
0: हाँ, बस मैं सारे गवां पानी कहना, मैं तो बस यही कहना
1: इरशाद,
0: कहंदे साडी खामोशी भी पढ़ लिया कर, हर गल जुबान नाल नहीं की जांदी, शिकायत उन्हां नाल ही हुंदी है जिन्हां तो दिल भी अजे उम्मीद बाकी हुंदी है
1: जी।
0: सो उम्मीदां साडे श्रोतियां नूं साडे तो बहुत है, ऐसे करके फिर शिकायतां दे नाल साडे नाल जुड़दे ने, ते फिर तारीफां नाल सानूं हौसला अफजाई दे विच जोड़दे ने
1: जी। ते साडे श्रोता जिहड़े ने नंबर एक बार फिर सुन लैण, 01-64-22-40-331 साडे स्टूडियो दा नंबर है, अते 77-173-73-146 साडा नंबर है, ते पहले कॉलर जिहड़े है ओह भी आ गए
0: है। क्या बात है जी, श्रोता इक नाल है साडे। हैलो
2: हैलो,
0: हां जी, कौन बोल रहे हो?
2: मैं जगदीर सिंह पिंड बोल जी थोड़ा नजदीक भगतापुर जी दा बोलदा जी।
0: जी की कहना चाहते हो?
2: कहना जी, मैं बस यही कहना चाहना जी, महीने दे विच मैं 150 वारी कॉल ला देना जी शाम सोनी ते।
1: अच्छा जी,
2: कृपा करके वजीत जी सर जी नूं कह दिओ, मैं तां जी बहुत लंबे समय तो रेडियो दा फैन है, अभी हुण वी मैं प्रोग्राम सुन रहा सी बलजीत शर्मा दा ते गुरदीप गिल दा।
1: हां जी,
2: होर सारे प्रोग्राम सुनदा जी, मैं 60 साल दा हैगा, खेती बाड़ी करदा है।
1: बहुत वधिया गल्ल,
2: साडे विशे नाल इह इहनां दा विशा सी इह।
1: हां जी,
2: इस करके जिहड़े गाणे वी लाए बहुत वधिया, साडी किसानी आए जिहड़े छोटे प्रोग्राम आया बहुत वधिया है। इक मैं थोड़ा सवाल पुछना चाहुंदा है।
1: हां जी, बड़े प्यार नाल सुनदे हो, देखो हुण इस तो पहला भी तुसी प्रोग्राम सुन रहे सी, तुसी सुन लग्या भी है ना, अपना समा दे रहे सी, फिर तुसी फोन मिलाउण लई भी अपना समा दित्ता, इस लई साडी आवाज़ ते साडा प्रोग्राम जिहड़ा उह बहुत वधिया हो जांदा। तुसी शर्मा जी की गल की, गुरदीप गिल होरां दे नाल ओ प्रोग्राम कर रहे सी,
2: सारे प्रोग्राम सुनदा जी, मैं सारे सुबह तों लेके सुनदा जी।
1: बहुत अच्छी जी, बड़ी मेहरबानी जी।
2: सर जी, बस एक मेरी बेनती यही है जी, एक तां शाम सोहणी दे विच फोन लगाया जावे जी मेरा
1: जी। तुहाडा फोन शाम सोहणी च सी नहीं, तुसी कोशिश करो, देखो जिवें इधर लग गया ना उवें ही लग जाएगा जी, कोशिश करदे रहो।
2: हां, बहुत कोशिश कर, तुहानूं दस्सिया जी, मैं एक दिन दा 5-6 वारी
1: पोस्ट कार्ड सामने रखे हुए है, कुछ अंतरदेशी पत्र जेड़े ओ भी पए है सामने, ते किन्ना किन्ना दे खत शामिल कर रहे हो जी?
0: जी, सब तो पहला मंगा पिंड गंगा अबलुकी जिला बठिंडा तो बेटा बंटी, बेटिया रमनदीप कौर, प्रवीन, दोती परमप्रीत, गुरमीत, प्रितपाल, इन्हां दा सारा परिवार। प्यार भरी सत श्री अकाल श्रोता मंच पेश करन वाले नूं, कहिंदे मिति 6-9-2026 नूं मैडम विजय लक्ष्मी जी ने प्रोग्राम पैगाम पेश कीता, बहुत आनंद आया।
1: शुक्रिया जी, मैडम विजय वालों तुहाडा धन्नवाद, ओह मशरूफ ने इत्थे खत पढ़न च मैं धन्नवाद कर रहे हैं जी।
0: जी, और कहिंदे उन्हां दी पेशकारी बहुत ही वधिया लगदी है, शुक्रिया जी,
1: जी
0: विजय लक्ष्मी जी वालों
1: जी, जी।
0: यानी कि मेरे वालों। और कहिंदे किरण पाल जी स्टूडियो विच नहीं आ रहे, मैडम किरण पाल जी दी हाजरी जरूर लवाओ।

सिंजेंट का लॉयल्टी प्रोग्राम लेके आया है जोड़ी धमाका, जोड़ी पक्की इनाम तगड़ा, 1 करोड़ रुपए तो ज्यादा दे इनाम, 2 थार, 6 बाइक, 12 स्कूटी, 1,000+ विनर्स, 2 लीटर एमस्टार टॉप प्लस

0: जीवन के प्रारंभिक वर्षों में ही तय होता है कि बच्चों का कितना मानसिक विकास होगा और वो जीवन में कितना आगे बढ़ेंगे। हमारी आंगनबाड़ियों में बच्चों का प्रारंभिक विकास, सही पोषण, भरपूर प्यार, गर्म ताजा भोजन और खेल खेल में सीखने के माध्यम से हो रहा है। साथ ही प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के तहत पात्र धन राशि सीधे माताओं के बैंक अकाउंट में जमा कर सुरक्षित मातृत्व को सुनिश्चित किया जा रहा है। हमारी आंगनवाड़ी हमारी जिम्मेदारी के संकल्प के साथ 9 सितंबर 2026 से 8 अक्टूबर 2026 तक मनाया जा रहा है नौवा राष्ट्रीय पोषण माह।
1: देश के हर गरीब हर व्यक्ति तक पोषण पहुंचाना भी सरकार की प्राथमिकता है।
0: आज ही

0: नजदीकी आंगनबाड़ी से जुड़िए, क्योंकि हमारी आंगनबाड़ी है हमारी जिम्मेदारी।
1: नमस्कार, ए आकाशवाणी है। हुण तुसी सरबजीत कौर तो प्रादेशिक खबरां सुनो। पहला इस बुलेटिन दियां खास खबरां। समाजिक न्याय ते अधिकारां बारे केंद्रीय राज मंत्री रामदास अठावले ने कहा है कि उन्हां दी पार्टी पंजाब अंदर अकाली भाजपा गठजोड़ नाल रल के चोणां लड़न लई तैयार है। भारतीय जनता पार्टी पंजाब वल्लों नशियां दे खात्मे लई राजव्यापी नशा मुक्त पंजाब यात्रावां 18 सितंबर तों। पंजाब सरकार वल्लों पट्टी दर्ज जाता दे विद्यार्थियों नूं वड्डी राहत वजों अकादमिक सैशन 2025-26 लई डॉक्टर अंबेडकर स्कॉलरशिप पोर्टल नूं 17 सितंबर तक दुबारा खोल दिता गया है। मुख्यमंत्री सेहत योजना तहत सूबे विच करीब 2 लाख होर कार्ड जल्द उपलब्ध होने की उम्मीद। 31 लाख कार्ड पहला ही जिले विच उपलब्ध। ते जूनियर एशिया कप हॉकी विच भारत की मर्दा की टीम पहले सैमीफाइनल विच मलेशिया नू 3-1 नाल हरा के फाइनल विच पहुंची। हुण खबरां विस्थार नाल। समाजिक न्याय ते अधिकारां बारे केंद्रीय राज मंत्री रामदास अठावले ने कहा है कि पंजाब अंदर अकाली भाजपा गठजोड़ होना चाहिए अते उन्हां दी पार्टी दोवें धिरां नाल रल के चोणां लड़न लई तैयार है। श्री अठावले ने अज लुधियाणा विच एक प्रेस कॉन्फ्रेंस नूं संबोधन करदिआं कहा कि आउंदियां पंजाब विधानसभा चोणां च भारतीय जनता पार्टी ते श्रोमणी अकाली दल दोवां नूं हथ मिला लेना चाहिए है। उन्हां कहा कि उन्हां दी पार्टी रिपब्लिकन पार्टी आफ इंडिया इन्हां दोवां पार्टियां नूं हमायत देगी। उन्हां कहा कि सूबे अंदर अकाली भाजपा गठजोड़ विच शामिल होके पार्टी अहम भूमिका निभा सकती है।
2: आने वाले विधानसभा के चुनाव में मुझे लगता है कि बीजेपी और अकाली दल ने एक साथ आना चाहिए और रिपब्लिकन पार्टी को भी साथ में रखना चाहिए। कुछ सीटें रिपब्लिकन पार्टी को मिलनी चाहिए और इस पार्टी का साथ अगर बीजेपी अकाली को मिलता है तो सत्ता लाने में बहुत ही सफलता मिलेगी और आम आदमी पार्टी की तरफ से भगवान मान जी की तरफ से यहाँ के लोगों को न्याय नहीं मिला है। यहाँ का लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति बहुत बड़ी गंभीर।
1: उन्होंने लुधियाना विच बीते दिनी संविधान निर्माता डॉक्टर बी आर अंबेडकर दे बुत दी बेअदबी किते जाण दी घटना दी भी निखेधी करदियां दोषियों खिलाफ सख्त कार्रवाई दी मांग कीती है। पहला मंत्री ने लुधियाना जाण तो पहला जलंधर च डेरा सचखंड बल्लां विखे पदम श्री संत निरंजन दास जी महाराज नाल मुलाकात कीती। उन्हां कहा,
2: आज संत निरंजन दास महाराज जी को मिलने के लिए मैं इधर आया था। गुरुद्वारा पूरे पंजाब में बहुत बड़ा फेमस गुरुद्वारा है, एक बहुत हमारे दलितों का बहुत बड़ा श्रद्धा स्थान है, तो इनका काम बहुत बड़ा है। संत रोहिदास जी ने मतलब जातीय व्यवस्था के खिलाफ आवाज उठाई थी, उन्होंने समाज में एकता पैदा करने के लिए काम किया था और उसी को आगे बढ़ाने का काम यहाँ संत निरंजन दास महाराज जी कर रहे हैं और हमें उनके बारे में बहुत बड़ा गर्व है।
1: भारतीय जनता पार्टी पंजाब भाजपा का नारा नशा मुकाना सारा दे नारे नाल राजव्यापी नशा मुक्त पंजाब यात्रावां शुरू कर रही है। 18 सितंबर तो 4 पड़ावां विच शुरू हो रही ए यात्रा 13 दिनां तक जारी रहेगी अते नशियां विरुद्ध लड़ाई नूं एक विशाल लोक लहर विच बदलण लई सारे 117 विधानसभा हलकियां दे लोकां नूं इकजुट करेगी। ए ऐलान भाजपा दे सूबा प्रधान केवल सिंह ढिल्लों ने अज चंडीगढ़ विच एक प्रेस कॉन्फ्रेंस दौरान कीता। वेरवा ਸਾਡੇ ਪੱਤਰਕਾਰ ਤੋਂ।
3: ਕੇਵਲ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨਿਤਿਨ ਨਵੀਨ 18 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਪਠਾਨਕੋਟ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਏਕਤਾ ਸਥਲ ਮਾਧੋਪੁਰ ਤੋਂ 4 ਵਿੱਚੋਂ ਪਹਿਲੀ ਯਾਤਰਾ ਨੂੰ ਝੰਡੀ ਦਿਖਾ ਕੇ ਰਵਾਨਾ ਕਰਨਗੇ। ਇਹ ਚਾਰੋਂ ਯਾਤਰਾਵਾਂ 30 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਜਲੰਧਰ ਵਿਖੇ ਸਮਾਪਤ ਹੋਣਗੀਆਂ।
4: ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ਾ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦਾ ਸੰਕਲਪ ਲਿਆ। ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ਾ ਵਿਰੁੱਧ ਯਾਤਰਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸਾਡਾ ਸੰਕਲਪ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਨਸ਼ਾ ਮੁਕਤ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਨਸ਼ਾ ਵਿਰੁੱਧ ਲੜਾਈ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਿਆਪਕ ਜਨਤਕ ਅੰਦੋਲਨ ਬਣਾਉਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਰੂਟ ਜਿਹੜੇ ਆ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਆ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਵਿੱਚ, ਲਗਭਗ 4000 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦਾ ਸਫ਼ਰ ਤੈਅ ਕਰੇਗੀ ਇਹ ਨਸ਼ੇ ਵਿਰੁੱਧ ਯਾਤਰਾ।
3: ਸ਼੍ਰੀ ਢਿੱਲੋਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਯਾਤਰਾ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ 3 ਵੱਡੀਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਤੇ ਕੇਂਦਰਿਤ ਹੋਵੇਗੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਰਹੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਖਤਰੇ, ਵਿਗੜਦੀ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਅਤੇ ਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਹਰ ਪੱਧਰ ਤੇ ਉੱਪਰ ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਤੱਕ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਸ਼ਾਮਿਲ ਨੇ। ਢਿੱਲੋਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸਿਰਫ ਨਸ਼ਾ ਵਿਰੋਧੀ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਯਾਤਰਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਨਸ਼ਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬੀਅਤ, ਸਾਡੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰ, ਕਦਰਾਂ ਕੀਮਤਾਂ, ਹਿੰਮਤ ਅਤੇ ਗੁਰੂਆਂ ਦੀ ਧਰਤੀ ਦੀ ਮਾਨਮਤੀ ਪਛਾਣ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣ ਲਈ ਇਹਨਾਂ ਗੰਭੀਰ ਖਤਰਿਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ। ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਉਪ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਬਾਦਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ

0: महंगाई महंगाई, इस महंगाई में सुकून से कौन सो पाएगा?
1: वही जो स्लीप वेल स्टोर से मैट्रेसेस खरीद कर लाएगा, क्योंकि स्लीप वेल में चल रहा है ग्रेट स्लीप वेल फेस्टिवल, जहां आपको मिलेगा फ्लैट 21% से 100% तक का डिस्काउंट। विजिट द नियरेस्ट स्लीप वेल स्टोर टुडे।
2: ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਦੋਸਤੋ, ਮੈਂ ਹਾਂ ਹਰਜੀਤ ਹਰਮਨ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹੋ ਮਾਲਵੀ ਦੀ ਸ਼ਾਨ ਤੇ ਸਰੋਤਿਆਂ ਦੀ ਜ਼ੁਬਾਨ, ਆਕਾਸ਼ਵਾਣੀ FM ਬਠਿੰਡਾ FM ਬੈਂਡ 101.1 ਮੈਗਾਹਰਟਜ਼ ਤੇ।

0: ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਗੀਤ, ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੁਣਾਂਗੇ ਕੁਝ ਸੰਦੇਸ਼।
1: महंगाई महंगाई, इस महंगाई में सुकून से कौन सो पाएगा?
2: वही जो स्लीप वेल स्टोर से मैट्रेसेस खरीद कर लाएगा, क्योंकि स्लीप वेल में चल रहा है ग्रेट स्लीप वेल फेस्टिवल, जहां आपको मिलेगा फ्लैट 21% से 100% तक का डिस्काउंट। विजिट द नियरेस्ट स्लीप वेल स्टोर टुडे।

0: जिस पावन स्वरूप विच गुरु साहिबान जी दी बाणी दा प्रकाश है, जिस विच मनुखता लई सच सेवा सिमरन अते बराबरी दा संदेश है। तन तन श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी दे पहले प्रकाश पर्व दे पावन मौके ते मिति 12 सितंबर दिन शनिवार दोपहर 12:10 ते तुसी सर्वन करोगे आकाशवाणी बठिंडा दी विशेष पेशकश
1: सर्व उच्च अते पवित्र ग्रंथ ज्ञान दी ज्योत श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी।

प्रोग्राम दे वाचक ते निर्माता निर्देशक बलजीत शर्मा, संपादन ममता अरोड़ा। ता फिर सर्वन करना ना भूलना। मिति 12 सितंबर, दिन शनिवार, दोपहर 12:10 ते आकाशवाणी बठिंडा दी ए विशेष पेशकश।

0: आओ गुरबानी दे पावन शब्दा नू नतमस्तक होइए अते गुरु साहिब दियां सिख्यावां नू अपने जीवन विच अपनाउन दा संकल्प करिए।
1: महंगाई महंगाई, इस महंगाई में सुकून से कौन सो पाएगा?
2: वही जो स्लीप वेल स्टोर से मैट्रेसेस खरीद कर लाएगा, क्योंकि स्लीप वेल में चल रहा है ग्रेट स्लीप वेल फेस्टिवल, जहां आपको मिलेगा फ्लैट 21% से 100% तक का डिस्काउंट। विजिट द नियरेस्ट स्लीप वेल स्टोर टुडे।
1: महंगाई महंगाई, इस महंगाई में सुकून से कौन सो पाएगा?
2: वही जो स्लीप वेल स्टोर से मैट्रेसेस खरीद कर लाएगा, क्योंकि स्लीप वेल में चल रहा है ग्रेट स्लीप वेल फेस्टिवल, जहां आपको मिलेगा फ्लैट 21% से 100% तक का डिस्काउंट। विजिट द नियरेस्ट स्लीप वेल स्टोर टुडे।

0: महंगाई महंगाई, इस महंगाई में सुकून से कौन सो पाएगा?
1: वही जो स्लीप वेल स्टोर से मैट्रेसेस खरीद कर लाएगा, क्योंकि स्लीप वेल में चल रहा है ग्रेट स्लीप वेल फेस्टिवल, जहां आपको मिलेगा फ्लैट 21% से 100% तक का डिस्काउंट। विजिट द नियरेस्ट स्लीप वेल स्टोर टुडे।
0: महंगाई महंगाई, इस महंगाई में सुकून से कौन सो पाएगा?
1: वही जो स्लीप वेल स्टोर से मैट्रेसेस खरीद कर लाएगा, क्योंकि स्लीप वेल में चल रहा है ग्रेट स्लीप वेल फेस्टिवल, जहां आपको मिलेगा फ्लैट 21% से 100% तक का डिस्काउंट। विजिट द नियरेस्ट स्लीप वेल स्टोर टुडे।
0: महंगाई महंगाई, इस महंगाई में सुकून से कौन सो पाएगा?
1: वही जो स्लीप वेल स्टोर से मैट्रेसेस खरीद कर लाएगा, क्योंकि स्लीप वेल में चल रहा है ग्रेट स्लीप वेल फेस्टिवल, जहां आपको मिलेगा फ्लैट 21% से 100% तक का डिस्काउंट। विजिट द नियरेस्ट स्लीप वेल स्टोर टुडे।
2: हां जी श्रोतियो, स्वागत है तुहाडा फिर तो एक बार प्रोग्राम शाम सुहानी च। ਤੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਹੋਰ ਕਾਲਰ ਜੁੜੇ ਨੇ, ਕਰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ।
3: ਹੈਲੋ
4: ਹੈਲੋ,
2: ਹਾਂਜੀ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਕੌਣ ਬੋਲ ਰਹੇ ਹੋ ਤੇ ਕਿੱਥੋਂ ਬੋਲ ਰਹੇ ਹੋ ਜੀ?
4: ਗਿਆਨ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ, ਪਿੰਡ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਬਠਿੰਡਾ ਜੀ।
2: ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਗਿਆਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਗੀਤ ਕਿਹੜਾ ਸੁਣੋਗੇ ਜੀ?
4: ਬੱਬੂ ਮਾਲ ਦਾ ਸੁਣਾ ਦਿਓ ਜੀ, ਆਪਣਾ ਜੱਟ ਦੀ ਜੂਨ।
2: ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਜ਼ਰੂਰ ਸੁਣਾਵਾਂਗੇ। ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਫੋਨ ਲੱਗਿਆ ਅੱਜ ਤੁਹਾਡਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਚ? ਸਾਡੇ ਦੂਸਰੇ ਸਰੋਤਾ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮੌਕਾ ਮਿਲ ਜੇ ਫੋਨ।
4: ਹਾਂਜੀ,
2: ਤੇ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਪਸੰਦ ਦਾ ਗੀਤ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਕਾਲ ਕਰਨ ਲਈ ਧੰਨਵਾਦ।
4: ਠੀਕ।

0: प्रोग्राम श्याम सुहानी।
1: FM बैंड 101.1 MHz ते प्रसार भारती दी मोबाइल फोन ऐप न्यूज़ ऑन AIR ते तुसी सुन रहे हो आकाशवाणी FM बठिंडा दे प्रसारण। समा हो रहा जी स्टूडियो दी घड़ी मुताबिक 7:29 ते 30 सेकंड दा। ते आओ हुण सुनदे आं पंजाबी विच खबरां आकाशवाणी दे जलंधर केंद्र तों। खबरां लई करदे आं कुछ पल इंतजार।

0: नमस्कार, ए आकाशवाणी है। खबरों के इस बुलेटिन नाल मैं अमन देव। पहला खास खबरां। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अज नवी दिल्ली में ब्रिक्स व्यापार फोरम को संबोधन किया। उन्होंने कहा कि ब्रिक्स देश विश्वव्यापी नवीनता के हलों के महत्वपूर्ण केंद्र वजो उभर रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अज रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन नाल मुलाकात दौरान वख-वख खेत्रां च दुवल्ले सहयोग की प्रगति का जायजा लिया है। कल तो शुरू हो रहे 18वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन लई मंच पूरी तरह तैयार है। विदेशी नेतावां दा नवीं दिल्ली पहुंचना जारी है। भारतीय जनता पार्टी पंजाब च 18 सितंबर तो नशा मुक्त पंजाब यात्रावां शुरू करेगी। मर्दां दे जूनियर एशिया कप हाकी च भारत मलेशिया नूं 3-1 नाल हरा के फाइनल च पहुंच गया है। हुण खबरां विस्थार नाल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि ब्रिक्स देश विश्वव्यापी नवीनता के हलों के महत्वपूर्ण केंद्र वजो उभर रहे हैं। अज शामी नवी दिल्ली के भारत मंडपम विखे ब्रिक्स व्यापार फोरम के आगुआ के सैशन को संबोधन करते हुए उन्होंने कहा कि ब्रिक्स देश अज दुनिया की 50% आबादी, विश्व GDP का 40% और विश्व व्यापार के 25% तो वध की नुमाइंदगी करते हैं।
1: आज ब्रिक्स के देश विश्व की 50% पॉपुलेशन, 40% GDP और 25% से अधिक ट्रेड को रिप्रेजेंट करते हैं। इन वर्षों में जहां ग्लोबल GDP करीब 2.5 गुना हुई है, वहीं ब्रिक्स देशों की कंबाइंड GDP करीब 4.5 गुना हुई है। यानी

0: उनके अंदर एक जज्बा ये है कि जब वो लाइन, जब वो पिच पे आती है तो वो कहीं ना कहीं स्पिनर्स पे आके रुक जाती हैं, जिस तरीके से मैंने उनको अभी तक देखा है और जज किया
1: ये
0: है.
1: मैंने नहीं बताया, ये आप ही को बताना था. व्हाट इज दैट स्पेशल थिंग दैट यू लाइक अबाउट हर?
0: अबाउट हिटिंग,
1: हिटिंग
0: या
1: और टाइमिंग उनकी बहुत अच्छी
0: बहुत
1: है.
0: अच्छी है, बहुत अच्छी है, कमाल की हिटिंग है उनकी, और वो मुझे काफी इम्प्रेसिव भी लगती है.
2: और बाकी की चीजें हमारे कॉलर्स हैं क्या स्पेशल है वो बताने वाले हैं. और कॉलर जुड़ गए हमारे साथ. नमस्कार. जी खेम सिंह जी, क्या कहना चाहेंगे?
3: मैम जो आज भी हमारे जीवन में बहुत महत्वपूर्ण रोल प्ले करता है मैम, हम कमेंट्री रेडियो के माध्यम से सुनते हैं मैम. मैं विजुअली इम्पेयर्ड हूँ और रेडियो जॉकी हूँ, रेडियो कुल्लू में. जी

0: रेडियो के माध्यम से सुनते हैं मैम। मैं विजुअली इम्पेयर्ड हूँ और रेडियो जॉकी हूँ, रेडियो कुल्लू में। जी
1: जी हमें बहुत खुशी होती है आप हमें हमसे जुड़ते हैं, और आप जो श्रोता हैं वो हमारे संबल हैं। कहिए और क्या कहना चाहेंगे आप हमारे एक्सपर्ट से।
0: मैम, सबसे पहले आप तमाम जितने भी एक्सपर्ट्स हैं, जितने भी हमारे एंकर्स हैं, उनको मेरा नमस्कार। और मैं ये कहूंगा कि मुनीर जॉली सर से, इनकी आवाज मुझे एक तो बहुत अच्छी लगती है, आपकी गीतांजलि मैम की भी बहुत अच्छी लगती है। लेकिन
1: शुक्रिया।
0: एक्सपर्ट से मैं ये कहूंगा कि मैम, हम आए दिन देख रहे हैं कि जब हम मैचेस को देखते हैं तो जो हमारे जो बाकी टीम्स है, जैसे हम जानते हैं कि एशिया में इंडिया जो है वो डोमिनेट कर रहा है मैम, ना केवल एशिया में बल्कि वर्ल्ड में। लेकिन एशियन मैचेस एक तरफा हमें क्यों लगते हैं मैम, बहुत ही, जैसे आप चाहे श्रीलंका से खेलो, पाकिस्तान से खेलो, ऐसी क्या है कि भाई बाकी टीमें जो ऐसी इस परफॉर्मेंसेस को नहीं कर पा रही जो इंडिया इतने अच्छे से कर पा रही? मतलब एक तरफा ही वन साइड अफेयर्स हमें देखने को मिल रहे हैं मैम। नहीं,
1: ओके, थैंक यू सो
0: हमारे लिए
1: मच।
0: खुशी की बात है मैम, वन साइड अफेयर्स मिल रहे, लेकिन हम चाहते कि क्रिकेट के नजरिए से मैचेस अच्छे हों।
1: जी बहुत बहुत शुक्रिया। नाउ
2: बेसिस
1: सुमित्रो, बहुत अच्छी बात है, हमारे जो श्रोता हैं वो बहुत खाली क्रिकेट इंडिया की वजह से नहीं देखना चाहते हैं, वो एक अच्छा क्रिकेटिंग गेम देखना चाहते हैं। आपका क्या कहना है
2: यही
1: इसमें?
2: मैंने 2 मिनट पहले कहा
1: जी
2: कि एशिया का कॉन्टिनेंट हिसाब से अगर देखा जाए, पाकिस्तान को स्पोर्ट स्पेशली क्रिकेट और हॉकी में अच्छा खेलना बहुत जरूरी है। और अभी प्रेजेंट में आप देखिए, उनका दोनों में अच्छा नहीं चल रहा। इवन मेंस क्रिकेट इफ यू नोटिस मनीष, दे आर नॉट इन द बेस्ट ऑफ शेप। और हॉकी में तो बहुत ही बुरा हाल है। आप देखिए, अभी जूनियर एशिया कप है, जिस तरह से इंडिया हार रहा है, जिस तरह से सॉरी पाकिस्तान हार रहा है। इट इज़ वेरी जरूरी है कि क्रिकेट और हॉकी में, खास करके पाकिस्तान को उस लेवल पे आना जरूरी है जहाँ कि इन एशिया को हम रिप्रेजेंट जब करेंगे एट द वर्ल्ड लेवल, दे लुक अ वेरी स्ट्रांग कॉन्टिनेंट। वन साइडेड तो है, नो डाउट अबाउट इट। इंडिया इज क्रिकेट स्ट्रक्चर, बीसीसीआई इज क्रिकेट स्ट्रक्चर, जिस तरह से द डेप्थ ऑफ द वे बीसीसीआई रीचेस टू द ग्रास रूट्स, जिस तरह से टैलेंट आता है, वी हैव टूर्नामेंट्स लाइक वुमेन्स आईपीएल एंड सो मेनी अदर थिंग्स, फाइनेंशियल इंसेंटिव्स और अपॉर्चुनिटीज। आज इंडिया में वुमेन्स के लिए क्रिकेट इज एन अपॉर्चुनिटी, इज अ करियर, पाकिस्तान में नहीं है।
3: Dada, in 10 minutes we have to hand over the studio to the commentators and we want to make it aware to our listeners also कि हमारे स्टूडियो में क्या चल रहा है। हम लोग चार लोग यहाँ बैठ के डिस्कशन कर रहे हैं, फैक्ट्स पे बात कर लेते हैं।
2: जी,
3: आप कह रहे हैं पाकिस्तान के लिए अच्छा नहीं है ये हो रहा, बट इट्स नॉट द प्लेयर्स हु आर टू बी ब्लेम्ड।
2: नॉट एट ऑल।
3: बट आप अगर आज से 30 साल पहले पाकिस्तान की क्रिकेट पीसीबी को देखें, वॉज दैट गवर्नड द सेम वे इट इज गवर्नड टूडे?
2: No, I think then it was much better.
3: Yeah,
2: they had better quality players. They had leadership qualities. There was a time when the Pakistan men's cricket team had 6 captains, but there was no infighting.
3: But was it run by PCB, genuine people who knew what cricket is?
2: Maybe there are people like Shahryar Khan. Don't forget, diplomatic, cricketing background, understood more of sport, less of politics. Without politics, no sport can survive in the subcontinent. But the point is, when sport is top, takes priority over politics, and the best players play, that's why you always had Imran Khan and Wasim Akram and Majid Khan and Zahir Abbas. They were a real force.
3: And it's that's the reason I asked you this question, because unke caliber ka koi player yahan pe abhi dikh nahi raha.
2: Nahin.
3: And that is the area of concern.
2: Absolutely.
1: और मुनीश, आपने भी कंसर्न की बात की है, ऑब्वियसली आप हमारे जो श्रोता हैं वो रहते खुश हैं इंडिया के परफॉर्मेंस से। लेकिन वैशाली, मैं आपसे जानना चाहती हूँ, एज अ क्रिकेटर, इस वक्त जो हमारी इंडियन टीम है उनकी आपको क्या ऐसी स्ट्रेंथ लगती है? ऑब्वियसली फाइनल में है तो बहुत ही अच्छा कुछ किया हमारी टीम ने, इसीलिए है, लेकिन कुछ कंसर्न भी है इंडियन टीम्स के साथ, तो आपका उस बारे में क्या कहना है?
4: देखिए, इंडिया की बॉलिंग तो बहुत ही अच्छी है, लेकिन उनके साथ है ना शेफाली वर्मा और स्मृति है जो अभी तक बारी संभाल के रखी है उन्होंने, और उसके बाद हमारी हिटर है ऋचा घोष। तो अभी जो बीच का है, हमने देखा है हरमनप्रीत कौर का लास्ट कल के मैच में जो उन्होंने खेला है वो काफी बेटर था परफॉर्मेंस एज कम्पेयर टू अदर मैचेस। तो वो थोड़ा हमें वहां पे थोड़ा सा वर्क करना पड़ेगा, क्योंकि आपको अगर फाइनल जीतने का ख्वाब है तो आपको वहां पे परफॉर्मेंस देनी पड़ेगी, एंड वो जहाँ पे हम लैक्स कर रहे हैं वहाँ पे वो हमें फिल करना पड़ेगा, वो पार्ट, वो एरिया।
1: जी, और हम यही उम्मीद करते हैं कि आज जो भी जीते भारत के लिए, तो आई थिंक अगर पाकिस्तान खेलेगा जैसे सब कह रहे थे तो एक रोमांच भी रहेगा, और मुझे लगता है कि भारत के लिए जीतना आसान हो जाएगा। ये मेरी मेरी सो, मेरा सोच है मुनीश।
3: बिल्कुल सही कहा, वो जो कॉलर ने किया था वो बेसिकली कह रहे थे कि वन साइडेड अफेयर है,
1: जी
3: इट्स अ वन साइडेड लव।

0: तो एकादश जो अभी श्रीलंका और पाकिस्तान की खेलेगी, आइए अपने श्रोताओं को उससे परिचित करवा देते हैं
1: जी। सो श्रीलंकन टीम से क्या आप चाहेंगे मुनीश, आप श्रीलंका टीम के बारे में बताना चाहेंगे?
0: ओके, इमेशा दुलानी और चमरी अथापत्तू कप्तान है, संजना काविंडी, हर्ष थिता, समर विक्रमा, हसीनी परेरा, कविशा दिलहारी, नीलाक्षिका सिल्वा, कौशिनी नुथ्यांगना जो विकेट कीपर भी हैं, और सुगंधिका कुमारी, चामुंडी प्रबोदा और मिथाली अयोध्या को आज मौका दिया गया है, जिसके बारे में हम अपने दोनों एक्सपर्ट से पूछेंगे।
1: जी, मुझे लगा इसी बारे में आपसे टंग ट्विस्टर्स की भी प्रैक्टिस करवा लेती हूँ। और पाकिस्तान की जो टीम है उसमें मुनीबा अली जो विकेट कीपर रहेंगी, शबाज जुल्फिकार है, गुल फिरोजा है, आयशा जफर है, सदाब शमास, फातिमा सना कैप्टन और ऐमान फातिमा, उमेहानी, तौबा हसन और नशरा संधु एंड सादिका इकबाल टीम के अंदर रहेंगी आज।
0: मेरे ख्याल से हमारी इस डिस्कशन में जो चार मेंबर टीम है, एक और मेंबर जुड़ रहे हैं। अच्छा। हमारे कॉलर, तो देखते हैं कि इस समय हमारे साथ फोन लाइन पर कौन जुड़ रहे हैं। नमस्कार, स्वागत है आपका।
2: नमस्कार,
0: अपना पूरा परिचय दें और प्लीज बताएं कि क्या कहना चाहते हैं।
2: मैं आदित्य वेस्ट बंगाल से बोल रहा हूँ।
0: अच्छा, वेस्ट बंगाल कहाँ से बोल रहे हैं दादा?
2: वेस्ट बंगाल मेदिनीपुर से।
0: ओके, स्वागत है आपका।
2: अभी हम उड़ीसा में रहने वाले हूँ।
0: ओके,
2: मैं एक सवाल था कि
0: जी,
2: जो आज का मैच बारे में
0: जी,
2: श्रीलंका का जो कैप्टन है
0: जी,
2: वो तो आज बहुत दिन से वो मैंने अच्छा खेल रहा है, तो मेरा सवाल है कि पाकिस्तान का जो कैप्टन है उसका नाम क्या है, और पाकिस्तान आज नहीं जीतेगी, फाइनल नहीं जाएगी, और मेरा सवाल है कि इंडिया से श्रीलंका खेले और फाइनल बहुत अच्छा हो।
0: ओके,
1: पाकिस्तान की तो कप्तान फातिमा सना है, और क्या जानना चाह रहे थे?
0: He was expecting, जी।
2: और एक बात बताना चाहता हूँ कि आज का कमेंट्री में कौन कौन हिंदी कमेंटेटर है?
0: हम बता देंगे, लेकिन दादा द मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट वॉज वॉट ही सेड अबाउट द श्रीलंकन कैप्टन चमरी अथापत्तू। शी इज गॉट 300 इन T20s.
3: Yes, and she's got 9 wickets, or she's probably with the most versatile cricketer they have. Oh, is tarah se, and we are always talking about Chamari Athapattoo, we Harshita ka naam bhi lena chahiye. I think she's the captain in the waiting, aur 28 saal mein unka already, she's a very high caliber batsman. So the fact remains that we were talking about strength or weaknesses of the team. Obviously a very well-rounded Sri Lankan team. And well-rounded team, pretty high on confidence. Teen match jeet ke aaye hain, Pakistan ko bilateral series home mein haraye hain. So we see all the good things are stacked with them. Pakistan have a lot of odds to beat.
1: Right.
3: Main thing is they have to score the runs, and they are batting first. That's the first thing they have to do.
1: But Vishali, abhi jo sara daromadar ho jata hai, wo Pakistan ke jo batters hain, unko bhi kamaan sambhalni hogi right from the word go, because jaisa hum jante hain ki jo Sri Lankan team hai, they are very good batters, they are working very well together. So kya strategy aapko lagti hai Pakistani team ki rehne wali hai aaj?
4: देखिए, अगर दोनों टीमों के बारे में बात करूं तो श्रीलंका बैटिंग से मैच जीतती है और पाकिस्तान अपनी बॉलिंग पे से ही मैच जीतती है, तो ये एक ह्यूज डिफरेंस है दोनों टीमों में। और अगर अभी सर ने बोला कि मिताली के बारे में, जो श्रीलंका प्लेयर है, 19 इयर्स की है वो, यस, एंड उनके अंदर ना एक चीज बहुत अच्छी है कि वो एक तो मीडियम पेसर के साथ साथ ना रो पेस डालती है, उसमें प्लस बाउंस भी होता है। तो उनका जो बॉल है, जो इन्होंने पहले पाकिस्तान की जो सीरीज हुई थी श्रीलंका के साथ, वो मिस कर दी थी, लेकिन इस बार वो पाकिस्तान टीम को ना थोड़ा सा डिफिकल्टी होती है उनको खेलने में, और पेस बॉलर्स को खेलने में पाकिस्तान को काफी डिफिकल्टी होती है
1: जी।
4: तो ये एक बेनिफिट और है श्रीलंका टीम के पास, क्योंकि क्योंकि मिताली को खिलाना बहुत जरूरी था इस मैच में, क्योंकि विकेट्स जल्दी से फॉल करना बहुत जरूरी है श्रीलंका टीम को।
0: राइट, सो दैट्स द वन चेंज वी हैव इन द श्रीलंकन 11। दादा, यू वांट टू ऐड, बिकॉज़ चेतना विमुक्ति हैज बीन रिप्लेस्ड बाय मिताली अयोध्या।
3: So, right, so they have the bench strength. उसको अगर जैसे बोला कि आपने asking गीतांजलि ने सवाल पूछा था कि initially विकेट में पेस है कि विकेट ले सकते कि नहीं, maybe that's the gamble they have taken. And a winning side can take the gambles. और उनके पास इतना बैकअप, इतना सराउंडेड प्लेयर्स है ना, बैकअप तो हो सकता है। if she gets the wickets, great. अगर विकेट नहीं मिला फिर भी उनके पास बोलर्स और भी बोलर्स है, स्पिनर्स भी हैं, वो विकेट ले सकते हैं। बट यस, ऑल सेड एंड डन, पाकिस्तान आर बैटिंग, ऑल आईज विल बी ऑन फातिमा। फातिमा विकेट्स ली हैं, मगर बैटिंग करना इस मैच में और रन

0: बोर्ड में देना बहुत ही जरूरी है, तभी ये वन साइडेड कॉन्टेस्ट नहीं होगी।
1: आपने रन की बात कर ही ली है, तो क्या आपको लगता है एक्सपेक्टेड स्कोर क्या रहने वाला है?
0: एनीथिंग बिटवीन 130 टू 140 विल पुट प्रेशर, विल प्रेशर। एंड डोंट फॉरगेट अगेन आई मेंशन फातिमा हैज गॉट अ ग्रेट स्ट्राइक रेट, 150, फोर्थ बेस्ट इन द वर्ल्ड दिस सीजन। और देखिए वो दैट हैज टू रिफ्लेक्ट टुडे, टुडे इज द मैच, बिकॉज आई कीप सेइंग दैट विन और गो होम मैच।
1: वंडरफुल
2: वैशाली, आप बहुत सीरियस लग रही हैं। टेंस गेम है, ठीक है, श्रीलंका और पाकिस्तान के बीच में, पर आपका एक्सपेक्टेड स्कोर जिससे थोड़ा सा फाइटिंग हो जाए श्रीलंका के लिए?
3: आई एम एक्सपेक्टिंग 135 प्लस। सो मे बी हो सकता है कि क्योंकि हमारी जो बाकी पाकिस्तान की जो टीम है शायद बेटर कर ले, एंड श्रीलंका टीम शायद उसको और इम्प्रूवमेंट दे दे, मे बी हो सकता है इसमें 135 प्लस आई एम थिंकिंग।
2: दादा वेरी क्विकली बिकॉज वी स्टिल हैव अराउंड 2 मिनट्स टू गो बिफोर द कमेंटेटर्स टेक ओवर, आई वांट टू आस्क अबाउट शवाल जुल्फिकार, शी इज बीन रेटेड एज वन ऑफ द हाई स्ट्राइकर, शी मे नॉट बी अमंगस्ट बिग रन्स, बट योर टेक ऑन इट?
0: या आई मीन देयर इज अ रेपुटेशन एंड देयर इज एन एग्जीक्यूशन। आप देखिए इंडियंस हैव सो मेनी हाई कैलिबर प्लेयर्स, बट हाई कैलिबर व्हेन यू डोंट डिलीवर ऑन द बिग डे मेक्स नो सेंस मुनीश। सो इट्स अ फैक्ट रिमेंस दैट नो मैटर व्हाट योर क्रेडेंशियल्स आर, व्हाट योर क्रेडिबिलिटी आर, द फैक्ट रिमेंस ऑन अ बिग डे यू हैव टू प्रोड्यूस द गुड्स। सो द पॉइंट इज दिस, प्रोबब्ली वी विल हैव मच टू टॉक अबाउट इन द मिडिल सेशन। फर्स्ट पाकिस्तान नीड द रन्स ऑन द बोर्ड।
2: हमारे पास थोड़ा सा समय है यहाँ पे वैशाली, और मैं मुनीबा अली, गुलफिरोज, आयशा जफर, सदफ शमस जो टॉप 5 में आएंगे बल्लेबाजी करने के लिए, इनसे आप क्या उम्मीद रखते हैं? पावर प्ले इम्पैक्ट कुछ होना चाहिए शुरू में, या फिर विकेट सेव करिए और बाद में अटैक कीजिए?
3: नहीं, पावर प्ले का भरपूर फायदा उठाना चाहिए फातिमा को स्पेशली, एंड जो भी ऊपर आएंगे बैटर्स उन सबको अपना पावर प्ले का पूरा फायदा उठाना चाहिए, एंड उसके बाद जब बॉलिंग पावर प्ले आएगा वो उसका भी फायदा उठाना चाहिए। ट्राई करें जिस गैप, अगर आप गैप में खेलेंगे तो इट विल गो टू द बाउंड्री, एंड अगर नहीं मारोगे आप गैप में तो वो बाउंड्री तक जानी बॉल बहुत मुश्किल है, क्योंकि वाइट बॉल है वो थोड़ा ज्यादा जल्दी ट्रेवल करती है।
2: राइट देन, बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का, सुमित्र बोस, वैशाली माथुर जी, गीतांजलि सोनी, और मैं अब आप सभी लोगों से विदा ले रहे हैं, क्योंकि हमारी कमेंट्री टीम जो है, जो संदेशा है, वो बिल्कुल तैयार है आंखों देखा हाल सुनाने के लिए। लेकिन चलते चलते बहुत सारे आंकड़ों के बीच में बताना जरूरी है कि श्रीलंका है डिफेंडिंग चैंपियंस एशिया कप की, और सेमीफाइनल का रिकॉर्ड ये बताता है कि जब भी सेमीफाइनल में पाकिस्तान और श्रीलंका भिड़े हैं विमेंस क्रिकेट में, तो 3-2 से पाकिस्तान का रिकॉर्ड उनके फेवर में है। क्या होगा संडे को भारतीय टीम जो इंतजार करेगी दुबई में, कौन भिड़ेगा उनसे, वक्त बताएगा। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया इस प्रोग्राम में सभी श्रोताओं का हमसे जुड़ने के लिए, और हमारे एक्सपर्ट्स का भी।
4: फर्स्ट बॉल 20।
5: मैच का आंखों देखा हाल सुनने के लिए आइए चलते हैं अपनी कमेंट्री टीम के पास।
6: नमस्कार, स्वागत है आपका। ये दूसरा सेमीफाइनल है एशिया कप का। मैं आपका कमेंटेटर विनीत गर्ग, मेरे साथी कमेंटेटर एस किशोर, और वयोवृद्ध और सीजन्ड स्कोरर यशवंत चार्ड और जतिन सूद, हमारे युवा स्टेटिस्टिशियन, उन सब की ओर से भी आपका हार्दिक अभिवादन करता हूं। आप जानते हैं श्रीलंका और पाकिस्तान के बीच ये दूसरा सेमीफाइनल मैच एशिया कप का खेला जा रहा है। पहला समाचार आप सुन ही चुके हैं कि श्रीलंकाई टीम में 2 परिवर्तन हैं, जबकि इस समय दोनों ही देश के राष्ट्रीय गीत और वो बजाए जा रहे हैं, और कैसा ये भावुक क्षण होता है, आपका सीना गर्व से फूल जाता है और आपको एक भावुक बना देता है कि आप अपने देश के लिए कुछ कर गुजरें। तो ये दृश्य इस समय उभर रहे हैं। लेकिन जहां तक टीमों का प्रश्न है, मेरी निगाह में जो ये टीम सामने मुझे नजर आ रही है, पाकिस्तानी टीम में कोई परिवर्तन नहीं है, और श्रीलंकाई टीम में जैसा कि मैंने बताया वो महिलाओं के मलिंगा कहलाने वाली वो मिथाली अयोध्या भंडारा टीम में वापस बुलाई गई हैं, और चेतना विमुक्ति आज टीम में नहीं है, और उधर हसिनी परेरा टीम में नजर आ रही हैं, और विश्मी गुणरत्ने टीम में नहीं आज शामिल की गई हैं। श्रीलंका की टीम इस समय विजय रथ पे सवार है, अब तक इस टूर्नामेंट में एक भी मैच नहीं आ रही है। दूसरी बात यह है कि इस टूर्नामेंट में पाकिस्तान को छोड़कर कभी भी टॉस जीतने के बाद किसी ने बैटिंग नहीं ली, वहीं पाकिस्तान ने हर मैच में बैटिंग ली, यानी कि तीनों मैच में अब तक उन्होंने बैटिंग ली है, एकमात्र टीम है, और ये एकमात्र 3 अवसर हैं जबकि टॉस जीतने वाली टीम ने पहले बैटिंग ली हो।

0: कि सब ने पहले बॉलिंग चुनी है, तो आज कोई इससे अलग कोई बात नहीं है, और श्रीलंका ने टॉस जीतकर पहले बॉलिंग करने का निर्णय लिया है। ये स्थिति यहां पर है, ये जोरदार कांटे का मुकाबला होगा। और सबसे बड़ी दिलचस्पी ये है कि भारत के खिलाफ कौन सी टीम पहुंचेगी, इसलिए बहुत उत्सुकता इस मैच को लेकर है। कौन मुकाबला करेगा भारत से, श्रीलंका या पाकिस्तान? हालिया रिकॉर्ड ऐसा नहीं है, किशोर आपको विस्तार से बताएंगे, लेकिन पिछले 5 मैचों में 3 बार श्रीलंका जीती है, और दोनों के बीच में बाइलेटरल द्विपक्षीय जो मुकाबला हुआ था उसमें भी श्रीलंका विजयी रहा था। और स्वागत करता हूं एस किशोर का, मेरे अंग्रेजी कॉमेंटेटर।
1: Thank you, Vineet. Good evening to you. Good evening to all our listeners, wherever you are tuned into this live and exclusive broadcast on Akashwani. And as Vineet just said, this match, the second semi-final, would decide as to which of these two teams, whether the reigning champion Sri Lanka or would it be Pakistan, who hasn't won a title for a long, long time, who would be contesting with India on the coming Sunday, the big day of the final. But all in all, the other point that Vineet made was also about how Sri Lanka, as has been their practice, have done the insertion job, winning the toss and inviting Pakistan to bat. And Pakistan, on the contrary, have opted to bat whenever they won the toss in this edition of the Asia Cup, Vineet.
0: तो ये सूरत हाल है, आप सभी जानते हैं, अब तक इस टूर्नामेंट में लगभग मिडिल पिच ये नजर आ रही है। एक ही मैच, एक ही मैदान पर एक के बाद एक, कोई रेस्ट डे बीच में नहीं है, हर रोजाना मैच होते रहे हैं। काबिले तारीफ बात है कि ग्राउंड्समैन ने पिचों को सही समय पे तैयार किया, और एक ही मैदान पर जब ये सारे मैचेस हुए हैं, आप ये देखिए कि बात पिच की नहीं है, स्क्वायर के ऊपर भी जब खिलाड़ियों के जूते हैं, दौड़ते हैं आप होते हैं, तो उनका रख रखाव इतना आसान नहीं हो जाता। फिर दूसरी बात यह है, इससे पिच और स्लो होती चली जाती है, ग्रिप ज्यादा करती है, और बैट्समैन की दुश्वारी बढ़ती जाती है। किशोर,
1: यस, यू राइटली पुट इट, द क्यूरेटर्स रियली नीड टू बी यू नो appreciated for the efforts they have put in, not only as Vineet mentioned about the square, the pitch and the square, but the outfield as well. They have the stadium, the Dubai International Cricket Stadium, state-of-the-art technology over there, and it's hosted many international tournaments and this Asia Cup once again. And the other thing I'm sure, Vineet, you would also discuss about is the floodlights at this stadium. They call it the Ring of Fire. It's almost on the periphery of the roof that the floodlights are installed here in the stadium, which is very different from the other stadia you would see around the world.
0: और इसी की वजह से कई बार ऊंचे कैच पकड़ने में यहाँ दिक्कत होती है, क्योंकि पूरी गोलाई में छोटी छोटी छोटी लाइट्स लगी हैं, लाइट टावर्स नहीं है। 4 जो लाइट टावर्स होते हैं हर मैदान पर, वो जो एक ट्रेडिशन बन गई है, जो परंपरा बन गई है, ऐसा यहां नहीं है। यहां छोटी छोटी पूरी पेरिफेरी में, पूरे स्टेडियम की छत पर ऊपर की तरफ लाइट लगी है। आज के मैच के जो अंपायर्स हैं उसमें भारतीय वृंदा राठी हैं। आप जानते हैं कि आईसीसी भी और एशिया कप में भी सारी महिलाओं की टीम होती है, जहां तक मैच ऑफिशियल्स का सवाल है। तो शातिरा जाकिर बांग्लादेश की और भारत की वृंदा राठी मैदान पर हैं। बांग्लादेश की ही रोकेया सुल्ताना वो टीवी अंपायर हैं, और भारत की जीएस लक्ष्मी आज के इस मैच की मैच रेफरी हैं। उधर रिबाब एहसान जो कि लोकल अंपायर हैं, इस बीच दोनों ओपनिंग बैट्समैन मुनीबा अली, पाकिस्तान की 101 मैचेस 1891 रन, और स्ट्राइक रेट 100 का है। देखिए ये 100 मैच खेल चुकी हैं, 4 अर्धशतक हैं, 2 शतक हैं, तो अच्छा बढ़िया है, स्ट्राइक रेट 102 के आसपास है। और उनका साथ देने के लिए आए हैं शाहवाल जुल्फिकार, आई हैं 16 मैच, अभी युवा हैं और शुरुआती है उनके कैरियर की, 327 रन, 1 अर्धशतक उनका है, टच में नजर आ रही हैं। हालांकि भारत के खिलाफ बड़ा स्कोर नहीं कर पाई थी, लेकिन उधर ये जो एक अजूबा है, ये खिलाड़ी जो है, ये सबका ध्यान अपनी ओर आकर्षित कर लेती है, मिथाली अयोध्या बंडारा। ये मलिंगा के अंदाज में स्लिंगर हैं, हाथ को बहुत पीछे से लाकर बॉलिंग करती हैं, और इनके रिलीज पॉइंट्स देखने लायक होते हैं। जो खिलाड़ी मुझे नजर आ रहे हैं, फाइन लेग दायरे के अंदर है, थर्ड मैन भी दायरे के अंदर नजर आ रहा है, और पाकिस्तान मुनीबा क्योंकि लेफ्ट हैंडर है, तो बाएं हाथ के बैटर के लिए आप ये समझ सकते हैं कि एक भरी हुई ऑफ साइड की फील्ड है। स्मरण रहे कि केवल 2 खिलाड़ी बाहर रखे जा सकते हैं, पहले थर्ड मैन और फाइन लेग ही रख दिया जाता था, लेकिन अब पिच इतनी धीमी हो गई है कि स्क्वायर ऑफ द विकेट भी फील्डर्स नजर आने लगे हैं, क्योंकि पावर प्ले में 6 ओवर्स में आपको केवल 2 खिलाड़ी ही आप बाहर रख सकते हैं। ये अच्छा प्रयोग है।

0: और मिताली को वापस बुलाया गया है। भारत के पूर्व कप्तान की नाम राशि है और केवल पहले मैच में खेली थी, उसके बाद से टीम में नहीं रही हैं। और विमुक्ति को खिलाया गया है। विमुक्ति ने हालांकि पिछले मैच में 3 विकेट लिए थे, लेकिन एक अच्छा ये निर्णय है। पाकिस्तान के पास बहुत ज्यादा नहीं है, श्रीलंका के पास लेफ्ट हैंडर्स बहुत हैं, तो क्या उनके पास पर्याप्त ऑफ स्पिनर है? ये चर्चा जारी रहेगी किशोर के साथ। इस बीच मुनीबा तैयार, ये रही दूसरे सेमीफाइनल की पहली गेंद, ऑफ स्टंप के ज्यादा बाहर और पीछे विकेट कीपर की ओर, कौशनी की ओर ये गेंद चली गई, उन्होंने उसको गैदर कर लिया। इस बार एक नई चीज जो देखने को मिल रही है कि पॉपिंग क्रीज के परपेंडिकुलर 90 डिग्री पे दो लाइनें आपको नजर आएंगी, उसमें एक प्रोटेक्टेड एरिया जो डेंजर एरिया होता है, उस पे लाल निशान की लकीर है, और उसके बाद थोड़ी वाइड पोजीशन पे पॉपिंग क्रीज पे नीले रंग की लाइनें हैं। ये वाइड के लिए जो आईसीसी ने नियमों में संशोधन किया है उसके लिए इस्तेमाल की जाएंगी। बात चर्चा जारी रहेगी। इस बार कटकर अंदर की तरफ आई, मिथाली कोई बहुत ज्यादा रफ्तार का प्रयोग नहीं कर रही है, लेकिन शुरू से ही लेंथ अच्छी पकड़ ली है। ऑफ स्टंप की जरा से बाहर कर कट होकर बाएं हाथ के बैटर के लिए ऑफ कटर बनकर ये गेंद अंदर की तरफ आई थी। चमरिया अथापट्टू और जो कि कप्तान है, दिग्गज खिलाड़ी है, सोफी डिवाइन, सूजी बेट्स और टहू जैसी बड़ी खिलाड़ी रिटायर हो चुकी हैं महिला क्रिकेट में, ये चली जाएंगी तो एक वैक्यूम आएगा। इस बीच ये गेंद और बहुत ही राउंड आर्म एक्शन से ये गेंद की और इसमें पहले रन बन जाएंगे। गेंद थोड़ी डीप पोजीशन पे जाए और इससे पहले उठाए जाए, दोनों खिलाड़ियों ने छोर बदला। अब जुल्फिकार पहली बार सामना करेंगी इस मैच में, चश्मा पहन के खेलती हैं, ये विकेट कीपर भी हैं मुनीबा। और अब नॉन स्टैकिंग एंड पर है, पाकिस्तान टॉस हारने के बाद 1 रन बगैर नुकसान कर। तो क्या खिलाड़ी है अत्तापट्टू! मुझे ताज्जुब होता है कि भारतीय वेमेन्स पीएल में इनको ज्यादा तवज्जो नहीं दी गई। केवल एक सीजन वो खेली, लेकिन उसके बाद कोई है ही नहीं जो उनको ऑक्शन में उनके नाम पर बोली लगाए। जबकि श्रीलंका की ओर से बाकी लीग क्रिकेट में, बिग बैश हो, कैरेबियन में या कहीं पर भी, उसमें ये बदस्तूर खेलती रही हैं और श्रीलंका की पहली खिलाड़ी हैं जो लीग क्रिकेट में शामिल की गई हैं। शवाल, जुल्फिकार तैयार, उधर वो स्लिंग बॉलर मिथाली तैयार, क्रीज के बीचों बीच से बिल्कुल स्टंप्स के करीब आई, आगे की ओर झुक गए बैटर और उसको मोड़ा, कलाइयों के सारे प्लेस कर दिया, गेंद ऑन साइड में गई है। शॉर्ट मिड विकेट और शॉर्ट स्क्वायर लेग के बीच के स्थान पर बाउंड्री लाइन से कोई 20 गज अंदर उसको फील्ड किया गया। हरे रंग की पोशाक पाकिस्तान की और नीले पीले रंग की पोशाकें पहने हैं श्रीलंका के खिलाड़ी। बाल झूलते हुए मिताली के बहुत पूरी झुक जाती हैं, बैंड करती हैं और राउंड आर्म एक्शन उनका हो जाता है। अंपायर के सामने से आता है उनका हाथ, कई बार बहुत परेशानी होती है सामना कर रहे बैटर को उनका बॉलिंग एक्शन देखने में। इस बार ये लगभग लकीर के ऊपर है, क्या फैसला करेंगे? वो वाइड नीली लकीर जो वाइड गेंद के इशारे के लिए बनाई गई है संकेतात्मक, क्या उसके ऊपर से ये गई थी? क्या अंपायर उसके वाइड का इशारा देंगी? वहां पर भारतीय अंपायर वहां पर मौजूद है वृंदा राठी, लेकिन कोई इशारा उनका वाइड का नहीं आया। बाल बाल बची है वहां पर मिताली, बिल्कुल वो निशान जो है, वो जो लकीर जो है किशोर, उसके ऊपर से निकल गई। अच्छा निर्णय कहना होगा। इस बीच ये अगली गेंद बिल्कुल स्टंप्स के पास आ जाती हैं, विकेट टू विकेट बॉलिंग कर रही हैं और ये भी एक कला है और निगाह रखनी होगी कहीं ऐसा ना हो कि अंपायर से बहुत जल्दी वार्निंग मिल जाए कि वो पिच के ऊपर दौड़ रही हैं, क्योंकि काफी नजदीक आ रही हैं। पहला ओवर समाप्त हो गया। आइए एस किशोर।
1: थैंक यू विनीत, एंड एज यू राइटली सेड, वी पॉइंटेड आउट दोस टू new dimensions which the ICC and the Asian Cricket Council has brought in. One, of course, is the danger area. Those are those red marks indicating that it is indeed dangerous to tread onto that. And of course, the wide lines, the blue lines, which indicate the wide deliveries. And the last time, very marginal clays as far as that wide ball was concerned. And she got away with it. Ayodhya, who has, as Vinit mentioned, that slinging action of hers, very much like Malinga, Lasith Malinga, who really put Sri Lanka on the world map with not only with his wicket-taking abilities, but with his very unique action as well. It's going to be Sugandhika who will be bowling the second over, and Muniba and Zulfikar both on a run apiece. Pakistan 2 without loss. Early days here, Sri Lanka winning the toss and opting to bowl. The left-arm spinner, left-arm round the wicket, and this time everything correct about that shot. Slight misfield enabling a quick single. Good understanding between both Muniba and Zulfikar. And the Pakistan score 3 without loss. The fielder seems to have hurt herself.

0: पैंतालीस के नए ओवर की पहली गेंद दाएं हाथ से ओवर द विकेट वो बॉलिंग करी है, स्टंप्स में की थी और शाहवाल अच्छे फॉर्म में दिख रही हैं। जबकि ये शॉट खेला था, एक तो मिडल नहीं कर पाई थी, मोटे बाहरी सिरे से लगकर ये आगे की तरफ गई थी, मिडल नहीं कर पाई थी, गेंद हवा में ऊपर उठी और एक आसान सा कैच सुरक्षित कर दिखाया, वहां पे फील्डर ने पकड़ लिया और मुनीबा से बहुत उम्मीदें थी, बैकफुट पे चली गई है पाकिस्तान। शाहवाल को ये गेंद लेग स्टंप के बाहर भटकती हुई ये गेंद इस बार वहां पर मिथाली की और शवाल उसका बहुत ज्यादा फायदा नहीं उठा पाई, शायद वो तैयार नहीं थी इस तरीके की बाहर की ओर जाती हुई गेंद के लिए और अब खफा है अपने आप से, सर हिला रही है कि उस गेंद का फायदा क्यों नहीं उठाया। वो जो लाल निशान है प्रोटेक्शन के डेंजर एरिया को दिखाते हुए दोनों तरफ के, वो लेग साइड की वाइड के लिए इशारे हैं, उस लाइन से अगर बाहर होगी तो वाइड दी जाएगी, बॉलर्स के लिए काफी फायदा हुआ है। इस बीच ये अगली गेंद और इसको घुमा दिया है लॉन्ग ऑन की दाईं तरफ से, पहला चौका पारी का, बेहतरीन स्ट्रोक खेला है वहां पर और शुरू से ही इस टूर्नामेंट में शाहवाल अच्छे फॉर्म में नजर आ रही हैं। हांगकांग के खिलाफ 47 रन उन्होंने बनाए थे, जस्ट बैक ऑफ द लाइन थी, अपने को संतुलित किया, बॉडी वेट खूबसूरती के साथ बैलेंस किया, पीछे से बैट को लाई, गेंद की लाइन में थ्रू द लाइन खेलती हुई, हाफ वॉली नहीं थी वो गेंद, और उसको प्लेस किया और दाई तरफ लॉन्ग ऑन के और बाई तरफ मिड विकेट के बीच की स्थिति से दूर सामने की ओर साइड स्क्रीन की तरफ वो गेंद चली गई रन के लिए। मिताली की गेंद धीमी गेंद थी, वापस बॉलर की दिशा में, कॉटन बोल्ड हो सकती थी, चकमा दे दिया था वहां पर, खेल ही तो बैठी थी वहां पर शाहवाल उस गेंद को, और कॉटन बोल्ड की संभावना इन पिचेस पे बनी रहती है। और परवेज मारूफ जो पुराने क्रिकेटर हैं उनसे काफी लंबी चर्चा होती रही है श्रीलंकाई खिलाड़ियों की, और साना मीर जो पूर्व पाकिस्तान की कप्तान है उनसे पाकिस्तानी खिलाड़ी बात करती रही। इस बीच एक गेंद हवा में सीधे बैठ के स्प्लाइस के पास से लेकर गई है, लेकिन उस ओर कोई फील्डर नहीं है, देखना है चार अथवा छह के इशारा होता है, लंबा ऊंचा स्ट्रोक और इसके साथ ही छह रन का इशारा अंपायर द्वारा और अब तक 10 रन बन चुके हैं। ये गेंद ऐसा लगा उस पर नियंत्रण, और इसीलिए शायद मिथाली को बीच में ड्रॉप भी किया गया था, फुल टॉस पे लिया, एक कदम नीचे झुकाया, घुटने मोड़े और गेंद को खेल दिया, जो उसको आप कह सकते हैं लॉन्ग लेग और डीप बैकवर्ड स्क्वायर लेग के बीच में से सीमा रेखा से बाहर 6 रनों के लिए। तो ये स्थिति है मिथाली का महरा ओवर, ये नियंत्रण रखना, ये मलिंगा ही है जो नियंत्रण रख पाते थे। और जहां तक इनका सवाल है, अभी इस ओवर में बहुत ज्यादा काबू नहीं रख पा रही हैं अपनी गेंदों पर। अंतिम गेंद इस ओवर की और इस बार ऑफ स्टंप के बाहर ऑफ वॉली, ओवर द टॉप खेल दिया और इस बार ऑन ऑफ साइड में लॉन्ग ऑफ सीमा रेखा से बाहर 4 रन, बहुत ही महंगा ओवर समाप्त हुआ अयोध्या का।
1: Yes, it was an expensive over before this over. Runs were just coming by way of singles, but Ayodhya Mithali gave away 14 runs in that over, a 6 and 2 boundaries in that over, and just the impetus that the Pakistan innings required, especially after the fall of the experienced Muniba Ali. And talking about women's T20 Asia Cup, the winners, if you go back down in time, you can see, remember, the Women's Asia Cup sometimes have been played in the 50-over format and sometimes in the T20 format. In 12-13, when the first ever Asia Cup was held in the T20 format, it was India who won the title. That was in China. 16-17, again, the Indian women triumphed in Thailand. And 2018 was the only time Bangladesh lifted the Asia Cup title in the T20 format. Here is the first ball of a new over from Sugandhika, and this has been driven towards the long on fielder. A single easily had, and that would take Zulfikar Shahwal to Firoza, opens their account, Gul Firoza, and Shahwal is on 17, Pakistan at 20-1. To get back to the records as far as the Women's Asia Cup in T20 format, 2023. As this one is on the middle and leg stump, not quite able to execute the sweep like she would have liked, Zulfikar Shahwal. And that would also mean, talking about that last over, it was Ayodhya who was really taken to the cleaners there. Some superb stroke play, very decisive footwork and stroke play there. That was from Zulfikar Shahwal.

0: Well, is this one from Sugandhika to Gulfiroza? It fetches a single. She was thinking in terms of a second run, but decides against it. And as I was saying, 22-23 in Bangladesh, Asia Cup was held, where India emerged triumphant. And in the last edition in Sri Lanka, it was the girls from the Emerald Isles who put it across India to lift the title. So Sri Lanka, the reigning champions here, playing the second semi-final of the 2026 edition of the Women's Asia Cup. The next ball, once again, the line, middle and leg stump. Once again, easy pickings there for Zulfikar Shahwal. She gets a single. She's on 18. Gulfiroza is on 2. And Pakistan put into bat by the Sri Lankan captain, Chamara Attapattu, at 23 for 1. The next ball from Sugandhika. The line this time around the off stump. She's been bowling the middle and leg stump line. This time to the right-handed Firoza. She employs the off stump line and well dug out there. Here is for the final time. Tossing that one up, and this time not where she intended. She was trying to go through the covers, and the ball ends up at short third man. No damage done, no runs. End of that over, and Pakistan at 23 for 1.
1: थैंक यू किशोर. ताजुब है, आपने बहुत कम देखा होगा कि पावर प्ले के ओवर्स में एक लॉन्ग ऑफ और लॉन्ग ऑन हो. आमतौर पर आप देखेंगे बैकवर्ड ऑफ स्क्वायर होता है, बैकवर्ड ऑफ पॉइंट भी आजकल होने लगा है, नहीं तो पहले तो थर्ड मैन ऑफ फाइन लेग होता था. तो ये पिच की तासीर जैसे बदलती चली जा रही है, उसकी वजह से वो कई बार खिलाड़ियों को देखकर कैसा बैटर सामने है, लेकिन दो फील्डर बाहर रखे जा सकते हैं और वो ठीक सामने दूर साइड स्किन के पास लॉन्ग ऑफ और लॉन्ग ऑन दोनों ओर. जबकि अत्तापत्तु, ये बॉलिंग चेंज तो होना ही था. मिथाली अयोध्या ठीक फॉर्म पे नहीं नजर आ रही थी और पिछले ओवर में महंगी साबित हुई. इन गेंदों पर बिल्कुल नियंत्रण नहीं था, लेग स्टंप के बाहर जा रही थी. और चमरी अत्तापत्तु कप्तान है श्रीलंका की, वो अब बॉलिंग करने के लिए आएंगे. ऑफ ब्रेक बॉलर है और ये गेंद और टपकाने के बाद और लेग स्टंप को छोड़कर जा रही थी, ऑफ स्पिन गेंद थी. शहवाल जबरदस्त फॉर्म में दिख रही हैं, वो अच्छी बॉलिंग कर रही हैं. देख रही हैं कि ये बॉलिंग जो है अत्तापत्तु की इतनी आसान नहीं है खेलना, वो बैटिंग अच्छी कर रही हैं. लेकिन देखें नजदीक की कोई खिलाड़ी नजर अब नहीं आ रहा है. अत्तापत्तु की गेंद और लगातार गेंद टर्न होने के बाद, ये ऑर्थोडॉक्स फिंगर स्पिनर हैं, ऑफ स्पिनर हैं, और टप्पा खाने के बाद दाएं हाथ के बैटर के लिए अंदर की तरफ शहवाल के लिए गेंद आती है जो उनके लेग स्टंप के बाहर से निकल रही है. और शहवाल दो बार प्रयास कर चुकी हैं उसको फाइन लेग और लॉन्ग लेग की दिशा में कहीं ऊपर खेल दें, लेकिन दोनों बार चूकी हैं. और इस बार ऊंचा लंबा स्ट्रोक खेल ही तो दिया. गेंद दूर जा रही है मिड विकेट की बाउंड्री के ऊपर से, 6 रन. ओह, सवाल तो लगता है अपने ही कंधे पर ले जाएंगे पाकिस्तान को आज, क्योंकि ये इसलिए कि 15 गेंदों पे 24 रन बनाकर खेल रही हैं. लूप बनाती हुई ये गेंद थी, फ्लाइट दिया था अच्छा खासा, वो तैयार थी घुटने मोड़े स्वीप के अंदाज में, लेकिन सीधा ऊंचा लंबा स्ट्रोक सामने की ओर खेला और मिड विकेट बाउंड्री के काफी ज्यादा बाहर जाकर गेंद गिरी. बाउंड्री काफी छोटी होती है विमेंस क्रिकेट में, 30 गज का नहीं 25 गज का दायरा होता है. और इस बार तेजी के साथ खेलने की कोशिश की, उंगली उठी, दूसरा विकेट गिर गया पाकिस्तान का. शहवाल जो काफी ज्यादा अच्छा खेल रही थी, अचानक वो जो एक स्ट्रेटेजी से बॉलिंग कर रही थी अत्तापत्तु, उनके लेग स्टंप के बाहर गेंद घूम कर जा रही थी, ऑफ स्पिन गेंद को जब पलटकर पीछे की ओर फाइन लेग की तरफ खेलने का प्रयास किया, महीन सा इनसाइड एज लगा और विकेट कीपर ने कोई गलती नहीं की. कौशिनी नत्यांगना बहुत ही कुशल और दक्ष कीपर हैं और उन्होंने उसको कैच कर लिया. पहले ही से पूर्व अनुमान लगा कि शफल कर रही थी, लेग स्टंप की तरफ सरकती हुई चली गई थी विकेट कीपर, और एक बेहतरीन पूर्व अनुमान के साथ, एंटिसिपेशन के साथ वो कैच कर लिया. और कप्तान की भाव भंगिमा अत्तापत्तु की इस समय देखती ही बनती है.
0: यस विनीत, इंडीड यू वुड एग्री विद मी, दैट्स अ वेरी फ्रस्ट्रेटिंग एंड इरिटेटिंग मैनर फॉर अ बैटर टू गेट आउट, गोइंग getting caught down the leg side, going to play that flick very fine, but unfortunately going to straight to the wicketkeeper, who made no mistake whatsoever. So especially Zulfikar, she's been batting so well, and she'll be feeling really down in the dumps having thrown it all away.
1: ज्यादा सिक्सर्स इस टूर्नामेंट में लगे नहीं, और पाकिस्तान की ओर से तो केवल ये दूसरा ही मात्र था जो शहवाल ने लगाया, इससे पहले एक सिक्सर था. और हाँ, ये टूर्नामेंट ही ऐसा रहा है, इसमें पहली बारी की बैटिंग में औसत अगर आप

0: देखें तो 120 रन से ज्यादा ने औसतन बने हैं, जो कि बहुत आज के जो आधुनिक क्रिकेट है उसके हिसाब से काफी कम कहे जाने चाहिए। इन शॉर्ट थी, फिर वही झांसा, फिर वही मायाजाल जिसमें फंस कर गई हैं शवाल और आयशा, खेलने के लिए आई हैं फिरोजा और आयशा, दोनों ओपनिंग बैटर्स हैं, लेकिन क्योंकि अच्छे फॉर्म में इस समय चल रही थी शवाल, इस टूर्नामेंट में लगातार इन दोनों को रोककर नीचे भेजा गया, शवाल से ओपन शुरुआत कराई गई, लेकिन जिस तरह से इस गेंद को पलटकर वही गलती करने जा रही थी जो शवाल ने की थी, घूमकर गेंद लेग स्टंप के बाहर अच्छा बाउंस लेकर अत्तापत्तू की जा रही है और उसको लेग साइड में आप जब डिफ्लेक्ट करने की कोशिश करते हैं तो एक सिरा लगकर विकेट कीपर पे, जिस तरह से दूसरा विकेट गिरा था श्रीलंका का, उस तरह से आप आउट हो सकते हैं। तो ये स्थिति है, ये ओवर सफल ओवर समाप्त हुआ कप्तान अत्तापत्तू का, दो खिलाड़ी खो चुका है पाकिस्तान।
1: पाकिस्तान लूजिंग विकेट, श्रीलंका स्ट्राइकिंग व्हेन इट वाज रिक्वायर्ड। फर्स्ट ऑफ कोर्स दे हैड अर्ली विकेट एंड देन इन दैट लास्ट ओवर द स्किपर रिप्लेसिंग मिथाली अयोध्या एंड इमीडिएटली रिपिंग रिवॉर्ड्स विद द विकेट ऑफ द वेल सेट जुल्फिकर, एंड दैट विकेट आई एम श्योर वुड डेंट पाकिस्तान अर्ली। पाकिस्तान टॉप ऑर्डर हैज बीन ए प्रॉब्लम राइट थ्रू दिस टूर्नामेंट। हियर इज सुगंधिका once again keeping it within the stumps, left arm round the wicket, and very accurate is Sugandhika. She was the one who picked up the first wicket, and then in that last over, the well set Zulfikar trying to go for a feint, tickled down the leg side, caught by the wicket keeper. This time the ball of a fuller length driven on the offside, not for any runs. The Sri Lankan fielding right through the tournament has been good. In fact, we spoke about it earlier as well, the floodlights, or rather the round the fire as it is called, as far as the Dubai International Stadium is concerned, with the floodlights. They don't have towers, the floodlights are around the periphery of the roof of the stadium. Not very easy for fielders to judge catches, as the next ball has been played defensively, not for any runs, and Pakistan stay on 30 for 2. The sixth over in progress, 5.3 overs to be precise. And what has been also been very surprising in this tournament, as far as the Sri Lankan captain Chamari Attapattu is concerned, she's been more successful with the ball than with the bat. This one is lofted over the infield on the offside safely. Look at the skipper really showing the way. Chamari Attapattu belying her age, diving around, stopping that one. And that would mean that Pakistan are not able to get anything more and a single. In fact, the very first ball that Ayesha faced from Chamari Attapattu, there was an opportunity for the wicketkeeper to make it two in two balls, but wasn't the easiest of catches, and that was a catch which went a-begging. As Sugandhika, who has been bowling his into her third over, 1.1 for 9 figures, 1 for 10 rather, after that single on the onside. She's bowling her third over on the trot, which isn't very common when we come to T20 cricket. We often see bowlers getting a spell of two overs, a maximum three, and that is what Sugandhika is into her third over. She's kept things tight from one end. Here is she, once again, left arm, using the width of the crease. And this time, once again, we've seen more often batters trying to go through the offside, not able to. The slowness of the pitch defeating the intention, and that would mean that the score stays put. A dot ball to end that over, and Pakistan being put into bat, a 33 for 2. Really, things not really going the way of Pakistan. Sri Lankan bowlers exerting the pressure, except for that one over beneath when Mithali went for 14 runs. The bowlers have been able to exercise. Not only have been they been able to restrict the flow of runs, they have picked up wickets at regular intervals. So the first power play of six overs, one must say, has gone the way of Sri Lanka, with Pakistan on 33 for 2.
0: तो ये स्थिति है, पाकिस्तान हांगकांग के खिलाफ 28 पावर प्ले में दो खिलाड़ी खोए थे, भारत के खिलाफ 29, तीन कुल मिला के 55 पे आउट हो गए थे, और थाईलैंड के खिलाफ 32 रन बनाए थे पावर प्ले के 6 ओवर में, और तीन खिलाड़ी खोए, और आज 33 रन बनाए हैं। तो बेस्ट पावर प्ले पाकिस्तान का, लेकिन दो खिलाड़ी खोए। लॉन्ग हैंडल का अच्छा इस्तेमाल करती है आयशा, खेल दिया गेंद को, गेंद एक्स्ट्रा कवर सीमा रेखा से बाहर, 4 रन मिलेंगे। अच्छी फॉर्म में नजर आ रही है ये भी फिरोजा और आयशा, दोनों ओपनिंग बैटर्स हैं और उनको इस नई गेंद से खेलने में कोई दिक्कत नहीं होगी। नई गेंद का फायदा यह है कि एक ज्यादा बाउंस कर

0: है और उसमें आपको स्ट्रोक ज्यादा आसानी से खेलने को मिलते हैं। पिच कुछ नीची जरूर रह रही है, लेकिन उसको अच्छी तरह संभाल रही हैं दोनों बैटर्स। धन्यवाद जतिन। और ये स्थिति है यहाँ पर, कविशा अब तक नहीं लौटी है। इस बीच गेंद अच्छी गेंद है, अत्तापट्टू बहुत अच्छी गेंदे कर रही है, लगातार अपनी लेंथ और लाइन में परिवर्तन कर रही है। इस बार ऑफ स्टंप के बाहर से लाइन बदल दी और फिर गेंद अच्छी लेंथ पर, यह गेंद थी गुड लेंथ से थोड़ा आगे टिप्पा खा के कटकर अंदर की तरफ आ रही थी दाएं हाथ की बैटर आयशा के लिए। और इस बार ऑफ स्टंप के बाहर स्लैश करने की कोशिश की, उंगली उठी, ओ पाकिस्तान का तीसरा खिलाड़ी आउट। ऐसा चक्रव्यूह बनाती है अत्तापट्टू कि उसमें फंस कर रह जाता है खिलाड़ी। लेग स्टंप के बाहर का निशाना साधा हुआ था, अचानक ऑफ स्टंप के बाहर गेंदे करने लगी, उस पे स्लैश किया, आड़े बैट से खेलने की कोशिश की, बॉटम एज लगी और विकेट कीपर कौशनी जो एक गफलत कर चुकी हैं जब उसको पकड़ने का प्रयास कर रही है, इस बार चौकस और चौकन्नी थी और उंगली उठी वहां पर अंपायर की। उनको कोई संकोच नहीं हुआ, कोई हिचकिचाहट नहीं हुई। और शातिरा जाकिर जो बांग्लादेश की अंपायर हैं, उनकी उंगली उठी और इस तरह से पाकिस्तान ने 37 के स्कोर पर 7वें ओवर की तीसरी गेंद पर अपना तीसरा विकेट खो दिया है। तो ये स्थिति है यहां पर, ये टूर्नामेंट भी इसी तरह का, इसी तासीर का रहा है। इसमें आप ये नहीं कह सकते, जिसमें क्रिकेट की भाषा में जिसको कहा जाता है यू नेवर फील यू आर इन, कभी भी आपसे गलती हो सकती है। और अत्तापट्टू का ये 16 साल का अनुभव है जिसका वो इस्तेमाल कर रही हैं। 2009 और 10 में इन्होंने डेब्यू किया था व्हाइट बॉल क्रिकेट में, तब से लगातार श्रीलंका के लिए खेल रही हैं। दिग्गज खिलाड़ी हैं विश्व क्रिकेट की, ये ना केवल श्रीलंका की, और इनकी बुद्धि जो है चमत्कारी है। उन्होंने पहले लेग स्टंप के बाहर लगभग दूसरा खिलाड़ी भी आउट कर लिया था, लेकिन कौशनी विकेट के पीछे कैच नहीं पकड़ पाई थी। सराफ खेलने के लिए पहुंची हैं, दाएं हाथ की बैटर है और बैट लग गया, लेकिन गेंद निश्चित रूप से लेग स्टंप को छोड़कर जा रही थी, फिर पैड से टकराई और टकराने के बाद सामने की ओर गेंद चली गई। शादाब शम्स खेलने के लिए आई हैं और अब पाकिस्तान संकट के बादल पाकिस्तान टीम पे मंडरा रहे हैं। गेंद को हवा में झूलने दिया, डिप किया, चूक सकती थी वहां पे बैटर, जिस तरह से बहुत ही बुद्धिमानी से चतुराई के साथ बॉलिंग कर रही है अत्तापट्टू, लगभग झांसे में आ गई थी। आयशा लॉन्ग हैंडल का इस्तेमाल कर रही हैं, जब ड्राइव करती हैं अपनी ग्रिप को बदल लेती हैं, ये अंदाज है खेलने का उनका। और श्रीलंका क्या पछताएगा, विमुक्ता जो उनकी तेज बॉलर थी पिछले मैच में 3 विकेट लिए थे, मिथाली अपनी बॉलिंग पर, वो मलिंगा के अंदाज में जो आपको लगातार हम बताते रहे हैं, उनका दूसरा ओवर काफी महंगा, 14 रन उसमें उन्होंने दिए थे। और उससे भी बड़ी बात है कि गेंद नियंत्रित नहीं कर रख पा रही थी, काबू में नहीं थी, ऐसा लगा हर गेंद उनके हाथ से बहुत ज्यादा सध कर नहीं आ रही थी। इस बार बहुत धीमे से खेला, गेंद को ऑन साइड में खेला, स्क्वायर लेग अंपायर के करीब से, इससे पहले कि गेंद को उठाया जाए रन ले लिया वहां पर फिरोजा और सादाफ ने। और इस ओवर में हालांकि विकेट भी गिरा, अत्तापट्टू को विकेट मिला, लेकिन इस समय चढ़कर खेल रही है श्रीलंका। एक ओवर की समाप्ति हुई और आपके कमेंटेटर होंगे एस के शो।
1: थैंक यू सो मच विनीत। सो श्रीलंका स्ट्राइकिंग रेगुलरली, पाकिस्तान लूजिंग द थर्ड विकेट एंड द कैप्टन रियली लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट एज फार एज श्रीलंका इज कंसर्न, चमारी अत्तापट्टू। And this tournament, as I mentioned a while earlier as well, it is with the ball that she has really been at the in the forefront. Remember, against Indonesia, she picked up 7 wickets in an innings, and really, that's the sort of bowling. Her batting has really not come to the fore in this series. She's the most experienced, the captain of Sri Lanka, and Chamudi Prabodha. There's a bowling change here with Pakistan 39 for 3 after 7 overs. And Chamudi bowling yet another left-arm spinner. One left-arm spinner replacing another. This time, once again, this time the ball may just run away. It may beat the fielder. No, it doesn't. The two fielders converging there in the third man region. And the two batters have been able to get a couple of runs there. Really, Pakistan in that first power play, all that they managed to get was 33, losing 2 wickets. And immediately after the power play was over, the first power play, the 7th over sent down by the captain, Atapattu. And look at her, she is so aggressive, really showing her teammates how to fight it out in

0: A very well contested semi-final here. Suppose up to now it's been Sri Lankan bowlers who've held sway, who are calling the shots. Chamudi replacing Sugandhika, one left arm spinner replacing another, bowling from round the wicket, from using the width of the crease, and once again the slowness of the pitch in evidence there, playing a tad too early, uppishly but safely towards mid-off, and that takes Firoza to 7. Sadaf is on 1, and Pakistan in the 8th over, after 7.3 overs to be precise, a 42 for 3 being put into bat by the Sri Lankan captain Atapattu, who won the toss and had no hesitation whatsoever in doing the insertion job. This time, once again, this one keeping it within the stumps. Good variation there from Chamudi. And what one has seen, the Sri Lankan spinners, they're not afraid to toss the ball, including Atapattu. When you really toss it above the eye line, that's when you really test the skill of the batter. And that is what the Sri Lankan bowlers have been able to do. It's a very pensive looking dugout, Pakistan, quite understandable. Here's Chamudi. This time almost a full toss and driven, but not for anything more than a single, down to long off. And that would mean that Pakistan are 43 for 3. And really, as far as the Asia Cup is concerned, there's so many records which are associated with this, and all these details are being provided a minute to minute by a very efficient scorer statistician team of Yashwant Chadd and Jatin Sood, as the last ball of the over has been played defensively, not for any runs, and that ends the over. And with Pakistan really at the moment, Vineet, the odds stacked against them, it required someone to play an inning, someone to bat through maybe until the 16th, 17th over for Pakistan to really put up a score which would challenge Sri Lanka.
1: फिरोजा बहुत ज्यादा बड़ी पारियां खेल नहीं पाई हैं अब तक टूर्नामेंट में. थाईलैंड और भारत के खिलाफ दोनों ही में खाता भी नहीं खोल पाई, जतन बता रहे हैं, और हांगकांग के खिलाफ केवल 3. तो गेंद को मिडिल नहीं कर पा रही हैं, खेलना चाहती हैं सामने की ओर और गेंद जाती है पीछे थर्ड मैन की दिशा में. मोटा बाहरी सिरा लेकर कई बार गेंदे गई हैं, निशाना साधती हैं विकेट पे सामने की ओर सीधा खेलने की, जो कि एक सही अंदाज है इस पिच पे खेलने का, लेकिन उसको फिर टाइम नहीं कर पाती और किनारा लेके गेंद पीछे जा रही हैं. ओ, श्रीलंका के लिए अच्छा समाचार है, कविशा देलहारी मैदान पर आ गई हैं. घायल हो गई थी एक्स्ट्रा कवर में फील्डिंग करने के प्रयास में, उनके उंगलियों में चोट आ गई थी और उनके बॉलिंग आर्म पे चोट आई थी, अब वो बॉलिंग करने के लिए आ रही हैं. उनकी पहली गेंद, आउट, अच्छा खासा टर्न मिला, गेंद नीचे भी रह रही थी, लेकिन विद द टर्न खेल दिया गेंद को और एक रन ले लिया दोनों खिलाड़ियों ने, फिरोजा और सादाफ ने. और 5.38 का इस समय औसत है, 44 रन 3 विकेट पर. पाकिस्तान टॉस हार के बैटिंग कर रहा है. ये 9वें ओवर की पहली गेंद थी. अगर आप देखें, कविशा दिलहरी ने 20 विकेट लिए हैं 2026 में. चमरी अतापत्तु वो बॉलर है, कप्तान है, जिन्होंने सबसे अधिक विकेट लिए हैं इस साल. सुगंधा कुमारी, जिनके 15 विकेट हैं. कविशा की ये गेंद, और बहुत बढ़िया गेंद कर रही हैं. कि सबसे बड़ी बात है, श्रीलंका के खिलाड़ी विविधता लाते हैं, कोई सी भी गेंद रिपीट नहीं करते हैं, 6 की 6 अलग गेंदें. इस बार ये गेंद ऑफ स्टंप के बाहर इतनी थी, गुड लेंथ गेंद से थोड़ा पहले टिप्पा खा रही थी. टप्पा खाने के बाद जिस तरह से ऑफ स्पिन होती है, उस अंदाज में गेंद अंदर की तरफ आई राइट हैंडर के लिए. इस बार फ्लाइट दिया, कदमों का इस्तेमाल किया, गेंद की पिच तक पहुंचे, ड्राइव किया, और उसमें रन अवश्य मिल जाएगा इससे पहले कि लॉन्ग ऑफ पे गेंद को विकेट के पीछे की ओर, बॉलर के पीछे की ओर फील्ड किया जाए. इस पिच पे गेंद को फिरकी देना बहुत जरूरी है इस पिच पर, क्योंकि जब तक आप रेवोल्यूशंस ज्यादा नहीं देंगे, जब तक आपको ग्रिप नहीं मिलेगी, ड्रिफ्ट आपको नहीं मिलेगी, और वो बखूबी श्रीलंकाई हर स्पिनर कर रहा है. और इस बार स्वीप के अंदाज में घुटनों को मोड़ दिया, खेल दिया दायरे के अंदर 25 गज के, फील्डर से वो रुक नहीं पाई और गेंद चली गई लॉन्ग लेग और फाइन लेग की बीच की स्थिति से सीमा रेखा के बाहर 4 रन. ऐसे मौके रहे हर टीम के साथ, जबकि ये फ्लाइटेड गेंद थी, टप्पा खाने के बाद, लेग स्टंप के बाद, पिच होने के बाद और लेग स्टंप के बाहर जा रही थी. विद द टाइड, गेंद की रफ्तार का ही इस्तेमाल करते हुए ही, अपने आड़े बैट से घूमते हुए, स्वीप के अंदाज में एक घुटना जमीन में झुकाते हुए उसको आगे भर बढ़ा दिया और 4 रन बटोर लिए अपने टीम के लिए. 1 रन कम रह गया है, 50 से दूर है पाकिस्तान केवल 1 रन से, 49 पे 3. ये 9वां ओवर चल रहा है, खतरनाक गेंद बैकफुट पर सरक कर चली गई थी. एक खिलाड़ी हिट आउट भी हो चुका है.

0: टूर्नामेंट में लगभग स्टंप्स के करीब चली गई थी और फिर जैसे तैसे उसको निकाला था, बिल्कुल चूक गई थी। अंतिम समय में बैट लग ही तो गया, नहीं तो बोल्ड आउट हो जाती, गेंद की लंबाई कम कर दी थी। बिल्कुल सुरक्षित नहीं लग रहे हैं पाकिस्तान खिलाड़ी कविशा के खिलाफ। शानदार बॉलिंग कर रहे हैं कविशा दिलहरे, बहुत ही बढ़िया बॉलिंग कर रही है। लगातार लेंथ, लाइन, ट्रेजेक्ट्री, स्पीड, रफ्तार की परिवर्तन, फ्लाइट का परिवर्तन, रेवोल्यूशंस दे रही हैं। एक बहुत ही शानदार ओवर समाप्त हुआ, हालांकि विकेट उसमें नहीं मिला, लेकिन कश्मकश भरा क्रिकेट देखने को मिल रहा है। तीन लगातार जल्दी जल्दी विकेट खो देने के बाद पारी को दोबारा संभालने में लगे हैं पाकिस्तानी खिलाड़ी, लेकिन श्रीलंका है कि हावी हो रहा है और रन बनाना दूभर हो रहा है। आइए एस किशोर।
1: Thank you, Vineet. And as you very rightly said, the Sri Lankan bowlers, especially the spinners, have been all over the Pakistan batters. They're really varied. The point that you made, that they bowl almost six different deliveries in an over. And that is what is making the task of the Pakistani batters all that more difficult. The first ball of a new over has the batter stroking it out into the extra cover region just for a single. 50 up on the board for Pakistan. Firoza on 9, Sadaf on 7 on strike to Chamudi. Chamudi, who's been bowling well, she had replaced Sugandhika, and she has also been as accurate, as miserly as the next ball. Once again, tossing it up, and to the pitch of that one was Sadaf, but not able to get the ball off the square. You not only need to time it well, you need to place it well. And batting against spinners require a totally different skill set. You need to use your feet well, and maybe modern day batters not so much equipped in doing that. This time goes deep into the crease and pulls it, a short arm pull there just for a single down to the fielder there, and Pakistan are 51 for 3. Boundaries are at a premium now, the way the Sri Lankan bowlers have been bowling, the spinners, and we've seen right through this Women's Asia Cup at the Dubai International Stadium that the pitches have afforded a lot of turn. The next ball, once again, this time with the turn almost, that just giving the ball direction towards short third man for a single. Firoza moves into double figure. She's on 10. Sadaf is on 8. And Pakistan are 52 for 3. Almost at the halfway stage at after 9.4 overs. So from here on, it would be up to these two batters. They need to consolidate. They need to stay. Look at this. That's exemplary work by the wicketkeeper. And the bowler saw that the batter, Sadaf, was really dancing down the track, shot on the length, and as the ball spun across the bat, wicketkeeper didn't do any, immediately whipping off the bails. Quick silver work there by the Sri Lankan wicketkeeper, accounting for the fourth batter in the Pakistan inning. She was down a mile there beneath, and really clever bowling by the left-arm spinner.
0: Batters ke upar dabav ban raha tha, dono Sadaf aur गुल ठीक से नहीं खेल पा रही थी, और ऐसे में वो क्रीज छोड़ के बाहर निकल आई, एक बड़ा स्ट्रोक तलाश रही थी। हाँ, अच्छी बात है, अगर आप स्टंप आउट होती हैं तो कम से कम एक मील दूरी से रन आउट होइए, स्टंप आउट होइए, मतलब मन पूरा बना लिया था, क्रीज छोड़ के बाहर निकल आई थी, चूंकि विकेटकीपर के पास गेंद चली गई और उन्होंने स्टंप्स बिखेर दिए और एक और सफलता मिल गई श्रीलंका को, और एक बहुत ही बुद्धिमानी पूर्ण निर्णय। 10 ओवर के बाद ड्रिंक्स होती हैं, लेकिन 9वें ओवर में अगर विकेट गिर जाए तो ड्रिंक्स बुला ली जाती हैं, तो ड्रिंक्स मैदान पर आ गई हैं। लगभग 42 मिनट में ये 10 ओवर हुए हैं। ये याद रखने वाली बात है कि 9:15 तक भारतीय समय के अनुसार ये पहली बारी निर्धारित की गई है, और आजकल क्या है, स्टॉप वॉच चलती है तीसरे अंपायर की, 60 सेकंड में आपको दूसरा ओवर, अगला ओवर शुरू करना है, नहीं तो फिर आपको पेनल्टी भी देनी पड़ सकती है, और फिर बाद में लास्ट के ओवर्स में आपको फील्डर कम मिलेंगे। अगर टाइम पे ओवर आपने पूरे नहीं किए तो केवल 3 फील्डर आपको मिलेंगे, तो ये तमाम दुश्वारियां हैं। और अब तो टेस्ट क्रिकेट में भी आईसीसी ने लेटेस्ट जो नियम आए हैं उसमें स्टॉप वॉच बुला ली है कि 60 सेकंड के अंदर किशोर आपको दूसरा ओवर शुरू करना है।
1: Yes, so many new rules being introduced. Also the fact that earlier in a red ball game, in a longer duration game, if a wicket falls, it would have been stumps. Now the new rule says that the over needs to be completed. So all in all, it is basically for the paying cricket lover, those who flock the stadium to see matches. So the bodies which govern the game worldwide, be it the ICC or in Asia, the ACC, always the attempt

0: is to see that the paying public get their money's worth.
1: एक दिलचस्प बात यह है कि अब इतनी आसानी से लेग स्टंप के बाहर की वाइड नहीं मिलेगी. ड्रिंक्स मैदान पर है, खेल रुका हुआ है. पाकिस्तान और श्रीलंका के बीच में ये एशिया कप का दूसरा सेमीफाइनल चल रहा है. लगातार विकेट गिरते चले जा रहे हैं पाकिस्तान के. क्यों? क्योंकि आईसीसी ने नियमों में परिवर्तन करके एक निशान बना दिया है, और वो जो निशान है वो प्रोटेक्टेड एज और डेंजर

0: दिया है, और वो जो निशान है वो प्रोटेक्टेड डेंजर एरिया होता है, मिडल स्टम्प के दोनों ओर 1 फुट के आसपास का वो जो डेंजर एरिया है उस पे निशान दोनों तरफ लगा दिया, ऑफ स्टम्प के बाहर, लेग स्टम्प के बाहर। तो पहले जो जैसे ही लेग स्टम्प के बाहर गेंद होती थी तो उसको वाइड दे दिया जाता था, अब ऐसा नहीं होगा। जब तक कि वो 1 फिट बाहर नहीं है उस लाल निशान का, जो कि पिच पे लगायदा बाकायदा लगाया गया है, जबकि पाकिस्तान की कप्तान ड्रिंक्स मैदान से बाहर जा चुकी हैं 52 रन 4 विकेट पे टॉस हारकर, जबकि कप्तान फातिमा साना मैदान पर आई हैं और बहुत आवाज बुलंद की जा रही है पाकिस्तान की। अच्छी खासी ये ऑलराउंडर हैं और जिस तरह से ये बैटिंग करती हैं इस सीजन में सबसे ज्यादा T20 रन उन्होंने ही बनाए हैं पाकिस्तान के लिए, कि इनको बैटिंग ऑर्डर में थोड़ा ऊपर आना चाहिए, लेकिन कभी उन्होंने ऐसा किया नहीं। फिरोजा 10 रन बनाकर खेल रही है, 16 गेंदों का इस्तेमाल कर लिया है और कप्तान को ये पहली गेंद। चामुड़ी, जिन्होंने की पिछले मैच में उन्होंने विकेट लिए थे, जबकि क्या ये दूसरा विकेट एक और मिल जाएगा?
1: ਤੁਸੀਂ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹੋ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੀਲੰਕਾ ਦੀਆਂ ਮਹਿਲਾ ਟੀਮਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਖੇਡੇ ਜਾ ਰਹੇ ਏਸ਼ੀਆ T20 ਕ੍ਰਿਕਟ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਦੇ ਮੈਚ ਦਾ ਅੱਖੀਂ ਦੇਖਿਆ ਪ੍ਰਸਾਰਣ। ਤੇ ਆਓ ਹੁਣ ਮੈਚ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਅੰਤਰਾਲ ਲੈਂਦੇ ਹੋਏ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੈ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਆਕਾਸ਼ਵਾਣੀ ਦੇ ਹੀ ਦਿੱਲੀ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲ, ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣੋਗੇ ਸਮਾਚਾਰ ਸੰਧਿਆ 8:45 ਤੇ 9 ਵਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣੋਗੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਖਬਰਾਂ ਨਿਊਜ਼ ਐਟ 9 ਆਕਾਸ਼ਵਾਣੀ ਦੇ ਦਿੱਲੀ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ।

नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं प्रियंका अरोड़ा। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली में 18वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन से पहले रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के साथ द्विपक्षीय वार्ता की। राजनीतिक, आर्थिक, रक्षा, ऊर्जा के साथ क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों की प्रगति पर चर्चा हुई। श्री मोदी ने फिर कहा, संघर्षों के समाधान के लिए संवाद और कूटनीति ही एकमात्र रास्ता। प्रधानमंत्री ने ईरान के राष्ट्रपति और संयुक्त राष्ट्र महासचिव के साथ भी द्विपक्षीय बैठकें की। ब्रिक्स सदस्य देशों के राष्ट्राध्यक्ष ब्रिक्स व्यापार मंच के नेताओं के सत्र में शामिल हुए। प्रधानमंत्री ने कहा, ब्रिक्स की आर्थिक शक्ति बाकी दुनिया की तुलना में लगभग दोगुनी गति से बढ़ी है। ईरान समर्थित हाउसी विद्रोहियों ने लाल सागर के निकट बाब अल मंदेब जलडमरू मध्य में स्थित यमन के महत्वपूर्ण मयून द्वीप पर कब्जा किया। और चीन में भारतीय जूनियर पुरुष टीम ने मलेशिया को हराकर एशिया कप हॉकी के फाइनल में प्रवेश किया। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने आज शाम नई दिल्ली में द्विपक्षीय वार्ता के दौरान राजनीतिक, आर्थिक, रक्षा, ऊर्जा, अंतरिक्ष और कौशल सहित कई क्षेत्रों में सहयोग की प्रगति की समीक्षा की। दोनों नेताओं ने पश्चिम एशिया और काला सागर क्षेत्र में जारी संघर्ष सहित आपसी हित के प्रमुख क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर भी विचार विमर्श किया। श्री मोदी ने फिर कहा कि संघर्षों के समाधान के लिए संवाद और कूटनीति ही एकमात्र रास्ता है और भारत शांति प्रयासों में सहयोग करने के लिए तत्पर है। दोनों नेताओं ने रूस की अंतर्राष्ट्रीय औद्योगिक प्रदर्शनी इनोप्रोम इंडिया का स्वागत किया। भारत में पहली बार आयोजित ये प्रदर्शनी व्यापार तथा औद्योगिक संबंधों को और अधिक बढ़ाने में इसके महत्व को दर्शाती है। दोनों नेताओं ने प्रदर्शनी का अवलोकन किया और प्रतिभागियों से बातचीत की। राष्ट्रपति पुतिन ने प्रधानमंत्री मोदी को 24वें भारत रूस वार्षिक शिखर सम्मेलन में शामिल होने के लिए रूस आने का निमंत्रण दिया। श्री मोदी ने निमंत्रण स्वीकार कर लिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने फिर से कहा है कि सभी मुद्दों का समाधान संवाद और कूटनीति के माध्यम से होना चाहिए। श्री मोदी ने नई दिल्ली में ईरान के राष्ट्रपति मसूद पजिश्कियन के साथ द्विपक्षीय बैठक की। दोनों नेताओं ने पश्चिम एशिया में हुए हाल के घटनाक्रमों पर विचार विमर्श किया। बैठक के दौरान श्री मोदी ने क्षेत्र में स्थायी शांति और स्थिरता सुनिश्चित करने

0: आवाजाही और व्यापार की स्वतंत्रता की रक्षा करने और नाविकों की सुरक्षा और कल्याण के लिए निरंतर प्रयासों की आवश्यकता पर बल दिया। प्रधानमंत्री मोदी ने संयुक्त राष्ट्र महासचिव अंतोनियो गुतरश से भी मुलाकात की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि ब्रिक्स देश वैश्विक नवाचार और समाधान के महत्वपूर्ण केंद्रों के रूप में उभर रहे हैं। नई दिल्ली के भारत मंडपम में ब्रिक्स व्यापार मंच के नेताओं के सत्र में उन्होंने ये बात कही।
1: आज ब्रिक्स के देश विश्व की 50% पॉपुलेशन, 40% जीडीपी और 25% से अधिक ट्रेड को रिप्रेजेंट करते हैं। इतना ही नहीं, इन वर्षों में जहां ग्लोबल जीडीपी करीब 2.5 गुना हुई है, वहीं ब्रिक्स देशों की कंबाइंड जीडीपी करीब 4.5 गुना हुई है। यानी ब्रिक्स की इकोनॉमिक स्ट्रेंथ दुनिया की तुलना में करीब 2 गुनी रफ्तार से बढ़ी है। ब्रिक्स देश ग्लोबल इनोवेशन और सॉल्यूशंस के लिए महत्वपूर्ण सेंटर्स भी बन रहे हैं।
0: प्रधानमंत्री ने कहा कि वैश्विक अनिश्चितताओं के बीच भारत आज विकास और स्थिरता के लिए भरोसे का पर्याय है।
1: हम रोड्स, रेलवे, पोर्ट और एयरपोर्ट्स का तेजी से विस्तार कर रहे हैं। साथ ही शिप बिल्डिंग, सेमीकंडक्टर, क्वांटम, क्रिटिकल मिनरल्स और बायोटेक जैसे स्ट्रेटेजिक क्षेत्रों में नई क्षमताएं तैयार कर रहे हैं। इसलिए मेक इन इंडिया, इनोवेट विथ इंडिया, स्केल फॉर द वर्ल्ड, 2 लाख के अधिक स्टार्टअप और 120 से अधिक यूनिकॉर्न्स के साथ भारत आज ग्लोबल सॉल्यूशंस का हब बन रहा है।
0: श्री मोदी ने कहा कि भारत आवाजाही की स्वतंत्रता और नाविकों की सुरक्षा का दृढ़ समर्थक है।
1: ग्लोबल ट्रेड तभी आगे बढ़ सकता है जब सी लेंथ सिक्योर हो, सप्लाई रूट्स ओपन हो और सी फेरर्स सेफ हो, और इसलिए भारत फ्रीडम ऑफ नेविगेशन और सी फेरर्स की सेफ्टी का दृढ़ समर्थक है।
0: इस सत्र को ब्रिक्स सदस्य देशों के कई राष्ट्राध्यक्षों ने भी संबोधित किया। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने कहा कि पिछले 5 वर्षों में विश्व के सकल घरेलू उत्पाद का 40% से अधिक हिस्सा ब्रिक्स देशों से आ रहा है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।
2: एवरी ग्रेट जर्नी बिगिंस विद पीपल कमिंग टुगेदर टू लिसन, टू लर्न, टू इमेजिन व्हाट्स पॉसिबल। This is the BRICS 2026, a moment where leaders, innovators, businesses and communities from the BRICS nations come together to strengthen partnerships. India welcomes the BRICS countries as the grouping marks the 20 years of its establishment in 2026. BRICS Summit 2026 is being hosted in Bharat Mandapam, New Delhi from 12th to 13th September 2026 under India's chairship theme, Building for Resilience, Innovation, Cooperation and Sustainability, with a people-centric approach and the spirit of humanity first. Because when we work together, possibilities become progress.
0: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। 18वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन का शुभारंभ कल नई दिल्ली के भारत मंडप में होगा। सम्मेलन में प्रधानमंत्री मोदी, रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन, चीन के राष्ट्रपति शी जिनफिंग, दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति सिरिल रामाफोसा, मिस्र के राष्ट्रपति अब्दुल फतह असीसी, इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्राबोवो सुबियांतो, ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेशकियन और अबू धाबी के युवराज शेख खालिद बिन मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान सहित कई ब्रिक्स नेताओं की मेजबानी करेंगे। श्री मोदी ने विश्वास व्यक्त किया कि सम्मेलन में विभिन्न मुद्दों पर सकारात्मक और सार्थक चर्चा होगी और इसका उद्देश्य विश्व कल्याण होगा। भारत की अध्यक्षता में सम्मेलन का विषय है लचीलापन, नवाचार, सहयोग और स्थिरता का निर्माण। सम्मेलन का शुभारंभ ब्रिक्स सदस्य देशों के लिए वैश्विक संस्थाओं को अधिक समावेशी बनाना और बहुपक्षवाद को मजबूत करने के विषय पर एक सत्र के साथ होगा। सदस्य देशों के नेता भारत मंडपम में भारत इनोवेट्स प्रदर्शनी का अवलोकन भी करेंगे। वे संयुक्त वृक्षारोपण कार्यक्रम में शामिल होंगे। इसके बाद प्रधानमंत्री मोदी रात्रि भोज का आयोजन करेंगे। प्रधानमंत्री सम्मेलन के दौरान कई ब्रिक्स नेताओं के साथ द्विपक्षीय बैठकें करेंगे। एक रिपोर्ट।
3: भारत की ब्रिक्स अध्यक्षता ऐसे समय में हो रही है जब दुनिया में बड़े बदलाव देखने को मिल रहे हैं। वर्तमान में अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था, आर्थिक चुनौतियाँ, तकनीकी बदलाव और भू राजनीतिक अनिश्चितता का सामना

0: रही है। जलवायु परिवर्तन और संसाधनों पर बढ़ता दबाव स्थिति को और जटिल बना रहे हैं। इन आपस में जुड़े हुए वैश्विक चुनौतियों से निपटने के लिए ऐसी सहभागिता आवश्यक है जो समावेशी, व्यवहारिक और विभिन्न राष्ट्रीय परिस्थितियों के प्रति संवेदनशील हो। भारत की ब्रिक्स अध्यक्षता का प्रयास सदस्य देशों के बीच सहमति कायम करना और साथ ही मौजूदा व्यवस्थाओं की प्रभावशीलता को मजबूत करना है। भारत का लक्ष्य ब्रिक्स को एक अधिक समावेशी वैश्विक व्यवस्था के निर्माण के लिए एक रचनात्मक शक्ति के रूप में सुदृढ़ करना है। सुपर्णा के साथ अनुपम मिश्र, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: भारत इनोवेट्स प्रदर्शनी का शुभारंभ आज नई दिल्ली के भारत मंडपम में हुआ। इसका उद्देश्य ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के साथ भारत के अत्याधुनिक तकनीकी नवाचारों को प्रदर्शित करना है। दो दिन की प्रदर्शनी में भारत के 37 डीप टेक स्टार्टअप और उद्यम शामिल हैं। इस बीच दिल्ली पुलिस ने बताया है कि ब्रिक्स सम्मेलन के कारण कल रात 8 बजे से लेकर 11 बजे तक दिल्ली के मुख्य रास्तों पर यातायात परिवर्तित और नियंत्रित किया गया है। वहीं दिल्ली मेट्रो सम्मेलन के कारण रविवार को सभी लाइनों पर सेवाएं सुबह 6 बजे से शुरू करेगी। अगले आदेश तक सभी मेट्रो स्टेशन खुले रहेंगे। भाजपा ने ब्रिक्स से भारत को होने वाले लाभ पर सवाल उठाने के लिए कांग्रेस नेताओं की आलोचना की है। नई दिल्ली में आज पार्टी सांसद रविशंकर प्रसाद ने कहा कि भारत ब्रिक्स में एक मजबूत अर्थव्यवस्था के रूप में उभरा है।
2: आज आईएमएफ ने अपनी रिपोर्ट में 7.8% ग्रोथ रेट को सही पाया है। आईएमएफ ने भारत की इकोनॉमी के रिजिलियंस की तारीफ की है। तो कांग्रेस के नेताओं को यह बताना जरूरी है कि जब आप सरकार में थे तो ब्रिक्स के मामले में भारत की आपने क्या स्थिति बना दी थी।
1: वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने कहा है कि भारत को मानवीय जिम्मेदारी, सुरक्षा और जन विश्वास से समझौता किए बिना व्यापक स्तर पर तकनीकी नवाचार को बढ़ावा देना चाहिए। मुंबई में ग्लोबल फिनटेक फेस्ट में वित्त मंत्री ने कहा कि भारत की युवा पीढ़ी अवसरों का इंतजार नहीं कर रही है, बल्कि नए प्लेटफॉर्म, उद्यम और समाधान तैयार कर रही है। मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने आज बूथ स्तरीय अधिकारियों को मतदाताओं के लिए निर्वाचन आयोग का जीवंत प्रतिबिंब बताया। गुजरात के अहमदाबाद में उन्होंने कहा कि भारत की चुनावी प्रक्रिया, संविधान, चुनावी कानूनों और आयोग के दिशा निर्देशों के अनुसार ही संचालित होती है। भाजपा की पंजाब इकाई भाजपा दा नारा नशा मुकाना सारा के नारे के साथ राज्य में नशा मुक्त पंजाब यात्राओं की शुरुआत करेगी। चार चरणों में होने वाली ये 13 दिन की यात्रा नशे के खिलाफ अभियान को जन आंदोलन का रूप देने का प्रयास करेगी। पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन 18 सितंबर को पठानकोट जिले के माधोपुर से पहली यात्रा को रवाना करेंगे। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsoneair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध हैं।
3: सबके लिए सामाजिक सुरक्षा अटल पेंशन योजना, मोदी जी का संकल्प।
4: योजना उन नौजवानों के लिए है ताकि आप जब 60 साल के होंगे आपको कभी किसी के सहारे की जरूरत न पड़े, आप अपना बुढ़ापा भी गौरव के साथ बिता सको।
3: अब तक इस योजना से 9 करोड़ 50 लाख से अधिक लाभार्थी जुड़ चुके हैं। अगर आप भी 18 से 40 साल की उम्र के हैं तो मासिक अटल पेंशन सहित योजना के 3 गारंटीड फायदों की जानकारी के लिए अपनी बैंक शाखा से संपर्क करें।
1: ये आकाशवाणी है। ईरान समर्थित हौसी विद्रोहियों ने लाल सागर के निकट बाब अल मंदेब जलबरू मध्यम स्थित यमन के महत्वपूर्ण मयून द्वीप पर कब्जा कर लिया है। इससे सऊदी अरब का तेल निर्यात प्रभावित हो सकता है। सऊदी अरब ने जवाबी कार्रवाई करते हुए हौसी के कब्जे वाले प्रमुख बंदरगाह शहर मोखा के हवाई अड्डे पर हवाई हमले किए। उधर ईरान सरकार ने सऊदी अरब और हौसी विद्रोहियों के बीच बातचीत फिर से शुरू करने का आह्वान किया है। यूरोपीय आयोग ने आज भारत के साथ मुक्त व्यापार समझौते एफटीए पर हस्ताक्षर और इसे लागू करने के लिए यूरोपीय परिषद के समक्ष औपचारिक प्रस्ताव पेश किया। इस समझौते को अब तक का सबसे बड़ा व्यापार समझौता बताया जा रहा है। यूरोपीय परिषद की मंजूरी मिलने पर यह भारत और यूरोपीय संघ दोनों के लिए अब तक का सबसे बड़ा व्यापार समझौता होगा। प्रख्यात तमिल वक्ता सोलोमन पापैया का आज तमिलनाडु के मदुरई में निधन हो गया। वे 90 वर्ष के थे। श्री पापैया अपनी हास्यपूर्ण शैली और विशिष्ट मदुरई तमिल के लिए प्रसिद्ध थे। उन्हें 2021 में पद्मश्री से सम्मानित किया गया था। भारत ने पुरुष हॉकी जूनियर एशिया कप के फाइनल में प्रवेश

0: कर लिया है। चीन में पहले सेमीफाइनल में भारत ने मलेशिया को 3-1 से हराया। कप्तान अनमोल एक्का ने 2 और सुखविंदर ने 1 गोल किया। खिताबी मुकाबले में भारत का सामना दक्षिण कोरिया से होगा। भारतीय जूनियर महिला हॉकी टीम कल सेमीफाइनल में दक्षिण कोरिया से खेलेगी। मौसम विभाग ने कल तटीय आंध्र प्रदेश में तेज बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। कल उत्तराखंड, आंध्र प्रदेश, गुजरात, कोंकण, गोवा, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़ में भी तेज बारिश की संभावना है। दिल्ली में कल कई स्थानों पर बिजली चमकने के साथ बारिश हो सकती है। भारत ने ह्यूमन पेपिलोमा वायरस टीकाकरण के 80 लाख टीकों का महत्वपूर्ण आंकड़ा पार कर लिया है। ये निवारक स्वास्थ्य देखभाल को मजबूत करने और एचपीवी संक्रमण और एचपीवी से जुड़े कैंसर से सुरक्षा प्रदान करने की दिशा में एक बड़ा कदम है। एचपीवी टीकाकरण पहल फरवरी 2026 में शुरू किए गए राष्ट्रीय एचपीवी टीकाकरण अभियान के अंतर्गत की गई है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली में 18वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन से पहले रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के साथ द्विपक्षीय वार्ता की। राजनीतिक, आर्थिक, रक्षा, ऊर्जा के साथ क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों की प्रगति पर चर्चा हुई। श्री मोदी ने फिर कहा, संघर्षों के समाधान के लिए संवाद और कूटनीति ही एकमात्र रास्ता। प्रधानमंत्री ने ईरान के राष्ट्रपति और संयुक्त राष्ट्र महासचिव के साथ भी द्विपक्षीय बैठकें की। ब्रिक्स सदस्य देशों के राष्ट्र अध्यक्ष ब्रिक्स व्यापार मंच के नेताओं के सत्र में शामिल हुए। प्रधानमंत्री ने कहा, ब्रिक्स की आर्थिक शक्ति बाकी दुनिया की तुलना में लगभग दोगुनी गति से बढ़ी है। और चीन में भारतीय जूनियर पुरुष टीम ने मलेशिया को हराकर एशिया कप हॉकी के फाइनल में प्रवेश किया। इसके साथ ही समाचार संध्या का यंग समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: Good evening. This is Akashvani and I am Abhishek Mukhopadhyay with the news at 9. The headlines. Prime Minister Narendra Modi holds bilateral talks with Russian President Vladimir Putin ahead of the 18th BRICS summit in New Delhi. Discusses progress across political, economic, defense, energy and regional and global issues. Prime Minister Modi reiterates on dialogue and diplomacy to resolve conflicts. Prime Minister also holds bilateral meetings with Iranian President and United Nations Secretary General. Heads of BRICS member countries attend leaders' session of BRICS Business Forum. PM Modi says economic strength of BRICS grew at nearly twice the pace of rest of the world. Iran-backed Houthi rebels capture Yemen's strategic Mayun Island in the Bab al-Mandeb Strait near Red Sea. And in hockey, Indian junior men's team enter final of Asia Cup defeating Malaysia at Mochi in China. Prime Minister Narendra Modi and Russian President Vladimir Putin reviewed the progress in bilateral cooperation in political, economic, defense, energy, space, skill mobility and people-to-people domains today. During the bilateral talks in New Delhi, the two leaders also shared perspectives on key regional and global issues of mutual interest, including the conflicts in West Asia and the Black Sea region. Prime Minister Modi reiterated that dialogue and diplomacy is the way forward in resolving conflicts and India stood ready to assist in peace efforts. The External Affairs Ministry said in a statement that Prime Minister Modi and President Putin welcome Russia's International Industrial Exhibition, InnoProm India. The exhibition was held for the first time in India since the 9th of this month till today and underscored its importance in further expanding trade and industrial ties. The two leaders also visited the InnoProm India exhibition and interacted with the participants. President Putin invited Prime Minister to visit Russia for the 24th India-Russia Annual Summit. Prime Minister accepted the invitation. Mr. Modi gifted Mr. Putin a Russian translation of the Thirukkural, the ancient Tamil classic by poet-philosopher Thiruvalluvar during the meeting.
2: 2000 साल पहले देशी के हमारे यहाँ का गंगा ये तेरोल वक्त सब ये वहाँ पे 2000 साल मानव जीवन के इतने ही विषय जो तो सब इन्होंने पैसे इतना खुशी नहीं जो ट्रांसलेशन हुआ है मुझे विश्वास है कि पीपल टू पीपल कांटेक्ट मैं सांस्कृतिक संबंधों को बढ़ाने के लिए बहुत बड़ी भूमिका
1: During his bilateral meeting with Iranian President Masoud Pezeshkian,

0: engagement with key global partners. India has reiterated its unwavering resolve to combat terrorism on the 25th anniversary of the horrific 9/11 attacks in the US. Prime Minister Narendra Modi has said that while the threat of terrorism continues to evolve, India's resolve and opposition to terrorism in all its forms and manifestations remain unwavering. On the 25th anniversary of the horrific attacks, Mr. Modi said in a social media post today that terrorism has claimed countless lives around the world. In sports, in the Junior Asia Cup hockey, Indian junior men's team defeated Malaysia 3-1 in the first semi-final today to book a place in the final at the Mochi in China. Indian skipper Anmol Ekka scored 2 goals, while Sukhvinder scored 1 goal. Five-time champions India had entered the last four in a dominant fashion, defeating Chinese Taipei 15-0 in the final Pool A match. India will face South Korea in the finals on Sunday. South Korea defeated Pakistan 4-1 this evening to reach the final. Indian junior women's team will face South Korea in the semi-final tomorrow. And now, before we end the bulletin, the headlines once again. Prime Minister Narendra Modi holds bilateral talks with Russian President Vladimir Putin ahead of the 18th BRICS summit in New Delhi, discusses progress across political, economic, defense, energy, and regional and global issues. Prime Minister Modi reiterates on dialogue and diplomacy to resolve conflicts. Prime Minister also holds bilateral meetings with Iranian President and United Nations Secretary General. Heads of BRICS member countries attend leaders' session of BRICS Business Forum. PM Modi says economic strength of BRICS grew at nearly twice the pace of rest of the world. Iran-backed Houthi rebels capture Yemen's strategic Mayoun Island in the Bab al-Mandeb Strait near Red Sea. And in hockey, Indian junior men's team enters final of the Asia Cup, defeating Malaysia at Mochi in China. And that is all in the news at 9. Good night.
1: ਹੁਣੇ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣ ਰਹੇ ਸੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਖਬਰਾਂ ਆਕਾਸ਼ਵਾਣੀ ਦੇ ਦਿੱਲੀ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਤੇ ਹੁਣ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਤੋਂ ਵਾਰੀ ਹੈ ਕ੍ਰਿਕਟ ਦੇ ਰੋਮਾਂਚ ਦੀ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ ਤੋਂ ਸੁਣੋਗੇ ਮਹਿਲਾ ਏਸ਼ੀਆ ਕੱਪ T20 ਕ੍ਰਿਕਟ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਦੀ ਲਗਾਤਾਰ ਕਮੈਂਟਰੀ ਅੱਜ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਿੱਚ ਆਹਮਣੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹਨ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੀਲੰਕਾ ਦੀਆਂ ਮਹਿਲਾ ਕ੍ਰਿਕਟ ਟੀਮਾਂ ਇਸ ਰੋਮਾਂਚਕ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦੀ ਹਿੰਦੀ ਅਤੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਕਮੈਂਟਰੀ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹੋ ਆਕਾਸ਼ਵਾਣੀ ਦੇ ਦਿੱਲੀ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ
2: खेल रही है कप्तान टू कप्तान कैप्टन टू कैप्टन और लेग स्टंप के बाहर पैरों के पास गेंद कर दी फील्डर वहां पे तैनात है लेग साइड को भर के रखा है मिड विकेट बाउंड्री लाइन के करीब उस गेंद को फील्ड कर लिया गया इमिशा दोलानी द्वारा केवल एक रन मिलेगा एक एक रन से कोई दिक्कत श्रीलंका को नहीं है पाकिस्तान तेजी से रन बनाना चाहता है 18वां ओवर चल रहा है अब ये तीसरी गेंद करने के लिए अत्तापत्तू आ रही है अत्तापत्तू 2 सिंगल दे चुकी है किसी चीज को चूकती नहीं है निगाह उनकी हर चीज पर रहती है फ्लाइटेड गेंद हवा में डिप होती हुई झूलती हुई गेंद हवा में है लेकिन मिड विकेट फील्डर से काफी पहले गेंद गिर गई और फिर जब दौड़कर आई तो वेग में आगे निकल गई गेंद छिटक गई उनके हाथ से लेकिन कुल मिलाकर पूरी कोशिश करने के बाद भी पाकिस्तानी खिलाड़ी तेजी से रन नहीं बना पा रही हैं बहुत ही चतुराई के साथ इस पिच का प्रयोग किया जा रहा है अपनी गति और रफ्तार में परिवर्तन करती हैं बाउंस गेंद होती ही नहीं है तो आप उस पे बैट को नीचे गेंद के कैसे लाएंगे और ऊंचा बड़ा स्ट्रोक कैसे खेलेंगे 3 सिंगल्स हैं अब तक अत्तापत्तू के इस ओवर में जो पारी का 18वां ओवर है नियमित समय खत्म हो चुका है एक्स्ट्रा टाइम में गेम चल रहा है ऑफ स्टंप के बाहर काफी वाइड गेंद थी ये और जो निशान अब लगाए जा रहे हैं वाइड के लिए मैदान पर आपको हर खेल में हर फॉर्मेट में नजर आएगा और ये वाइड गेंद मिल गई वहां पर पाकिस्तान को इस गेंद को जो कि निश्चित रूप से वो जो नीली लकीर है 90 डिग्री पे पॉपिंग क्रीज के बैटिंग क्रीज के उसके बाहर गेंद चले गई अत्तापत्तू आमतौर पर वाइड गेंदें नहीं करती हैं और अब राउंड विकेट बॉलिंग करेंगी स्टंप्स के पास की इस गेंद को उठा दिया है गेंद को खेल दिया है और लॉन्ग और मिड विकेट दोनों पे खिलाड़ी मौजूद थे दोनों के बीच में से गेंद चली गई 4 रनों के लिए क्या स्ट्रोक खेला है शानदार फातिमा सना इसलिए कहते हैं इनको बैटिंग ऑर्डर में थोड़ा ऊपर आना चाहिए 27 गेंदों पर 35 रन बनाकर पाकिस्तानी कप्तान क्या डग भरा बहुत ज्यादा ऊंचे लंबे कद की खिलाड़ी वो है नहीं अपनी पहुंच का इस्तेमाल किया बैट को लाई ऊंची बैट लिफ्ट लेके फ्लरिश ऑफ द बैट को चेक किया गेंद को प्लेस करना चाहती थी वो ऑर्थोडॉक्स मिड विकेट के बाईं तरफ से और उसको खेल दिया 4 रन और 104 5 विकेट पर पाकिस्तान का स्कोर ओ गेंद हवा में ज्यादा उड़ गई है बॉलर के ऊपर से कुछ और फील्डर लेकिन पहुंचे उससे पहले गेंद टपक खा गई और दूसरे रन के लिए पलटकर पाकिस्तानी खिलाड़ी पहुंच गए गेंद को जैसा खेलना चाहती थी दूरी कम हो गई डिस्टेंस कम हो गया

0: स्ट्रोक में गेंद ऊपर उड़ गई और कैच होने की संभावना थी, और दोनों खिलाड़ी थक गए तेजी के साथ वो दूसरे रन के लिए जो दौड़ी थी। एक गेंद शेष है, फातिमा साना 37, पाकिस्तान 106। और ये देखते हुए कि औसतन 120 से ज्यादा पहली इनिंग्स में बने नहीं है, संघर्ष करना पड़ेगा श्रीलंका को भी। छोटी सी शॉट थी, बैकफुट पे गई, लेट खेली उस स्ट्रोक को, लेकिन जो 25 गज का दायरा है उसको बीट नहीं कर पाई और बुरी तरह से हाफ रही है। वातावरण, मौसम इतना उमस भरा है, इतनी गर्मी है दुबई में, इस मौसम में क्रिकेट खेल कैसे सकता है कोई खिलाड़ी? और इसीलिए पानी मंगाया है, खेल रुका है। और शेफाली वर्मा तो कह रही थी कि मैं जब बैटिंग करती हूँ तो सांस लेना मुश्किल हो रहा है।
1: Could not agree with you more on that count. The conditions quite severe for the players. The heat, the humidity, and of course, again, as far as the pitches are concerned, the same pitches are being used match day after match day. A lot of wear and tear, the slowness of the pitch also. One saw yesterday also how difficult it was even for the Indian batters, the experienced Indian batters, to get going. A score of 149. Even anything, as you very rightly said, anything in excess of 120, 130 has been a fighting score on these pitches. So all in all, it is a match. Even now it's very difficult to say if Pakistan can reach somewhere around 130. I get the feeling we need that it would be a fighting score. Sri Lanka will have to really bat well to win that.
0: 5 मिनट का अतिरिक्त समय लिया जा चुका है क्योंकि 9:15 का समय था। 5.88 का रन बनाने का औसत है 18 ओवर के बाद, यशवंत चाट बता रहे हैं। और किशोर ने आपको काफी विस्तार से बताया कि बरस हो गई। मुझे तो लगता है जितना क्रिकेट का खेल पुराना है उतने हमारे यशवंत भाई अब पुराने चावल हैं। इनमें से महक उठती है क्रिकेट की, बगल में बैठे हुए हैं और सबसे इज्जत और शोहरत इनके नाम की है। अगली गेंद को टॉप ऑफ द बैट से खेला, गेंद हवा में है लेकिन फील्डर की पहुंच से दूर है और 4 रन मिल जाएंगे। और ऐसे ही स्ट्रोक की सख्त आवश्यकता है। कप्तान जो है बार बार समझा रही है, और जैसे कि हम आपको रिपीटेडली बता रहे हैं, 110 5 विकेट पर, यह रन बनाना आसान नहीं होगा। मिथाली हाफ वॉली दे बैठी और उसपे भरपूर स्ट्रोक खेला वेस्ट इंडीज के अंदाज में, 360 डिग्री में घूमता हुआ बैट और गेंद रास्ता नापती हुई दूर उस ओर जो साइड स्क्रीन है उस ओर के जाती हुई। 4 छक्के 9 चौके अब तक इस इनिंग्स में, जहां तक बाउंड्रीज का प्रश्न है। 110 5 विकेट पर, 1900 ओवर शुरू हुआ है, इसके बाद एक ओवर शेष रह जाएगा, 15 मिनट का अंतराल लिया जाएगा। फाइन लेग और थर्ड मैन दायरे के अंदर है, पैरों का पीछा किया पास में, इसीलिए बैटर उस पर कोई स्ट्रोक तुबा खेल नहीं सकी, डिफ्लेक्ट हुई, एक सिंगल मिल गया। और सबसे बड़ी बात यह है स्ट्राइक को रोटेट कर दिया। अब देखना है कि कितने रन पाकिस्तान यहां से बची हुई गेंदों पर बना सकता है। फिर ये सब चीजें मैच रेफरी, जो कि भारत की लक्ष्मी है, वो ध्यान देंगी, क्योंकि लगता है पैरों पे गेंद लगी है वहां पे फातिमा सना पाकिस्तान की, खेल रोक दिया गया है, फिजियो को बुलाया गया है। सादिया इकबाल है, उन्होंने इशारा किया फिजियो को, पाकिस्तानी ड्रेसिंग रूम से आप तुरंत जाएं। इस मौसम में आपको थकान कुछ ज्यादा महसूस भी होती है और फिर आपको चोट लग जाए, तो उस समय फातिमा साना प्रतीक्षा कर रही है। ये गेंद जो जिस तरह से पाकिस्तान के जो विकेट्स गिरे हैं, एक्स्ट्रा कवर पर पहला खिलाड़ी आउट हुआ था जब जुल्फिकार आउट हुई थी, ऑफ स्टंप लेग स्टंप के बाहर आउट हुई थी, कैच अच्छे हैं, कौशिक ने विकेट के पीछे 2 शिकार किए, बहुत बढ़िया किया, स्टंपिंग बहुत अच्छी की, कुल मिलाकर ये उनका गेम रहा है इस पारी में, वो छाई रही हैं, कप्तानी बहुत अच्छी है, फील्ड प्लेसमेंट अच्छे रहे हैं। अत्तपुतु ने एक बहुत बढ़िया कैच पकड़ा बाउंड्री लाइन के पास, सफलता दिलाई अपनी टीम को, बॉलिंग चेंजेस बहुत बेहतरीन किए हैं, फील्ड प्लेसमेंट लाजवाब रहे हैं। और पहला विकेट 5 के स्कोर पर, फिर देखिए 29 रन तक गए तो 21 रन की पार्टनरशिप वहां पर हुई, और 37 पे 3रा, 52 पे 4 और 92 पर 5, तो ये चौथे और पांचवें विकेट के बीच में साझेदारी हुई। पिछले 7 ओवर में आप देखें स्कोरिंग रेट 5.7 का है, यशवंत कह रहे हैं। अच्छा, बॉलर को अगर कोई मदद मिले किशोर तो अच्छा संघर्षपूर्ण क्रिकेट देखने को मिलता है, नहीं तो आजकल व्हाइट बॉल क्रिकेट में एक तरफा मैच होता है, बैटर धाएं धोएं बैटिंग करते रहते हैं और बड़ा स्कोर कर लेते हैं, बेचारे बॉलर मुंह ताकते रह जाते हैं। तो एक तो व्हाइट के कुछ नियम बदले हैं और कुल मिलाकर ICC समझ रहा है खेल को दिलचस्प बनाने के लिए नियमों में परिवर्तन करने जरूरी है और बॉलर को कुछ मिलना चाहिए। पैरों पे लगी, लेग स्टंप के बाहर जा रही थी और अभी फिजियोथेरेपिस्ट से कुछ उपचार उनको मिला है, अभी भी पूरी तरह से फिट है, अभी कोई निगल है ऐसी कोई चीज

0: है जो उनको परेशान कर रही है, कुछ दर्द है और जो प्रतिक्रिया चेहरे पे उभर रही है उससे लगता है कि बहुत सहज महसूस नहीं कर रही है, पसीने के बूंदे उनके चेहरे पे से नीचे टपक रही हैं, वातावरण बहुत ही उमस भरा और गर्म है, 35-36 डिग्री सेल्सियस है, बाद शाम को भी दिन छुपने के बाद भी मौसम में कोई राहत नहीं है। दो खिलाड़ियों के बीच में ऑन साइड में गेंद को प्लेस किया, एक सिंगल मिल जाएगा पाकिस्तानी कप्तान को। 3 गेंदे शेष है, 112 5 विकेट पर, अब केवल 2 गेंदे शेष रह गई हैं और चेहरे से लग रहा है तकलीफ में हैं। उनको बॉलिंग भी करनी है और अग्रणी बॉलर है, उनसे काफी उम्मीदें हैं पाकिस्तान को कि वो बॉलिंग करेंगे, नई गेंद का इस्तेमाल करेंगे और विकेट भी दिलवाती हैं वो, और उन्होंने काफी विकेट इस सीजन में लिए हैं, 23 विकेट सबसे ऊपर हैं वो, 26 में 23 विकेट लिए हैं उन्होंने, लेग स्टंप के काफी ज्यादा बाहर, ये निश्चित ही वाइड गेंद होगी और ये सीमा रेखा से बाहर चली जाएगी, विकेट कीपर से रुके नहीं, 5 रन मिलेंगे पाकिस्तान को इसमें। विकेट कीपर शफल करती हुई कौशनी गई जरूर थी अपनी बाई तरफ लेकिन उसको रोक नहीं सकी थी, और एक बार फिर मालती महंगा साबित हो रही है, गेंद उठी ही नहीं, बिल्कुल सुर्रा हो गई लेकिन लेग स्टंप के बाहर थी तो इसलिए स्टंप्स में नहीं लगी, श्रीलंका को फायदा नहीं, नुकसान ज्यादा हुआ उस नीची रहती हुई गेंद पर, विकेट कीपर पहुंच नहीं सकी, उतना झुक नहीं सकी और पीछे विकेट कीपर के जो साइड स्क्रीन है उसकी बाई तरफ से सीमा रेखा के बाहर हो गई। ये छठी वाइड आप कह सकते हैं जो थी, जो श्रीलंकाई खिलाड़ियों ने की है, आज वो नियंत्रण नजर नहीं आया है, इस बार स्टंप्स के बिल्कुल सीध में मिडिल स्टंप की इस गेंद को ऊपर उठा दिया है मिड विकेट की तरफ, और क्या शानदार कैच, पकड़ने का प्रयास तो भरपूर किया था लेकिन उनके हाथ से छूटी, वो कलाबाजी खाती हुई अपना संतुलन जरूर बना रही है लेकिन एक मौका हाथ से जाता रहा वहां विकेट लेने का, जबकि फातिमा सना ने दूसरे छोर पे खड़े होकर देखा, तुबा ने गेंद को ऊपर उठाया था, पूरा भरपूर करारा स्ट्रोक खेला, बहुत ज्यादा ऊपर उठ गई थी लेकिन यहां पे जो लाइट्स हैं वो टावर से नहीं है, पूरी गोलाई में है, उसमें ऊंचे स्ट्रोक्स जब खेले जाएं तो कैच पकड़ना आसान नहीं है, कैच छूटा और एक और सिंगल अगली गेंद पर, गेंद हवा में लेकिन उस ओर कोई फील्डर नहीं, और इस तरह से ये ओवर जिसमें विकेट मिल सकता था। बहरहाल पाकिस्तान 120 पे जा पहुंचा है जो कि पार स्कोर कहा जा सकता है इन पिच पर। आइए किशोर।
1: थैंक यू विनीत, इट्स गोइंग टू बी अ क्रूशियल फाइनल ओवर। Remember, Pakistan have 5 wickets in hand. They got all the wickets they would require at this stage, but the run rate slightly less than what they would have. But T20 cricket, you never know. One over can change the entire complexion of this game. And Pakistan have their skipper out there in the middle, Fatima Sana, and she has performed both with bat and ball. She's basically a bowling all-rounder. And after 19 overs, the run rate has been upped a little. 6.31, Yashwant Chadha informs me. And that would mean that 120 for 5. Final over coming up. Can Pakistan add about 10 to 15 runs here? That could well be the difference in the outcome of this game. And Sri Lanka bringing on the experienced left-arm spinner, Sugandhika. Sugandhika was the one who opened the bowling with Mitali Ayodhya. Ayodhya was expensive, but Sugandhika has really bowled extremely well, has brought all her experience into play. Just the right bowler to be bowling that final over. Tuba Hassan would be on strike, and the humidity getting to the players there. The captain, Fatima Sana, has been troubled, and we can once again see the physiotherapist out there attending to her. Maybe a case of cramps, because the conditions are so severe, as we've been discussing, the heat, the humidity, it is all taking a toll. It may be a T20 game, a game of only 20 overs, but conditions are so difficult that it is really telling on the players, Vineet.
0: बहुत बड़ी क्षति होगी पाकिस्तान के लिए अगर कप्तान घायल हो गई तो, क्रैम्प्स और जिस तरह से पैरों को मोड़ रही है, हैमस्ट्रिंग भी हो सकती है, आमतौर पर अगर हैमस्ट्रिंग होती तो इसी तरह से घुटनों के पास से ये पैरों को मोड़ कर ऊपर उठाया जाता है, लेकिन जो कुछ भी हो उनकी बॉलिंग की बहुत सख्त दरकार पड़ेगी, बहुत जरूरत पड़ेगी पाकिस्तान जब बॉलिंग करने के लिए आएगा, और पाकिस्तान की दृष्टिकोण से उम्मीद की जानी है कि चाहिए कि फातिमा सना, निर्जलीकरण डिहाइड्रेशन बहुत होता है इस माहौल में और उसके बाद फिर क्रैम्प्स आना स्वाभाविक हो जाता है, जितना आपको डिहाइड्रेशन होगा उतनी क्रैम्प्स आपको आती हैं, और फातिमा सना अच्छी खासी तकलीफ में है, मैदान पर पसरी इस समय पड़ी हुई है, फिजियो उनकी मदद करने का प्रयास कर रही है।
1: And really, as you said, Vinita, bowling would be something which

0: तो कहते हैं कि जब इरादे नेक हों तो जो आप हासिल करना चाहो वो आप हासिल कर सकते हैं, और पाकिस्तान की टीम के लिए भी शायद यही बात बिल्कुल सही बैठती है, क्योंकि 10वें ओवर में स्कोर हो 52 और 4 विकेट खो बैठे हैं, और उसके बाद लगभग लगभग जो 78 रन 80 रन अगर बनाए तो फाइटिंग का चांस तो बन ही जाता है। बहुत सारी बातों के साथ मैं मुनीश जौली आप सभी का स्वागत कर रहा हूँ। गीतांजलि सोनी हमारे साथ हैं, और हमारे साथ दो खास मेहमान हैं हमारे एक्सपर्ट्स सुमित्र बोस, वैशाली माथुर, आप दोनों का स्वागत कर रहा हूँ मैं।
1: Thank you. All right.
2: गुड इवनिंग।
1: Good evening. And in fact, you know, this is for me quite interesting show right now, although we are going to talk just for a little bit. Because initially, when Pakistan started and their wicket fell off, I thought it was going to be really quick and easy for Sri Lankan team. But things were different and they have shown the resilience. So, Soumitra, I'll first ask you, where do you see now match going from here? 130 score, is it a good enough score?
3: Yeah, challenging score. Just before the match, we predicted anything between 130 and 140 good score, because the wicket is not ideal, it's a slow batting track. So now Pakistan have done the job, especially Fatma, the way she batted. Rear good action, two good partnerships, especially after Munish has already said that they had lost four wickets for the halfway stage.
1: Right.
3: Great comeback, two wonderful partnerships, but now they have to do the job with the ball. And 130 won't be an easy target, so Sri Lanka will have to plan their chase very well.
0: Vaishali, kya laga aapko ki Pakistan ladkhadai shuru mein, kya wajah rahi?
4: Pakistan ke jo openers hai, उन्होंने आके अपना कमाल उस तरीके से दिखाया नहीं, बट हाँ, जब फातिमा आई और ट्यूबा उनके साथ खेल रही थी, काफी अच्छा ये शो देखने को मिला, क्योंकि जिस तरह से वो निकल के वो सिक्स हिट कर रहे थे और बाउंड्रीज तक लेके जा रहे थे, वो काफी इंटरेस्टिंग था। एंड पूरे मैच की अगर बात करें तो सबसे अच्छा लगा था श्रीलंका के विकेट कीपर, तो वे उन्होंने जल्दी से जैसे उन्होंने अटैक किया है, कैचेस पकड़ी है, वो आउटस्टैंडिंग है। एंड वो काफी यंग भी देखने को दिख रही है अभी। तो अगर हम बात करें अपने इंडियन प्लेयर से, अगर अपनी रिचा घोष से अगर कंपैरिजन करें तो टाइमिंग काफी अच्छी है उनकी उनसे।
1: राइट, सो मित्रों, दो वी हैव टू गिव इट टू पाकिस्तान फॉर दिस, बिकॉज वी हैव सीन दैट दे हैव रेजिलियंस, ऑफ कोर्स, बिकॉज एज वी हैव सीन इन द टूर्नामेंट दे डिड नॉट प्ले दैट वेल, बट द लास्ट टू मैचेस व्हिच दे वॉन एंड दे केम इनटू सेमीफाइनल्स, आई गेस यू नो दे कैन गिव गुड फाइट टू श्रीलंका।
3: सर्टेनली, इन फैक्ट दैट्स व्हाट वी रिक्वायर। आई मीन दिस इज द टाइम, दिस इज द बिजनेस एंड one match, if you don't win today, you go home. But thing is, they've shown captain has come to the party finally.
1: Yes.
3: Because and she's quite capable. Ki unka jo strike rate hai is 150.74, which is very good, and one of the top, among the top five in the world. Aji she has, but the bad thing that I saw that she was cramping towards the end.
1: Yes.
3: Unka cramps humne dekha, and she's equally important with the ball. So I will hope that in this 10 to 15 minutes break, the support staff for the mashers, the people, unko acha se hydration milna chahiye, kyunki, or so that she comes back fit to bowl her 4 overs. Or dekhiye, these are very crucial things. Ye T20 tournament mein, T20 matches mein, these are the challenges. And Dubai's high humidity is also a massive challenge.
1: Yes.
3: So I think we're all set for a great second innings.
0: Right then,

0: दो विकेट लिए चमारिया थपथ, जो सबसे एक्सपीरियंस्ड हैं, एंड ऑफ कोर्स मैं कहूंगा कि उनके साथ चामुंडी प्रबोडा जो उनकी लेफ्ट आर्म स्पिनर है, वो सबसे कम उम्र की हैं। डिड शी इम्प्रेस यू वैशाली?
1: या वेरी वेल, क्योंकि 17 ईयर्स का आप उनका फेस देखो, जब वो बॉल डाल रही थी बिल्कुल 13 ईयर्स की लग रही थी उस टाइम पे. आई थॉट कि इंडियन, मतलब आप इंटरनेशनल लेवल पे खेल रहे हो और इतना अच्छा परफॉर्म कर रहे, इतने छोटे मतलब बच्चे होके आप, एंड वो कॉन्फिडेंस उनके अंदर जो था वो इंटरनेशनल प्लेयर्स के जो एक्सपीरियंस प्लेयर है उनके पास तक नहीं होता है. वो इतने कॉन्फिडेंस से बॉल डाल रही थी एंड सी टुक 2 विकेट्स, वो बड़ा इम्प्रेसिव है. और उनको सबसे एक डिफरेंट बात ये थी कि इतना छोटा यंग प्लेयर होने के बावजूद भी उनको ये पता है कि उनको बॉल किस बैटर को किस वे में डालना है. वो कहीं ना कहीं खींच के भी डाल रही थी अपनी तरफ के बैट्समैन को, वो लूप दे रही थी कि वो निकल के मारे, एंड वहां पे उन्होंने वो दिया, एंड वहां पे सामने खड़ी थी अट्टा पट्टू, एंड वहां पे उन्होंने कैच भी लिया था उनका. द रिएक्शन वॉज एक्सपीरियंस प्लेयर का जो रिएक्शन होता है, सेम रिएक्शन जो मेरे को मिला है ना देखने को, वो बहुत ही इंप्रेसिव था.
2: सो बच्चू, इज इट सेफ टू से दैट दिस कॉन्फिडेंस सॉर्ट ऑफ ईज कम्स विद दी आई थिंक स्टेबिलिटी फैक्टर विच श्रीलंकन टीम हैज राइट नाउ, कंसिडरिंग दे हैवंट इवन लॉस्ट लूज लॉस्ट इवन अ सिंगल मैच. सो डू थिंक दैट इज ऑल्सो अ कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर?
3: सर्टनली सर्टनली, बिकॉज यू सी चमारी अथपट्टू, इफ यू लुक एट द वे शी वॉज बोलिंग,
2: राइट,
3: वेरी इंटेलिजेंट, कि दे हैड केम आउट विद अ वेरी स्ट्रेट गेम प्लान, पेस एंड स्पिन. और जिस तरह से चामुंडी अथपट्टू केम टू बॉल, द वे शी वॉज यूजिंग द बॉल, लाइन एंड लेंथ,
2: राइट,
3: और जिस तरह से अपना वेरिएशन कर रहा था, जिस तरह से वो पिच यूज कर रहा था, शी वॉज लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट,
2: राइट,
3: यस, एंड इट वॉज कैप्टन वर्सेज कैप्टन. ऑफकोर्स द पाकिस्तानी कैप्टन पटना केम बैक एंड विद द ब्रिलियंट नॉक, बट चामुंडी एक्चुअली टुक अ वंडरफुल कैच. Or maybe one or two catches were dropped, but I think Pakistan have done really well to fight back, and fantastic.
2: All right. और मुझे लगता है कि ये जो कैच ड्रॉप हुई है ना वैशाली, ये कहीं ना कहीं हर्ट जरूर करेंगे श्रीलंकन टीम को.
1: बिल्कुल करेंगे, बट अभी देखने की बारी ये है कि किस तरह से इनके जो बैटर हैं वो कैसे परफॉर्म करते हैं. क्योंकि आपको पावर प्ले में कितना आप फायदा उठा सकते हैं ना एज अ श्रीलंकन टीम, तो आप जितना भरपूर फायदा उठाएंगे उतना बेटर होगा और आप स्कोर के पास उतना जल्दी पहुंचेंगे.
2: जी
0: Shomitrada, you also feel that the power play is vital, or you would want to save wickets if you're a Sri Lankan supporter, and you know, with their point of view, you want to just postpone the attack later on in the last 4 overs?
3: Yeah, preferably. In fact, sometimes you lose the definition of power play in these kind of matches. See, power play did not work for Pakistan, but they came back later in the innings. But I think a safety first approach will be better, because it's not a big total. And the Sri Lankans ke paas kafi depth hai batting karne ke. We had mentioned about player like Harshita, Chamani Chattopadhyay, and aapne Emesha ki baat bhi ki thi pre-show mein. They have the depth. They have the depth and the variety, and if they can force the pace.
0: Right then, if I can just speak about the facts, and of course the facts are the stats. Very interesting, you know, 48% of the deliveries that Pakistan faced were dot balls. They got 9 runs in extras, 64 runs were scored at boundaries because there were 10 fours and 4 sixes. And of course, in the middle overs, they got 59 runs, they lost 3 wickets. And of course, in the final overs, they got 38.
3: I wanted to add something. Ji. In fact, the highest scorer, the captain, did not score in the first 6 balls.
2: Yes.
3: And just started with a 4.
0: And right. I think we were discussing about that also.
3: Right. Yeah. So that's how it's, when you ask about power play, ideally that's the place to score.
0: Right.
3: But always doesn't work like that.
2: Also, let's just talk about the pitch right now, because that was a bit slow. Now, in the second half, what do you reckon? How is it going to behave?
3: I think it can only get better. It won't be quicker. आप देखिए, थोड़ा सा भी मॉइस्ट मॉइस्ट वेदर है, थोड़ा सा ड्यू आएगा, तो इट विल गो अगेंस्ट द बॉलिंग साइड. बट आई थिंक इफ द श्रीलंकन्स कैन कीप देयर हेड डाउन एंड प्रोबब्ली दे विल मेक द थर्ड स्ट्रेट रन्स.
2: और वैशाली, पाकिस्तान की तो स्ट्रेंथ ही उनकी बॉलिंग मानी जा रही है अभी तक. बैटिंग इतनी बुरी नहीं की आज इन्होंने, तो आपको क्या लगता है कि क्या जो स्पिनर्स हैं वो ज्यादा परेशान करने वाले हैं, या कि पेसर्स का भी कुछ रोल रहेगा इसमें?
1: देखिए, अभी श्रीलंका की अगर बात करूं, पहले तो उनके सेकंड ओवर में ही उन्होंने स्पिनर लगा दिया था, एंड उन्होंने काफी अच्छी बॉल डाली है. एंड उसके साथ अगर पाकिस्तान की बात करें तो उनके पास स्पिनर हैं अच्छे, बट जिस तरह से टर्न पिच दे रही है, तो उस हिसाब से देखना पड़ेगा कि आप किस तरीके

से उसको यूज कर रहे हैं, उसका फायदा उठा रहे हैं. एंड श्रीलंका के जो बैटर है उनको बॉल के ऊपर चढ़ के खेलना पड़ेगा, बहुत जरूरी है, क्योंकि वो बैटर अगर दूर से खेलेंगे, अगर हमने देखा हो तो पाकिस्तान टीम आगे स्ट्रगल कर रही थी, स्टेप आउट भी कर रही थी, बट बॉल इतना टर्न हो रहा था क्योंकि पाकिस्तान के जो बैटर है वो बॉल के ऊपर चढ़ ही नहीं रहे थे, एंड वो टर्न हो रहा था तो उसको वो सिर्फ टच कर रहे थे साइड में. तो ये एक आपको देखना पड़ेगा श्रीलंका.

0: If you saw the way the wicketkeeper took the bails off, bahut turn hai.
1: But you think it's going to turn, because my point was the dew factor has, we've seen in the past that, you know, when the Indian men's team were playing Asia Cup and they played the other tournaments, the dew factor came in and, you know, they demolished the ideas of a win. You think that's going to come in
0: yes,
1: as a big factor?
0: Definitely. Manish,
1: at this point of time, because
0: Dubai has always been like this in the second half.
1: Always? Throughout the year?
0: And it's very humid. You can see the captain cramping. That means there is a problem.
1: Yeah, but if dew comes in, then you can't grip the ball.
0: You can't grip the ball, but that's where your captaincy skills will come. But yes, you will have to maintain your line and length and pitch it in the right places for the batsman to make the mistakes.
1: Dubai International Cricket Stadium. Before we go in there, your take. Don't say 50-50, the other. Just choose one team.
0: I'll say 60-40 for Sri Lanka.
1: Sri Lanka. Vaishali Mathur.
2: Same. 60-40.
1: Ye kya baat hui? Same.
2: Okay, I will go some closer. 70-30.
1: Sri Lanka?
2: Sri Lanka 70-30 Pakistan.
1: मुझसे भी पूछ लो,
2: आप भी बता दीजिए.
1: मैं तो थर्ड अंपायर का रोल प्ले करूंगा. आई विल वेट एंड वॉच. खैर, हमें अपने कमेंट्री टीम के पास दोबारा जाना पड़ेगा, बट इट्स गोना बी अ वंडरफुल एनकाउंटर बिटवीन पाकिस्तान एंड श्रीलंका. दे सेट अ टारगेट ऑफ 131 रन फॉर श्रीलंका. थैंक यू सो मच मिस्टर सुमित्र बोस एंड वैशाली माथुर.
2: थैंक यू.
1: और गीतांजलि सोनी, हमारे सभी श्रोताओं से विदा ले रहे हैं इस वादे के साथ कि हम पोस्ट मैच प्रोग्राम में जरूर आएंगे, लेकिन फिलहाल वक्त है कि हम चलें अपनी कमेंट्री टीम के पास.
3: मैच का आंखों देखा हाल सुनने के लिए आइए चलते हैं अपनी कमेंट्री टीम के पास.
4: पुनः स्वागत है आपका. मैं आपका कमेंटेटर विनीत गर्ग बोल रहा हूं. मेरे साथ हैं एस किशोर अंग्रेजी में, वयोवृद्ध हमारे स्कोरर यशवंत चाड मुंबई के, और जतिन सूद हमारे स्टैटिस्टिशियन मुस्तैदी के साथ तैयार हैं एक ऐसे मुकाबले के लिए जो बहुत संघर्षपूर्ण साबित होगा, ऐसा उम्मीद यहाँ पर सबको हो रही है कि ये निश्चित रूप से संघर्षपूर्ण मुकाबला होगा. लेकिन सबके दिमाग में एक ही प्रश्न है कि क्या पाकिस्तान की कप्तान फातिमा सना बॉलिंग करेंगी. जिस तरह से तकलीफ में वो नजर आ रही थी पारी की, जब पाकिस्तान बैटिंग कर रही थी उस समय उनको घुटने में चोट भी लगी थी, और फिर उसके बाद पतनाले की तरह, धार की तरह पसीना बह रहा है क्योंकि उनके बेहतर रहा है जब वो बैटिंग, लेकिन मैदान पर आ रही हैं. पाकिस्तान के लिए ये शुभ समाचार है, फातिमा साना मैदान पर आ रही हैं. हालांकि काफी खेल का वक्त जाया हुआ क्योंकि उनको उपचार देना पड़ा मैदान पे आके फिजियो को पाकिस्तान के, लेकिन इस समय कम से कम मैदान पे तो आ रही हैं और उम्मीद है कि बॉलिंग करेंगी क्योंकि पारी की शुरुआत में वो नई गेंद का इस्तेमाल करती हैं और उन्होंने सबसे अधिक इस साल T20 इंटरनेशनल्स में विकेट पाकिस्तान की ओर से चटकाए हैं 23. तो एक ऐसा मुकाबला जिसमें ये रन बनाने इतने आसान नहीं होंगे इस पिच पर, क्योंकि ज्यादा बड़े स्कोर होते नहीं रहे. 169 मैच खेलने वाली ODI और T20 में दोनों में 4000 रन बनाने वाली, 114 का स्ट्राइक रेट अच्छा खासा है, 14 अर्धशतक, 4 शतक भी लगाए हैं उन्होंने. पहली थी श्रीलंका की ओर से T20 शतक लगाने वाली, 119 रन बनाकर नाबाद रही, 160 का स्कोर. इमीशा दुलानी जो एकमात्र दूसरी हैं जिन्होंने शतक लगाया है श्रीलंका की ओर से, और किसी ने नहीं लगाया, उनका एक शतक है, दो अर्धशतक है, 23 मैच अब तक खेली हैं, 460 रन उन्होंने बनाए हैं. और सादिया इकबाल जो स्पिनर हैं वो बॉलिंग करने के लिए आ रही है, और सादिया इकबाल बाएं हाथ की स्पिन बॉलर हैं, 68 मैच में 84 विकेट उन्होंने लिए हैं. अच्छी ऊंची कद काठी की हैं तो गेंद उनकी काफी बाउंस होती है, और जो फील्ड लगाई गई है उसमें एक स्लिप नजर आ रहा है. और बाएं हाथ के बैटर अत्तापत्तू कप्तान जो पारी की शुरुआत करने आई हैं उनके लिए भरी हुई ओपेक ऑफ साइड फील्ड है, और ऑन साइड की भी नजर आ रही है. दूर के खिलाड़ी हमें नजर नहीं आ रहे हैं, केवल दो रखे जा सकते हैं. सादिया इकबाल बाएं हाथ से ओवर द विकेट ड्राइव किया, कोहनी ऊपर करके सीधा ड्राइव, और गेंद मिड ऑफ जो कि दायरे के अंदर है 25 गज से, और श्रीलंका को जीतने के लिए 131 रनों की आवश्यकता है. एमिरेट्स रोड एंड से ये बॉलिंग की जा रही है इमीशा दुलानी, जो जो नवयुवक नवयुवती हैं, 24 बरस की हैं. अगली गेंद, और इसको ड्राइव कर दिया दो फील्डर्स के बीच में से, करारा ड्राइव खेला है इस बार, और गेंद वाइडिश लॉन्ग ऑफ बाउंड्री के बाहर चली गई है 4 रनों के लिए. बढ़िया स्ट्रोक था, अनुमान सही लगाया था. कप्तान अत्तापत्तू के पास 16 साल का अंतर्राष्ट्रीय अनुभव है, बहुत ऊंची बैकलिफ्ट ली और फ्लरिश में गेंद को जब वो खेला उन्होंने तो बैट जाके पीछे कमर से दोबारा टकरा गया, और

0: सना थोड़ा सा इशारा कर रही है कि आपको इतनी ओवर पिच करने की जरूरत नहीं है गेंदों को, बस। और इस बार धीमी गेंद को रफ्तार भी कम कर दी, लंबाई भी कम कर दी और सावधानी से इस बार पुश भर कर पाई अत्ता पत्तू। 4 रन 3 गेंदों पर, और श्रीलंका का भी खाता उस चौके के साथ खोला था 4 बगैर नुकसान के। 20 पारियों में 434 रन बनाए हैं 115 के स्ट्राइक रेट से अत्ता पत्तू, श्रीलंकाई कप्तान ने पाकिस्तान के खिलाफ T20 में। इस बार क्रीज पे चौड़े वाइड ऑफ द क्रीज ये गेंद कर दी और केवल उसको डिफ्लेक्ट करके एक एंगल शॉट खेला और ऑफ साइड में बैकवर्ड ऑफ पॉइंट पर दायरे के अंदर गेंद को फील्ड करें उससे पहले छोर बदल लिए दोनों खिलाड़ियों ने। तो इमीशा दुलानी 12, 3 और 25 ये स्कोर रहे हैं अब तक टूर्नामेंट में उनके। दरअसल टीम में वो इसलिए हैं और उसकी वजह से विश्मी गुणरत्ने को पारी की शुरुआत नहीं कराई है इस टूर्नामेंट में। 64 गेंदों पर एक शतक लगाया है इन्होंने एक बायलेटरल सीरीज में, द्विपक्षीय सीरीज में जो लंका में हुई अगस्त में, शानदार बैटिंग की और इमर्जिंग प्लेयर ऑफ द ईयर उस पारी की वजह से उनको पुरस्कृत किया गया, इमर्जिंग प्लेयर ऑफ द ईयर श्रीलंकाई क्रिकेट की। ओ बढ़िया गेंद थी, थ्रू द डिफेंस लगभग हो गई थी, लेकिन क्योंकि चौकस और चौकन नहीं थी, कोई आक्रामक तेवर नहीं दिखा रही थी, फ्रंट फुट पर आ जरूर गई थी, फिर असहज महसूस किया, पीछे से बल्ले को लाई गेंद की लाइन में और धीरे से पुश भर कर दिया। लेकिन अच्छी बॉलिंग कर रही है सादिया, बार बार बदल रही है, ओवर से राउंड विकेट हो रही है, एक लेफ्ट हैंडर है एक राइट हैंडर है और दोबारा इस बार जबरदस्त स्ट्रोक लिया इमीशा ने, पूरी तरह से चूकी, मिस टाइम किया, बैट पे लगी, पैड पे लगी और फिर डिफ्लेक्ट हो गई, विकेट कीपर ने आके गेंद को उठा लिया। अच्छा ओवर सादिया का, सोचने पर मजबूर किया दोनों बैटर्स को और इसके साथ ही पहला ओवर समाप्त हो गया श्रीलंका की पारी का।
1: सो श्रीलंका मेकिंग ए क्वाइट बिगिनिंग, 131 इज द टारगेट, ए फाइटिंग स्कोर एज फार एज पाकिस्तान इज कंसर्न्ड, विनीत, एंड इट वुड बी अप टू फातिमा सना स्किपर, शी लेड फ्रॉम द फ्रंट एज फार एज द बैटिंग इज कंसर्न, पाकिस्तान वेन ट्रबल हैविंग लॉस्ट 4 अर्ली विकेट्स when she came out to bat, first that 40-run partnership for the 5th wicket, an unfinished one for the 6th wicket, saw that Pakistan reached a score of 130, and Sri Lanka in reply at the end of the first over, 5 without loss, and a lot would depend on the Sri Lankan skipper. Atta Pattu, Chamari Atta Pattu, she's so much of experience. Fatima Sana, look at her record, 64 wickets in 67 matches, 9 occasions when she has taken 3 or more wickets, and a lot would depend upon her bowling to a very interesting field, just the lone slip, then you've got a man at a fielder there at backward point, then a ring of fielders on the offside. Fatima this time drifting down the leg side, and well of course these days what the ICC has done is, earlier whenever Vineet was also talking about that, whenever a ball even marginally going down the leg side used to be called a wide. Now with those blue lines which are on either side of the stumps is what would determine a wide ball, and this is very good. This has made it more bowler friendly, because as we all know, the game is so much loaded in favor of batters. Fatima Sana bowling the second over of the innings, Sri Lanka 5 without loss, bowling captain to captain. Fatima Sana to Chamari Attapattu, and Attapattu in the slot picks it up straight to the fielder. What a catch that is! That's the breakthrough that Pakistan were looking for. The danger woman, the captain of Sri Lanka, gone in the very first over. Chamari Attapattu picked up the fielder with unerring accuracy there, Vineet. And that would mean that Sri Lanka have been dealt an early blow. 5 for 1.
0: सबसे सफल खिलाड़ी कप्तान अत्तापत्तु, और ये झांसा दिया लगातार लेग स्टंप के आसपास गेंद करती रही हैं सना, जानबूझकर, फील्ड प्लेसमेंट इतने लाजवाब है और वहां पे बैकवर्ड ऑफ स्क्वायर की बजाय थोड़ा सा फॉरवर्ड ऑफ स्क्वायर कर दिया था स्क्वायर लेग क्षेत्र में। अत्ता पत्तु ने जब उस बाएं हाथ की है जब खेलने का प्रयास किया तो सीधे झोली में चला गया, बेहतरीन फील्ड प्लेसमेंट, सदाफ ने बढ़िया कैच पकड़ा। ये कैच पकड़ने इतने आसान नहीं है, दिखते जरूर है आसान, लेकिन महत्वपूर्ण सफलता हाथ में आ गई है पाकिस्तान के।
1: यू राइट, नॉट वेरी इजी, स्पेशली अंडर द फ्लडलाइट अरेंजमेंट व्हिच इज देयर एट द दुबई इंटरनेशनल स्टेडियम, अनलाइक most grounds across the world where you have floodlight towers, here you have the floodlights are actually on the periphery of the roof of the stadium. Sometimes most times it is difficult for the fielder. We've seen a lot of catches being dropped here.

0: Even in the Pakistan innings, some catches went begging. But this time, the fielder, Sadaf, they're doing extremely well and taking that catch. So, an early jolt for Sri Lanka, chasing 131 for victory, a 5-for-1. And it is once again the skipper who's delivering. Fatima Sana, this time the ball stopping on her. And that's another wicket. She's on a hat-trick here. So, Pakistan really fighting back after losing their first four wickets for very cheaply. First through the bat, the skipper leading the way there, Fatima Sana. Now she's doing it with the ball as well, Vineet. Two wickets of consecutive balls. She's on a hat-trick. And Sri Lanka in early trouble, 5-for-2.
1: Dhemi gain kar di. Aur batter usse chok gayi. Apne stroke ko check karne ki koshish ki, lekin gend lob ho gayi. Usko khelna chahti thi. और जैसे ही उसको ऑन साइड में गई, एक शॉर्ट फील्डर शॉर्ट मिड विकेट पर तैनात है, उस ओर गेंद चली गई, एक लेफ्ट हैंडर गया, दूसरा लेफ्ट हैंडर आया, और वो जो लेफ्ट हैंडर जो आई, उन्होंने जब उसको खेलने की कोशिश की, खुशी देखते ही बनती है पाकिस्तान खिलाड़ियों की. उनको लग रहा है उनके पास पर्याप्त स्कोर नहीं है, लेकिन संजना कविंदियो अच्छे फॉर्म में थी, खाता ही नहीं खोल पाई. और जैसा कि किशोर ने बताया, अब अगली गेंद हैट्रिक बॉल होगी और संजना कविंदी का वहां पे विकेट खो दिया है. और महत्वपूर्ण सफलता पाकिस्तान के, इसके साथ ही हौसला बढ़ेगा उनका और वो ज्यादा अच्छी बॉलिंग कर सकेंगे, दबाव बनाएंगे. हालांकि टॉप पहले पांच खिलाड़ियों में तीन लेफ्ट हैंडर्स हैं श्रीलंका के पास, और ज्यादा ऑफ स्पिनर पाकिस्तान के पास है नहीं, मैचअप ज्यादा है नहीं, लेकिन दो विकेट पहले ही खो दिए हैं श्रीलंका ने.
0: यस, नॉट द आइडियल स्टार्ट और बिगिनिंग फॉर श्रीलंका. जस्ट द ऑपोजिट ऑफ दैट, chasing 131 and they are 5-for-2, and it is the hat-trick ball coming up, but this time Hasini has been able to play it defensively, gets behind the line of the ball, showing good technique, and the hat-trick averted there. But the fact remains that Sri Lanka now will find the going difficult. Two early jolts there. First it was Chamari Attappattu who really picked one up on the middle and leg stump, flicked it but found the fielder there on the boundary, and very next ball it was a case of the ball just stopping on the batter, and very clever bowling, I must say, from Fatima Sana. Seam up, here she is now bowling to Hasini, and Hasini has her work cut out. Once again, middle and leg stump line that she's employing, the restrictive line, and a single accrues, and that would mean that Sri Lanka are 6-for-2. But what a evening this is turning out for the Pakistan skipper, Fatima Sana. First with the bat, that fighting knock which took Pakistan to a score of 130. Now with the ball, delivering in a very first over. First accounting for an opposite number, Chamari Attappattu. And immediately dismissing the next batter as well. So really, this is, even though she was troubled while batting, she was cramping, the heat and humidity taking a toll, but she really, to her credit, the Pakistan skipper really saw to it that Pakistan crossed the line as far as batting is concerned. 130-for-5 on a pitch where stroke making is in the easiest of things. They have put up a score of 130 and now defending it well. Here's Fatima for the last time in her first over. This time driven towards mid-on. A quick single there to end over number 2. And Sri Lanka at the moment tottering 7-for-2. Vineet?
1: बैट का चेहरा बंद करना खतरे से खाली नहीं है इस पिच के ऊपर. और ये जो पिछली गेंद थी, हालांकि उस पे सिंगल जरूर दौड़ा है, लेकिन जिस तरह से क्लोजिंग द फेस ऑफ द बैट, बहुत देखने में सहज नजर नहीं आई उस स्ट्रोक पर वो बैटर. और गेंद हवा में उड़ सकती थी, टॉप एच भी लग सकती थी, LBW बोल्ड भी हो सकती थी, तो तमाम संभावनाएं बन रही थी. और वैसे भी इन पिचेस पे बैटिंग करना इतना आसान नहीं है. ज्यादा से ज्यादा सीधे बल्ले से आपको खेलना है, क्रॉस बैट से अगर आप खेलेंगे, अक्रॉस द लाइन अगर आप खेलेंगे, तो आप परेशानी में पड़ सकते हैं. कौन खेलेगा भारत के खिलाफ इतवार के फाइनल में? पाकिस्तान ने अच्छी वापसी की है मैच में, जोरदार ढंग से कप्तान फातिमा सना ने दो विकेट लेकर हैट्रिक पर वो थी. हसीनी और इमीशा इस समय मैदान पर हैं. धीमी गेंद सादिया इकबाल की, बाएं हाथ की स्पिनर, राउंड विकेट बॉलिंग कर रही है, एज ऑफ द क्रीज से बिल्कुल कोने से उन्होंने ये गेंद की थी, ऑफ स्टंप के बाहर ये गेंद थी. और दाएं हाथ की इमीशा ने धीरे से पुश भर किया, लेकिन श्रीलंका पहले भी ऐसी स्थिति से कई बार उबर कर T20 मैच जीता, इस टूर्नामेंट में भी जीता है. सादिया इकबाल की अगली गेंद बिल्कुल मिडिल स्टंप पर, लूप बनाती हुई गेंद मिडिल स्टंप

0: फ्लैटेड गेंद को धीरे से मोड़ भर दिया। अब पहले अपने सुरक्षित रखने हैं विकेट और फिर तेजी से रन बनाने हैं। हालांकि 131 का स्कोर कोई ऐसा बहुत ज्यादा नहीं है, लेकिन अब तक अधाई में भी नहीं पहुंचा है स्कोर। अगली गेंद को रिवर्स कर दिया, घूमकर बैट को घुमाकर उल्टी दिशा में खेल दिया और बैकवर्ड ऑफ पॉइंट की तरफ गेंद जा रही है और वहां पे उसको फील्ड किया गया उससे पहले, और पलट कर आके गेंद को उठाया जाए। 4 रन के लिए ये लुढ़क कर बाहर चली गई गेंद, फील्डर उससे पहले पहुंचे, फ्लाइटेड गेंद को उल्टा खेला और मिड विकेट की तरफ और स्क्वायर लेग और फाइन लेग की तरफ ना खेलकर पॉइंट की दिशा में स्वीप कर दिया उस गेंद को। रिवर्स स्वीप के अंदाज में केवल बैट की स्थिति को चेंज किया, स्विच शॉट नहीं था, केवल रिवर्स स्वीप के अंदाज में, और पूरी स्वीप भी नहीं थी, आधी स्वीप आधी पैडल के अंदाज से डीप बैकवर्ड पॉइंट बाउंड्री के बाहर। 4 रन खेला ईशा ने, उनका स्कोर हुआ 5। और श्रीलंका जो अपने कप्तान और उसके बाद एक खिलाड़ी को और खो चुके हैं, 11 रन 2 विकेट पर। इस बार बैकफुट पे गए, गेंद थोड़ी सी शॉर्ट थी लेकिन स्ट्रोक के पीछे जान नहीं थी, केवल धीरे से पुश भर किया। तो हसीनी खेलने के लिए आई हैं, विश्मी गुणरत्ने आज टीम में नहीं है, नहीं तो उनका स्लॉट है ये। असल में विश्मी गुणरत्ने पारी की शुरुआत करती थी, लेकिन इमीशा की वजह से, जिस तरह से पाकिस्तान के खिलाफ इमीशा हमेशा अच्छा प्रदर्शन करती है, बढ़िया गेंद इस बीच लगभग डिफेंस को चीरती हुई स्टंप तक चली तो गई थी ये गेंद। जैसे तैसे इमीशा ने टाइम नहीं कर पाई, लेकिन बैट से टकराकर वो गेंद वापस लुढ़की जरूर है, लेकिन सादिया तरह तरह के सवाल प्रस्तुत कर रही हैं, उनके सामने प्रश्न पूछ रही हैं, बाध्य हैं बैटर के ध्यान से खेलें, और लगातार स्टंप्स की सीध में ये गेंदे कर रही हैं, आम बॉल इस बार और मोड़ा उसको और अच्छा साथ दिया नॉन स्ट्राइकर ने, और 1 रन पूरा हो गया। इस अंतिम गेंद पर भी एक सिंगल मिल गया। तो इस समय तमाम दुश्वारियां हैं श्रीलंका के सामने, रन ज्यादा बनाएंगे नहीं तो उस आस्किंग रेट बढ़ता चला जाएगा, दबाव बढ़ता चला जाएगा, और कुछ आक्रामक होने का प्रयास करेंगी तो विकेट गिर जाएगा। तो पहले ही 2 विकेट बहुत सस्ते में खो चुकी है श्रीलंका इस सेमीफाइनल में, जो दुबई इंटरनेशनल स्टेडियम में खेला जा रहा है, पाकिस्तान और श्रीलंका के बीच में विमेन्स T20 इंटरनेशनल का एशिया कप 2012 से पहले ये ODI फॉर्मेट में खेला जाता था। चहकती हुई श्रीलंकाई टीम चेहरा लटकाकर इस समय बैठे हुए हैं पेविलियन में, उनको उम्मीद नहीं थी, वो बड़ी प्रसन्न थी कि एक सस्ते स्कोर पर सिमटाया है पाकिस्तान को, लेकिन अब वो सोचने पर मजबूर हैं जबकि एक नए ओवर की शुरुआत हो रही है।
1: थैंक यू विनीत। Fatima Sana, who picked up those 2 wickets, really rocked Sri Lanka early this time off the back foot. That is very stylishly squared ribbon for 4 runs. Bit of width on offer there. And cashing it on that was one. Imesha, who opened the batting, saw two of her partners depart. This time goes down deep into the crease and very, very stylish, exquisite square drive there from the blade of Imesha. And that would mean that Sri Lanka will be looking up to Imesha and also their vice captain, who batted so beautifully in that game against Bangladesh. In fact, that was the only game where Sri Lanka were stretched in the league phase. Now require 115 of 101 balls. And Fatima Sana, she is the key after that fine knock, unbeaten knock, which took Pakistan to 130 with the ball, delivering, picked up 2 wickets. This time, once again, just keeping the ball just short of the drivable length there. And all that the batter could do is just play it on the offside, not for any runs. Imesha stays on 10. And Fatima Sana, she's been bowling superbly here and really showing fighting qualities, the Pakistan skipper. She was troubled early on while batting, the heat and humidity getting to her. She was cramping, but that didn't stop her to really take the fight to the Sri Lankans, to her opponents. And Sri Lanka, the reigning champions, having won the last edition, beating India in the final in 2024. And really this... Vinit spoke about it, how the Women's Asia Cup, for most part, earlier on, was played in the 50-over format. Next one from Fatima. And this time going deep into the crease and stroking it on the onside. And quick running as well. Good running by Imesha and Hasini. And that would mean that Sri Lanka 18 for 2 into the fourth over. 3.3 overs, 113 of 99 balls. And the required run rate is 6.85. It's isn't that high, but the fact of the matter is one need to consider the nature

0: of the pitch. On many occasions, the ball has been stopping and coming. There are so many matches played on the pitches at the Dubai International Stadium. So the wear and tear really taking its toll. Fatima, once again, right arm over the wicket as she bowls this one to Imesha. Imesha, who looks not only technically correct, very stylish as well. You don't see that combination, especially in the slam bang format of the game, T20. But Imesha knows how important it is for her to stay out there in the middle. See of the threat of Fatima Sana. That is what she is doing in the company of Hasini. And if these two can forge a partnership, no reason why Sri Lanka can't still make a match of it. Look at the ring of fielders on the offside. Starting with the player at backward point. There's one at cover, one extra cover, almost nearing a short mid-off. As here is with that field placing, it's Fatima Sana. This time short, and this not quite coming onto the bat, but oh, there's a misfield there on the boundary. That should have been stopped. Welcome boundary for Imesha. She moves into double figure. She's on 12 now. And Sri Lanka are 22 for 2. All the twos on the board here. This time, she's varying her length, the bowler, Fatima Sana. And this time, not quite able to time it the way she would have liked. The ball was going towards the backward square leg fans. A diving effort there, but in vain. Fatima Sana isn't very happy with that effort. She's someone who gives her more than 100%. Expect the same from her teammates as well. Nobody misfields purposefully. But that was a boundary which was gifted away. Here is Fatima Sana for the last time. The second over of hers and the fourth of the innings. And once again, just keeping the scoring down to a single. And that completes four overs. And as far as Sri Lanka are concerned, they are chasing 131 for victory. And they are 23 for the loss of two wickets. So Vineet, at the moment, the Sri Lankans, especially looking up to Imesha, if she can really keep one end going and the other stroke players can rally around her, then we may still be in for a very interesting climax to the second semi-final of the Women's Asia Cup 2026.
1: मैदान पर ड्यू है और जब ये टूर्नामेंट शुरू हुआ था तब भी हमने ये देखा था और भारतीय खिलाड़ी बता रहे थे कि बाद में उनको क्रॉस सीम का इस्तेमाल करना पड़ा था इस ड्यू को देखते हुए उसको पहुंचा गया गेंद को कई बार उमे हानी ऑफ स्पिनर हैं उनको बुलाया है बॉलिंग करने के लिए और हसीनी को ज्यादा स्ट्राइक मिली नहीं है हमेशा ने अपनी क्वालिटी अपनी क्लास दर्शा दी है क्लासिकल अंदाज में बैटिंग करती हैं बॉडी से अपने शरीर से ज्यादा दूर नहीं खेलती हैं और सीधे बल्ले का जहां तक हो वर्टिकल बैट का इस्तेमाल करती हैं और टाइमिंग बेहतरीन होती है और विकेट गिर गए हैं दबाव है उन पे श्रीलंका इस समय संघर्ष कर रहा है उसके बाद भी इतनी सूझबूझ वो रख पा रही हैं इतनी प्रेजेंस ऑफ माइंड है कि प्लेसमेंट लाजवाब निकाल रही हैं फील्डर्स के बीच में से गेंद को प्लेस बार बार कर रही हैं देखते ही बनता है बहुत ही कुशल तकनीक वाली खिलाड़ी हैं इमेशा दोलानी 24 बरस मात्र की हैं ये श्रीलंकाई टीम काफी यंग है यंग टीम है हालांकि तीन खिलाड़ी हैं 35 के आसपास की बाकी सारे युवा खिलाड़ी हैं 96 गेंदों पर 108 रनों की अभी भी आवश्यकता श्रीलंका को है बड़ा समय जाया कर रही हैं क्योंकि मुनीबा जो विकेट के पीछे हैं वो मुतमईन नहीं है और बार बार कप्तान सना को बता रही हैं कि यहाँ पे बदलाव की जरूरत है फील्ड प्लेसमेंट में पाकिस्तान काफी समय ले रहा है सादिया इकबाल की जगह उमे हानी आई है बॉलिंग करने के लिए स्पिनर रिप्लेसिंग स्पिनर लेकिन क्वालिटी में फर्क है और बॉलिंग में फर्क है ऑफ स्पिनर है लेकिन इस समय राइट हैंडर सामने है पहली गेंद और बढ़िया गेंद थी पिछले पैर पे लगी लेग स्टंप को छोड़कर जा रही थी अंपायर के ऊपर कोई असर नहीं हालांकि अपील जरूर की उमे हानी ने वहां पर ये पिच ऐसी है इस पे टर्न तो है ही और जरा सा आप गेंद को ज्यादा फिरकी देंगे तो ग्रिप होती है और धीमी गेंद होती है तो ज्यादा ग्रिप होती है पिछले पैर पे जाके लगी लेकिन निश्चित रूप से वो लेग स्टंप के बाहर अंपायर को ये देखना होता है कि गेंद अगर उसको बाधा नहीं पहुंचती तो कहां जाकर समाप्त होती वो लेग स्टंप के बाहर जा रही थी अगली गेंद पर बेहतरीन स्ट्रोक खेला है फील्डर उस ओर दूर है लॉन्ग आर्म में और मिड विकेट के बीच में से 4 रन बेहतरीन स्ट्रोक इमिशा दुलानी के क्या कहने हैं बेहतरीन बैटिंग का प्रदर्शन कर रही है और कभी

0: नहीं लगता कि कोई बहुत ज्यादा एफर्ट उनकी बैटिंग में नजर आ रहा हो। इतना समय है उनको स्ट्रोक्स खेलने के लिए, शी हैज सो मच टाइम टू प्ले हर स्ट्रोक्स, घुटने नीचे झुकाते हुए, जबकि ये चौथा चौका है इमेशा दुलानी का, यशवंत भाई बता रहे हैं। बहुत बढ़िया बैटिंग कर रहे हैं और ऐसे कई स्ट्रोक्स की आवश्यकता है श्रीलंकाई दृष्टिकोण से। फील्ड अगर आप देखें तो इमेशा दुलानी के लिए पॉइंट है, थर्ड मैन थोड़ा स्क्वायर बाउंड्री लाइन पर है, एक्स्ट्रा कवर है, मिड ऑफ है, एक्स्ट्रा कवर और मिड ऑफ के बीच में जो कि दायरे के अंदर है, एक और खिलाड़ी नजदीक बुलाया जा रहा है वो भी दायरे के अंदर नजर आ रहा है, तो चार फील्डर तो साफ नजर आ रहे हैं ऑफ साइड में। इमेशा दोलानी राइट हैंडर है, उनके लिए अगेन डिफ्लेक्ट होती है, एक एंगल डिलीवरी को ऑन साइड में मुड़ा, स्क्वायर लेग एम्पायर के सामने, आमतौर पर यहाँ फील्डर नहीं देखा जाता, वहां पे एक खिलाड़ी तैनात है, उन्होंने उसको फील्ड कर लिया और सिंगल नहीं मिला। अच्छा, बड़ी कूल कस्टमर है मीशा दोलानी, बड़ी शांत भाव से क्रिकेट खेलती हैं, पैरों की कैची बनाए इत्मीनान से प्रतीक्षा कर रही हैं अगली गेंद का। 93 गेंदे, 104 रन चाहिए श्रीलंका को फाइनल में प्रवेश करने के लिए। पाकिस्तान को चाहिए 8 विकेट, 27 रन 2 विकेट पर। पांचवें ओवर की तीसरी गेंद, और बिल्कुल रफ्तार नहीं थी उस गेंद के, उमे एलानी की बड़ी अच्छी गेंद थी और हानि की उस गेंद को मोड़ दिया ऑन साइड में, हालांकि दायरे के अंदर फील्डर था, शॉट फाइन पर केवल 1 रन मिलेगा। और इमिशा दूसरे छोर पर आ गई है, अब लंबी लंबी सांसें लेके सोच रही हैं। एक खामोशी सी छाई है श्रीलंकाई खेमे में कि किस तरह से अब ये पहाड़ जैसा स्कोर नजर आने लगा है, क्योंकि 2 विकेट जल्दी गिर गए। 5 रन बने हैं अब तक इस ओवर में, 19 गेंदों पर इमिशा दोलानी ने 22 रन बनाए हैं। कप्तान दत्ता पत्तू का विकेट वो खो चुके हैं और उसके बाद संजना कविंदी को भी उन्होंने खो दिया है। बाउंड्री लाइन पे दत्ता पत्तू खेलने गई थी और बाउंड्री लाइन पर धर लिए गई, उनको ऊंचे स्ट्रोक पर लेग स्टंप में लगातार बॉलिंग कर रही थी। कप्तान सना उनकी ही गेंद पर शफल करते हुए लेग स्टंप पर पहले ही खड़ी हो गई थी, लगभग लीडिंग एज जा सकती थी इस अगली गेंद पर, स्टंप्स की सीध में की थी। बैट का सहारा बंद करना इस पिच पे बहुत खतरनाक है। उमे हानि की इस गेंद को, गेंद हालांकि हवा में उठी नहीं, बाल बाल बची, लेकिन लीडिंग एज लेकर गेंद सामने एक्स्ट्रा कवर की तरफ चली गई थी। 28 रन, 131 बनाने जीतने के लिए। एक और एंगल डिलीवरी, राउंड विकेट करते हुए इस गेंद को, उस डिलीवरी को उस कोण के साथ ही आगे बढ़ाते हुए दायरे के अंदर, इससे पहले विकेट के पीछे वो फील्ड हो, एक और सिंगल दौड़ लिया और इसके साथ ही पांचवा ओवर समाप्त हो गया। 29 रन 2 विकेट पर श्रीलंका इस सेमीफाइनल में पाकिस्तान और श्रीलंका के बीच, जो दुबई इंटरनेशनल स्टेडियम में एशिया कप का दूसरा सेमीफाइनल। कौन खेलेगा, पाकिस्तान खेलेगा या श्रीलंका भारत के खिलाफ? बॉल बाय बॉल जारी रखेंगे इसके शो।
1: Thank you, Vineet. Yes, the big final coming up on Sunday, the day after tomorrow. India already in the final, beating Bangladesh by 40 runs last evening. Here it's a ding-dong battle, and look at the end of 5 overs. Both the scores have been identical, 29 for 2. So tells our veteran scorer, Yashwant Chadd, who along with our statistician, Jatin Sood, have been providing such interesting information from time to time, and their contribution goes a long way in making a broadcast interesting. 102 of 90 balls is what Sri Lanka required from here on, and they will look up to Imesha and Hasini, not to forget Harshita. Remember Harshita, it was Samara Vikra who really took Sri Lanka over the line in their league game against Bangladesh, the only game they really had to fight hard to win. Will they be able to once again do an encore over here? Because a score in excess of 130, we have seen right through this edition of the Asia Women's Asia Cup, has been very difficult to chase. Only 8 occasions when a team has scored more than 120 in this edition. India has done it the most times. This one on the middle and leg stump, and that's swept away. Good fielding on the boundary line will restrict the scoring to a couple of runs. And Hasini is on 3. Imesha, she holds the key. She's on 22. And the Pakistani fielders also look to be under some sort of pressure. The fielders especially, because there's a lot of pressure on them to restrict Sri Lanka, not to give any easy runs. Quite understandable, as the next ball has Hasini going onto the back foot, trying to stroke it through the covers for a run. That doesn't happen because it goes straight to the fielder there at point. And 187 balls is the equation. As here is once again, this time it's gone high. Will it go the distance?

0: sir. No, there's a fielder coming under it and the catch has been taken. So, Sri Lanka lose their way, lose another wicket. It's Hasini who, in an attempt to really up the scoring, up the ante, accelerate, but the slowness of the pitch, playing a stroke a tad too early, and that was generously tossed up and trying to go over the top, really couldn't time it the way she would have liked, Vineet, and that's the end of Hasini there. Sri Lanka lose their third wicket and in trouble at the moment.
1: सादिया इकबाल का एंड बदला था कि उसाना ने अपने आप को स्पेल कर दिया, उनके दो ओवर हो चुके थे। आयशा ने बेहतरीन कैच पकड़ा सादिया की गेंद पर, 3 रन बनाया 8 गेंदों पर, लेकिन कैप्टनसी बहुत अच्छी पाकिस्तान। सना ने बॉलिंग में चेंज करके सादिया को दूसरे स्पेल के लिए बुला लिया और वो दूसरे एंड बदला उनका फायदा मिला। और सीम की क्या बेहतरीन पोजीशन रखती हैं वो, क्रॉस सीम से अच्छी फिरकी दी। जितनी रेवोल्यूशन आप गेंद पर देंगे इन पिचेस पे उतना आपको लाभ मिलेगा। और परेरा जो कि टीम में आज शामिल की गई थी विस्मी गुणरत्ने के स्थान पर, बहुत ज्यादा मैचेस इस टूर्नामेंट में अब तक खेले नहीं है और इन पिचेस से वो अभ्यस्त नहीं है किशोर, और इसलिए परेशानी ज्यादा है उनके लिए। और पूरा टूर्नामेंट ऐसा रहा है जिसमें बैटिंग करना बहुत मुश्किल रहा है।
0: Yes, and to this crisis situation walks in the savior for Sri Lanka against Bangladesh, Harshita Samarawickra. And can Harshita win an encore over here? And really, Sadia has bowled well, has varied her length, and this time really foxing the batter to go for that stroke, and a good catch, I must say. Really holding a balance there was the fielder, and the Pakistani fans are really overjoyed, and why would they not be? So can Sri Lanka wriggle out of this hole that they find themselves in? Here is Sadia this time, and Harshita playing it defensively, the left-hander. So we have a right-hand left-hand combination here, and of course Pakistan has the off-spinner who bowled that last over. So that matchup would definitely happen whenever Harshita is going to face her, as the next ball has been played defensively. A successful over for Pakistan comes to an end, and Sri Lanka at the end of that over, at the end of the power play, are 31 for 3.
1: Sadia Iqbal diggaj khiladi hai, aur agar aap dekhein to is season mein to बेहतरीन प्रदर्शन कर रही है। उसाना के बाद, कप्तान के बाद उन्होंने सबसे ज्यादा विकेट लिए हैं, 22 विकेट उन्होंने लिए हैं। गति में बार बार परिवर्तन कर देती हैं, स्लोअर बॉल करती हैं उसी एक ही एक्शन से। और पावर प्ले में अगर आप देखें तो 31 रन और 3 खिलाड़ी खोए, सबसे ज्यादा यूएई के खिलाफ टूर्नामेंट के मैच में, वो शुरुआत में ही यूएई के खिलाफ श्रीलंका के मैच में 58 जतिन बता रहे हैं बनाए थे 1 विकेट कर। भारत के खिलाफ 31, इंडोनेशिया के खिलाफ 31। इस बीच पलटकर पीछे की ओर मुनीबा से वो गेंद रुकेगी नहीं, साइड स्क्रीन की ओर जा रही है विकेट के पीछे, 1 रन पूरा किया, दूसरे रन के लिए जा रही है और केवल 2 रन ही पूरे होंगे जब तक ये गेंद की थी। अच्छी फ्लाइटेड गेंद थी, उसको रिवर्स स्वीप करना चाहती थी ग्लव से लगकर, जबकि विकेट कीपर अपने आप को बचा रही थी वहां पर। ऐसे में ही इंजुरीज हो जाती है, हालांकि हेलमेट पहन के खड़ी है मुनीबा वहां एज ए विकेट कीपर, लेकिन उनके सर के ऊपर से होकर चली गई और जाकर गेंद को उठाकर लाना पड़ा। तब तक खिलाड़ी 2 रन ले चुके थे। बांग्लादेश के खिलाफ 29 बनाए थे पावर प्ले में, तो वो 58 जो यूएई के खिलाफ थे वही सर्वर ज्यादा पावर प्ले में रन रहे हैं, जबकि कप्तान बात कर रही है उमे हानी से। 58, 31, 29 और फिर आज 31, 3 विकेट पर ये जतिन की गणित कहती है पावर प्ले में श्रीलंका का जहां तक सवाल है इस टूर्नामेंट में। उमे हानी ऑफ स्पिनर बॉलिंग कर रही है ओवर द विकेट, स्टंप्स पर ये गेंद, गेंद हवा में उड़ गई है, ज्यादा लंबी नहीं गई, ये सीधे ऊपर, विकेट कीपर जब हो तो ये कैच छूटता नहीं है। रिटर्न क्रीज के आसपास बैटिंग वाले छोर पर सीधी ऊपर, जैसे एक गुब्बारा ऊपर जाता है, सीधी ऊपर चली गई गेंद। अपने आप को अवस्थित किया वहां पर मुनीबा ने, जो पिछली गेंद पर गफलत कर बैठी थी, अपने दस्तानों में उसको कैद कर लिया, और श्रीलंका ने अपना चौथा खिलाड़ी खो दिया। कुछ समझ में नहीं आया, बल्ले को घुमाया था स्वीप के अंदाज में, एक घुटना नीचे टेक दिया था, बल्ले को लाया, फिर उसको खेलने की कोशिश की, टॉप एज सीधा तन गया, तीर की तरह ऊपर गेंद चली गई, उसमें कोई लंबाई नहीं स्ट्रोक की। और विकेट कीपर ने निश्चित ही आवाज लगाई होगी, क्योंकि 3 खिलाड़ी झपट रहे थे उस गेंद की ओर, रुक गए ठिठके, और विकेट कीपर ने काम पूरा किया। और इमीशा दुलानी का विकेट

0: बहुत महंगा पड़ेगा श्रीलंका को, 21 रन बनाकर आउट हो गई इमिशा दुलानी। किशो
1: यस व्हाट अ क्रूशियल ब्रेक थ्रू, प्रेशर गेटिंग टू द श्रीलंकन बैटर्स विनीत, नो डाउट व्हाटसोएवर। And that the wicket of the skipper Chamari Attappudi was a lot dependent because she's such an experienced campaigner, and the way the Pakistani captain, her opposite number, really set her up. She was bowling that mid-length leg stump line, tempting Attappudi to go for that flick shot, and she had a fielder there right at the boundary who took that catch, and that initial wicket really, that is what that set the rot. And Sri Lanka have been losing wickets at regular intervals and now find themselves in real trouble at 33 for 4.
0: Umeh Hani, safalta mili hai. Dekhen kya karti hai is gend par. Kavisha samna karengi unki gend ka. Oh, bahut badhiya gend! LBW की अपील, जबरदस्त दबाव बनाया जा रहा है। बांग्लादेश की अंपायर है वहां पर बॉलर वाले छोर पर, मुंडी हिलाकर तुरंत मना कर दिया, और गति का परिवर्तन बहुत मायने रखता है। फ्लाइटेड गेंद थी जिसपे आउट हुई इमिशा दोलानी, और विकेट कीपर ने केवल एक कदम आगे बढ़ाया, उनको ज्यादा हिलना भी नहीं पड़ा और अपने ग्लव्स में कैद कर लिया। इमिशा का कीमती विकेट मिल गया पाकिस्तान को। प्लेइंग डाउन द रॉन्ग लाइन, समझ में नहीं आ रहा, उमे हानी की गेंदों को समझ नहीं पा रही है कविशा। हर्षिता और कविशा इस समय मैदान पर हैं, हर्षिता अभी खेलने के लिए आई है, कविशा कुछ समय से हैं, लेकिन ये हर्षिता जो है ये उप कप्तान है और आज सेमीफाइनल में खड़ा है श्रीलंका वो हर्षिता की वजह से, जिन्होंने शानदार बैटिंग की थी पिछले मैच में बांग्लादेश के खिलाफ, और दो साझेदारियां निभाई थी, एक तो कौशल काके के साथ विकेट कीपर के साथ, और शिखा के साथ जो साझेदारी उनकी हुई थी। इस बीच गेंद को पैडल स्ट्रोक खेला अंतिम समय तक, बैट को काफी आगे तक, लेकिन जिसके विकेट कीपर के एकदम करीब से गेंद पीछे फाइन लेग पर, काफी फाइन गेंद गई है, बाउंड्री लाइन के करीब से गेंद को उठाकर लाना पड़ेगा, लेकिन इस समय श्रीलंका के खिलाड़ी जोखिम उठाने के लिए तैयार नहीं है। जो रन बन गया वही सुरक्षित, उस पर ही मुतमईन है, उसी से ही संतोष रखा है, लेकिन किसी को उम्मीद नहीं थी। ये लग रहा था कि श्रीलंका के लिए रन बनाना इतना आसान नहीं होगा इस पिच पर, चाहे बड़ा स्कोर नहीं है, लेकिन 131 सब पहाड़ जैसा नजर आने लगा, एक बोझ सा नजर आने लगा है। दो गेंदे शेष हैं, 33 रन 33 फॉर 4, 80 गेंदों पर 98 रनों की जरूरत है। स्पीड का वेरिएशन, द स्लोअर वन, लगातार स्पिनर्स कर रहे हैं और उसको समझ नहीं पा रहे। अब क्या है कि दो माइंड में, दोहरे मन में हो जाते हैं, क्योंकि वो चाहते हैं कि बड़ा स्कोर खेलें, ज्यादा ओवर शेष नहीं रह जाएंगे, दबाव बढ़ेगा तो खेलना है, तो अटैकिंग स्ट्रोक, और जब गेंद पर रफ्तार ही नहीं है तो ज्यादा ऊर्जा और ताकत डालनी पड़ेगी स्ट्रोक खेलने के लिए, जो बहुत मुश्किल हो रहा है, और फिर मिसटाइम कर रहे हैं अपने स्ट्रोक को, और उससे आत्मविश्वास हिल रहा है श्रीलंकाई खिलाड़ियों का। अच्छा संघर्ष कर रही है पाकिस्तान, मजबूर कर रही है इस संघर्ष के लिए।
1: Yes, what a fight back it has been from Pakistan. Full marks to the ex-skipper, Fatima Sana, and to the team. Remember, they were tottering. Four wickets had gone down early before Fatima Sana had a 40-run partnership for the fifth wicket, and unfinished partnership for the sixth wicket as well, took them to 130, and the captain led the way, really batting superbly, Fatima Sana. And now when the turn of them to come, Fatima Sana has once again been in the forefront, picking up two early wickets. And it's going to be a bowling change there. Nashra Sandhu, she comes on to bowl. Pakistan has got three left-arm spinners in their ranks. As here is bowling from over the wicket. Nashra, almost the block hole length that she's bowled. But this time it's been well dug out by Harshita. And we've been telling about Harshita, she opens the account. The fact that Sri Lanka find themselves in the semi-final is by no mean due to the contribution of Harshita in that must-win game against Bangladesh. It was Harshita who really took them out of trouble and saw that Sri Lanka crossed the line in that game. Will they be able to do it here? Looks difficult. 36 for 4 in the 8th over. 7.1 overs gone by. 95 of 77 balls by T20 standards may not look that difficult. But what one has to consider is the nature of the pitch. Look at that. This is what Vinit was talking about. How they're slowing it up. Just tossing that one up. And coming in so slowly that she was already into that sweep shot by the ball by the time

0: ball reached the batter and making an optimistic appeal there. No damage done, but Nashra Sandhu and all the Pakistani spinners have been taking pace off, bowling it as slow as possible. This time, slight width there, but there's a battery of fielders on the offside in the 25-yard cordon, and it's very difficult for the batters to penetrate that. Kavisha yet to open an account. Harshita is on one, and Sri Lanka 36 for 4. Here is Nashra Sandhu, and this time on the middle leg stump, helped along, and I got the feeling, came in with the arm, and she just helped it along towards the fine leg region for a single. Kavisha, in fact, 2 runs that Kavisha got, couple of runs takes, makes her open her account. She's on 2, Harshita is on 1, but at the moment, the odds stacked against Sri Lanka. Of course, they have the batters can bail them out. Harshita has done it more than once. One saw her in that league game against Bangladesh. Can she repeat that performance? All of Sri Lanka would be hoping. This is almost a loopy full toss, generously flighted. And once again, taken on the full, but not able to pierce that offside field. Good field placing, good captaincy by Fatima Sana, exerting all the pressure and seeing to it that Sri Lanka has to fight for every run. This time, once again, a variation in length. This time, holding it back and pulled away. Slight misfield in the deep, but not much damage done. Pakistan's catching has also been good. They held on to their catches. Sri Lanka missed a couple of them, and that ends the over. So the match really developing into a very interesting battle. At the moment, Vineet, it does look that Pakistan hold the cards. They are having the upper hand, but cricket is a funny game, more so the T20 variety. And you know better than me that this game is very often throws up surprises.
1: Nobody knows anything in the game of cricket, Kishore. So, ab apni taktik mein parivartan kar rahe hain Sri Lankai khiladi. और वो ये प्रयास कर रहे हैं कि गेंद को लेट खेलें और बैट पे आते हुए देखें और बिल्कुल अंतिम समय पे फिर स्ट्रोक का फैसला करें. और इसी में एक दो सिंगल रन्स बने हैं उनके पास, नहीं तो रन बनाना बहुत मुश्किल हो रहा था. वेरिएशन, नशा संधु ने 6 विकेट लिए थे पिछले मैच में, 7 रन देकर मात्र. बढ़िया बॉलर हैं, तेज बॉलर थी पिछले दिनों में. और इस बीच दोबारा पाकिस्तान का कोई खिलाड़ी, क्या फातिमा साना को दोबारा क्रैम्प्स हो रहे हैं? फिजियो मैदान पर है, खिलाड़ी पसरी हुई है मैदान पर, खेल रुका हुआ है. हर्षिता जब तक हैं और अभी भी काफ़ी बैटिंग उनके पास मौजूद है, क्योंकि दो साझेदारियां जतिन ने बताया. इस बीच ये गेंद उसको लॉफ्ट करने की कोशिश, 2-3 फील्डर्स वहां पर जपटे हैं, लेकिन केवल रन ही ले पाएंगे, कोई कैच हो नहीं पाएगा. हर्षिता ने पहले तो निलय शेखा के साथ एक साझेदारी 41 गेंदों पर 38 रन की 6 विकेट के लिए पिछले मैच में, और ये जो विकेट गिरे थे बाउंड्री लाइन पर अत्तापत्तो आउट हुए थे, 7वें विकेट के लिए हर्षिता और कौशिनी विकेट कीपर के बीच में 18 गेंदों पर 33 रनों की हुई थी. श्रीलंका के खिलाड़ी साफ नजर आ रहा है जिस तरह से आउट हुए, कि ना तो इस पिच की रफ्तार, ना इसकी उछाल और वेरिएशंस को वो समझ पा रहे हैं. और जो स्ट्रोक्स खेले हैं, खेलना कहीं चाहते हैं, गेंद ऊपर हवा में ज्यादा उठ रही है, और जब कभी भी एक बड़ा स्ट्रोक खेलने की कोशिश की है तो स्ट्रोक्स में डिस्टेंस नहीं आ पाया है, गेंद ऊपर ज्यादा चली गई है और वो कैच में तब्दील हो गई है. उमेहानी ऑफ ब्रेक बॉलर है, ये भी चश्मा लगाकर क्रिकेट खेलती हैं अपना, और हालांकि बहुत बड़ा वाइजर है मुनीबा अली का, विकेट कीपर का, वो भी चश्मा लगाती हैं और हेलमेट लगाकर खेल रही हैं. अगर किनारा दे दिया उस गेंद को, जानबूझ के गेंद को प्लेस कर दिया थर्ड मैन की तरफ, खिलाड़ी दौड़े चले जा रहे हैं उसके पीछे, लेकिन वो दूसरे रन के लिए पलट कर आ रहे हैं और एक और रन के बारे में सोच रहे थे. अब इतना जोश आ गया है पाकिस्तानी टीम में कि एक स्ट्रोक के पीछे दो दो तीन तीन खिलाड़ी दौड़ रहे हैं, क्योंकि उनको अब ये जीत की महक आने लगी है. लेकिन श्रीलंका को कभी कम मत आंकिए, इस स्थिति से कई बार अपने आप को उबारा है उन्होंने, और हर्षिता उप कप्तान भी हैं टीम की. और ये जब बैटिंग करती हैं तो मुझे शशिकला श्रीवर्धने, वो महान खिलाड़ी श्रीलंका, बिल्कुल खेलने का अंदाज बहुत अच्छा था. इस बीच ये गेंद, अच्छी टर्न, अच्छी बाउंस, ऑफ स्टंप के बाहर बीट होते हुए विकेट कीपर की अच्छी गैदरिंग, जुड़कर खड़ी हुई थी मुबीना. और ये कमाल है इस पिच का, स्पिनर्स को कभी कभी टर्न इतना

0: And Sri Lanka at the halfway stage after 10 overs are 53 for 4, still requiring 78 runs of the remaining 60 deliveries. Your guess is as good as mine, Vineet.
1: Drinks मैदान पर हैं, 10 ओवर का खेल पूरा हो चुका है और पाकिस्तान का ओवर रेट बहुत ज्यादा खराब है. फील्ड प्लेसमेंट में काफी समय जाया कर रही हैं फातिमा सना उनकी कप्तान, लेकिन बहरहाल हाफ वे स्टेज और आस्किंग रेट यहां से 7.7 के आसपास का है और 60 गेंदों पर ये जो रन बचे हुए 131 कुल मिलाकर बनाने हैं वो अभी भी बन सकते हैं. और कुछ अगर हर्षिता आउट नहीं हो एक छोर पर खड़ी रहे तो अभी नीलशिखा आना शेष है. कौशन ही अच्छी बैटिंग कर लेती हैं और पिछले मैच में लगभग इसी स्थिति से श्रीलंका जीत की ओर अब बढ़ गई थी और आज सेमीफाइनल में वो खेल रहे हैं पाकिस्तान के खिलाफ. तो अभी ये संघर्षपूर्ण मुकाबला होगा, निश्चित रूप से देखने को मिलेगा. पाकिस्तान को एक और विकेट तुरंत उसकी आवश्यकता है, तब फिर दबाव बनेगा. और अभी भी खेल बात अभी बाकी है, रात अभी बाकी है, तो कुछ दिलचस्प क्रिकेट अभी भी देखने को मिल सकता है. लेकिन हर्षिता किशोर बिल्कुल लेट खेल रही हैं, बिल्कुल अंतिम समय पे बैट पर आती हुई देख रही हैं गेंदों को और फिर प्लेस कर रही हैं. और मैं जो वो कह रहा था, शशिकला श्रीवर्धने पूर्व कप्तान हैं, इनके जो स्ट्रोक्स खेलने का अंदाज है वो उनसे बहुत कुछ मिल खाता है. हालांकि लेफ्ट और राइट हैंडर का फर्क है, वो राइट हैंडर थी, ये लेफ्ट हैंडर है, लेकिन देखते ही बनता है, जो देखता है वो इनको याद करता है कि श्रीलंका का ऐसा एक और खिलाड़ी था. तो वो हर्षिता है, इनमें बहुत क्षमता है और अभी उम्र कुछ भी नहीं है और वाइस कैप्टन है और अत्तापत्तू के बाद यही कप्तान होंगी, तो इनसे बहुत उम्मीद है.
0: Yes, lot is expected of her. She, as you very rightly said, quite young and she would definitely be taking over from Chamari Attapattu whenever she decides to hang her boots. And very promising player, very easy on the eye, as they say, to watch her bat. And she was really instrumental in bringing Sri Lanka thus far in the 2026 edition. That game against Bangladesh, they were in a bit of trouble before Harshita pulled them out, pulled the chestnuts out of the fire, so to say. And the whole of Sri Lanka, the Sri Lankan fans would be hoping that she does an encore over here and take them to the final. It looks difficult, the odds are stacked against them, but you never know with someone like Harshita. And you said about Pakistan wanting a wicket, and if they can get the wicket of Harshita, that would be a real bonus, Vineet.
1: So, drinks maidan se bahar gayi hain. Wahab Riaz mukhya coach hai, head coach hai Pakistan ke, aur lagatar huddle mein jabki khiladi mein पसीना पहुंच रहे हैं और पानी की बोतलों से अपने आप को वापस तरोताजा करने की कोशिश कर रहे हैं. उधर जेमी सिडन्स जो कि श्रीलंका के कोच हैं, रुमेश रत्नायके की जगह उन्होंने संभाली है, दोनों को बहुत कुछ कहने को है और खिलाड़ी चुपचाप दोनों अपने कोचेस को सुन रहे हैं. तो यहां पर ये शतरंज की चाल शुरू होने वाली है. क्या पाकिस्तान एक विकेट और लेके दबाव बनाएगा या श्रीलंका इस खतरे के भंवर में जो फंस गई है उसमें से वो बाहर आ सके फिर तैरना शुरू कर सकेगा. तुबा हसन शायद उस मंत्रणा जो हुई उसके बाद तुबा हसन 51 मैच 33 विकेट 6 पर 27, 6 विकेट लिए उन्होंने, 27 रन देकर उनका बेहतरीन प्रदर्शन है. पहले खिलाड़ी से दायरे के अंदर रुके नहीं, बाउंड्री लाइन के करीब उसको फील्ड किया गया लेकिन 1 रन और मिल गया. तो 59 गेंदे 59 बॉल्स 77 रन. दिलचस्प मुकाबला. उमे हानी बॉलिंग करेंगी, ऑफ स्पिनर हैं. और मैंने जैसा कि क्या पाकिस्तान बहुत समय ले रहा है फील्ड प्लेसमेंट के लिए और इससे ओवर रेट कम हो रहा है. वैसे भी पहली इनिंग्स भी लेट खत्म हुई थी, इस बीच अगली गेंद को स्वीप कर दिया है, गेंद बाउंड्री लाइन के करीब जा रही है, तेजी से दूर से आते हुए फील्डर ने स्लाइड किया, कुछ नहीं कर सकेंगे. 4 रन, प्रयास अच्छा था, दूर से दौड़कर आई और इस 4 रनों से, इस चौके से हौसला बढ़ेगा श्रीलंकाई खिलाड़ियों का. लेफ्ट हैंडर ने उसको खेला था और उसको पूरी तरह से स्वीप करने का और अंतिम समय तक ये बैट को आगे बढ़ाती रही थी, डाइव लगा के उसको रोकने का प्रयास अवश्य किया था, पसर गई थी, अपनी लंबाई का फायदा भी उठाने का कोशिश किया था, लेकिन उससे पहले जो नन्हे नन्हे विज्ञापन उस बाउंड्री रोप के ऊपर है उससे जाके गेंद टकरा गई. 4 रन, 7वां चौका पारी का. हर्षिता इसके साथ ही 12, लेफ्ट हैंडर है, पसीने से तरबतर, 13 गेंदों पर

0: 12 रन बनाकर खेल रही है। दोनों खिलाड़ियों ने, कविशा ने भी 13 गेंदे खेल ली है। ये 11वां ओवर है, 58 रन 4 विकेट पर ड्राइव किया सीधे बल्ले से। सीधे बल्ले से खेले आप इस पिच में सुरक्षित नजर आते हैं। लॉन्ग ऑफ पे गेंद को फील्ड किया नशरा संधु ने जो कि एक बहुत ऊंचे जाते हुए शॉट पर अपने फील्डर से खफा हो रही थी कि आपने कैच पकड़ने का प्रयास नहीं किया, ऊपर उछलना चाहिए था। मैंने कहा जितना कद था फील्डर का उससे वो दुगना भी ऊपर उछल जाती तो भी उस गेंद को नहीं पकड़ सकती थी। कभी कभी बॉलर ज्यादा जोश में आ जाते हैं। इस बीच एक गेंद, शॉर्ट गेंद, उसको पुल करने का प्रयास किया, पैरों को फैला लिया, खेला उसको नशा संधू के पास। एक बार फिर गेंद जा रही है, उनके हाथों पे लगी है और ड्यू भी मैदान पर बहुत ज्यादा है। अब ज्यादातर खिलाड़ियों के पास एक छोटा सा नैपकिन नजर आ रहा है जो उन्होंने फंसा रखा है अपने कपड़ों में, और जब गेंद उनके पास आती है अंपायर के पास एक कपड़ा मौजूद है तो अच्छी खासी ड्यू मैदान पर नजर आ रही है, और ऐसे में फिर गेंद को ग्रिप करना बहुत मुश्किल हो जाता है। जैसे बांग्लादेश में ग्राहम स्वान स्पिनर इंग्लैंड के कहा था कि इट्स अ बार ऑफ सोप। इस बीच ये गेंद को खेला स्क्वायर ऑफ द विकेट ऑफ साइड में, बाउंड्री लाइन के गेंद जा रही है, धीमे धीमे जा रही है, दो फील्डर उस ओर दौड़ रहे हैं लेकिन एक और रन के लिए पलट कर आ रहे हैं। बाउंड्री लाइन के बाहर तो नहीं जा पाएगी ये गेंद, लेकिन उस पर प्रयास करके तीसरा रन ले लिया है दोनों खिलाड़ियों ने। अच्छी रनिंग बिटवीन द विकेट्स, खफा नजर आ रही है पाकिस्तानी कप्तान फातिमा सना। आस्किंग रेट क्योंकि बढ़ गया है उसको और नहीं बढ़ना देना चाहते हैं, लेकिन जब वो टाइम करती है ना बहुत अच्छा लगता है। गेंद उनके शरीर से बहुत दूर जा रही थी, काफी दूर रह गई थी, फिर पंजों पर ऊपर उछल के बैट को आगे फैलाकर बिल्कुल पॉपिंग क्रीज की सीध में कवर पॉइंट बाउंड्री की तरफ खेला था उस स्ट्रोक को। महंगा ओवर साबित हो रहा है पाकिस्तान की दृष्टि से। इस बार खेल दिया ऑफसाइड में, इस बार कविशा ने खेला है, गेंद स्क्वायर थर्ड मैन की तरफ जा रही है, इसको देखना चाहेंगे, तीसरे अंपायर से सुनिश्चित करना चाहेंगे। वहां पर डाइव लगाते हुए रोकने की कोशिश जरूर की थी लेकिन ऐसा लगता है बॉल क्या डिफ्लेक्ट हो गई थी बाउंड्री लाइन के करीब। अंपायर बात कर रहे हैं, पहले स्क्वायर अंपायर से पूछ रहे हैं। सना बार बार खफा नजर आ रही है, ये दोबारा देखने का प्रयास किया, बाउंड्री चेक, हाथों से डाइव लगा के रोकने की कोशिश की, क्या शरीर से जब टच हो रही थी तो वो बाउंड्री पे वो खुद थी और बॉल से स्पर्श उनके शरीर का हुआ था तो ये 4 रन हो जाएगा।
1: यस रियली वंस हार्ट गोज आउट टू द फील्डर देयर शी ट्राइड अ लेवल बेस्ट बट अनफॉर्चुनेटली एट द लास्ट मोमेंट व्हेन शी क्रॉस द बाउंड्री द बॉल हैड टच्ड हर. So in all probability that would be given as a boundary. Yes, the confirmation comes in and Kavisha also taking a leaf out of Harshita's book, playing it very late. And the point that you made, Vineet, of the dew now coming in quite heavily, that would quite work in Sri Lanka's favor. Look at the comparative stage as well. After 11 overs, Pakistan were 53 for 4 and Sri Lanka ahead on that count at 67 for 4.
0: और वो ईमान फातिमा थी जिन्होंने बेहतरीन प्रयास किया था, थोड़ा भाग्य साथ देता तो 4 रन बचा सकती थी।
1: बट फुल मार्क्स फॉर द एफर्ट ऑन द पार्ट ऑफ द फील्डर देयर। दिस इज द पार्टनरशिप विच पाकिस्तान वुड लाइक टू ब्रेक, हर्षिता एंड कविशा, द लेफ्ट हैंड राइट हैंड कॉम्बिनेशन डूइंग द जॉब फॉर श्रीलंका आफ्टर दे वर रॉक्ड अर्ली एंड इट्स गोइंग टू बी नशरा संधु बोलिंग अ थर्ड ओवर द लेफ्ट आर्म स्पिनर. And what is good to see and what we've been describing is also how late these two batters are playing. They're waiting for it, playing it into the gaps. Even the ones that they've played into the third man region has been almost once. We saw Kavisha almost playing that stroke when the ball was around the off stump, very near to her off stump. Shows how good they are placing. They know that the ball is coming in slowly. So they're waiting for it, not hurrying with their strokes. And this time,

0: Sri Lanka are 70 for 4. This match is getting interesting now. Now they required 61 of 50 balls. So what this partnership has done is it's eased the pressure on Sri Lanka, and it's also made them come see the difference between the runs required and the balls remaining. That's now narrowed down, and therein holds the key. Pakistan, the only way now they can make a comeback is by picking up wickets, picking up especially the wicket of Harshita. Harshita and Kavisha, two youngsters, Harshita Samarawickra, the vice captain of Sri Lanka, and someone who is no stranger to batting in difficult situations. This has gone up. Will it go to hand? No, it falls in that area where there were no fielders. Fatima Sana, the skipper of Pakistan, has to really make some distance. But a safe shot in the end, though she didn't time it well. Kavisha, that was Kavisha on 18. Both the batters on 18 apiece, 60 of 49 balls. Sri Lanka fighting with their backs to the wall. And all marks to this pair of Harshita and Kavisha, the way they've gone about their task. 60 of 49 balls. Nashra Sandhu, the left-arm spinner, once again tosses this one up and down the track, batting very confidently. Harshita, she's so stylish, so easy on the eye, so pleasing to watch. Ends the over, and Sri Lanka slowly but surely now, Vineet, really progressing towards that target of 131.
1: एक समय था जब इन दोनों ने 12 गेंदों पे 22 रन बना लिए थे, और इसी से आस्किंग रेट वो कम करती चली जा रही हैं, और इसका श्रेय सारा जाता है हर्षिता को। जब वो नॉन स्ट्राइकर होती हैं तो इतने आगे तक वो पहले से ही मन बना लेती हैं, डिसीजन मेकिंग बहुत शानदार है कि उस पे सिंगल हो सकता है, और जहां कोई और टीम होती तो एक भी रन ना लेती, वहां वो सिंगल्स लेके अपनी स्ट्राइक को रोटेट कर रही हैं। और ये जो एक बोझ हो गया है, जो रन रेट ज्यादा हो गया है, आस्किंग रेट बढ़ गया है, उसको कम करने का प्रयास हर्षिता बखूबी कर रही है। इस समय वही स्ट्राइक लेंगी, अगली गेंद को पैरों को फैलाकर स्ट्रोक के लिए जगह बनाकर स्विंग कर दिया गेंद को, दोनों पैरों के बीच में जगह, और उसके बाद उसको पीछे से बैट को लाकर घुमाते हुए खेल दिया, और इससे पहले कि स्क्वायर ऑफ द विकेट उसको फील किया जाए, हर्षिता अब नॉन स्ट्राइकिंग एंड पर चली गई है। 73 रन 4 विकेट पर, जीतने के लिए बनाने 131, 47 गेंदें 58 रन, कविशा 18 गेंदों पर 18 रन, और इस बार बैकफुट पर जाके स्क्वायर कट के अंदाज में खेला, लेकिन पॉइंट पे फील्ड कर लिया गया, कोई रन नहीं मिलेगा। दोनों की साझेदारी अच्छी हो रही है यशवंत भाई, बहुत बढ़िया साझेदारी है, और अब 46 गेंदों पर 58 रनों की जरूरत है। ऑफ साइड में थर्ड मैन अंदर है, बैकवर्ड ऑफ पॉइंट अंदर है, एक्स्ट्रा कवर और मिड ऑफ सब अंदर है। इस बीच ये गेंद, और इसको ड्राइव किया एक फील्डर जो दायरे के एकदम करीब आके उसको फील्ड करता हुआ नजर आ रहा है, एक रन लेने से नहीं रोक सका। 37 गेंदों पर 41 रन की साझेदारी अब तक हो चुकी है हर्षिता और कविशा, सोने में तोल लीजिए ऐसी साझेदारी। लगातार 7 रन पर आते आते तो 2 विकेट गिर गए थे। हर्षिता ने जो रन बनाए हैं, बैटिंग नहीं आई यूएई के खिलाफ, इंडोनेशिया के खिलाफ 5, बांग्लादेश के खिलाफ 58, और पिछले मैच में भी उन्होंने 8 बनाया। इस बीच ये गेंद, और घूम कर खेल दिया बैकवर्ड ऑफ स्क्वायर, और इससे पहले के फील्ड ऑफ स्ट्रोक। ये सिंगल्स जो इस समय ले रहे हैं श्रीलंका के खिलाड़ी, ये महत्वपूर्ण साबित होंगे, और ये जीत और हार का फैसला करेंगे कि क्या होगा इस मैच में, कौन खेलेगा फाइनल्स एशिया कप 2026 का। ये 10वां फाइनल होगा, 2012 के बाद से ये T20 फॉर्मेट आ गया है। भारत 7 बार जीता है, सबसे अधिक बार, और लगातार मिडल और लेग स्टंप की गेंद को स्वीप के अंदाज में अपनी सेंटर ऑफ ग्रेविटी को नीचे करते हुए, नीचे झुककर, लगभग नीचे बैठकर ये स्ट्रोक्स खेले जा रहे हैं, ये समझ लीजिए आप। और जिससे कि ये नीची रहती हुई गेंद और जो ग्रिप हो रही है, और इसको को आड़े बैट से, जिस तरह से आप वर्टिकल बैट से बाउंस कवर करते हैं, जो टर्न होती है और जो धीमी टर्न होती है, उसको आड़े बैट से आप कवर करते हैं। बेहतरीन तकनीक का प्रदर्शन कर रहे हैं दो खिलाड़ी श्रीलंका के। इस बीच इसको खेला ओवर द टॉप, इन फील्ड के ऊपर से खेल दिया, और गेंद जा रही है कवर और एक्स्ट्रा कवर के बीच में से, 4 रन। बहुत सख्त जरूरत थी श्रीलंका को, अच्छा ओवर, 4 सिंगल और 1 चौका, 1 डॉट बॉल, और इसके साथ ही ओवर समाप्त हो गया।
0: Well, really, Sri Lanka, Harshita and Kavisha, having their task cut out when they began, they are up to the challenge, and what a fine partnership this is turning out to be. When

0: I think also Fatima Sana was cramping so much towards the end of her innings. This time, once again, Harshita showing a class there, goes deep into her crease as she turns it around the corner. Look at the running between the wickets. There's a collision there between the batter and the wicketkeeper. I hope both of them are all right. And it is Harshita who gets up, which says that last ball with the spin that was turned around the corner. And look at that. It's Harshita who called Kavisha for that second run and bumped into the wicketkeeper. Muniba, she was also looking the other way. She was waiting for her to collect that ball. But fortunately, doesn't seem any damage to neither the wicketkeeper nor the batter. Though we're seeing now the Sri Lankan physio. In fact, she's attending to Kavisha, not to Harshita. And really, the conditions extremely taxing for the players at the Dubai International.
1: I think a concussion test. They are asking questions. The physio is asking questions, checking. Ginti boliye, ungli ko dekhiye, aankhein chal rahi hai, nahi chal rahi hai. It's a set of questions. It's very interesting, Kishore. Ki jab concussion test hota hai, jab aap gir jate hain, to helmet ragad kha jata hai sar se. To concussion test hua usme. Aapka naam kya hai? Ginti boliye 9 se. 10 से उल्टी गिनती बोलिए. इस तरीके के सवाल किए जाते हैं जो कि हमको नजर आ रहा है. और एक्चुअली में तो हर्षिता हैं, हर्षिता से ही पूछा जा रहा है ये. और ये काफी महत्वपूर्ण होता है कि आपको ठीक दिख रहा है, नहीं तो आप और गंभीर चोट खा सकते हैं.
0: Yeah, it's a very valid point you make, Vineet. Those set of questions, and actually it's always the physio who goes on to the field, and those set of questions which determines if you're thinking all right, there's no effect of the concussion. That's known as the concussion test. And for now, Harshita is past that one. She's on 30. Her presence is so much required for Sri Lanka. 44 of 37 balls. Last ball of this over as Harshita fluently driving it on towards the deep mid-off field. A single accrues to end over number 14. And Sri Lanka now on course to that target of 131, 88 for 4, Vineet.
1: Kavisha jab bowling kar rahi thi to wo bhi off spin aur leg spin kar rahi thi, aur yahan par ye is tarike ki bowling ho rahi hai jo off aur leg spin dono karne ka prayas kar rahi hai bowlers, aur upar se due factor hai, gain givi hai, to bahut loopy deliveries, full toss deliveries aa rahi hain. Aisha Zafar jis tarah se bowling kar rahi hai wo bhi off aur leg spin karne ki koshish kar rahi hai, to wo niyantran ki kami nazar aa rahi hai, aur isse Sri Lanka ko thoda fayda to ho hi raha hai, lekin samarpan kamal ka hai. जिस तरह से इन दोनों खिलाड़ियों ने बैटिंग की है, अप्लाई किया है अपने आप को, वो देखते ही बनता है. उमेहानी बॉलिंग करेंगी, ऑफ ब्रेक बॉलर हैं. हर्षिता 31 24 गेंदों पर, कविशा 22 24 गेंदों पर, 88 4 विकेट पर 14 ओवर. 6 अंतिम ओवर्स अब किए जाएंगे. राउंड द विकेट अगेन, एज ऑफ द क्रीज से खेला एक रन. पहला रन पहले बहुत तेज दौड़ती हैं, लेकिन इस समय दूसरे की गुंजाइश नहीं है. रनिंग बिटवीन विकेट्स ने पासा पलट दिया पाकिस्तान के ऊपर. श्रीलंका ने इतनी लाजवाब, हर्षिता उसमें अग्रणी रही है, कविशा ने भरपूर साथ दिया है, और अब ऐसा लगता है कि एक पाकिस्तानी खिलाड़ी को मैदान से बाहर लिया जा रहा है. उनको दो बार क्रैम्प्स के लिए उपचार दिया जा चुका है मैदान पर, और फिर अंपायर्स ने कहा आप इनको बाहर ले जाइए कुछ टाइम के लिए, और वहां आप इनको मदद आप इनकी करिए, नहीं तो खेल बहुत धीमा चला है जब से पाकिस्तान बॉलिंग करने के लिए आया है. फ्लाइटेड गेंद को सीधे बल्ले से खेला सामने की ओर. एक ऐसी फील्ड जमाई गई है, कवर पीछे, एक्स्ट्रा कवर थोड़ा आगे की तरफ, आमतौर पर मैं तो इन एंड आउट फील्ड, जिस दायरे के अंदर ही इन और आउट फील्ड जमाई गई है, पैक्ड ऑफ साइड फील्ड, और इसीलिए लेग साइड में पलट कर प्लेस करने का प्रयास ये खिलाड़ी करते रहे हैं. 32 पे हर्षिता, कविशा 22, जीतने के लिए 131 रन बनाने हैं, यानी कि अब 34 गेंदों पर 42 रन बनाने हैं. 34 बॉल्स 42 रन, 89 फॉर 4, और इस बार खेल दिया बेहतरीन स्ट्रोक, और उस ओर अगर फील्डर भी होगा तो नहीं रोक पाएगा. शॉट ऑफ द डे 4 रन, और खुशी की लहर दौड़ गई है श्रीलंकाई खेमों में, और उनके समर्थकों के क्या कहने मचल रहे हैं. श्रीलंका का फ्लैग लेकर एक कदम बाहर निकाला, घुटने को पीछे वाले को मोड़कर थोड़ा सा अपने आप को नीचे किया, बैट को गेंद के नीचे लाने में सफल रही. बहुत ही आकर्षक सूझबूझ भरा स्ट्रोक खेल दिया उसको 4 रनों

0: के लिए, और ये बहुत ही महत्वपूर्ण 4 रन है। ये कविशा ही थी जो इस समय बैटिंग कर रही हैं, और इस बार उन्होंने फिर स्वीप में उसको खेला था, लेकिन ऐसी स्वीप की कि कलाइयों को घुमाकर गेंद को जमीन पर रखा। जिन्होंने विनिंग हिट लगाई थी 2024 में जब भारत को हराया था एशिया कप फाइनल में श्रीलंका ने, तब कविशा ही ने वो स्ट्रोक खेला था, विनिंग रन बनाया था, और श्रीलंका 8 विकेट से जीता था। हर्षिता ने 69 और कविशा ने 30 रन नाबाद बनाए थे, और इन दोनों ने 73 रन जोड़े थे तीसरे विकेट के लिए, और वो ही जोड़ी मैदान पर है। जो पाठ भारत को पढ़ाया तो वो आज पाकिस्तान को पढ़ाएंगे। क्या ये दोनों खिलाड़ी देखिए क्या सूझबूझ के साथ बैटिंग कर रहे हैं? पूरा गणित निकाल कर मैंने मांगा जतिन से, और जतिन ने बखूबी निकाल किया। ये बात सही है कि कविशा ने ही विनिंग स्ट्रोक लगाया था, और ये आंकड़े हैं। और अभी भी इस मौसम में, इस उमस में, पसीने से तर बतर, लेकिन रनिंग बिटवीन द विकेट्स इससे बेहतर आपको देखने को नहीं मिलेगी। ए जहां रन नहीं होता वहां सिंगल दौड़ते हैं, और जहां सिंगल होता है वहां 2 रन ले रहे हैं। बैक फुट पे गए शॉर्ट ऑफ लेंथ गेंद को, जिसमें ज्यादा टर्न नहीं था, उमे हानि की ऑफ स्पिन गेंद पर रफ्तार ज्यादा थी, कोई रन उसमें बन नहीं सकता था क्योंकि सीधे फील्डर के पास जा रही थी। बैक फुट पे जाके आड़े बैट से खेला जरूर, लेकिन सीधे फील्डर के पास स्ट्रोक में प्लेसमेंट नहीं। एक और ओवर समाप्त हो गया। बहुत ही संघर्षपूर्ण दिलचस्प क्रिकेट, और मैं बार बार कहता हूं श्रीलंका एक खिलाड़ी कभी हार नहीं मानते।
1: यस विनीत, एंड स्पेशली दीज टू, Harshita and Kavisha, what a partnership they're having. Third 50-plus partnership for Sri Lanka in this tournament against UAE. Imesha and Chamari Attappattu, 57 of 35 balls of the opening wicket. Then Nilakshika and Kavya Kavindi, 50 of 36 balls for the 7th wicket versus Indonesia. And still going strong on 60-plus the partnership between Harshita and Kavisha. Thank you to Jatin Sood, our statistician, who along with our veteran scorer, Yashwant Chadha, has been giving us all